من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: एब्सोल्यूट सिनेमा,
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक बड़े खेत में एक डॉग अपने पपी के साथ रहती थी। खेत में कई किस्म के जानवर थे, लेकिन उस माँ की सबसे बड़ी परेशानी उसके पपीज थे। वो बहुत शरारती थे और अक्सर अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। उनकी माँ ने उन्हें खास तौर पर एक बात समझाई हुई थी, मेरे बच्चों कभी भी कुएं के करीब ना जाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। माँ अपने पपीज को ये बात बार बार कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुआं बहुत गहरा है और उसके करीब जाने से कोई भी हादसा पेश आ सकता था। लेकिन जैसे हर बच्चे की अपनी फितरत होती है, वैसे ही इसके पपीज में भी कुछ पपीज बहुत शरारती थे और इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। इन पपीज में एक पपी का नाम टॉमी था। वो बहुत ही क्यूरियस नेचर का था और हमेशा नए तजुर्बात करने की कोशिश करता रहता था। वो हमेशा ये सोचता था कि उसकी माँ आखिरकार क्यों उन्हें हमेशा इस कुएं के पास जाने से रोकती रहती है, क्योंकि उसने खुद कभी उस कुएं को देखा ही नहीं था। एक दिन हुआ ये कि जब उसकी माँ खेतों में कहीं दूर निकली हुई थी, टॉमी ने मौका पाया और कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं तक पहुँचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, उसने अंदर झांका। उसके बाद जो कुछ टॉमी ने देखा वो उसके लिए बहुत हैरान कुन था। टॉमी को उस कुएं में अपना अक्स यानी अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। टॉमी ने ये सोचा कि ये कोई दूसरा पपी है जो उसकी नकल कर रहा है। उसने अपने कान खड़े किए और भौंकना शुरू कर दिया। उसका ये ख्याल था कि दूसरा पपी उसकी नकल करके भौंक रहा है। हैं, ये क्या हो रहा है, टॉमी ने खुद से कहा। ये पपी मेरी नकल क्यों कर रहा है भाई? टॉमी ने गुस्से में आकर फैसला किया कि वो उस दूसरे पपी को सबक सिखाएगा। उसने एक बड़ी छलांग लगाई और कुएं में कूद पड़ा ताकि वो उस दूसरे पपी से लड़ सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे तब जाके समझ में आई कि वहाँ तो कोई पपी था ही नहीं, बस पानी में उसकी अपनी ही शक्ल थी, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन। टॉमी हैरान हो गया और फौरन खौफ के मारे चुप हो गया। टॉमी पानी में गिरा हुआ था और अपने आप को इंतहाई बेवकूफ महसूस कर रहा था। वो ना तो बाहर आ सकता था और ना ही वो समझ पा रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। कुछ देर बाद उसने भौंकना शुरू कर दिया और वो मुसलसल भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कुएं के पानी में गूंज रही थी। बिलाखिर किसान खेतों में आया और उसने देखा कि टॉमी कुएं में फंसा हुआ था। उसने फौरन उसकी मदद की। किसान ने टॉमी को बाहर निकाला और उससे कहा, क्यों भाई, तुमने अपनी माँ की बातों पे ध्यान नहीं दिया था? कब से वो तुम्हें कह रही थी? कितनी हिदायत की थी उसने तुम्हें कि कुएं के पास नहीं आना? टॉमी ने किसान का शुक्रिया अदा किया और एक गहरा सांस लिया और वो उस दिन को कभी नहीं भूल सका। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी माँ की बातों को हमेशा ध्यान से सुनेगा और कभी भी बेसोचे समझे कदम नहीं उठाएगा। अगले दिन जब टॉमी दूसरे पपीज के साथ खेल रहा था, उसने उन सब को बता दिया कि कुएं के करीब जाने से क्या हो सकता है। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और बताया कि किस तरह उसने अपनी माँ की नसीहत को नजरअंदाज किया और उसे कितनी मुश्किल पेश आई। उसके साथी पपीज ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और सबने वादा किया।

कि वो हमेशा अपनी मां-बाप की हिदायत पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा उन लोगों की बातों को सुनना चाहिए जो हमें अपने तजुर्बे की बिना पर नसीहत करते हैं। हमारे बुजुर्ग और हमारे वालिदैन वो लोग हैं जो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो हमारी भलाई के लिए हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमेशा अपने बड़ों की बातों पर ध्यान दिया करें।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ और आपके साथ इस वक्त मैं हाजिर हुई हूं एक नई इकोनॉमिक टर्म लेकर। पहले आज दोस्तों हम बात करेंगे एक नई इकोनॉमिक टर्म बैंक रेट के बारे में। ये टर्म पहले आपने सुनी है या नहीं सुनी, चलिए आज डिटेल में बात होगी। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो दर है जिससे मरकजी बैंक यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। ये इकोनॉमी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इससे ये डिसाइड होता है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स से लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और सेविंग्स पर कितना इंटरेस्ट देंगे। तो ये टर्म हुई ना इतनी इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर आसान लफ्जों में बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट ऐसा है जैसे सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेने का दाम। जब बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक्स के लिए पैसे उधार लेना महंगा हो जाता है और वो इस खर्चे को कस्टमर्स पर डाल देते हैं जिससे लोन्स पर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देकर भी मैं आपको समझाती हूँ कि बैंक रेट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो देखिए बैंक रेट का बढ़ना ऐसा है जैसे आपकी पॉकेट पर खर्चे का बढ़ना। जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक्स भी लोन्स पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बैंक रेट 5% से बढ़कर 6% हो जाता है तो आपने जो होम लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट भी 7% से बढ़कर 8% हो जाएगा। वहीं पर बैंक रेट का कम होना भी सीधा आपकी पॉकेट पर असर डालता है। मान लीजिए अगर मरकजी बैंक बैंक रेट को कम करते हैं तो बैंक्स जो हैं वो पैसे उधार लेने में कम खर्च करेंगे जिससे कंज्यूमर्स के लिए लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बैंक रेट 6% से कम होकर 5% हो जाता है तो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो भी 10% से कम होकर 9% हो सकता है। तो ये हुआ ना आपके लिए फायदेमंद। ऐसे देखा जाए तो बैंक रेट आपकी सेविंग्स पर भी असर डालते हैं। जब बैंक रेट ज्यादा हो

0: रहा है तो बैंक्स अक्सर सेविंग्स अकाउंट पर भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, जिससे लोग ज्यादा बचत करते हैं। अगर बैंक रेट 5% है तो आपकी अपनी सेविंग्स पर ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन जब ये 3% हो जाता है तो आपकी सेविंग्स पर फायदा भी कम हो जाता है। यानी ऑल टुगेदर कह सकते हैं कि बैंक रेट एक अहम इकोनॉमिक टूल है जो बैंक्स को पैसे उधार लेने की कॉस्ट को कंट्रोल करने के हवाले से यूज किया जाता है, जो कि आखिर में आम लोगों पर लोन्स और सेविंग्स पर असर डालने के हवाले से भी समझा जाता है। इसका समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फाइनेंसेस बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और समझ सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस टर्म को आपको समझाने में काफी हद तक कामयाब हुई होंगी। वेल, इसी उम्मीद के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। एक नए एपिसोड में नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत

जापान के 1.88 मीटर लंबे कद के ताकेहिरो तोमियासु का पहला शौक फुटबॉल नहीं था और वो अपनी दो बड़ी बहनों की तरह स्विमर बनना चाहते थे, लेकिन जबड़े की चोट ने उन्हें फुटबॉलर बना दिया। तोमियासु ने इसमें किस्मत अजमाई की और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2021 में आर्सेनल क्लब में ज्वाइन किया और अपने दूसरे साल में तोमियासु ने अपनी काबिलियत साबित की। मजे की बात है कि आर्सेनल में राइट बैक की पोजीशन के खिलाड़ी तोमियासु जापान की कौमी टीम के लिए सेंटर बैक की पोजीशन पर खेलते हैं और अर्जेंटीना के डिफेंसिव मिडफील्डर जेवियर मास्चेरानो को वो बहुत पसंद करते हैं और इनफैक्ट मास्चेरानो उनके रोल मॉडल हैं। उनकी डिफेंसिव क्वालिटीज अच्छी हैं और तोमियासु बैक की पोजीशन से गेम को तैयार करते हैं। उनके नपेतुले पास डिफेंस को अटैक की शक्ल देते हैं और तोमियासु जापान के अहम खिलाड़ी हैं जो पिच के

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लाइफ के ब्लूज को दूर भगाओ, ये सुपर कूल हैक्स अपनी लाइफ में अपनाओ। यस, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज का सबसे पहला हैक है बनाना फ्रूट, यानी कि केले को अगर हमें ज्यादा दिन चलाना है तो क्या करना है। ठीक है, ये 5 मिनट का लाइफ हैक है और आपको बड़ा मजा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बनानाज यानी कि जो केले होते हैं, अगर उनका पकना थोड़ा सा स्लो हो जाए और वो थोड़ा लंबे अरसे तक फ्रेश रहे, तो बस आपको इतना करना है, उनका जो स्टेम है उस पे एल्यूमिनियम फॉइल को अच्छे से टाइटली रैप कर देना है। इससे उनके पकने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और ये थोड़ा लंबा चलते हैं। वेल, दूसरा हैक है जिंजर को स्टोर करें कहीं ओपन में नहीं, सीधा फ्रीजर में। हाँ जी, जिंजर यानी कि अदरक को ज्यादा दिन तक अगर ताजा रखना है, ज्यादा लंबा चलाना है, तो उसे सीधा फ्रीजर में स्टोर करना है। यानी यूज करने से पहले उसको अच्छे से धो के छोटे छोटे उसके टुकड़े करना है और सीधा फ्रीज कर देना है, ताकि जब भी जरूरत हो आप उतना ही पीस निकालो जितना चाहिए। एंड देन नो मोर सूखा हुआ अदरक की भाई अब इसको बाद में यूज करना है। ठीक है, तो ये लाइफ हैक्स आप भी जरूर अपनाएं। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स, विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम अपने घर में सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बात करेंगे। घर में छोटी छोटी चेंजेस लाकर हम अपने डेली लाइफ को ग्रीन बना सकते हैं। एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स का यूज करके आप अपने घर का टेम्परेचर रेगुलेट करें और एनर्जी वेस्ट को कम करें। अगर आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं तो सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करें, जैसे बैम्बू फ्लोरिंग या रिसाइकल्ड मटेरियल। घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर अपने पानी के यूज को एफिशिएंटली मैनेज करें। ग्रीन होम से ना सिर्फ आपके एनर्जी बिल्स कम होते हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने इंसानियत की फिक्र, तहजीब, इल्म और जबानों की तश्कील में किस कदर गहरा किरदार अदा किया है। आज का मौजू एक बज़ाहिर लिसानी मौजू मालूम होगा, लेकिन हकीकत में ये कुरान की आलमगीरियत, इस्लाम की तहजीब के वसत और जबान की ताकत से मुतालिक एक नहायत अहम गुफ्तगू है। सामने किराम, जब अरबी जबान का जिक्र आता है तो बाज लोगों के जहन में एक कौम या एक खित्ते की जबान का तसव्वुर आता है, लेकिन कुरान करीम हमें अरबी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तारुफ कराता है। अल्लाह फरमाता है, बिलिसानिन अरबी मुबीन। ये कुरान एक वाज़ह और रोशन अरबी जबान में नाजिल किया गया है। अरबी एक ऐसी जबान का तारुफ है जो वजाहत, फसाहत, बलागत और माना की गहराई में बेमिसाल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब के लिए इसी जबान को मुंतखब फरमाया। तो ये इंतखाब हिकमत इलाही का मजहर है, क्योंकि जिस पैगाम को क़यामत तक बाकी रखना था उसके लिए ऐसी जबान दरकार थी जो मानी की बारीकियों को पूरी अमानत के साथ महफूज रख सके। तो जब इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा तो अरबी जबान भी उसके साथ साथ पहुंची। एक नहायत अहम हकीकत यहाँ ये समझनी है कि इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि तमाम कौमें अपनी मादरी जबानें छोड़ दें। इस्लाम ने हर कौम की जबान का एहतराम किया। फारसी अपनी जगह बाकी रही, तुर्की अपनी जगह कायम रही, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, मलयालम और दुनिया की बेशुमार जबानें भी जिंदा रहीं। लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई मुश्तरक इल्मी और दीनी जबान बनी तो वो अरबी थी। अरबी ने दूसरी जबानों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। यही इस्लामी तहजीब की खूबसूरती है, वहदत भी और तनव्वु भी। बर्र सगीर हिंद या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ममालिक की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि अरबी ने यहाँ के इल्मी, अदबी, अदालती और फिक्री निज़ाम पर गहरा असर छोड़ा है। यानी बात सिर्फ मस्जिदों और मदारिस तक महदूद नहीं रही। हैरतअंगेज़ पहलू ये है कि अरबी का असर सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ये हमें इस ऐसी कुर्बत का एहसास दिला रहे हैं जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी कायम है, मगर अक्सर हम इसका शऊर भी नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फरमाते कि मैं तुम्हारे दिल से ज़्यादा करीब हूँ तो हमारा जहन मोहब्बत की तरफ जाता। अगर फरमाते कि मैं तुम्हारी रूह से ज़्यादा करीब हूँ तो हम रूहानियत और बातनी कैफियत के बारे में सोचते। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं तो गोया वो हमें ये हकीकत समझा रहे हैं कि उनकी कुर्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरत, वो सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, वो सिर्फ एक रूहानी कैफियत नहीं बल्कि वही वो ज़ात है जिस पर हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर लम्हे हयात कायम है। हमें खौफ होता है कि कहीं हम बेनकाब ना हो जाएं, कहीं हम अकेले ना रह जाएं, कहीं हम बेसहारा और गैर महफूज ना हो जाएं। लेकिन ये आयत उन तमाम वहमों को ख़त्म कर देती है। हम हकीकत में कभी भी मुकम्मल तौर पर तन्हा या बेआसरा हो ही नहीं सकते क्योंकि जिस ज़ात के अख्तियार में हमारी ज़िंदगी है वो हमारे इस निज़ाम हयात से भी ज़्यादा करीब है जो हमें ज़िंदा रखे हुए है। गोया अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं कि तुम्हारी सबसे कमज़ोर हालत में, तुम्हारे वजूद के उस मकाम पर जहाँ तुम सबसे ज़्यादा गैर महफूज हो, मैं वहाँ भी मौजूद हूँ। हमें से अक्सर लोग अल्लाह ताला को आसमान में तलाश करते हैं, हम मौजज़ात में, गैर मामूली वाक़ियात में या दूर की निशानियों में अल्लाह को ढूंढते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें दावत देते हैं कि अपने अंदर झांको, जिल्द के पार, गोश्त और पट्ठों के पार, अपने वजूद की गहराइयों में, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत इतनी गहरी और इतनी हकीकी है कि हमारी और उसकी रहमत के दरमियान कोई फासला बाकी ही नहीं रहता। फिर हमें ख़ुद से पूछना चाहिए कि जब कायनात का खालिक हमारी अपनी शहरक से भी ज़्यादा करीब है तो हम ख़ुद को तन्हा कैसे समझ सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी की कश्ती का हकीकी रहनुमा हमारे साथ है तो फिर हम अपने आप को गुमशुदा क्यों महसूस करते हैं। अल्लाह से दूरी का एहसास दरहकीकत सिर्फ एक वहम है। अगली बार जब भी हम में से किसी का भी दिल तेज़ी से धड़के, अगली बार जब परेशानी से नफ्स तेज़ हो जाए तो अपनी शहरक को याद कीजिए। याद कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी इस धड़कन के चलने से, उस धड़कन के मंबे से भी ज़्यादा करीब है जितना आप खुद हैं, और इस दुआ को भी सुनते हैं जो अभी तुम्हारे होठों से निकली भी नहीं। वो उस गम के भी साथ हैं जिसके लिए अभी अल्फाज तक नहीं मिले। इसीलिए अल्लाह ताला सिर्फ कहीं बाहर उसको, अल्लाह को तलाश करना हमें छोड़ देना चाहिए। वही तो इस ज़िंदगी के अंदर मौजूद असल ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। वो हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब है, हमारे खून से भी ज़्यादा करीब है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। और इस वक्त अगर हमारा दिल तेज़ी से धड़क रहा है तो सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल की इस धड़कन से भी ज़्यादा, इसकी तरतीब, इसकी रवानी और इसके हर लम्हे के करीब हैं। इस जुमले को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, अपने आप को बार बार बताने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे इतने करीब हैं कि जितना करीब और दुनिया का कोई शख्स नहीं हो सकता, हम खुद नहीं हो सकते। वो हमें ऐसे जानता है जैसे हम खुद को नहीं जानते। इसी के साथ लिसनर्स बढ़ेंगे हम असकार की जानिब। सुनते रहें फिर 107 दिल से देसी, थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के।

एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

99.9 वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मवेश खान और मैं एक दफा फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ। और अब मुझे बताना है आपको मौसम का हाल चाल, और देख के थोड़ी सी मुझे तशवीश हुई है क्योंकि आज गर्मी ज़रा नस्बतन ज़्यादा रहने वाली है, तो थोड़ा मतलब अलर्ट हो जाएं आप भी। आज जो कम से कम रहेगा ना टेम्परेचर वो होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, लेकिन फील्स लाइक जो है ये हो सकता है 47 तक भी, तो इसलिए ख्याल ज़रा ज़्यादा रखना। अभी इसी वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो मतलब ठीक ठाक सुबह में ही गर्मी का आगाज़ हो चुका है, तो अब आगे आगे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है भाई, ख़ासतौर पे दोपहर के वक्त में गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें। जैसे रोज़ाना ही मैं आपको एडवाइस करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, वो इसीलिए होता है कि अमूमन हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए आप ख्याल रखिएगा, पानी आपने लाजमी अपने साथ रखना है और प्यास लगने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े से सिप्स लेते रहिए, वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और आपकी बॉडी को कूल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें अपने साथ। अगर तो मतलब कहीं जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर खाना अवेलेबल होता है, वहाँ पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स ओके। अदरवाइज़ अपने साथ थोड़ा सा कुछ ऐसे ये जो फ्रूट्स हैं खास तौर पे, मतलब लंच में कुछ और लेके जाएं ना लेके जाएं, लेकिन कम से कम खीरा ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी ज़्यादा है वो अपने साथ रखें। और लेमन का भी इस्तेमाल इस वक्त में काफ़ी अच्छा रहता है, तो लेमन जूस वगैरह बना के वो भी आप पी सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो भी आपको मतलब हाइड्रेट रखने में मददगार साबित हों उनको इख्तियार करना है, और जितने भी कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मतलब कैफीन हो या फिर कॉफ़ी वगैरह, चाय या फिर मतलब जो है ना दूसरे भी और जो शुगरी ड्रिंक्स हो जाते हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये उल्टा आपकी बॉडी को एकदम से शुगर स्पाइक देते हैं जिसका नुकसान ही होता है। और आपको प्यास भी मतलब बुझती नहीं है कोई ऐसी खास, उसके मुकाबले में अगर आप वो वाले देखें ना मतलब जो हमारे देसी घरेलू टाइप के जो शरबत वरबत होते हैं वो ज़्यादा मतलब मुनासिब भी होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, और फिर साथ साथ ये कि आपको वो फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। अदरवाइज़ इनका जो शुगरी ड्रिंक्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा जब भी कभी ऐसा एहसास हो ना, तो उसके बजाय ये कि आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ ऐसा लेके पिएं, आप लेमन जूस लेके पी लिया करें, वो काफ़ी मतलब बेहतर है। या फिर सुकंजीन कहते हैं ना, हाँ वो घर पे बना के रख लें और वो भी साथ लेके जा सकते हैं आप।

0: और आज तारीख है 7 जुलाई और दिन है मंगल का, ट्यूसडे आज आ गया है और हम मिड ऑफ द वीक में आ गए हैं, दाखिल हो गए हैं। अब 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं, बीच में हैं हम। तो 7 जुलाई को क्या कुछ होता है दुनिया में ये जानते हैं। सबसे पहले तो हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है और रिवायत के मुताबिक इसी दिन यूरोप में पहली मरतबा चॉकलेट मुतारफ़ हुई थी और इस दिन का मकसद जो है वो चॉकलेट की लजीज तारीख, उसकी मुख्तलिफ किस्मों और उससे जुड़ी जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करना होता है। तो ज़बरदस्त भाई, मतलब ये दिन तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट हुआ क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है बचपन से ही। हर चीज़ में फ्लेवर चॉकलेट का होना चाहिए और मतलब चाहे वो आइसक्रीम हो चाहे कोई और चीज़ हो। और बचपन में, पूरे बचपन मैंने जो है वो दूध में सिर्फ इस सूरत में पीती थी कि अगर वो चॉकलेट फ्लेवर मिल्क हो तो बस, उसके अलावा नहीं। तो ये चॉकलेट और हमारा जो नाता है, रिश्ता है, वो बहुत ही पुराना है, मतलब शुरू से है। तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होता होगा जिसे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती होगी। माँ बाप हमेशा इस चीज़ से परेशान ही रहते हैं। खैर मेरे अम्मा अपन ही रहते थे, उसका रीज़न ये था कि मैं खाती पीती थी नहीं, तो वो कहते थे चलो मतलब जो ये खा रही कम अज़ कम अच्छा लगता है, चॉकलेट मिल्क अच्छा लगता है, तो कम अज़ कम कुछ तो मतलब ले रही है ना, तो वही दे दो। तो मेरे पापा तो बल्कि मुझे ला ला के चॉकलेट रखा करते थे कि मतलब ये चलो खाए, उनको पता था कि इसको पसंद है, तो वो मुझे ला ला के दिया करते थे अलग से, जब भी ख़त्म हो रही होती थी उससे पहले लेकर आ जाते थे। खैर जी, आज के दिन लोग अपने दोस्तों और घर वालों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स करते हैं और नए फ्लेवर्स ट्राई करते हैं और अपनी पसंदीदा चॉकलेट डेजर्ट जो है उसका लुत्फ उठाते हैं। अगर हद में रहकर खाई जाए तो ठीक है, और डार्क चॉकलेट खासतौर पे ये भी बताया जाता है कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो डार्क चॉकलेट का तो वैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि मैंने देखा है कि हार्ट पेशेंट्स जो है ना उनके लिए भी डार्क चॉकलेट अच्छी होती है। अच्छा, इसके साथ ही यूनेस्को की जानिब से हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड कैस्वाहेली डे, लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कैस्वाहेली अफ्रीका की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है और लाखों अफराद की पहली या दूसरी ज़बान है। तो इस दिन का मकसद ज़बानों के जो एक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ सकाफ़तों के एहतराम और लोगों के दरमियान बेहतर राबते को फ़रोग देना है बेसिकली। तो ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ 7 जुलाई को कई ममालिक में एक बड़ा ही मज़ेदार और ज़रूरी दिन मनाया जाता है, वो है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। और ये भी 7 जुलाई को होता है और इस दिन लोगों को माफ़ करने, पुरानी नाराज़गियों को ख़त्म करने और अपने दिल से नफ़रत गुस्से को निकालने की तरकीब दी जाती है। और माफ़ी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने ज़हनी सुकून और अपनी बेहतर सेहत के लिए भी बहुत अहम है, ये आप जानते हैं यकीनन। और इसके अलावा जो दिन मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल पीस एंड लव डे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 7 जुलाई को मोहब्बत, अमन और इंसानियत यकजहती का पैगाम भी दिया जाता है और इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मेहरबानी, इज्जत, पॉजिटिव रवैये को फ़रोग देने की कोशिश करते हैं और याद दिलाया जाता है कि छोटे छोटे अच्छे अमाल भी सोसाइटी में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो ज़बरदस्त भाई, मतलब बड़े अच्छे दिन हैं, माफ़ करने का भी दिन है, इंटरनेशनल पीस एंड लव डे भी मनाया जाता है, फिर चॉकलेट डे भी है। तो चॉकलेट वैसे ही आप किसी को मतलब अगर चॉकलेट ही ऑफर कर दो तो मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो काफ़ी अच्छे दिन हैं, काफ़ी अच्छे दिन मनाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे इवेंट्स, काफ़ी अच्छे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो भाई अच्छी बात है, 7 जुलाई यानी दुनिया का एक अच्छा दिन है जिस दिन बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। खैर जी, तो ये था हमारा 7 जुलाई के हवाले से कुछ चीज़ें और आज का जो टॉपिक है, अब मैं उसकी तरफ आ जाती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप कॉल करना चाहें, भी मैं देख रही थी कि कॉल आ भी रही थी लेकिन हम चूंकि कंप्लीट करना चाह रही थी मैं अपना, तो इसलिए मैंने उस वक्त कॉल नहीं ली। तो अब आप कॉल कर सकते हैं और मैं सवाल बता देती हूँ। सवाल है आज का हमारा ये कि आज तक कौन सी ऐसी, आप कहेंगे एडवाइस, कौन सा ऐसा मशवरा है जो किसी ने भी आपको दिया हो और आप समझते हैं कि बेस्ट मतलब एडवाइस थी ज़िंदगी की, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, सोचें ज़रा, दिमाग पर जोर डालें और फिर जवाब दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सॉरी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
0: अच्छा, आरिफ अंसारी। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे लगा था ये कोई नाम है। मैंने कहा ये अच्छा खासा बड़ा नाम है, कौन सा नाम है? अच्छा, आरिफ अंसारी, क्या हाल चाल है भाई? अच्छा जी, तो आरिफ अंसारी, क्या हाल चाल है, कैसी सुबह का आगाज हुआ? नहीं नहीं कहाँ यार, मैं नाश्ता नहीं करके आती जब से ये सुबह का इतना जल्दी का शो शुरू हुआ है ना। वैसे मैं नाश्ता हमेशा करके आती थी, लेकिन अभी ये कि 4 बजे मुझसे नाश्ता नहीं होता, ये बहुत अर्ली है।
1: 4 बजे तो
0: सही, हाँ लेकिन अभी कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे तो नाश्ता नहीं कर सकते, अब जाके ही फिर नाश्ता होता है। लेकिन ये कि हाँ मैं सत्तू पीकर आती हूँ, फिर मैंने एडिशन ये कर दिया था, बीच में बनाना खा रही, सॉरी वो अंडा खा रही थी, अब मैं बनाना खा लेती हूँ, तो मतलब समझे थोड़ा लाइट से नाश्ता कर आ ही जाती हूँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत ऐसे की एनर्जी तो मिले ना, वरना तो फिर सर में दर्द हो जाता है आपके। कितना ही बोले, यही तो बात है। तो थोड़ा बहुत मैं बनाना आज खा कर आई। और बताएं आरिफ अंसारी, आपने नाश्ता कर लिया?
1: आज सुबह 5 बजे उठा था, उसके बाद मैंगो रखा था 4-5, उसमें से एक निकाला कट के खाया।
0: अच्छा।
1: फिर रात को चिया सीड्स भिगा के रखा था, उन्हें लेके आया था,
0: होटल
1: उठाया, लेके आ गया।
0: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। मतलब आप कभी वो फ्रूट वाला नाश्ता हुआ है अभी? चले गुड, सही हो गया। अच्छा आरिफ, तो ये बताएं कि जिंदगी में किसी ने दिया हो कोई मशवरा, बहुत ही बेहतरीन मशवरा जो आपके काम आया हो।
1: नहीं, मेरे माने और बाबा ने मतलब बताया था, बचपन से ही बता रहे थे, अभी भी बताते हैं मेरे को, किसी का कभी कुछ भी हो जाए किसी का कुछ बुरा नहीं करो। अगर तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे तो वो अल्लाह तआला तुम्हारा कुछ मतलब वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, नहीं होने देंगे।
0: सही, जबरदस्त।
1: इंसान भी कर ले, कितना भी एड़ी जोड़ी का जोर लगा ले, पर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता
0: है। हाँ ये बात तो है, आप अपने आप को बचा के रखो ना तो अल्लाह ताला आपको खुद बचाते हैं। फिर अगर बुराइयों से आप अपने आप को बचाते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो अल्लाह ताला फिर आपको खुद दूसरों की तरफ से पहुंचने वाली बुराई से बचा लेते हैं। तो ये माँ बाप की तरफ से मिला था मशवरा,
1: और वो मैं याद भी रखता हूँ, ताकि मैं देखते रहता हूँ, अच्छा भी लगता है।
0: हाँ सही बात है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो अपने तौर पे अपने आप को सही रखना जरूरी है।
1: कोई भी चीज मैं करता हूँ ना, तो मैं एक बार
0: सही सही सही। नहीं ये तो बड़ी जबरदस्त एडवाइस आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिली, और अच्छी चीज क्या है कि अमूमन ये होता है पेरेंट्स की बातों को हम हल्का लेते हैं कि ओ चलो मतलब इनको क्या पता, जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, लेकिन अच्छी बात है कि आपने इस एडवाइस के ऊपर हमेशा अमल भी किया और आप इसको कीमती भी समझते हैं।
1: पूरी दुनिया झूठी है, पर माँ बाप कभी आपके साथ नहीं छोड़ेंगे,
0: आपको बुरा नहीं चाह सकते।
1: हाँ बुरा कभी नहीं चाहेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब सिचुएशन हो जाए, आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, आप मतलब एक हिसाब से अगर अल्लाह ताला किसी को ना करे ऐसा हो, आप मतलब बेकाम भी है ना, फिर भी माँ बाप की आपका बुरा नहीं चाहेंगे।
0: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़बरदस्त आरिफ, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने बहुत अच्छी चीज़ शेयर की, और थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहते हैं आरिफ? चले ठीक है, मैं बिल्कुल थोड़ी देर में पढ़ती हूँ, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। अच्छा जी, तो आरिफ अंसारी हमारे साथ थे, और इसके साथ ही एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت؟
0: الحمدللہ بالکل خیریت، آپ بتائیں کیسے ہیں، صبح اچھی ہو گئی آپ کی؟
2: الحمدللہ بہت اچھے سے صبح گزر رہی ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں گرمی زیادہ ہے، پر کل کے مقابلے
0: آج تھوڑی گرمی ذرا زیادہ ہونے والی ہے۔
2: نہیں نہیں بالکل ابھی تک نہیں ہے، بول سکتے نا بھی نہیں ہے ابھی تک
0: ہے، धूप भी कम है?
1: धूप तो है पर हवा का नमी जो है ना।
0: हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस वक्त एहसास कम हो रहा है गर्मी का?
1: अभी तक तो नहीं आया। बाद की बात मालूम नहीं।
0: हाँ, बाद में आज जरा मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा ऐसा दिख रहा है।
1: ज्यादा तो फिर हमारे लिए अच्छा, हमारा कंपनी मैसेज किया है कि थोड़ा जल्दी काम करो, 8 बजे छुट्टी करो, मीटिंग है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए अच्छा है।
0: 2 घंटे रह गए बस। चले ये भी अच्छा है, गुड है, जबरदस्त है। और बताएं भाई नूर मोहम्मद मंसूर साहब, कि आपको किसी ने दी हो अच्छी सी एडवाइस, कोई अच्छा सा मशवरा जिसके ऊपर मतलब आपको लगता हो भाई ये ना बेस्ट मशवरा था, कोई भी हो सकता है देने वाला।
1: जो टॉपिक आप छेड़े हैं वो टॉपिक पे तो 90% इंसान माँ बाप ही नाम लेगा, और मैं भी यही कहूंगा, मैं कहना चाहता था मैं सोचा सच मेरा कॉल पहला आएगा, पर आया, अच्छी बात है। तो मैं मतलब घर में कहे तो सबसे नकारा था, समझे बात, मतलब बदमाश टाइप का, मतलब काम नहीं करता था, बस खाता पीता खेलता कूदता था, माँ बाप का बात ही नहीं सुनता था, ठीक है। तो मेरे अबू ने एक रोज बैठा करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बैठाया।
0: अच्छा,
1: मुझे मशवरा दिया ये बेटे, अगर जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, पेट को चोरी करके भी आदमी पाल लेता है, खेती करके भी पाल लेता है, किसी को मार के भी पाल लेता है, पर जो इज्जत होता है ना वो इज्जत कमाने के लिए इंसान को इंसानियत दिखाना पड़ता है।
0: सही।
1: तो दुनिया में हर चीज कर लेना, 5 चीज ऐसा कोई काम मत करना 5 में से जो तुम्हारे इज्जत इंसान ना करे। पहला है कि किसी का तुम इज्जत करना सीखो, फिर तुम्हें वो अगला आदमी इज्जत देगा। दूसरी बात, पेट भरने के लिए चोरी मत करो, बस नमक रोटी खा लो पर हलाल कर खाओ। तीसरी बात उसने ये सिखाया कि अगर अल्लाह की

0: करीब होना है, हराम कामों से बचे, मतलब उसका कहने का मतलब था जुगा शराब जीना, एक ही कामों से तुम बच गया तो शायद तुम पर अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देगा तुम्हारा। एक ही गुनाह ऐसे है माफी का कोई गुंजाइश नहीं। चौथी बात ये है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब माँ बाप जिस हाल में हो उसका कदर करना तुम्हारा बहुत जरूरी है। मैं डांटूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो मैं तुम्हारी भले से डांटा, इतनी एडवाइस दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं इस पर उस दिल से मैं खड़ा उतरा हूँ और मैं चाहता हूँ हर इंसान को एडवाइस कबूल करना चाहिए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपके वालिद ने बहुत ही समझदारी के साथ आपको समझाया और काफ़ी अच्छी एडवाइसेस दी हैं सारी बैठ के। ये बड़ी बात होती है कि वालिद जो है ना इतने समझदार हों कि वो इस तरह से बच्चे को समझा सके। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हैं ये सारी एडवाइसेस।
0: एक बात तो मेरे अब्बू को मतलब कलम का, मतलब कलम बोले तो पढ़ाई लिखाई का मतलब बिल्कुल तजुर्बा नहीं, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब शुरू से घर का हालात ऐसा थे, मेरे दादी लोग बता रहे थे। लेकिन जब उसको जो हिसाब जानते थे ना तो उसको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ता था। जैसे कि मेरा भाई एसएससी क्लियर था, मतलब 10 क्लास, उसको बैठाया और उसको बोला हिसाब करो, वो मुंह से मतलब टाइम उस दिन बोलता था ना दो कैम दो दो दिन चार ऐसा करके, वो मतलब 20 कैम तक मतलब ऐसे गिना जैसे लग रहा है कि मतलब कौन सा होशियर है।
1: मतलब नहीं, वो बातों से अंदाजा हो रहा है, बातों से अंदाजा हो रहा है। देखिए बहुत कोई डिग्रीज लेना ना कभी भी अकलमंदी की निशानी नहीं होती है। अकलमंद इंसान के लिए जरूरी नहीं है उसके पास बहुत कोई क्वालिफिकेशन हो, उसने मलाजमी मास्टर्स किया हो। अकलमंद और हिकमत ना इंसान के अंदर मौजूद होती है, उसके ऑब्जर्वेशन से आती है उसको कि वो दुनिया को कितनी बारीकी के साथ देखता है।
0: सोशल मीडिया पे आपका दो तीन फॉलोअर है ना, मुझे उसका बोलने का तजुर्बा है ना बहुत पसंद आता है, बहुत जावेद भाई हो गया जैसे एक और मतलब दो तीन है बहुत पसंद आता है। मेरा पास भी बोलने का मतलब बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का तजुर्बा है ना थोड़ा मतलब
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, आपको ऐसा लगता है आप बहुत अच्छी बात करते हैं, आप हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं।
0: मतलब बोलने का अंदाजा भी बोला, बोलने का अच्छा। जो अंदाज होता है ना,
1: हाँ
0: हाँ, तजुर्बा,
1: हाँ हाँ,
0: उस तजुर्बे को मैं सीखना चाहता हूँ पर बोल नहीं पाता उस तजुर्बे से।
1: सही, लेकिन अच्छा बोलते हैं और वही होता है हम सीखते सीखते सीखते हैं, तो आप और बेहतरी कीजिए अपने अंदाज में इंशाल्लाह ताला, वरना बात बहुत अच्छी करते हैं आप।
0: सोच रहा हूँ ताकि मैं पार्टिसिपेट करूँ।
1: हाँ हाँ कीजिएगा ना,
0: मैं मतलब घबरा जाऊंगा, नहीं होगा ही नहीं।
1: अच्छा,
0: गाने गाने के लिए तो मैं ऐसा करना गाऊंगा कि आपके टीम के ऊपर मैं गाना गा दूंगा, लिस्टर सब के ऊपर मैं गाना गा दूंगा, लेकिन बस वही है कि मैं थोड़ा सा घबरा जाऊंगा।
1: पता है क्या करें, आप जब कॉल करें ना ये सोचें कि कोई है ही नहीं जो आपको सुन रहा है, आप अकेले हैं बस, फिर आप आराम से कर लेंगे।
0: पहले कोशिश
1: करेंगे, हिम्मत दीजिए अपने आप को। हाँ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। और बहुत अच्छी बात करते हैं आप, अगर ये समझ रहे हैं आपकी बात नहीं समझ में आती है, अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छी, टू द पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ आप बात करते हैं, तो अच्छा लगता है आपकी बात सुन के।
0: मैं जुमरात तक मैं पूरे लिसनर और आपके टीम के ऊपर गाना बनाता
1: हूं। चलें ठीक है, चलें ठीक है, ख्याल रखिएगा भाई अपना, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अरे जी, तो हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं फिर ब्रेक पे चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अभी आप ही का जिक्र खैर हो रहा था।
2: अच्छा माशाल्लाह, मैं लाइन पे, आपने मुझे ले लिया। मेरे ख्याल से ये रईस भाई हैं।
1: नहीं नहीं, नूर मोहम्मद मंसूर साहब थे, तो वो कह रहे थे ये मुझे कुछ लोगों का अंदाज बोलने का बहुत अच्छा लगता है, जिनमें से एक जावेद साहब है।
2: मैं नूर भाई का बहुत शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि आवाज मुझे बहुत कम आ रही थी और काफी चीजें जो वो बयान फरमा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह अंदाज तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके की नॉलेज और जितनी खूबसूरत बातों को वो पेश कर रहे थे ना, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ
1: बिल्कुल। और मैं उनके वालिद की जो मतलब जैसे एक बंदे का पता चल जाता है कि उसका अच्छा, हमारे यहाँ जावेद साहब यही होता है कि हम लोग जहन में हमारा होता है बंदा कोई बहुत क्वालिफाइड है, मास्टर्स किया हुआ, PhD किया हुआ, जब भी वो काबिलियत की या कोई हिकमत की बात कर सकता है, लेकिन विजडम का ताल्लुक इससे क्वालिफिकेशन से नहीं होता।
2: मैं एग्जैक्टली आपकी इस बात को मानता हूँ और डिसएग्री करता हूँ इस चीज को, कि देखिए तालीम एक डिजिट भी है, एक सीखने का मौका भी है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिनको मतलब सिग्नेचर भी नहीं करना आता, अपना दस्तखत भी नहीं जानते। अब अगर मैं अपने वालिद मरहूम की बात करूं तो वो मतलब अंगूठा लगाया करते थे, और लेकिन माशाल्लाह अकलमंदी और हिकमत की बात, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी तहजीब या अमल या नेकी का जो है वो हमारा हमने उन्हीं से सीखा हुआ है। वरना माशरे में आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड एमए, डबल एमए और ट्रिपल और टेन एमए पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आप देखें कि रख रखाव नहीं है, इंसानियत का बिल्कुल किस तरह उसका ख्याल रखना है वो भी उनके अंदर नहीं है, और दूसरे बंदे के साथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं अच्छी, हम देखते हैं अच्छी।
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो
2: और ये भी अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला की अता है, ये अकलमंदी, ये हिकमत, ये अल्लाह ताला की अता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है ये, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से कहना चाहिए वदियत होती है, जिसको अल्लाह ताला देना चाहे, जिसके दिल को और जिसके दिमाग को अल्लाह ताला खोल दे, तो फिर हर चीज उसको समझ में आने लगती है।
2: बिल्कुल सही है, और मैं आपके तवस्सुत से मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने आज का बिल्कुल टॉपिक मैंने सुना नहीं है क्योंकि मैं काफी लोगों के साथ गाड़ी में रेडियो, तो अभी तक मैंने लगाया नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
2: लेकिन
1: बता दे
2: जी।
1: जी जी, टॉपिक आज का है हमारा कि आपको कभी जिंदगी में किसी ने ना बेहतरीन कोई मशवरा दिया हो, एडवाइस दी हो, तो जो उसको आपने याद रखा हो और उसके ऊपर आप अमल पैरा होते हो।
2: बिल्कुल, एडवाइस तो मैं फिर अपने वालिद की ही बात, उस बात को याद रखूंगा कि जिस वक्त आज हम जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पे हैं, वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि बेटा जिंदगी में अल्लाह ताला जब इंसान को अता करता है, जितना ज्यादा अता करेगा उतने अपने आप को जमीन पे देखना, नीचे रखना, और इस सोच को जब लेके चलोगे तो काफी आगे जाओगे। और अगर बहुत कुछ आता रहेगा और आप उस सोच को कि यार आई एम समथिंग, इंसान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मट्टी का पुतला है, एक तबीयत ना सांस हो, बुखार हो, तो वैसे इंसान ढह जाता है, गिर जाता है, तो पता नहीं फिर इंसान तुर्रम खान और फने खान किस चीज का बनता है, मुझे नहीं समझ आती। आप जिंदगी को आजिजी के साथ गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें, लोगों के मदद करें, लोगों के साथ हुस्ने सलूक पेश करें, ये एडवाइस है और इसको मैंने बांध के रखा हुआ है, और हर लम्हा हर पल इसके फवायद क्या है महविश, और मुफ्त का अजर जो मिलता है आप अपनी आंखों से इसको देखते भी हैं। मैं देखता भी हूँ।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजी जो है ना, ये एक अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ भी है कि अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो आजिज़ी, जिनके अंदर हम्बलनेस होती है, तो अल्लाह खुद पसंद करते हैं, तो फिर जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद हो तो फिर वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी होगी ना।
2: बिल्कुल ऐसी है। और इसके साथ आखिरी बात ये मैं जरूर करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन है, जितने भी मतलब सुनते हैं और अपनी जुबान से मेरा नाम लेते हैं और अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन उनकी मोहब्बत है। आप यकीन करें कि मैं, मेरे पास लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं लेकिन शायद मैं इन सब के लिए लफ्ज तलाश ना कर पाऊँ।
1: बिल्कुल सही है, ऐसे ही वाकई मोहब्बतें हैं सब लोगों की, और मैं खुद मतलब क्योंकि मेरी आपसे जो ज़्यादा बातचीत होना शुरू हुई है वो इसी शो के दौरान हुई है, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है जावेद साहब आपसे बात करके। रोज़ाना आपकी कॉल का जो वेट भी होता है, इंतज़ार होता है कि अब आपकी कॉल आएगी, कोई अच्छी सी बात करने को मिलेगी, तो ऐसा होता है वाकई कि आपकी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनका आपको इंतज़ार होता है, जिनसे बात करके आपको एक बड़ी पॉजिटिव फील आती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मेरा ये वाला हफ्ता है, फिर अगला हफ्ता रह गया, पता नहीं अब कहाँ हम होते हैं, फिर बात होती है नहीं होती, लेकिन लिटरली मतलब कुछ लोगों की वजह से मैं इस शो को याद रखूंगी हमेशा।
2: देखें, हमेशा एक तो जो हम, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मेरी प्रोफेशन कुछ और है मेरा, लेकिन एक आर्टिस्ट बड़ा पॉजिटिव और बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो बड़ा हसास तबीयत का मालिक होता है कि यार किसी भी बंदे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि वो हमेशा दूसरे के होंठों पर मुस्कुराहट रखे, दिल को सुकून दे, उनको राहत दे, अच्छी बात करे, तो हम ये कोशिश करते हैं, बाकी सबकी मोहब्बतें हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मेरे इन दोस्तों से कभी हमारी मुलाकात हो सके तो वो क्या तरीका है?
1: चलें ठीक है बिल्कुल, मैं मतलब ये आपने सवाल कर ही दिया तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे फिर मैं आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह कल ठीक है।
2: प्लीज काइंडली

0: के मैं चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त भाई हैं मैं जरा कम से कम हम ईद तो करें
1: कुछ। हां कल कुछ लोग बल्कि बोल भी रहे थे कि हम जावेद साहब को बैठ के सामने से सुनना चाहते हैं, उनकी इतनी अच्छी आवाज लग रही है, मजा आ रहा है उनके गाने सुन के, तो हम चाहते हैं कि कहीं पे वो परफॉर्म कर रहे हों और हम सामने हों, तो लोग चाहते हैं आपको सुनना।
0: मैं कोशिश करूंगा कि मतलब इस तरह का अगर मुझे मौका कोई मिलता है, किसी के नंबर्स मेरे पास आते हैं, तो डेफिनेटली मैं सबको बल्कि अपने घर में बुला के बल्कि अच्छा सा डिनर के साथ इनको मैं कुछ ना कुछ इनके कान खराब करूंगा।
1: जरूर जरूर बिल्कुल जी, मैं आपको कल तक पहुंचाती हूँ कि इंशाल्लाह कैसे आपकी मुलाकात होती है। और बहुत खुश रहिए जावेद साहब, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं खुद भी कहना चाहूंगी बहुत पॉजिटिव शख्सियत है आपकी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी इस तरह से सीखने का मतलब जो है ना वो बनाए, तौफीक दे इंशाल्लाह हम लोगों को। बहुत ख्याल रखिएगा अपना।
0: आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ थे जावेद साहब और बहुत ही ज़बरदस्त कॉल, उसके फौरन बाद हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं और चीज़ें आपसे शेयर करते हैं।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के

0: स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट

0: बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और एक दफा फिर मैं आ गई हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ 6662107 पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं अपना व्हाट्सएप पे। तो इस वक्त देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, सबाह खैर
0: जी। क्या हाल है आपके रईस भाई, कैसी हुई आपकी सुबह?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जावेद भाई और तमाम सलीम साहब को और हमारे तमाम लिसनर जितने हैं दोस्त साहबाब सबको सलाम और आदाब।
0: वालेकुम सलाम और आदाब सबकी जानिब से।
1: और आपने आज सुबह का आगाज किया, आज थोड़ा गर्मी का ये ज्यादा है, थोड़ा सा मतलब ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आज। तो थोड़ा सा ख्याल करें अपना, सर पे कुछ मतलब कपड़ा या कुछ रख के खाली सर धूप में रहें, थोड़ा सर पे टोपी या कैप का कुछ इस्तेमाल करें, पानी और ये सब हमारे भाइयों को मतलब ये कहूंगा कि थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये गर्मी बहुत ज्यादा समझ लो मुश्किल का सबब बन सकता है आपके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: करें सर खुला रख के मतलब ना इसे बाहर घूमे, थोड़ा सा मतलब सर पे कुछ रख लिया करें, ठंडे पानी का नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते रहें, ये बहुत जरूरी है जो हमारे सेहत के लिए जरूरी है। अब भाई हम लोग परदेश में है, जो भी है बाहर आउटडोर काम करते हैं उनको तो देख कर बहुत तकलीफ मतलब महसूस होता है कि उनका मेहनत और अल्लाह ताला उनको समझ लो अजर भी देगा, बिल्कुल देगा अल्लाह ताला अजर, वो जो मेहनत कर रहे हैं अपने घर फैमिली बच्चों के लिए और पॉजिटिव होके काम करते हैं तो समझ लो बिल्कुल उनको दोहरा अजर भी मिलेगा। समझ लो कि अपने बाल बच्चों के लिए जहाद ही है जो हम यहाँ पे करते हैं और फिर अल्लाह का भी जिक्र अज़कार करते हैं तो ये दोहरा अजर उनको जरूर मिलेगा, उनको मायूस नहीं होना है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही जी। तो रईस भाई आज के सवाल का जवाब, मशवरा किसी ने दिया हो बेहतरीन।
1: मशवरा महवस मैं ये कहूँगा कि ज्यादा मशवरा नहीं, हमारा जिंदगी हमें खुद तकरीबन सिखाते जाता है लाइफ में, अगर हम पॉजिटिव होके रहते हैं तो हमारा जिंदगी जिस तरीके से हम मतलब खासकर पॉजिटिव लोगों के साथ में जुड़े, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें मतलब अवॉइड करें, और उनसे जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी जो मतलब करीब की मतलब बारीकी सी देखें उनकी लाइफ का, उनके बात करने का अंदाज, उनका तरीका तौर तरीका, तो उसको हम अपने उसमें लाइफ में ढालें। और हमारे सबसे पहले अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हर बात है एक शुरू से लेके पैदाइश से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त तक का आपको सीरत नबी का आपको ये मिलेगा और सहाबे कराम का भी मिलेगा कि वो कैसे सब्र करते थे, कैसे मतलब एक दूसरे को माफ करते थे, कैसे मतलब एक दूसरे के साथ में मतलब मदद करते थे, ये सब चीजें हमें मिलती हैं बिल्कुल। और हमने ये फारसी की किताब में सब पिंड लुकमान एक आया था उसमें एक सब्जेक्ट,
0: अच्छा,
1: उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें अपने बेटे को सौ सद का मतलब होता, आपने शायद समझा होगा फारसी में सौ को सद कहते हैं, सद पिंड का मतलब होता नसीहत, और लुकमान का मतलब उन्होंने अपने बेटे को सौ नसीहत किया था। मतलब उसमें से कई चीजें थी कि बेटे इस तरीके से मतलब सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है, बाकायदा बयान किया है अल्लाह ताला कुरान मजीद में बाकायदा कि मतलब बेटे कभी मतलब अपने आप को अकड़ के ना चलना, मतलब गाल फुला के और मतलब जमीन पे ये करके नरमी और ये बड़ी चीज है कि अल्लाह के साथ में शिर्क नहीं करना, वो भी शामिल था उस बात में। तो ये सब चीजें हमें मतलब गौर फिक्र करना चाहिए, जिंदगी हमारी खुद भी मतलब और हमारे अब्बू का मतलब अपने माँ बाप का भी मतलब जो बातें हैं उसको हमें बिल्कुल बहुत मतलब जब आज हमारे मतलब जिंदगी में उन्होंने हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें और ज्यादा मतलब उनकी बातों का और उनके उसका बहुत ज्यादा ख्याल आता है, शायद हम लोग जिंदगी में उतना ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं जितना उनके बाद में कि मतलब वो हमें कितने बेहतरीन तरीके से हमें मतलब गाइड करते थे समझाते थे। तो उस बातों को हमें हमारे जिनके मतलब हमारे तो मरहूम नहीं रहे मतलब माँ बाप, लेकिन जो जिनके हैं उनकी बातों का कदर करें हम यही कहेंगे, और उनके साथ में थोड़ी देर बैठें और उनका मतलब हाल हवाल, ये नहीं है कि मतलब हम बस ऐसे थोड़ी देर उनके साथ में 5 मिनट 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा वक्त अपना दें उनको उनके साथ में, ये बहुत बड़ी मतलब और उनको भी एहसास दिलाएं और उनकी बातों का जो अच्छी बातें हैं वो कोई वैसी बात तो नेगेटिव बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपने मतलब माँ बाप जो होते हैं ना अपने से बुलंद देखना समझ लो कि अपने बच्चों को वही एक हस्ती है जो कि अपने से बुलंद देखना चाहते हैं, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए। और बहुत सी बातें और हमने अपने अब्बू का ये भी लिया था कि हमारे अब्बू बड़े सखी और बड़े नरम दिल थे,
0: अच्छा।
1: कोई भी मतलब उनको चाहे थोड़ी टाइम

0: उनके साथ में थोड़ा सा उनको बुरा भला भी कहा, लेकिन अगर कोई जैसे मतलब थोड़ा सा बड़े शख्सियत में से थे गांव में गिने जाते थे उनका, मतलब थोड़ा सा सरकारी उस पे भी उनका थोड़ा सा ये था पोस्ट था, तो अब सरकारी उसमें भी बहुत से आपको पता होगा कि हर कोई एक बंदे को अच्छा नहीं कहता है, कुछ ना कुछ उसमें दूसरा भी पार्ट होता है। लेकिन अगर उनके उनके उनसे इख्तलाफ रखने वाले भी अगर दरवाजे पे आ जाते थे तो सुबह में वो फजर के बाद उनको फिर पता चला कि मतलब हम उनके लिए नाश्ता पानी को, तो वो पता चला कि है नहीं घर पे, कहाँ चले गए वो फला जगह निकल गए। तो हम लोग मेरे मम्मी भी मतलब बहुत अफसोस करते कि भैया अभी उसने मतलब थोड़ा पहले
1: हेलो
0: उसमें, तो ये सब चीजें आपको जा रहा है
1: अब आ रही है, अब आ रही
0: है। हाँ बीच में असल में थोड़ा सा कॉल आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने कॉल कट किया।
1: सही सही।
0: तो ये सब चीजें है ना कि मतलब सखावत और अपना नरमी थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को माफ करना, मतलब फौरन उनके तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता था बड़ा, मतलब ये थे कि मतलब ये नहीं देखते थे कि ये मेरे लिए कितना निगेटिव सोचता है और हमारे लिए कितना ही कर, तो कैसे चलो कुछ भी है अल्लाह अल्लाह से हम उसका बदला लेने का ये रखे, इंसान के हाथ में क्या है, हम उनके साथ में अच्छा उसने सलूक करें, बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला हमारा खालिक जो है वो हमें देख रहा है, तो हम किसके साथ में हम अपना ये कर रहे हैं रोल अपना, तो ये सब चीजें बहुत समझ लो मायने रखती है। और हम और तकरीबन हर बच्चे अक्सर अपने घर का जो माहौल होता है उसमें जरूर उनके ऊपर जरूर उसका ये असर रहता है। अगर माँ बाप अगर आप मतलब नरम दिल और दूसरे के साथ में अच्छा रवैया करने वाले सखावत करने वाले होते हैं तो बच्चों में जरूर वो चीजें आती हैं तकरीबन मेरे ख्याल से, कि अगर वो ज्यादा दूर ना रहा तो जरूर अपने माँ बाप का वो असर उनके ऊपर लाइफ पे जरूर पड़ता है। और हमें अपने किताबों में खाली पढ़ने से हमें नहीं, मतलब बाकी किताबों में चाहे कोई भी इसका हो तो उसमें अच्छी बातें होती हैं, वो अच्छी बातें जो है हम अपने उसमें लें। तालीम का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बड़े डिग्री और बड़े बड़े वो सर्टिफिकेट लेके ही वही हमारे लिए सबसे बड़ा, नहीं, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको भी हम उस पर ध्यान दें, ख्याल करें कि वो हमें किस तरह गाइड कर रहा है, तो उसको हम लेना चाहिए हमें अपने लाइफ में। और दूसरी बात कि हमें जिंदगी में भी सीखना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस तरीके से सामने वाला हमें किस तरीके से धोखा दिया या कोई बात का ये किया, तो उससे थोड़ा सा होशियार होके रहें। हम नहीं कहते कि मतलब उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लें, चाहे अपने करीब के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मतलब गांव पे हों, पड़ोस के हों, कतई ताल्लुक ना करें, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहें। हर बात को शेयर नहीं करना चाहिए कि मतलब हर बात, मैं एक बात आखिर में ये भी कहूंगा कि हर बात अपनी जो मतलब पर्सनल है वो बातें हर एक को ना बताया जाए। मैं इस पे बिल्कुल फोकस करूंगा और हमारे इस्लाम ने भी मतलब इसको ये किया कि भाई, और हमने सदपिंद लुकमान में ये भी एक पढ़ा था कि बेटे कोई भी बात मतलब ऐसे रहे कि अपनी जो करीब से करीब जो अपना मतलब क्यों ना हो उसको ना मतलब शेयर ना करो, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मतलब ये पैदा हो जाता है। तो ये सब चीजें नसीहतें जो है अपने बड़ों की और अपने कुछ जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं, दोस्त हो, कोई जरूरी नहीं कि खाली माँ बाप से ही हम सीखें, जो हमारे करीब के अच्छे दोस्त हैं उनकी अच्छी बातों को हम लें और उनके बातों का मतलब जो तौर तरीका है उसको भी मतलब हम कोशिश करें कि हम भी ऐसे बने। ये नहीं है कि मतलब खाली हंसी ठट्ठा के लिए रखें और बाकी चीज उनका इग्नोर करें, नहीं, उनकी जो अच्छे अखलाक हैं अपने जिंदगी में भी लाने की कोशिश करें।
1: चलिए रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त मैसेज, और हमारे जिंगल का टाइम हो गया इसके साथ, ठीक है,
0: बात करते करते जी
1: जिंगल का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है।
0: थैंक यू, फोन कर रही थी, अब चलो हम उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं।
1: सही, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107. Time check.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 107 शो है समर मॉर्निंग और मैं एक दफा फिर आप लोगों के साथ आ गई हूं आपके आरजे माविश और मेरे पास मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए एक अच्छी सी खबर. और वो खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरमेंट औकाफ और इस्लामिक अफेयर्स ने मोतेहर के इलाके में कतर की जो पहली स्मार्ट मॉस्क है उसको ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया है और ये है कैस बिन साद बिन उदाबा मॉस्क. इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का खूबसूरत आपको इम्तिजाज मिलेगा. और इस स्मार्ट मॉस्क की जो ख़ास खसूसियात हैं वो ये है कि इसमें सोलर पैनल की मदद से एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग की जा सकेगी और इस जिससे कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है वो कम हो जाता है काफ़ी. इसके साथ ही इसमें स्मार्ट सिस्टम्स पानी और बिजली के इस्तेमाल को मॉनिटर करते हैं और वेस्टेज को कम करते हैं और वजू का पानी रिसाइकिल करके टॉयलेट्स और मस्जिद की जो गार्डनिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइन कार्बन इमिशन को कम करेगा और ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है. और मिनिस्ट्री के मुताबिक ये प्रोजेक्ट कतर के सस्टेनेबिलिटी गोल्स और मॉडर्न मॉस्क की एक दफ़ा देख लूँ है थोड़ी सी खबर नीचे होगी. हाँ, मॉडर्न मॉस्क इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है और ऑफिशियल्स ने ये भी अनाउंस किया है कि 2025 से 2030 की जो स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत मुस्तकबिल में मज़ीद इसी तरह से स्मार्ट मसाजिद बनाई जाएंगी. तो ये ज़बरदस्त ही खबर. कॉल कर सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकते हैं. देखती हूँ मैसेज किसका आया है मेरे पास और शामिल करते हैं आरिफ अंसारी. आरिफ अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल हैं और कोई हमें भी दावत पे इनवाइट कर लो. जावेद साहब का वॉइस क्या तो कोई जवाब नहीं है, वैसे कोई प्रोग्राम हो तो हमें भी बुलाया जाए. और मैम एक बार सब आरजे से मिलना चाहूँगा और हमजद साहब से भी. सॉन्ग रिक्वेस्ट भी इन्होंने भेज दी है. तुम्हें देखें मेरी आँखें, इसमें मेरी क्या खता है, कौन सी फिल्म कौन सी है, कुछ मतलब भेजे ना तो मुझे अंदाज़ा होगा. आरिफ फिर मैं चला दूंगी. शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज भी ज़रूर कॉल करूंगा गेम के टाइम पे बिकॉज बैलेंस मिनट प्रॉब्लम. थैंक यू शहजादा सलीम, कोई मसला नहीं है, आप बता दीजिएगा मैं कर लूँगी. तौफीक कहते हैं माविश खान अस्सलाम वालेकुम. तौफीक फ्रॉम अलवाकरा, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं तौफीक, अच्छी सुबह हो गई आपकी, अच्छा सा हो गया सब कुछ. तो चले जी, खैर ये हमारे पास मैसेजेस थे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और कॉल करके शामिल हो सकते हैं हमारे शो में. मैंने आज आपसे सवाल किया है कि आपको किसी ने बेहतरीन किस्म की कोई मिसाल दी हो, मतलब बेहतरीन किस्म की मिसाल ना, और आप आज तक उस बात के ऊपर शुक्रगुजार भी हो कि ज़बरदस्त भाई, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया था, ये एडवाइस मेरे बड़े काम आई. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू.
1: क्या हाल है, मैं कॉल कर लेती, आप बोल देते.
2: नहीं नहीं अभी नहीं, गेम के टाइम पे कुछ बिजी मोमेंट हो जाता है ना तो फिर वो लगाना ऑन द वे में थोड़ा सा मुश्किल होता है. अगर जाएगी तो फिर रिसीव करने कहीं गाड़ी रुकाते ना,
1: ठीक है, मसला नहीं वो तो मैं कर लूंगी इंशाल्लाह. तो शहजादा सलीम कैसी हुई सुबह, अच्छा हो गया सब कुछ?
2: हाँ सब कुछ अच्छा हो गया. और आग्रह चाहूंगा पहली बात तो तमाम लिस्टर्स को सलाम, जावेद साहब है, रईस भाई आसिफ है. कल आग्रह चाहूंगा जावेद साहब से क्योंकि मैं अधूरे में ना गेम छोड़ना पड़ा, ऐसा यानी मेरे साथ जो बंदे गए थे वो आके बैठ गए तो निकलना था बस, तो फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता ना तो इसके लिए कंटिन्यू करना पड़ा. तो वैसे जावेद साहब एक्सीलेंट और बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका, मतलब अच्छा लगता है कि एक मतलब एक टाइट पकड़ के मतलब इंटर किए ना और बाकी फीडबैक सबकी तरफ से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बेहतरीन रिजल्ट है प्रोग्राम का.
1: हाँ.
2: सुपर जा रहा है
1: बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन सारी की सारी जो मेहनत है और जो सब कुछ है ना वो आप लोगों की तरफ से ही है, इसलिए अच्छा चल रहा है.
2: जी और मैंने कहा था ना कि थोड़ा ना टाइम है ना बढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि और जो पीछे है ना

0: अभी कहीं पीछे है। और फिर गाने भी आप देख ही रहे हो, ज्यादातर पूरा मतलब है ना दबदबा और अपना पूरा जो कंट्रोल है, अपना पूरा पकड़ के रखना है, वो एक ही वर्ड में ज्यादा है। अलीफ है, अलीफ है ना, अलीफ है ना। तो चाहूंगा और भी दूसरे है ना, तीन छे
1: तो ये एन गैन सीन स्वाद इनको कैसे मौका दें, हम आएंगे तो हम देंगे ना मौका।
0: पूरा तो इन्होंने पूरा कवरेज करके रखा है आलिपुर
1: यहाँ। एक काम करें ना, ये वाले जो सीन स्वाद से शुरू होते हैं ना गाना, वो पहले गा लिया करें, पहले कोई ऐसा गाना सोच कर आए ताकि उसको भी मौका मिल जाए। क्योंकि गाने यूजुअली खत्म नहीं होते ना सीन स्वाद पे।
0: ये जो आपका अंताक्षरी है ना, ऊपर से भी ऊपर है।
1: चले अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे आपकी आपके ना बड़े मजा आता है जब आप गाने जिस तरह से गाते हैं ना, एक वो उसमें मतलब एक बड़ी एक ना वो होती है, क्या कहना चाहिए, बेसाख्तगी होती है, तो बड़ा मजा आता है।
0: फिर वो गाने का गाना हो जाता है और आपका का एक है ना जवाब मिल जाता है। सारा को जो गाना नहीं होता है तो अभी हाँ वो जाए साहब की बहुत बड़ी है उनकी मतलब सिन्हा रहमी है और उसमें श्लोक है जावेद साहब के, कि उन्होंने इतना मतलब इन्विटेशन बड़े मतलब शानदार तरीके से उन्होंने बोला कि मैं कैसे मिल सकता हूँ ना सबसे, तो इंशाल्लाह मिल पाएंगे तो उसका मसला नहीं है। तो मेरे तो नंबर रहते हैं, अगर मानुष को अगर कोई
1: बिल्कुल मैं दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी। आप लोग जरूर प्रोग्राम बनाइएगा, मिलिएगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा लगेगा।
0: हाँ सही है, सही है। तो काफी कुछ मतलब बेहतर से बेहतर है। अब टॉपिक वही थी ना आज की,
1: जी जी मशवरा, मशवरा।
0: हाँ जी जी जी, सिल्वर तो मशवरा तो घर से ही है, ऐसा तो कोई खास स्पेशलिस्ट नहीं दिया, बस मेरे अब्बू को मतलब एक चाहत थी एक मतलब पढ़ ले रहे। मैं मतलब मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया ना, वो मैं जब छोटा था ना बताते कि वो काफी परेशानी का वक्त था, गुरबत का वक्त था ना, वो कॉन्वेंट स्कूल गए थे, वो वहां पर है ना एडमिशन फीस भरनी थी स्टार्टिंग के, तो उससे बहुत छोटी रकम थी वो, लेकिन नहीं थे यानी मेरे अब्बा के पास नहीं थे, तो नहीं एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में रहा, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो मैं शुरू से मतलब तीनों बहन में एक ही भाई हूँ, तो फिर अब ये छोटा मोटा सा देखा था वो स्कूल से, तो रोज पानी की इस तरह का ब्लड है, तो मैं चाहता कि मैं तुझे ना मतलब सपोर्टिंग आऊ घर के लिए सपोर्टिंग। तो उसमें क्या हो गया, उन्होंने फिर ना अपना फील्ड चेंज किया, तो उन्होंने मतलब कभी ये नहीं बोला कि मतलब तू ये कर ले वो कर ले ये सीख ले वो सीख ले, क्योंकि मैं खुद जानता था ना कि मतलब कैसे क्या करना है ना। तो फिर मैंने फिर वो ड्राइविंग सीखा, जब मैंने ड्राइविंग करके मैंने सैलरी लाने लगा, और कभी कबार वो घर की तरफ है ना गाड़ी लेके आता ना, तो मैं जब खाना पीना खा के वापस निकलता था मैं ड्यूटी पे, तो बाहर गली के मैं कोने से आके ना छुपके देखते थे, क्या हुआ बोले मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, तो बड़े खुश होते थे। जमाने के इतनी सादगी थी, बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने उनके मतलब वो हो जाता था, बहुत मुतमइन हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे। तो यही मतलब एक अच्छी तरबियत मतलब है ना, मतलब
1: घर तो मतलब ये सब लोग ज्यादातर अपने वालिद ही की तरफ से बता रहे हैं, मशवरा भी और मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक है, गुड, जबरदस्त।
0: वो एक ऐसा दर्द है ना वालिद, एक ऐसा दर्द है कि वो है ना खुद सारी धूप है ना झेल लेता है, लेकिन कितने नीचे कितने लोगों को पूरी फैमिली को वो छांव देता है। तो समय की मिसाल है वालिद की जो है ना, तो कितनी भी तबीयत हो कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन बस यही है कि घर पे अगर सब लोग खुश है और घर की जरूरत पूरी हो जा रही है ना, तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने घर में हमारे जितने भाई लोग है ना, सब लोग का यही टारगेट होता है जब वो सैलरी अराइव हो जाती है ना यहाँ पर, और पूरे घर की जरूरत पूरी हो जाती है,

0: यार इससे क्या क्या लेना था, किसका क्या क्या हो गया, वो बड़ी मतलब है ना एकदम पीसफुल माहौल लगता है, बड़ी खुशी होती है। तो ये मतलब इतना मतलब अंजाम तक हम जिस मकसद से आए हैं ना, तो एक की वजह से मतलब है ना इतने तो लोग मतलब है ना सारे फैमिली से, वो तो कहना है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो कहूंगा करना भी चाहिए और चैलेंज समझे ना मतलब फेस करना चाहिए, चैलेंज समझ के हाँ एकदम मिलिए नहीं की हर छोटी छोटी सी चीजें ना जिले सीखने और कुछ तकलीफें वहाँ कभी मैंने कभी नहीं शेयर किया। इवन मेरे गार्डन का मैंने साइडिया में भी जरा एक्सीडेंट भी हुआ ना तो मैंने नहीं बताया क्यों ना हम तो पहले तो उनको परेशान करके कोई मतलब नहीं ना, तो इस तरह की मतलब तरबियत ही एक है मतलब मशवरा है मेरे लिए तरबियत की ना एक खुददारी और एक स्ट्रगल करना और अपने आप को एक मतलब मजबूत बनाना
1: सही होगा। चलें शहजाद सलीम थैंक यू सो मच, और मुझे मैसेज कर दीजिएगा ठीक है, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज रही जी। तो इसके साथ ही हमारे साथ शहजाद सलीम थे और अब हम बढ़ते हैं पहले गाने की तरफ। तो आरिफ अंसारी आपका गाना लगा दिया, दूसरा चलेगा अभी, हम चला रहे हैं पहला सॉन्ग, इंजॉय कीजिए, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

और मेरा सवाल है कि किसी से मिला हो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी एडवाइस मिली हो आपको, जो आपको याद भी रहती हो, जिसके ऊपर आप अमल पैरा भी रहते हो, तो वो क्या एडवाइस है वो हमसे शेयर कीजिए।

रीड मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ मैं. सुरजीत का मैसेज है, सलाम मही मैम, हैप्पी ट्यूजडे मॉर्निंग एंड वेरी नाइस योर शो, जबरदस्त टॉपिक. मैम मेरे ग्रैंडफादर मेरा मुझे ना हमेशा एक मशवरा देते थे कि अपनी अच्छी सी पढ़ाई करो और फालतू फ्री लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठना और हमेशा लोगों का अच्छा सोचना. जबरदस्त सुरजीत, जबरदस्त. तो यानी आपके दादा, राइट? तो दादा आपको ये मशवरा देते थे, तो आपने दादा की जो एडवाइस थी वो शेयर की है, जबरदस्त. चाहूंगी कि मतलब कुछ लोगों के टीचर्स होते हैं जो कि बहुत मतलब कोई ऐसे कमाल के टीचर्स होते हैं बाज़ औक़ात कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जिनके ऊपर आप बाद में ज़िंदगी में ना खुद हैरान हो रहे होते हो. तो कुछ टीचर्स की, कुछ दादा दादी नानी, कुछ मतलब इस तरह की भी एडवाइसेस हमसे शेयर कीजिए कि किसी ने दी हो. कभी बाज़ औक़ात कोई दोस्त होता है जो बहुत अच्छा मशवरा आपको दे देता है, तो थोड़ा सा मतलब सोचिए सोचिए उसके बाद फिर हमें कॉल करके बताएं. अच्छा जी, मुमताज़ अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हावश मैम, कैसी हैं आप? गुड गुड गुड गुड मॉर्निंग. और इस टाइम माँ बाप के अलावा कोई भी अच्छा मशवरा नहीं देगा. अभी क्या है, मेरा घर जल गया, मुश्किल नहीं है, पड़ोसी का बच कैसे गया, इस बात की टेंशन है. ओए होए होए, अभी 90% जो लोग हैं ना उनकी सोच यही है, ये वाला चक्कर है. सही है सही है. अच्छा, इन्होंने एक सॉन्ग भेजा है मुझे, कौन सा है ये वाला?

वाला, ये मैंने समझ नहीं पा रही हूँ कि है कौन सा, मुझे समझ में आता है तो मैं ये चलाती हूँ, ठीक है। और आजमाइश मूवी है क्या, थोड़ा सा कंफर्म कर दें, उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ये वाला गाना भी चलाया जा सके, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम कोशिश करते हैं और अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका चल जाएगा मुमताज़ अहमद। अच्छा, इसके अलावा है मेरे पास गुड मॉर्निंग मैडम, सब सुनने वालों को भी सलाम, जावेद साहब को ख़ास तौर पर सलाम, मोहम्मद यासीन खान, क्या बात है भाई। और इसके साथ ही है सुपर सुपर नाइस सॉन्ग माई फेवरेट, ओके सही है, ठीक है, ये किरण इन्होंने बोला हुआ है, थैंक्स मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसारी आपका भी। और मैं कॉल का वेट कर रही हूँ, जल्दी से कॉल कीजिए, शामिल हो जाएं, या फिर हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसमें हम सबसे पहले अभी जो ये भाई ने रिक्वेस्ट किए तो वाला गाना मुझे मिल गया है वो ही लगा देते हैं, तो देखते हैं कॉल आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, सुन के वापस आएंगे और फिर मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी, क्योंकि अभी मतलब जो है वो सवाल का हमारा चल रहा है सीन, कि आप बताएं सवाल का जवाब दें, किसने सबसे बेहतरीन एडवाइस आपको दी और क्या दी, ठीक है। चले तो फिर हम गाने की तरफ ही मूव करते हैं।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa. आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.
4: कितना

0: रेडियो राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और हम आपके साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से। 7:44। मैंने आज आपसे सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। मुझे लगता है कि आपको कभी कोई ज़िंदगी में मिली हो ऐसी एडवाइस जो कि आपको हमेशा याद भी रहती हो, आपके बड़े काम भी आती हो, तो वो क्या है, वो आपने हमसे शेयर करनी है। आप हमसे शेयर कर सकते हैं और उसके लिए नंबर है हमारा 4434377। साथ ही साथ 6662107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज। तो मैसेज की तरफ आ जाती हूँ, लेकिन जल्दी से जो है आप हमें कॉल भी कीजिए ताकि हमें एडवाइस पता चल सके। और हो सकता है कि आप जो दें हमें एडवाइस बताएं कि ये वाली आपको मिली थी, तो वो किसी और के भी काम आ जाए। तो इसलिए ज़रूर कॉल कीजिए और कॉल ज़रूर जल्दी से कर लीजिए ताकि फिर हम आपसे बात कर सकें। अच्छा, आप कहें तो मैं फिर से कॉल कर लूँ। ये आरिफ अंसारी है। अच्छा जी, नहीं, हम नए वाले कॉलर का इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो एडवाइस बता दी थी ना आपकी कौन सी वाली है। और आज का पूरा सॉन्ग सुपर सॉन्ग और ये रईस खान है। चलेगी गुड, ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है आपको। मेरा ख्याल है ट्यूसडे का दिन है ना, तो ट्यूसडे को 90s के सॉन्ग डाले हुए होते हैं, फिर रिक्वेस्ट भी हमारे पास अच्छी आ रही है, तो इसलिए चले दी। हमारे साथ आ गए हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
1: हमजा बात कर रहा
0: हूं। हमजा, अली हमजा या फिर सिर्फ हमजा?
1: हमजा खोकर।
0: हमजा खोकर, कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा खोकर, क्या हो रहा था?
1: कुछ नहीं, ड्यूटी से निकला हूँ और आपकी बात सुनी है कि कोई ऐसा मशवरा जो जिंदगी में आपको मिला और आपको याद हो।
0: हाँ,
1: तो मेरे वाले साहब अक्सर कहते होते हैं, बेटा अपनी जबान पे इतना काबू रखना कि आपकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे।
0: वेरी नाइस।
1: क्योंकि जबान जो है वो इंसान को बहुत अच्छा भी बनाती है और बहुत बुरा भी बनाती है।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: अक्सर कहते हैं बेटा ये एडवाइस है कि जबान अपनी ऐसी रखना कि आपकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे।
0: और वाकई मतलब ये जो चीज़ है ना, आप अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे हम अपने ज़बान को ज़रा बेलगाम छोड़ देते हैं ना, और कुछ भी बोले जाते हैं कुछ भी जो दिल में आ रहा है, जो कुछ है, तो

0: हमें एहसास नहीं हो पाता। और अगर किसी का दिल दुख जाता है ना हमारी किसी बात से, तो सीरियसली मैंने ये चीज़ देखी है कि वो चीज़ें, मतलब आपने अगर किसी का किसी दिन दिल दुखा दिया ना, तो कुछ ना कुछ होगा बुरा।
1: एक बात है, और बुरा हो ना हो, लेकिन ये कि अल्फाज जो तकलीफ देते हैं ना, वो इंसान को तकलीफ जो चोट लगने से होती है ना, वो भी नहीं होती।
0: हाँ एग्जैक्टली,
1: क्योंकि अल्फाजों की तकलीफ जो है वो इंसान थोड़ी थोड़ी करके फील करता रहता है, और उसको एक लंबे अरसे तक फील होती।
0: हाँ।
1: जो दूसरी चोट है वो नॉर्मली बस कुछ टाइम लेगी, ठीक हो जाएगी।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, वो बात फिर दिमाग से निकलती नहीं है कभी। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए ना किसी के साथ भी, कोई बंदा, अक्सर जैसे हम लोग ये बात कहते भी हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करना ज़रूरी होता है, वाकई डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी साथ में रियलाइज़ करते हो कि बाज़ औक़ात लफ्ज़ों की जो चोट है ना वो इतनी गहरी होती है कि वो ज़ख़म भरता नहीं है कभी भी, और आप कभी भी उस बंदे पर ना भरोसा नहीं कर पाते।
1: हकीकत बात है, क्योंकि लफ्ज है दिल तोड़ते हैं, और दिल में तो वैसे कहते हैं कि दिल में खुदा बसता है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो दिल टूट जाए तो फिर एक अलग ही कैफियत होती है, और करना नहीं चाहिए ऐसा।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और कोशिश ये कि सारे ही कोशिश ये करें कि अल्लाह पाक किसी का दिल तोड़ने की तौफीक ना ही दे तो बेहतर है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ज़बरदस्त भाई, आपके वालिद ने भी बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको दी, और अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग जिनके भी जिसने भी कहा है उनसे, तो उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
1: बिल्कुल।
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हमजा और कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला आपको भी बहुत बहुत खुश रखे। अच्छा चलें, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने कॉल कर ली, और बहुत ही ज़बरदस्त थी अपनी वालिद की एडवाइस भी आपने शामिल की, अल्लाह ताला उनको भी बहुत अजर दे इस बात का।
1: आमीन।
0: बहुत शुक्रिया हम साहब से, इंशाल्लाह फिर बात होती है, ठीक है? थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी। रही जी, तो हमारे साथ थे हमजा, और हमजा के वालिद ने भी बेहतरीन एडवाइस दी उनको, और हमारे साथ अभी एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक, कैसे
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
2: बस आपकी दुआ है।
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं अहमद बोल रहा हूँ।
0: अहमद बात कर रहे हैं, अहमद कैसे हैं, क्या हो रहा है?
2: बस ड्यूटी के लिए निकले, और आपके टॉपिक में अपना भी एक पर्सपेक्टिव देने का, अपने भी एक बात कहने का मौका मिला।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताइए आपको किसने दी एडवाइस।
2: जी ज्यादातर तो जैसे कि मेरे ख्याल से आपको जो कॉल आएंगे वो यही होगी कि वालिद साहब ने किया है, तो मेरे भी वालिद साहब का ही एक बहुत यानी अहम फैसला का होगा, फैसला था। जैसे कि हर खानदान में कुछ प्रॉपर्टीज के इशू रहते हैं, करेक्ट? काफी खानदान हो गए हैं, तो वालिद साहब ने ये मशवरा और एक डिसीजन दिया था कि बेटे ये सब मैटर में पढ़ कर अपने आप को खुद कशीदी के मामले में मत फंसा देना। जो चीज अगर जुबान से मिठास से बात अगर बनती है सुलह कर कर, वो सबसे बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप पुलिस स्टेशन पे हो और उस बात को रिवील करके कोर्ट कचहरी तक जाओ, तो जो कोर्ट के मसले होंगे वो जिंदगी भर आपकी औलाद भी यानी उसको शोध नहीं कर पाएंगे, कभी कभार ऐसा हो जाता। ये जो फैसला था वो बिल्कुल यानी हमारे लिए बिल्कुल हक में रहा, मेरा अपा का जो फैसला था, मैं वो कोई सिचुएशन में पड़ा नहीं, वो प्रॉपर्टी अभी छोटी मोटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज इससे डबल ट्रिपल है। अगर उस मसले में फंस जाते तो आज उसी के अंदर ही उलझ के रह जाते। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा अगर ऐसे कोई छोटे मोटे मसले हैं तो आप कोर्ट कचहरी के मसलों में ना पड़े। अगर आप सुबह से बात करके यानी सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगर वो मैटर नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्लीज कोर्ट के मामले में ना पड़े। ये मेरा मशवरा, मेरी मैं बढ़ाना आगे बढ़ाना चाहूंगा जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बहुत फायदा।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मतलब अगर जो चीज़ें इजीली खुद आपस में बात करके सॉल्व हो सकती हैं, तो उसमें फिर बिला वजह का ही हो जाता है कि आप इस तरह के मामलात में पड़ जाएं और फिर वो ज़िंदगी भर का मामला, फिर वही होता है ना हमारी यहाँ, तो मतलब ये जो महकमे हैं वो फिर फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा आ गए यहाँ पे, तो फिर उसके बाद फिर और भुगतना पड़ता है, ऐसे ही है। बिल्कुल जी,
2: साल चलता है वो, ऐसा नहीं है कि दो चार साल खत्म हो जाए। वो भी अगर बाप के भी जमाने में ना खत्म हुआ तो शायद उसकी औलाद के जमाने में शायद खत्म हो जाए,
0: ऐसे ही
2: होते
0: हैं। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल सही,
2: जल्दी तो समझने वाले नहीं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये था
2: ये, और ये हमारी कंट्री की तरफ है, मैं एग्जांपल ले रख रहा
0: हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ ही ये मामलाते हैं, लटकाए चले जाते हैं, और हाँ, और उसके पीछे रीजन होता है ना।

0: बड़े हथियार होते हैं, लेकिन वो हथियार की जरूरत नहीं है। ज़बानी एक बहुत बड़ी हथियार है इंसान की।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: अगर वो हम लोग उसको वो बोलते ना, तलवार एक बार मियान में से निकल गई तो मुश्किल है, बोलते ना नहीं, वो उससे अहम ज़बान को अगर अपन काबू में रख लिए ना, तो वैसे 100 तलवारा भी काम में नहीं आते ज़बान के सामने। उसको अगर अपन कंट्रोल में रख लिए तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, चले ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा।
0: यही दुआ है कि जो है ना अल्लाह हर किसी को जो है ना अपनी अमान में रखे, और अल्लाह जो है ना हर किसी को जो ना अच्छे अखलाक पेश आने की अल्लाह हिदायत दे, तौफीक दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: खैर हमारे वालिद साहब तो नसीहत दिए थे, अल्लाह हमारे वालिद की मगफिरत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत।
1: हाँ आमीन सुमा आमीन, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे इंशाल्लाह ताला, और सबके ही वालदेन को जिन्होंने अपनी औलाद को, डेफिनेटली मतलब हर माँ बाप की कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी बातें जो है ना अपनी औलाद को सिखाई जाएं, अल्लाह ताला सबके माँ बाप के दर्जात बुलंद करे।
0: आमीन सुमा आमीन, और इंशाल्लाह आपके लिए कुछ खिदमत है तो बोलिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी दुआ से है, मेरे माँ बाप की दुआ से इंशाल्लाह, अल्लाह अगर चाहा तो इंशाल्लाह पीर के दिन इंशाल्लाह मैं उम्रे को जा रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, दुआ दुआ तो बोलिए, दुआ कीजिएगा लाजमी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ जरूर कीजिएगा,
0: जरूर जरूर, सारी उम्मत के लिए जरूर करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ऐसी खिदमत है तो जरूर बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दुआ में आप याद रखिएगा, ये पक्का है, मतलब मेरी पूरी फैमिली को जरूर दुआ में याद रखिएगा, ठीक है,
0: जरूर।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल भी करे, और अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से लेके जाए, खैर खैरियत से लेकर आए, इंशाल्लाह ताला फिर आए तो जरूर कॉल कीजिएगा,
0: जरूर जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो, जज़ाकअल्लाह।
1: आमीन सुम आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू।
0: नाम भूलिए मत, शेख अज़र है, बाद में सही,
1: आपको कॉल करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है,
0: जज़ाकअल्लाह,
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई जी। तो शेख अज़हरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बेहतरीन कॉल भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी सबके पेरेंट्स ने उनको जो है ना क्या कहना चाहिए एडवाइसेस दी हुई है, तो वो हम सुन रहे हैं। अच्छा मेरे साथ अभी कॉलर्स तो आ गए हैं, लेकिन अभी बस टाइम हो गया है कि हमें एक जिंगल पे जाना है, तो जिंगल सुन के वापस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी कॉल्स जो है ना मजीद लेते हैं। और आज का सवाल मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं, आपको किसी ने भी ज़िंदगी में बेहतरीन एडवाइस दी हो जो कि आपको हमेशा याद रहती हो, जिसके ऊपर आपने अमल किया हो और वो बहुत ही कारामद साबित हुई हो, तो ये आपने मुझे बताना है। 4434377 आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, और 6621107 आप हमें लिख के भेज सकते हैं कि क्या एडवाइस है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आज मेरी पसंद का एक गाना लगा था जो बिना फरमाइश के चला, और वो गाना था तुझे देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है, तो ये गाना जो है गज़न बड़जट को अच्छा लगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं जिंगल की तरफ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: राइट, वेलकम बैक। 8:01, मैं दोबारा से आ गई हूँ समर मॉर्निंग में और उस वक्त मेरे साथ हैं दो कॉलर्स। अच्छा, मैं पहले से बता दूं क्योंकि दो कॉलर्स हमारे साथ हैं। एक जो थे ना, इन्होंने पहले भी कॉल की थी, थोड़ी देर तक होल्ड पे रहे फिर उसके बाद चले गए। थोड़ा सा मैं आपको देर से इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि आप लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं ना, तो इतना मसला नहीं है।

0: थोड़ी सी देर बस रुकिए, हम पहले कॉलर से बात करते हैं फिर आपसे बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम मेबिस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: गुड मॉर्निंग अज्जू.
1: या हाउ आर यू मेबिस?
0: आई एम गुड, आई एम गुड. आप बताओ कैसे हो?
1: वेरी गुड.
0: गुड. तो आज सवाल हमारा ये है कि कोई ऐसी एडवाइस जो कि किसी से मिली हो और उस पर आपने अमल किया हो, बहुत फ़ायदा हुआ हो, तो किससे मिली, क्या एडवाइस थी?
1: टेक्निकल एडवाइस मेरे को बहुत ज़्यादा मिला.
0: अच्छा.
1: विच मीन्स मेरा जॉब का रिलेटेड टेक्निकल एडवाइस मैं बहुत लेता हूँ. मतलब मेरा आइडिया और दूसरा का आइडिया दोनों फर्क रहता है. तो मेरा आइडिया में काम थोड़ा गोइंग फार, बट मे बी सम वन आइडिया बिकम वेरी इजी. तो टेक्निकल एडवाइस में बहुत सारा लेता हूँ. कोई ना भी, मे बी द गाय वाज माय सीनियर, इज माय जूनियर, नो प्रॉब्लम. टेक्निकल एडवाइस में बहुत सारा लेता हूँ. सो मेरा बहुत काम ऐसे सीखा टेक्निकली मेरा प्रोफेशनल लाइफ में.
0: कोई खास बंदा ऐसा जिसने दी हो कोई एडवाइस जो बहुत ही काम आई हो?
1: आपको मालूम है ना अब्दुल रफ भाई?
0: हाँ,
1: वो मेरा सीनियर है.
0: ओके, राइट.
1: हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं. वो डेली रेडियो 107 FM सुनता रहेगा, इस वजह से मेरे को ये आदत है.
0: अच्छा, ओके, सही है. अब्दुल रफ भाई की वजह से, तो उनसे मिलती है एडवाइस?
1: उनसे उसका ऑलमोस्ट 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है काम में. तो मैं बहुत, मैं जब से कतर में आया उसी टाइम बहुत सारा एडवाइस दिया काम के लिए. टेक्निकल एडवाइस कैसे इक्विपमेंट का हैंडल करने का, असर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत एडवाइस दिया.
0: वेरी नाइस.
1: वो एडवाइस मेरे को अभी तक बहुत हेल्पफुल है. मे बी वो जो रिटायर करके वापस पाकिस्तान जाएगा तो भी वो लोग, उसका एडवाइस मेरे को मेरा लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा.
0: वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त.
1: सो दैट टेक्निकल एडवाइस ऑलवेज वेलकम फ्रॉम माय साइड, बट पर्सनल एडवाइस मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, किसी के साथ भी नहीं लेता हूँ, मैं हम भी नहीं देता हूँ.
0: ओके.
1: दूसरा आदमी का जिंदगी में जाके आप एडवाइस करने का आपका राइट नहीं है. मेरा कंसेप्शन यही है, क्योंकि एक आदमी के पास पैसा है, वो बिजनेस करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है मैं दुकान खोलेगा. मैं बोला आप दुकान मत खोलो, ये स्टॉक मार्केट में डालो, वो डालो, ये डालो, इसमें डालो, तो पैसा गायब होगा तो फिर प्रॉब्लम है. तो किसी का पर्सनल लाइफ में जाके मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ, एंड हम भी मेरा पर्सनल लाइफ का एडवाइस किसी के साथ नहीं लेता हूँ. आई विल हैंडल ऑल दोस थिंग्स, बट प्रोफेशनल लाइफ एंड सम अदर क्राइटेरिया आउट ऑफ माय पर्सनल, आई ऑलवेज वेलकम फॉर एडवाइस.
0: सही सही, गुड, जबरदस्त, अच्छा है, ये भी अच्छा है. जबरदस्त,
1: दोनों अच्छे है. दोनों मतलब 50-50 लेने का, ज्यादा लेगा तो प्रॉब्लम है, नहीं लेगा तो भी प्रॉब्लम है. एडवाइस इज लाइक ए शुगर, इफ यू टेक टू मच यू विल बी अ डायबिटीज. ज्यादा नहीं लेने का, आपको कितना चाहिए ले लो, बाकी ओके, दैट इज इनफ.
0: गुड वन, गुड वन, जबरदस्त अज्जू, जबरदस्त. चले नहीं, थैंक यू अज्जू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की, और बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. रही जी, तो इसके साथ ही हमारे वो कॉलर जो कि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ आ जाते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम मैम
0: जी, कौन बात कर रहे
2: हैं? मेरा नाम मोहम्मद फहद है. कहती हैं आप मैम, ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. मोहम्मद तो समझ में आया, आगे क्या है?
2: फहद.
0: फहद, ओके, मोहम्मद फहद. क्या हाल चाल है मोहम्मद फहद? जबरदस्त जबरदस्त. आवाज थोड़ी सी दूर से आ रही है, थोड़ा सा रिसीवर करीब पर ही कर लेंगे अपना.
2: ओके, अब सही आ रही है,
0: अभी बेहतर है जी. मोहम्मद फहद कैसे हैं और क्या हो रहा था?
2: सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हो रहा था, बस ऐसे रेडियो सुन रहे थे बैठ के.
0: अच्छा अच्छा, सही सही. तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कोई एडवाइस आपको मिली है ऐसी?
2: एडवाइस मैम, मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उनके एडवाइस है. जैसे कि अभी गांव में बहुत ज़्यादा लोग अपने घर में ख्याल नहीं रखते हैं ना, बाद में जैसे कमाने लगते हैं, तो वही मैं कतर अंदर आ रहा था, मुझे बोले कि ऐसा है कि अपने अब्बा अम्मा अब्बा का ख्याल रखना, ऐसे वहाँ जाने के बाद भूल जाना उन लोगों को.
0: भूल जाना?

0: अल्लाह पाक उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। और एक मैं वीडियो देखा था मैम, उसमें वो बता रहे थे कि एक आदमी अपने अब्बा को पैसा दे रहे थे, बोले ऐसे मैं इसे दिया हूँ कि मेरा हाथ नीचे रहे और वो मेरे हाथ से उठा लें। तो मैं उस पर अभी तक अमल कर रहा हूँ। अभी तक 7 साल से मेरे घर वाले मुझसे पैसा नहीं मांगे हैं अभी तक, और मैं इसे मतलब सैलरी मिलता ही भेज देता हूँ ताकि उनको मांगना भी ना पड़े इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल
0: मांगना पड़े।
1: सही सही,
0: वर्जन का ख्याल रखना है, कोई तकलीफ ना हो, जितना हमारे पास है उस हिसाब से।
1: सही सही, गुड, जबरदस्त। तो ये था
0: जी। आप मैं बताइए ना कोई एडवाइस, आप
1: मैं कोई एडवाइस बताऊं? अच्छा, मैं वैसे यूजुअली एडवाइसेस देती रहती हूँ, अक्सर कोई दिमाग में बात आती है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे को खुद कुछ करके अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ ऑन एयर, ताकि उससे ना लोगों को भी एक हो कि मुझे अच्छा लगा है। हो सकता है कि वो दूसरे के हक़ में उस तरह से ना भी हो, लेकिन मैं फिर भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो वक्तन फवक्तन होता रहता है, आप सुनते रहिएगा मोहम्मद फात। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बताएं, पहली दफ़ा बात हो रही है, बीच में भी बात हुई आपसे?
0: ईद के दिन बात हुई थी।
1: हाँ, मुझे क्योंकि फाहद नाम सुना सुना ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपसे बात हुई है कुछ अर्से पहले। सही सही सही सही, चलें अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर दोबारा से बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ हैं मोहम्मद फाहद, और इसके साथ ही हैं हमारे साथ खलील भाई, तो उनको लेते हैं कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम
1: जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक,
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप बताइए क्या चल रहा है?
2: कोई वाला है जिससे मैं बात कर लेता हूँ इस गिर्द में, बस कराची क्योंकि कराची वाले कोई है नहीं, इसलिए मैंने कल चले।
1: नहीं नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत एकदम से बिल्कुल। और आपसे सुनना है, कराची वाले वैसे मशवरे देते हैं, अक्सर देते हैं ना एक दूसरे को,
2: मशवरे बहुत देते हैं, मशवरों की जरूरत है।
1: मशवरों की तो जरूरत है, अमल करने की भी जरूरत है।
2: बिल्ली में इतना गुटखा खाते हैं, इतना कच्चा और ये चीजें, तो बात हुआ हर जगह जो है ना, बड़ा वो होता है, कुफ्ती होती है कि यार ये क्या हो रहा है।
1: अच्छा, ये पहले नहीं था खलील भाई, ये एकदम से कुछ मतलब ये भी ट्रेंड हो गया है।
2: बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पहले नहीं था, गवर्नमेंट ने इतना महंगा किया है, इसके बावजूद भी मिल जाता है उनको।
1: ये मसला है,
2: और वो हर चीज का उनके पास जवाब होता है, खाने वाले के पास।
1: सही,
2: वो हर चीज उनको जितना आप डराए कि भाई कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं भाई, नहीं कुछ भी नहीं होता।
1: ये अजीब है।
2: और लिटरली मैंने देखा लोगों को इतना, इतने पैसे जाया करते हैं, इतना अपनी सेहत भी, पैसे भी, समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये होता क्या होगा इसको, मतलब इस्तेमाल करने के बाद ऐसा कौन सा चस्का है जो लग जाता है, समझ में नहीं आता। बाज़ाहिर तो इतनी कोई गंदी सी चीज़ लगती है, लेकिन पता नहीं क्या,
2: बहुत
1: भाई
2: गंदी है, बहुत गंदी है। आप इसको बनते हुए देखेंगी ना तो अल्लाह कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा करेंगे। बिलीव मी, बहुत गंदे तरीके से बनता है, गंदी जगहों पे बनता है।
1: मैंने सुना है अक्सर वो कोई छुपकली निकलाती है, पता नहीं क्या क्या।
2: नहीं, गवर्नमेंट ने इतना यानी कंपेन चलाई और इतना कुछ किया, पर वो लोग बाज ही नहीं आते, बड़ा अफसोस होता है।
1: सही बात है, क्या कर सकते हैं। खैर जी, तो आप बताएं कोई मशवरा जो आपको मिला हो।
2: नहीं, लिटरली मैं जो है ना टाइम से ना हर काम करने का आदी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हुए हुए हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ बच्चों को भी कि भाई अपने टाइम से हर चीज तैयार रखा करो, पढ़ाई में भी और जो भी मामलात हैं दुनिया के, जिंदगी के, वो अपने टाइम से, तो अच्छे भी लगते हैं और टाइम भी बच जाता है, और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती।
1: हाँ, ये वाली चीज वाकई मतलब ना, ये बहुत ही अहम चीज है कि आपने काम जो है ना वक्त से पहले करके रखो। अच्छा, खासतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सिलसिला है ना, तो उसको हमेशा आपको पहले से, जैसे होता है ना बच्चों का कि वो अक्सर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको बड़े, मुझे लगता है ये भी तरीके से रखने चाहिए। बाकी आप जितना स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप वो वक्त से पहले लेके चल रहे हो ना मामला, घर के काम हो गए कुछ भी, तो उसमें आपकी बड़ी एक

0: पीसफुल लाइफ हो जाती है।
1: बिल्कुल बेशक, सही कह रही हैं। बस काम ये जो है आप टाइम से करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं।
0: ये मशवरा किसने दिया था, किसकी मतलब मशवरे के ऊपर काम करते हुए आप?
1: मेरी लाइफ जो है ना इसी चीज पे चली है, मैंने हर काम अपने टाइम से करता रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आगे कोई मसला नहीं हुआ।
0: सही सही, गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला। और बताएं खलील भाई क्या कहना चाहेंगे, हमें कोई मशवरा देना चाहेंगे इसके अलावा?
1: बस मैं कराची वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुटखा खाना छोड़ दें।
0: यहाँ तो नहीं खाते
1: नहीं,
0: यहाँ तो खा ही नहीं सकते,
1: आए हुए तो होंगे कोई ना कोई तो आया हो। इतना गंदा गुटखा और पीक और हर जगह अपना मुल्क में बड़ा बुरा सा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं कंपनी में था तो HSC जो है ना वो मेरे अंडर थी, तो मेरे लिए बड़ा मसला था। मैंने कहा यार मैं इनको क्या समझाऊं, ये उम्र भी नहीं होती जो जॉब कर रहे होते हैं, इनको कोई समझाए। हर जगह पीक मारी हुई होती
0: है, सीरियसली
1: इतना मुश्किल होता है कि यार स्वीपर को ले जाके बताओ कि भाई यहाँ सफाई करो यार, मुश्किल हो जाए।
0: कितनी दफा करेगा कोई, कितनी दफा पेंट होगा, क्या क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मतलब सबसे पहले तो शऊर आवाम को आना चाहिए ना, ये चीज है। बिल्कुल ऐसे कल मेरी, खैर मेरी बहन से बात हो रही थी तो वो अब फाइनली मतलब कह रही थी कि कुछ भी है सोशल मीडिया के चक्कर में, लेकिन कुछ भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अब काम हो रहा है। तो मैंने कहा चले आपसे भी अच्छी खबर शेयर कर दें।
1: हमारी हाथ बांध के ना रिक्वेस्ट है कराची वालों से कि गुटके छोड़ दें यार।
0: मतलब जो काम हो ना उसको मेंटेन रखो, कुछ भी अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हो रही है तो आवाम को साथ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता।
1: जी हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बस क्या करें।
0: चले नहीं खलील भाई, दुआ ही कर सकते हैं हम। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा अच्छा सा नाश्ता कीजिएगा आप इसके बाद। ओके थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट, तो खलील भाई हमारे साथ है और उसके साथ हमजा का मैसेज है मेरे पास और ये कहते हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम कराची, ग्रेट हमजा। ये लेकिन कौन से वाले हमजा है, अली हमजा है या हमजा खोकर है, ये बताए मैसेज करके। और हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जमाल भाई,
2: कहाँ से लाते हो खोद खोद के ऐसे सारे मजबूर की लिस्ट
0: तो आप फिर उसमें इजाफा कीजिए ना।
2: मुझे लगता है आपका प्रोग्राम पहले दिन से सुनते हुए है ना, वो गलत हो गया, रोज का जो टॉपिक था ना उसको उसके पेज बनानी,
0: क्या क्या करना है,
2: गलत हो गया,
0: क्या हो गया,
2: कह रहा हूँ जो रोज ये टॉपिक है आपकी जो आप मजबूर होते है ना वो उसके वो बना लेनी थी, लिख लेना था एक पेज पे।
0: अच्छा अच्छा सही सही सही सही सही सही सही, ये रह गया
2: बड़ा अच्छा काम हो जाता।
0: हाँ ये तो है जी। अच्छा जमाल आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा मतलब अगर कुछ बेहतर कर सके तो सुनने वालों को आसानी हो जाएगी।
2: अच्छा तो उसको बेहतर करने का क्या तरीका होगा, अभी आ रही नहीं आ रही,
0: अब बेहतर हुई है ना? हाँ अब बेहतर है,
2: इंशाल्लाह बेहतर ही होगी।
0: हाँ थोड़ा सा लाउड
2: बोलो, आवाज अपनी बुलंद कर लेते हैं, क्या है उसमें कोई मसला थोड़ी है।
0: हाँ
2: आवाज बुलंद कर लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल जी, आवाज बुलंद कर लेनी चाहिए,
2: सामेन को सुनने में कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी क्या कहते हैं अरे मुखातब जो है ना वो उनको मुकम्मल मतलब मुकम्मल इस्तेफादा हासिल होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी जो जमाल आप ये बताइए कि मशवरा आपको किसने दिया था बेहतरीन?
2: मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, घर के लोगों ने भी, हमारे मतलब जो बहुत से सगे लोग हैं उन लोगों ने भी मशवरा दिया, और कुछ बाहर के रिश्तेदारों ने, कुछ इवन दोस्त अहबाब ने भी मशवरा दिया।
0: अच्छा,
2: और मेरे मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा, बिल्कुल मुझे इस तरह का मशवरा दिया गया था कि यार ये क्यों बच्चों को पढ़ाने के पीछे लगे हुए हो, तुम पागल हो,
0: अरे
2: घर बना लो।
0: सीरियसली
2: सही बता रहा हूँ मैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक अलग सी चीज आपको बताऊंगा जो आपको अजीब सा लगेगा एकदम।
0: ये तो बड़ी अजीब सी बात है,
2: हमको कहा गया है, हमको जो है ना कुछ लोग जो जिस तरह से मतलब हमारे रिलेशन में जिस तरह से थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं

0: हमको सिर्फ मतलब मशवरा देते हैं, लेकिन रिश्तों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ताकीद भी करने की मतलब वो रखते हैं भाई, उनका अपना रिश्ता इस तरह से होता है कि वो ताकीदन आपको कह सकते हैं, है ना। तो इन तमाम चीजों को किसी ने कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था कि मेरे जहन में किसी की कोई बात घुसती थी। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगा, लेकिन मैं बच्चों की अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूंगा, मैं रोड पे रह लूंगा चलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है मुझसे। अच्छा और वही लोग जो मुझे मतलब इतनी शिद्दत से मशवरा देते थे, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये खैर खाही का जज्बा रखते हैं मेरे ताल्लुक से, मेरे ताल्लुक से इनके दिलों में कुछ मतलब ऐसी चीज है कि यार ये क्यों इधर उधर रेंट के रूम पर और भाड़े का घर लेके इधर उधर क्यों भटक रहा है ये, इनके छोटे जो है वो सब कर ले गए और इससे नहीं हो रहा है। तो अब ये है कि जैसे थोड़ा सा मतलब हम देहात में रहते थे, तो वहां पर हालांकि बहुत पहले से तालीम को जो है ना क्या कहते हैं वो अहमियत हासिल हो गई, वो अपने उरूज पे जाहिर है, क्योंकि सोच बदली हुई थी गांव में भी, आसपास भी लोग देखते थे कि मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान बिल्कुल चौपाए की तरह है, जो लोग पढ़ लिख लेते हैं उनके लिए कुछ बहुत सारी चीजें दुनिया में बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारे फायदे की चीजें होती है, बावजूद इसके लोगों का ये कहना होता था कि नहीं यार क्यों मतलब क्या है बेटियों को पढ़ा के तुम्हें उनसे जॉब कराना है, क्यों उसके पीछे खड़े हुए हो।
1: अजीब सी बात है,
0: उन लोगों को ही खुद ये बात समझ में आ रही है कि हम बहुत पीछे रह गए और ये बहुत आगे निकल गए।
1: अच्छा आपने इस मशवरे पे अमल नहीं किया। मैंने वैसे पूछा ये था,
0: आपको
1: हाँ हाँ
0: वो बड़ा दिलचस्प लगेगा आपको।
1: हाँ हाँ
0: इन तमाम लोगों में जो मुझे मशवरे दिए जाते थे, जो एडवाइस दिए जाते थे, अकीदन भी मशवरे के साथ में ऐसे भी मतलब प्यार से भी समझाने के अंदाज में भी हर तरह से जो लोग कहते थे उसमें कैरेक्टर ऐसा भी है कि जो खुद एकदम मेरा जाहिल ठीक है बिल्कुल इल्म से लाबलग, वो इंसान भी मेरे साथ खड़े होकर शाना बशाना ये कहती थी कि नहीं मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो मेरी बीवी है।
1: वेरी नाइस, जबरदस्त।
0: आपको मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, इवन ये की कुछ थोड़ी सी परेशानियां मेरे साथ आई तो उसने कहा कि मैं अपना मतलब जेवर बेचती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए।
1: ये बड़ी चीज है, मतलब ये असल जो चीज है ना समझना है।
0: ऐसा हुआ भी है,
1: हाँ
0: ऐसा हुआ भी है, सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ भी है, बात अल्लाह शाहिद है कि मैं तब जाकर मेरा जहन वहां सोचने पर मजबूर होता था कि सारे लोग जो मतलब जुमला मुझे तमाम ही लोग जो मुझे मशवरा दे रहे हैं उनका मशवरा एक तरफ, और एक ना पढ़ने वाला इंसान जो मेरे साथ खड़ा है तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, इसमें गलत की गुंजाइश नहीं है।
1: सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: तो वो ना सिर्फ मोटिवेशन था बल्कि ये था कि एक मजबूत और एक बुनियादी मतलब बुनियाद रखी जाती थी मेरी उसके लिए हिम्मत की मजबूती के लिए।
1: ये बड़ा जरूरी है, मतलब और दूसरा ये कि ये मतलब उनकी तरफ से यही मशवरा होता था कि बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है, राइट?
0: हाँ, वो मैंने कहा ना कि वो अपने जेवर तक भेजती, बोली थोड़ी सी तकलीफ है, परेशानी है, कोई मसला नहीं, बच्चों की पढ़ाई बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए।
1: सही सही सही, गुड, वेरी नाइस।
0: थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा मतलब वो है, प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसे वगैरह भी लगते हैं, तो उस ताल्लुक से उन्होंने कहा नहीं आप अगर हिम्मत किए हो बच्चों को पढ़ाने का तो करो। अच्छा एक चीज और बताओ, एक कंसेप्ट हमारे यहाँ और भी है, चलो ठीक है एक बार बेटा हो तो कोई हर्ज नहीं, बेटियों को पढ़ा के तुम्हें क्या करना है,
1: ये बड़ा गलत
0: बात है यार,
1: बहुत अजीब
0: अजीब बात है, क्या वो डिपेंड नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: ऐसा क्यों?
1: ये मतलब जब मैं तो अपने शो में ना हमेशा ये बात करती हूँ कि आपका बेटा है ना, पढ़ाना तो खैर दोनों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलो मतलब अगर नहीं पढ़ेगा कोई हुनर सीख लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ना करे उनको किसी वक्त में ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, उनके पास कोई बाइज्जत जो है ना प्रोफेशन होना चाहिए जिसको वो इख्तियार कर सकें।
0: और एक बात बताऊं मैम, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो मेरी तरह से थोड़ा सा मतलब देहात वगैरह से जो ताल्लुक रखते हैं है ना, सही बता रहे हैं, ये मेरे साथ ही मामला नहीं होंगे, आई थिंक ये ऐसे बहुत सारे लोग

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी

0: यादगार। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान। और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ। बंताक्षरी का टाइम है, एक कॉलर हमारे साथ आके आ चुकी हैं और दूसरे कॉलर का वेट है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम आपकी कॉल्स ले सकें और फिर अंताक्षरी का बकायदा आगाज कर सकें। मुमताज़ अहमद एक आता, थैंक यू मैम, थैंक यू आपका भी मुमताज़ अहमद। इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, तमाम एफएम सुनने वालों को मेरा सलाम। और मेरे शेख ने मुझे एक मरतबा एक मशवरा दिया था जो मेरे लिए नहायत कारगर साबित हुआ। वो मशवरा ये था कि मामला गैरों वाले ताल्लुकात भाइयों वाले, ओके। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी से लेन देन करें, चाहे वो आपका दोस्त हो या करीबी रिश्तेदार या भाई, तो कारोबार और लेन देन जो है लेन देन वो गैरों की तरह करें, यानी हिसाब किताब साफ रखें और वक्त पर दें। ये सारा जो मामला है वो इस तरह से करना है, चलें दी गुड। और इसके साथ ही इस तरह से करने से आपके ताल्लुकात भाइयों वाले रहेंगे, क्योंकि जब मामला भाइयों वाले करते हैं ना तो ताल्लुकात गैरों वाले हो जाते हैं। और ये है अतीकुर रहमान अल शाहानिया से, ज़बरदस्त भाई, मतलब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाकई। मतलब आपको जो है ना लेन देन का जो मामला है उस पर हिसाब किताब लिखत पढ़त कर लेनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस आपके शामिल करते हैं, लेकिन आ गए हैं दोनों कॉलर्स, तो आगाज करते हैं हम अंताक्षरी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एक एक करके।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: जी जावेद साहब, कैसे हैं आप?
1: लगा ऐसा ना, मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने कहा शायद आज नहीं लगेगी कॉल मेरी।
0: अच्छा अच्छा, नहीं अब मैंने ना मैं अभी अभी आया आपका, ठीक है ठीक है। मैं सोच रही थी ये हो सकता है कि आप ऑफिस में बिजी होते हो, तो अब मैं रोज रोज आपको बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चले भाई आपने कॉल कर ली। और दूसरे हमारे साथ एज यूजल शहजादा सलीम मौजूद है।
1: माशाल्लाह सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माजरत चाहूंगा कल के लिए, मैं डिस्कंटिन्यू कर दिया बीच में से गेम।
1: मेरे भाई माजरत क्या मतलब, आप नहीं भी, आप अगर आके खामोश भी आके रहते मेरे भाई तो आप फिर भी विनर ही हैं यार, इसमें हार जीत कुछ नहीं है।
0: अच्छा आज जो है ना शहजादा सलीम का बड़ा दिल है कि ये सीन और स्वाद से गाना गाना चाहते हैं पहला।
1: ये कुछ लिख के लेके आए फिर सीन और
0: स्वाद। हाँ कह रहे थे कि ये सीन स्वाद की तो बारी नहीं आती।
2: जावेद साहब यकीन करें, मैं मतलब गाने सुनता ही हूँ, मतलब ज्यादातर है ना गाने पुराने में गाने सुनता हूँ यूट्यूब वगैरह में, लेकिन मैं कभी लिखा नहीं ना, कोई लिखा नहीं, लेकिन मेरे को शौक है मतलब सुनने का। तो आज है ना आप शुरुआत करें कुछ ऐसा हुदूस में ना, ताकि हडीफ और ये ना इनका जितनी हुकूमत अभी कम हो जाए।
0: अरे वो नहीं होगी आखिर, जो है ना आखिर नहीं होगा सीन स्वाद पे, शुरू हो सकता है।
2: जी शुरू करें जायद साहब, शुरू करें।
1: अच्छा मैं दो दिन से ना, मुझे अभी भी देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मतलब शायद मुझे इतने गाने महविश और शहजाद सलीम मुझे याद नहीं होते, क्योंकि मैं जो परफॉर्म करता हूँ वो पहले से दिए थे ये आपने गाने। उसके बाद ना इतनी मतलब मेरी भी याददाश्त नहीं है कि मैं गानों को याद करूँ डिफरेंट सिंगर के। एनीवे वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। तो दो दिन से रईस भाई आई गेस कि वो कह रहे हैं मेरे महबूब, तो मैं दो लाइनें उनकी नज़र करता हूँ, ऐसे शुरू करता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मुहर।

0: भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब।
1: क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बी से गाना है आपने शहजादा सलीम,
2: क्या आया? बे आया,
1: बी आया। जी जी,
2: ये आया
1: जी जी।
0: बहुत दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं,
2: जल्दी जल्दी हम थोड़ा
1: लाए हैं। नून गुना,
3: किससे?
1: नून गुना। जी जी जी,
3: ये नून आप मुझे नून जो नून फंसा देती है ना नून गुन्ने में।
0: नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए बिना।

0: ना ना ना तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। गाना कंटिन्यू रखना चाहिए ना इसलिए
1: ये शहजादा सलीम

0: नहीं
1: फिर नून
2: ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। सलीम भाई मैं चाहूंगा कि आज मैं बीच में से क्विट करूं
0: जी मैं चाहूंगा कि और थोड़े नए भी आए ना तो थोड़ा सा और उनका भी मतलब देखने मिलेगा सुनने मिलेगा तो मेरी भी यही ख्वाहिश ही है। तो बहरहाल कोई है आने वाला है तो मैसेज करे मैनेशन को।
1: हाँ बिल्कुल मैसेज कर दें तो फिर हम जो ना देखते हैं अभी
0: हम लोग ट्वीट करते हैं। हाँ जी जी जी चले अभी कौन सा आया
1: अभी ये आया था
0: ये आया था
1: फिर से दोबारा जी जी ये आया
0: ये जो चिल मन है दुश्मन है हमारी कितनी शर्मीली है कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी
1: जी ये
2: ये आया
1: जी जी
2: जैसे ये कहते हम ये क्या हुआ

0: ये ना सोचो ये क्या हुआ।
1: जबरदस्त, ये क्या हुआ। अलिफ आ गया है।
2: अलिफ आ गया है।
1: जी जी अलिफ आ गया।
2: अनहोनी को होनी कर दो अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों आमर अकबर एंथोनी। नून आ गया फिर।
0: यार आप आज आप क्या जुलम ढा रहे हैं मेरे पर नून लाला की। यार मुझे तो
1: नहीं, मुझे नून नहीं, ये है
0: जी
1: एंथोनी, तो फिर वो ये आएगा ना आखिर में।
2: हाँ जी जी जी।
0: ये शाम मस्तानी

0: आ जाए तो ये फिर से आ गया अलिफ आएगा अलिफ
1: जहाँ
0: जा है तो फिर हाँ अलिफ अलिफ बिल्कुल
2: अलिफ आ गया
0: जी अलिफ आ गया फिर से आ गया
2: आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती
0: है आ गया जी
1: क्या आ गया
2: करती है क्या आ गया
0: आ है सदाएं पीछा करती हैं तो फिर नून होगा ना हाँ नून है
1: ना तू जमीन के लिए है

0: तेरा वजूद है। चल इतने है, इतने लंबा जगह फिर ये बस यही आया मेरे ख्याल से,
1: ये आया तेरा वजूद है। हाँ ये अगेन
2: वापस ये आ गया।
1: हाँ हाँ
2: ये जो मोहब्बत है बस इनका है नाम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए लेकर बदनाम, छोड़ो बिरह में दो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
0: रे से रंग भरे बादल से, तेरे मेरे से साजल से, मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम, सलीम जावेद सलीम
1: जावेद। जबरदस्त जबरदस्त बहुत आला।
2: यार बंदे कहाँ हैं सब भाई।
1: अच्छा हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं शायद सलीम, या कोई जाना चाहता है तो क्विट कर सकता है, कोई मसला नहीं है, फिर हम देखते हैं कि कोई आता है।
0: अच्छा मैं ना आज ये नहीं नहीं एक मिनट शाह सलीम, आज आप रहिए क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि कोई और आए यार, तो मैं नहीं आप, मैं चाहता हूँ कोई और आए तो आपके साथ, आई रियली लव इट, मैं सुनना चाहता हूँ आपको, प्लीज प्लीज ठीक है।
1: चले जी जावेद
0: करता हूँ,
1: थैंक यू जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो जावेद साहब नहीं है अब, और अब कोई, मुझे लगता है कि लोग ना जावेद साहब को सुनना चाहते हैं, मैं बोल भी रही हूँ आप लोगों ने आना है तो कह रहे हैं कि नहीं बड़ा मजा आ रहा है सुनते हुए, तो अब देखते हैं कि कोई आना चाहता है तो जल्दी से आ जाए और आके कॉल कीजिए आगे कॉलर। अच्छा जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सलीम, तुम्हें अनारकली को छोड़ना होगा, ये हमारा हुक्म है।
1: जी रईस भाई कैसे हैं?
3: अरे भैया क्या बता रहे हो, हम तो सुन रहे थे इतना मजा, हम तो सोचे आज आज काजी बन के हम फैसला कर देंगे यार कौन विनर है आज हमको हमारे भाई लोग।
1: जी तो रईस आपने ये से गाना है,
3: ये रेशमी जुल्फें ये शर्ब की आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, बस यही पे ये पे मैं छोड़ देता हूँ।
1: ये अगेन ये
3: याहो चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे, हम क्या करें रे,
1: करें करें
3: ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। चलो हम अलिफ पे खत्म कर देते हैं,
1: अलिफ पे।
3: मेरा फोन आ गया, मामिश में मुद्रा था, मेरा फोन आ गया।
1: अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं शायद सलीम, कोई मसला नहीं है, थैंक यू आपकी कॉल का भी। अच्छा जी तो हम जो है ना ऐसा करते हैं कि हाँ बिल्कुल जी, तो कोई आना चाहता है तो जल्दी से आ जाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और हम देखते हैं कि कोई अगर आ जाता है तो हम उसको कॉल पे लेते हैं, अंताक्षरी का सिलसिला जारी रखेंगे। आप लोग भी अपनी आवाज़ को आजमा सकते हैं कि कैसे लगते हैं आप गाते हुए। अच्छा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन पता नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त या तो बिजी होते हैं, क्या चक्कर होता है कि अभी कॉल्स उस तरह से तीन लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तीन दिनों से।
3: हाँ हम तो ऐसे बच गए आपके उसमें कि मतलब हम मजबूर हो गए कि मतलब ये करने के लिए नहीं, ये सब जिंदगी में पहली बार आप मामले में।
1: और मैं नोट कर रही हूँ रईस भाई, आपकी रोजाना आवाज ना सुरीली से सुरीली होती चली जा रही है।
3: नहीं भैया कहाँ गाने होने के, हम तो हाँ अभी सुना देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, चलो ये पूरा लिख छोड़ के और एक हमारे भाई आ जाए यार कोई।
1: हाँ जल्दी से आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए। कल हमारे पास कॉल आ भी रही थी गेम के लिए।
3: जावेद भाई कहाँ चले गए, हमारे जावेद भाई यार, हमारे जावेद भाई को मतलब समझ लो कि
1: वो बेसिकली ऑफिस आवर्स है ना। अच्छा आ गए, एक कॉलर आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं नहीं बताऊंगा।
1: अरे भैया, आरिफ अंसारी जी, आरिफ अंसारी
4: कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपने कहाँ पे छोड़ा था आपने अभी रईस भाई?
4: एक अलिफ पे छोड़ा,
1: अलिफ पे छोड़ा था। अलिफ,
4: अलिफ।
1: जी जी जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम रह गया। अरे इतने गाने, अलिफ तो

0: इतने सारे गाने.
1: क्या क्या बोला था?
0: अलिफ आ.
2: आज कल याद कुछ और रहे.
1: अच्छा तो उन्होंने शुरू कर दिया.
0: अच्छा उन्होंने शुरू कर दिया.
2: तेरे याद आने के बाद
0: चले दाल से गाएं आप. जल्दी जल्दी आरिफ दाल से दा.
2: मैं बहुत गंदा हूँ.
0: अरे भाई इतने इतने मुझे गाने आ रहे
2: हैं.
1: मेरे को नहीं आ रहे.
2: अरे हमने किस्मत हो गए यार भैया. हमको तो जावेद भाई सलीम भाई ने हमें सिखा दिया यार लगता है किस्मत. और
0: जी अच्छा माने ना आगे कुछ तो गाएं. बस माने ना अलिफ.
2: मैं हार मानता हूँ.
0: हार मान लिया अभी से.
2: अरे नहीं भाई हार नहीं यार. बिना
1: अभी देखो मैं फोन लगाने से पहले मेरे दिमाग में गाने आ रहे थे. अभी एक भी गाने नहीं आ रहे.
0: हाय हाय हाय. चलें कोई मसला नहीं. आरिफ अंसारी और रईस भाई दोनों दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि बिल्कुल अब टाइम भी एंड पे ही आ गया.
2: बस हम सिर्फ आपका टाइम पूरा करने के लिए हम शामिल हो जाते हैं. नहीं तो कोई मतलब इतना नहीं हम
0: नहीं नहीं अच्छे अच्छे सुरेले होते जा रहे हैं आप. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पे हम एंड करते हैं क्योंकि अब टाइम बिल्कुल एंड हो गया है. ठीक है
2: बिल्कुल. हमारे बिल्कुल बेहतरीन हमारे सिंगर हैं और बेहतरीन समझ लो पार्टिसिपेट करके आपका हमारा सबका वक्त समझ लो कि बेहतरीन तरीके से गुजार देते हैं.
0: जी जी
2: और बड़ा मजा आता है.
0: चले जी बहुत शुक्रिया रईस भाई. बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ. बहुत शुक्रिया. ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. रई जी तो अंताक्षरी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना पार्टिसिपेट करेंगे आप ही की वजह से जावेद साहब और सलीम दोनों ने इन लोगों ने छोड़ा ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें तो जितना करेंगे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे. हम अलग अलग आवाज़ें सुन सकेंगे. अच्छा जी मैसेजेस हैं आप लोगों के तो मैसेज में जल्दी से शामिल कर देती हूँ फिर मेरे जाने का वक्त हो रहा है. मैम गुलाम रसूल हियर फ्रॉम मसाइद. आई लव 90s सॉन्ग वेरी मच. प्लीज़ प्ले. आज तो सारे वही चल रहे हैं भाई. और इसके साथ ही दानिश आज़ाद कहते हैं कि भाई का जवाब कमाल है. दानिश आज़ाद मुझे जो एडवाइस मिली वो ये कि गुस्सा छोड़ दो बहुत ही फायदे मिलेंगे. जबरदस्त जबरदस्त. और इसके साथ ही जी रमेश यादव है. मावशी हाउ आर यू. आई एम गुड रमेश आप कैसे हो. और खलील पराचा का तो हो गया था मैंने पढ़ लिया था. मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. गुड मॉर्निंग मावशी कैसे हैं आप. होप वेल. वेलकम टू समर मॉर्निंग. और मावशी मेरे लिए मेरी अम्मी की सबसे बड़ी नसीहत यही थी कि कभी भी सच बोलना और झूठ से जहां तक हो सके बिल्कुल भी ना बोलना. ये जिंदगी में कामयाबी और आखिरत में भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ अल्लाह माफ़ करे. और जी तीन दिन से तीन कॉलर खेल रहे हैं. एक नए कॉलर आना चाहिए. बिल्कुल जी बिल्कुल आने चाहिए. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम. और ये है इंशाल्लाह आई बिलीव वन डे अल्लाह विल मेक एवरीथिंग ओके. ग्रेट ज़बरदस्त. इसके अलावा है जी जसविंदर सिंह और कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम जी गुड प्रोग्राम. चलें जसविंदर वैसे आपको तो आना चाहिए गाना गाने के लिए आप क्यों नहीं आ रहे. मुर्तजा खान का भी मैं वेट करी थी वो भी नहीं आया. अच्छा जी जावेद साहब से ये गाना ये सॉन्ग बोलो कि गाएं मेरे महबूब कयामत होगी. मेरा ख्याल इसी से शुरुआत की थी ना उन्होंने. और नाइस वॉइस बहुत ज़बरदस्त. और ये कौन है ये किसका मैसेज है. ये है नौशाद आफ्ताब आलम और तारीफ कर रहे हैं ये. बहुत शुक्रिया. और इसके साथ ही मीर फरहत हंस रहे ओके. और इसके साथ अच्छा ये तारीफ कर रहे थे जावेद साहब की आवाज़ की बहुत ज़्यादा. और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपने आना है तो उस पर हंस रहे हैं. अच्छा जी इसके साथ ही है हमारे पास मैसेज किसका हंस हंस के पागल हो गए. बहुत अच्छा गेम है. और ये है कौन. ये है जी मोहम्मद. इसके साथ ही साथ हमारे पास है जावेद बाजवा साहब. अब मैंने आपका मैसेज देखा है अस्सलाम वालेकुम आपने कहा था. और इसके साथ ही जी गजनफर जट हैं अस्सलाम वालेकुम. किसी को कुछ आता है ये नहीं आता लेकिन प्रोग्राम में तो आना चाहिए ओके. और इसके साथ ही नसीम अच्छा है अच्छा है ग्रेट ज़बरदस्त. सैयद खादिम हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. माफ़ खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आता बहुत बहुत अच्छा लगा. बेहतरीन शो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नदीम नज़ाकत दौड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मावश मैम. नदीम नज़ाकत कहाँ हैं भाई इतने दिनों से आपकी कोई खैर खबर ही नहीं है. कॉल ही नहीं कर रहे आप कहाँ पे गायब हैं. चलिए जी इसी के साथ लिसनर्स मुझे लेना है अब आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं वेंसडे के शो में. और अपना ख्याल रखिए अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखें. कल मिलते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ और मज़ेदार कॉलर्स के साथ एज़ यूजुअल इंशाल्लाह ताला. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरा।
5: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोहा कतर में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फरकान शाहिद से समाअत कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। मजलिस शूरा ने दूसरे कानून साज दौर के पहले मामूल के इजलास की इख्तितामी नशिस्त के दौरान साहिब सुमो अमीर का मजलिस पर एतमाद करने पर आला तशक्कुर व इम्तिनान के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर तिजारत व सनअत ने कतर में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर सईद अब्दुल्ला अल कमज़ी से मुलाकात की। कतर ने मराकश में अवामी नज़्म व नस्क और शहरियों की जान व माल को नुकसान पहुँचाने वाली दहशत गर्दाना साजिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। और कतर रेड क्रिसेंट के तहत वेंजुएला के लिए जारी फिजाई इमदादी मिशन के जरिए इंसानी और तिब्बी सामान की तरसील मुसलसल जारी है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। आप समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफसल नशरिया।

के क्लबों के समाजी किरदार और बच्चों के मोटापे की रोकथाम जैसे अहम समाजी मौजूआत पर खुसूसी तवज्जो दी। इसी सिलसिले में बच्चों को डिजिटल खतरात से महफूज बनाने के लिए डिजिटल तहफ़ुज अतफाल से मुतालिक एक कानून भी तजवीज़ किया गया। चेयरमैन मजलिस ने पार्लिमानी सफारतकारी में मजलिस के किरदार को भी उजागर करते हुए कहा कि कतर ने इलाकाई और आलमी पार्लिमानी फोर्म्स पर अमन मुकालमे और कसीरुल जिहती तआवुन के मौक़िफ को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है, जबकि फिलिस्तीनी काज समेत अरब और इस्लामी मसाइल की भरपूर हिमायत भी जारी रखी। बाद अज़ां मजलिस शूरा के सेक्रेटरी जनरल ने अमीरी फरमान नंबर 30 बराए साल 2026 पढ़ कर सुनाया, जिसके तहत मजलिस शूरा के पहले मामूल के इजलास का इख्तिताम 7 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल करार दिया गया। मजलिस ने सरकारी अमलाक से मुतालिक कानून और नए ट्रैफिक कानून के मसौदों को ज़रूरी तरामीम के बाद मंजूर करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए हुकूमत को इरसाल कर दिया है। इसके अलावा मजलिस ने मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तंजीम और गवर्नेंस के हवाले से जारी अवामी मुबाहसे का जायज़ा मुकम्मल करने के लिए सेहत अवामी खिदमात और माहौलियात कमेटी की मुद्दत कार में तोसीए की भी मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे इजलास के दौरान गुज़श्ता मई और जून में होने वाली मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी सरगर्मियों में मजलिस शूरा की शिरकत से मुतालिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं, जिनमें अरब पार्लिमानी इत्तेहाद की मजलिस आमिला का इजलास, आलमी गज़ाई तहफ़ुज़ से मुतालिक पार्लिमानी सेमिनार और मराकश में मुनाक़िदा मराकश पार्लिमानी इक्तिसादी फोरम शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन आल सानी ने कतर के सरकारी दौरे पर आए हुए जमहूरिया शुमाली मकदूनिया की वज़ीर खारजा व तिजारत खारजा तेमचो मोत्सोंस्की और उनके हमराह वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ समेत मौजूदा हालात के तनाजुर में बाहमी तआवुन और मुश्तरक हम आहंगी के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे इस मुलाकात में दोनों जानिब से आला अस्करी अफसरान और ज़िम्मेदार हुकाम मौजूद रहे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ममलकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अंसानी को जमहूरिया फ्रांस की वज़ीर मुसल्लह अफवाज और साबिक फ़ौजियों की उमूर की वज़ीर कैथरीन फोथरान की जानिब से टेलीफोनिक कॉल मौसूल हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगु के दौरान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और हालिया होने वाली अहम पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने कतर और फ्रांस के दरमियान दिफाई तआवुन और मुश्तरक दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर तिजारत और सनात शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने कतर में मुत्तहिद अरब इमारात के सफ़ीर सईद अब्दुल्ला अल कमज़ी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों बरदर ममालिक के दरमियान तिजारत सरमाकारी और सनती शबों में जारी तआवुन का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ारत तिजारत व सनअत के बयान के मुताबिक गुज़श्ता साल रियासत कतर और मुत्तहिद अरब इमारात के दरमियान बाहमी तिजारती तबादले का हजम 2024 के मुकाबले में 10% इजाफे के साथ तकरीबन 8.4 अरब अमरीकी डॉलर रहा। वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल आल सानी ने जमहूरिया शुमाली मकदूनिया के वज़ीर खारजा व खारजा तिजारत तेमचो मोत्सोंस्की से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमाकारी और सनअती शुबों में मुस्तकबल के तआवुन के मौक़े और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद आल सानी ने कतर में यूरोपी यूनियन के सफ़ीर क्रिस्टियान तोदोर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों फरीकों के दरमियान खुसूसन सिक्योरिटी के शोबे में तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने और मुस्तहकम बनाने के तरीक़ों पर बातचीत हुई, जबकि बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। कतर ने बरादर मुल्क ममलकत मराकश में अवामी नज़्म व नस्क और शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार की गई दहशतगर्दाना साजिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
وزارت خارجہ نے جاری اپنے بیان میں ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا کہ قطر ہر قسم کے تشدد

0: फोर्सेस ने अलकनेत्रा के देही इलाके में वाक़ गांव बरीका और कस्बा कुदना के दरमियान इलाकों को 3 तोपखाने के गोलों से निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचा था। मराकश के हुकाम ने ऐलान किया है कि मुल्क में इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दाना मंसूबों को नाकाम बना दिया गया है, जो तैयारी के आखिरी मराहिल में थे। वाज़ेह रहे, दहशतगर्दाना मंसूबों का मकसद अवामी नज़्म व नस्क को नुकसान पहुँचाना और शहरियों की जानों माल को ख़तरे में डालना था। मराकश के मरकज़ी दफ्तर बराए अदालती तहकीकात के बयान के मुताबिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त कार्रवाइयाँ की हैं, जिनके नतीजे में इन मंसूबों से मुबैना तौर पर ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। बयान में मज़ीद बताया गया है कि गिरफ़्तार अफराद में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पहले भी कैद रह चुका है। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर मुजाकरात और राबतों का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अपने अमरीकी हम मनसब से तहरीरी और ज़ुबानी दोनों ज़राए से मुसलसल रबते में हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वर्किंग लेवल पर भी बातचीत बाकायदगी से जारी है, जिसे रोज़ाना का रबता करार दिया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमरीका अलास्का सरबराही इजलास में पेश की गई अमरीकी तजावीज़ पर रूस की जानिब से दी गई आमादगी की बुनियाद पर अमली पेशरफ्त करे तो यूक्रेन तनाज़ों का जल्द हल मुमकिन है। सामीन, खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: अस्सलाम वालेकुम सामीन, वज़ारत तिजारत और सनत शेख फैसल बिन तानी बिन फैसल अल तानी और वज़ारत दौलत बराए तवानाई और कतर एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO साद बिन शरीदा अल काबी की मौजूदगी में वज़ारत तिजारत और सनत और कतर एनर्जी के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे का मकसद हाइड्रोकार्बन वसाइल में सरमायाकारी के मौकों को सरमायाकारी के मौकों के लिए एक गवर्नेंस मैकेनिज्म कायम करना है और मीसईद इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल सिटी में दरमियानी दर्जे की सनतों के लिए एक नया इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कतर एयरवेज ने फास्ट ट्रैक सर्विस का आगाज कर दिया है। ये एक बायोमेट्रिक निज़ाम पर मबनी नई सहूलत है, जिसका मकसद मुसाफिरों के डिपार्चर प्रोसेस को ज़्यादा आसान बनाना और रिवायती कागज़ी कार्रवाई को कम करना है। वाज़ेह रहे कि ये सर्विस टेक्नोलॉजी कंपनी सीता के तआवुन से मुतारिफ़ कराई गई है। जनरल टैक्स अथॉरिटी ने मीठे मशरूबात पर नई एक्साइज टैक्स निज़ाम के नफ्स का ऐलान कर दिया है। इस निज़ाम के तहत टैक्स की शरह मशरूबात में मौजूद चीनी या मिठास की मकदार के मुताबिक मरहलावार बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सामीन, कतर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के इख्तिताम पर 20.94 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तकरीबन 10,267 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 16,713 ट्रांजैक्शंस के जरिए कुल 110,506,872 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 293,030,293.811 कतरी रियाल रही। इसके नतीजे में 23 कंपनीज के शेयर में इजाफा हुआ, 24 कंपनीज के शेयर्स में कमी आई, जबकि 6 कंपनीज के शेयर्स अपनी पिछली क्लोजिंग प्राइस पर बरकरार रहे। ये थी अब तक की बिजनेस न्यूज, अब सुनते हैं स्पोर्ट्स न्यूज।
0: الوکرا اسپورٹس کلب نے اپنی پہلی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ چلی سے تعلق رکھنے والے خوسے سیرا کے ساتھ

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे हमाद अली अल हंजब के बारे में। हमाद अली अल हंजब कतर के उभरते हुए स्विमर्स में से एक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी काबिलियत का इजहार किया है। बचपन से ही उन्होंने पानी के खेलों में दिलचस्पी ली और बाद में स्विमिंग को अपना मुस्तकबिल बनाने का फैसला किया। हमाद की पहचान उनकी सख्त ट्रेनिंग, मजबूत इरादे और कॉन्फिडेंस है। वो मुख्तलिफ स्विमिंग इवेंट्स में कतर की नुमाइंदगी करते हुए कीमती तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। फिटनेस, बैलेंस, गजा और रोजाना प्रैक्टिस उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। हमाद का मानना है कि हर एथलीट को जिस्मानी तैयारी के साथ साथ जहनी मजबूती भी इम्पोर्टेंट है। दोहा की जदीद एक्वेटिक फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में मदद की है। उनकी कामयाबियां और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं कतरी स्विमर्स को काफ़ी मुतासिर किया है और वो मुल्क में स्विमिंग कल्चर को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले अरसे में उनसे मजीद बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से अफराद जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। अब नाश्ता दिन की सबसे अहम ग़िज़ा समझी जाती है। रात भर सोने के बाद हमारा जिस्म कई घंटों तक बगैर खुराक के रहता है। जैसे सुबह का नाश्ता जिस्म और दिमाग को दोबारा तवानाई फराहम करता है ताकि हम अपने दिन का आगाज भरपूर अंदाज में कर सकें। एक मतवाजन और सेहतमंद जो शख्स है उसे सेहत बख्श नाश्ता जो है वो ज़रूरी है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनियात जो हैं वो होते हैं, और ये ग़िज़ाई अज्जा हमारी जो दिमागी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने, याददाश्त को ज़्यादा करने और हमारी जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसे मरकूज कर रखने में मदद देते हैं। यही वजह है कि जो अफराद बाकायदगी से ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज़्यादा चुस्त रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रेकफास्ट छोड़ देने से थकन, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको बाद में शदीद भूख लगने की वजह से फिर हम गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने का जो इरादा वो कर लेते हैं और उसका रुझान भी ज़्यादा होता चला जाता है। जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें एग हैं, उसमें ब्राउन या फिर होल व्हीट ब्रेड है, इसके अलावा पोरिज है, ताज़ा फल हैं, दही के साथ आप नट्स हैं वो ले सकते हैं, इसी तरह लो फैट जो दूध है या सीरियल वो आप ले सकते हैं, ताज़ा जो फ्रूट्स हैं उनकी स्मूदी बनाकर लिए जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देर तक हमें फुलनेस का यानी पेट भरने का एहसास दिलाता है। बच्चों और नौजवानों के लिए नाश्ता ख़ास तौर पर बेहद अहम है क्योंकि इनके जिस्म और दिमाग नशोनुमा के मराहिल में होते हैं, और एक अच्छा नाश्ता उनको जो सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा करता है और इसी तरह कंसंट्रेशन में भी इजाफा करता है। और अगर आप सुबह मसरूफ़ होते हैं तो रात को ही अब नाश्ते की कुछ तैयारी कर लीजिए ताकि सेहतमंद इंतखाब आसान हो जाए। याद रखिए, नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं है बल्कि आपके हमारे जिस्म और दिमाग के लिए तवानाई का अहम जरिया है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया।
1: One Step to 2030.
2: और आज मैं बात कर रही हूं एक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की और ये है AI companions, your future personal assistant. सुना है आपने इसका नाम? देखिए आजकल हम AI को तो खूब अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। AI को हम एक डिजिटल टूल समझते हैं, जो कि ठीक भी है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कमांड्स फॉलो करता है। हम सीरी से सवाल पूछ लेते हैं, एलेक्सा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह देते हैं, चैट जीपीटी से हम आंसर्स ले लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर 2030 तक AI सिर्फ एक असिस्टेंट ना रहे बल्कि एक रियल कंपेनियन बन जाए, एक दोस्त जो आपको समझे, आपके साथ ग्रो करे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो कैसा लगेगा? सोच के थोड़ी सी उलझन होती है। लेकिन फ्यूचर का AI सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एंटिसिपेट भी करेगा। मतलब आप बोलने से पहले ही वो समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या। AI कंपेनियन, जी हाँ, AI कंपेनियन का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए AI कंपेनियन असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, आपकी आदतों को समझने के लिए, आपके रूटीन को ट्रैक करे, आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े।

0: FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ के उन छुपे हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगियों पे असर डाल रहे हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जीरो वेस्ट किचन, यानी ऐसा किचन जहां खाना बनाते वक्त वेस्ट को मिनिमम या बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जाए। अब किचन घर का दिल होता है भाई, लेकिन यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा फूड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और वाटर वेस्ट जनरेट होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स फूड वेस्ट होता है, और उसका ऑलमोस्ट 60% घरों से आता है, रेस्टोरेंट से नहीं। साथियों जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और वहाँ हाफ यूज्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह पड़ी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, लेफ्ट ओवर जो चावल होते हैं या एक्सपायर्ड सॉसेस अक्सर औकात में नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पुराना खाना वेस्ट हो जाता है और नया पैकेजिंग वेस्ट भी ऐड हो जाता है उसके अंदर। तो भाई, इको स्विच अप्रोच कहता है कि पहले एग्जिस्टिंग खाने को तो यूज कर लो भाई, जो पड़ा हुआ है बेचारा मिस्कीन फ्रिज में आपकी राह देख रहा है, फिर बेशक नया खाना खरीद लेना अगर भूख लगे तो। सिर्फ ये हैबिट अपनाने से आपके हाउस होल्ड फूड वेस्ट में तकरीबन 20-30% तक कमी हो सकती है। अच्छा, अब ना मैं आपको कुछ मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, किचन वेस्ट की हिडन रियलिटी बताती हूँ, ठीक है? देखें, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको किचन हैबिट्स पर रीथिंक करने पर मजबूर कर देंगे। पानी का ऑलमोस्ट 25% घरों में सिर्फ फूड प्रिपरेशन और डिश वॉशिंग में यूज हो जाता है। एक सिंपल बनाना पील को कंपोस्ट होने में 2-5 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर लैंडफिल में हो तो भाई और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, अगर दुनिया की फूड वेस्ट एक कंट्री होते ना, सारा फूड वेस्ट एक कंट्री में डाल दिया जाता और वो उसे कंट्री बना दिया जाता, एक कंट्री होता वो, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूएसए और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन होल्डर होता वो। इतना बड़ा स्पेस बन जाता है उसका। अब भाई आप पूछेंगे कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका हमारा नजरिया है जीरो वेस्ट माइंडसेट। देखें, इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल सा है। किचन को वेस्ट फ्री बनाना मुश्किल नहीं है, बस माइंडफुल बनना होता है। जब हम जीरो वेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि पैसा भी सेव कर रहे होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक एवरेज फैमिली अपने ईयरली ग्रोसरी बजट का 10% सिर्फ वेस्ट फूड की वजह से लूज कर देती है। अगर हम प्लानिंग और स्टोरेज बेटर करें ना अपना, तो ये लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। जरा सोचिए ना, आप सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस माइंडसेट में ज्यादा सब्जियां, फ्रूट और स्नैक्स ले आते हैं, जस्ट इन केस में, क्या आपको माइंडसेट होता है भाई क्या पता हम इस्तेमाल करेंगे। घर आकर 3 दिन तक सब यूज नहीं होता। 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आधे आइटम तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सब्जियां और फ्रूट हैं तो वो जल्दी गल सड़ जाते हैं। देखिए, मैं इको स्विच कहता है कि शॉपिंग लिस्ट के बगैर ग्रोसरी शॉपिंग एक वेस्ट जनरेटर मिशन बन सकता है। देखिए, प्लानिंग सिंपल सॉल्यूशन है, जो फ्रिज में है उसी के अराउंड मील्स अपने डिजाइन करें और जो चाहिए सिर्फ वो ही लेकर आए। अब मैं आपको चलते चलते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जीरो वेस्ट किचन बनाने के लिए। तो भाई पहली टिप ये है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करें, पुराना खाना पहले यूज करें और फिर बाद में दूसरा खाना। दूसरी टिप है, कंपोस्टिंग स्टार्ट करें ना किचन वेस्ट के लिए, जैसे फ्रूट पील और वेजिटेबल स्क्रैप्स, इनके ऊपर कंपोस्टिंग स्टार्ट करें। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक रैप की जगह रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें। चौथा, पोर्शन कंट्रोल करें ताकि ओवर कुक से वेस्ट ना हो कोई भी सामान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली रीयूज करें, जैसे लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस या वेजिटेबल सूप, ये भी बन सकता है। साथियों देखिए, जीरो वेस्ट किचन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुकिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें। जब हम खाने को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम उसे वेस्ट नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब फैमिलीज मील प्लान करती है ना, तो उनका फूड वेस्ट नियरली हाफ हो जाता है और कुकिंग

0: भी कम होता है। तो भाई हमारा कंक्लूजन ये है आखिर में कि भाई इकोसिस्टम का सिंपल मैसेज ये है कि किचन सिर्फ कुकिंग स्पेस नहीं होता बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट का सेंटर होता है। हर छोटी आदत जैसे लेफ्ट ओवर्स यूज करना, वेस्ट सेग्रीगेट करना और कंपोस्ट बनाना, ये सब कुछ मिलकर एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो भाई अगली बार जब आप किचन में एंटर करें ना, तो एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, आज मैं कितना वेस्ट अवॉइड कर सकता हूँ। तो साथियों इसी के साथ मैं हूँ सफा इको स्विच में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहाँ हर मील सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल डिसीजन होता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है खाना शेयर करने की अहमियत पर। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। खाना शेयर करना सिर्फ एक सोशल हैबिट नहीं बल्कि एक इबादत है जो रहमत और बरकत का सबब बनती है। जब हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं तो ना सिर्फ किसी की ज़रूरत पूरी होती है बल्कि दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये छोटा सा अमल लोगों को करीब लाता है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोच पैदा करता है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी चीज़ों तक महदूद रहते हैं लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। आज का अमल ये है कि अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे वो घर का फर्द हो या फिर कोई ज़रूरतमंद। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम,
2: सुन रहे हैं
1: अरे भाई ये क्या हुआ,
2: आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: चलो भाई ये हो ही गया है तो पहले ही कबीर भाई ने आकर मुझे टाइम बताने का मौका ना दिया। कबीर भाई रुको जरा सबर करो, क्या हो गया। अच्छा भाई मैं टाइम बता देती हूँ, इस वक्त जो है FM 107 पे टाइम हो रहा है 11:02 और आप सुन रहे हैं, जैसा कि आपने सुना आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107। तो भाई हमारा पीछे का साउंड का इस साउंड वाले कहाँ चले गए भाई। हाँ अभी आए हैं, इनकी 500 रियल की पेमेंट तो काटो, जरा लेट आते हैं ये साथियों। आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि सफा की जानिब से खुशामदीद इस शो में जिसका नाम है सन एंड साउंड, और मेरा और आपका साथ रहता है 11:00 से लेकर 1:00 तक का। 2:00 बोलने वाली थी मैं लेकिन फिर मुझे ख्याल आया अरे 1:00 तक का टाइम है। तो भाई आप लोगों के साथ बातें करते करते वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता ना, तो 1:00 2:00 क्या ही कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन वैसे तो ऑफिशियल टाइम 11:00 से लेकर 1:00 तक का ही है। मतलब ये कि कुछ लेट मॉर्निंग और कुछ अर्ली आफ्टरनून का टाइम। खैर जो भी है टेक्निकल बातें बाद में करेंगे, फिलहाल तो आपको खुशामदीद कहते हैं साथियों। ये बताओ कि किस किस को मेरी तरह आज क्या है, आज ट्यूसडे है, टी फॉर ट्यूसडे, तो मुझे टी फॉर थर्सडे क्यों लग रहा है आज। शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा रोने का दिल कर रहा है। पता है रोने का दिल क्यों कर रहा है, क्योंकि कल का जो मैच था ना, जो वर्ल्ड कप का मैच था ना कल का, देखिए बस मैं कुछ ना कह पाऊंगी, आज मैं बहुत उदास हूं। वैसे खुशी मेरी आवाज में झलक रही होगी वो तो मैं खुश रहती हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास है क्योंकि कल का जो मैच था ना वो बस मुझे उदास कर गया है। किस किस ने देखा था मैच, आखिरी मैच था CR7 का, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि CR7 ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी मैच था।

साथियों, दुख बांटेंगे दुख बांटेंगे, सिया सेवन वाला दुख भी आगे चलकर बांटेंगे। फिलहाल तो आपको याद दिलाती चलूं कि आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए नंबर है 443-443-77। फॉर कॉलिंग द नंबर इज 443-443-77। और आप अगर चाहें तो हमें मैसेजेस में भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं अटेंडेंस तो लगवा लो भाई। देखो, आज मैं फुल मूड में हूँ कि मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगी। कुछ लोगों को मुझसे शिकायत होती है कि जब आप आती हैं तो आप मैसेजेस वालों को साइड पे कर देती हैं, आप सिर्फ कॉल वालों को ध्यान देती हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैसेजेस वालों को भी साथ साथ हैंड इन हैंड लेकर चलेंगे। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर। मैसेज के लिए नंबर है 666-22107। और मैसेज करके ये बताओ भाई कि कौन कौन सुन रहा है, अटेंडेंस लगवा लो जरा। जो साइलेंट लिसनर्स है ना, उनको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस हेलो हाय, बस एक इमोजी भेज दो हेलो हाय का, काफी है। कुछ नहीं, बहुत आपकी तरफ से बहुत है भाई, मुझे बहुत है। और अगर किसी का दिल करे मेरे साथ थोड़ा सा आंसू बहाने का, दो आंसू खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे, दो आंसू बहाने वाले। कल का मैच किस किसने देखा था, देखा था कि नहीं देखा था? मानती हूँ टाइम डिफरेंस था, लेकिन जो फुटबॉल के शायकीन हैं उन्होंने तो टाइमिंग का भी लिहाज ना किया होगा मेरी तरह। पोर्चुगल वर्सेस स्पेन का मैच था। देखिए, स्पेन मुझे बहुत पसंद है टीम, ठीक है, स्पेन की टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पोर्चुगल भी कोई हल्की टीम नहीं है। पोर्चुगल और स्पेन के बारे में अगर बात की जाए ना, तो ये आप के लिए इन्हें आइबेरियन डर्बी कहते हैं। आइबेरियन डर्बी पता है किसे कहते हैं? यानी दो ऐसे पड़ोसी जो एक दूसरे के घर चाय पीने भी जाएं तो शायद पहले फुटबॉल पर बहस शुरू कर दें। भाई, इनकी दोनों की साइडों पर मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये खाना कम खाते हैं और फुटबॉल ज्यादा, मतलब फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, फुटबॉल खाते नहीं है। कैसी बातें करते हो? तो भाई, फुटबॉल खेलते ज्यादा हैं, खाना कम खाते हैं। देखिए, एक तरफ थी पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन और दूसरी तरफ स्पेन की यंग एनर्जी थी, लेकिन आखिर में फुटबॉल ने फिर सबको याद दिला दिया ना कि कभी कभी ये जो 90 मिनट होते हैं ना, ये पूरी गेम का पासा पलट के रख देते हैं कुछ सेकंड्स में। तो कल यही हुआ, कल एग्जैक्टली यही हुआ। कल के मैच का मैं आपको बता दूं कि देखिए, दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन CR7 नहीं भाई, मुझसे बर्दाश्त हुआ, मुझसे नहीं हुआ। स्पेन जो है वो एक गोल के साथ जीत गई, मैच का हीरो बना स्पेन, और स्पेन के हीरो बने मिडफील्डर माइकल, और हमारे जो इन्होंने लेट गोल किया, लेकिन चलो बच्चे रो रहे थे गोल के लिए, तो पोर्चुगल ने चांस दे ही दिया। चलो अच्छा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, मैच इतना मजे का था, स्पेन ने शुरू से ही ना अपनी डोमिनेंस रखी फील्ड के ऊपर। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, स्पेन ने अपना प्रेशर जो है वो बरकरार रखा। पहले हाफ में तो बिल्कुल चेस गेम की तरह चल रहे थे ना, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई डिफेंस कर रहा है, कौन पोजीशन रख रहा है। स्पेन ने शुरू से अपना पोजीशन रखा था, और पोर्चुगल का एज यूजुअल डिफेंस बहुत अच्छा था, मजबूत था। ये वो मैच था जहां प्लेयर्स से ज्यादा फैंस की, मेरे जैसे फैंस की ना, जिनकी दोनों टीमों में जान अटकी हुई थी, हम भाई एज पर आकर बैठे हुए थे सोफे के। तो भाई, स्पेन ने सेकेंड हाफ में अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर क्या ही हुआ, जब प्रेशर बढ़ाया तो पोर्चुगल ने कहा अच्छा ठीक है, बस पोर्चुगल ने कहा टाटा बाय बाय। साथियों, इस मैच का सबसे इमोशनल हिस्सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफर रहा है। 41 ईयर्स की उम्र में रोनाल्डो ने अपना, आप कह लें कि चौथा वर्ल्ड कप खेला भाई। ये उनके लिए वर्ल्ड कप का कहा जा रहा है कि, माना जाता है कि आखिरी सफ़र है, और किसी भी प्लेयर के लिए चार दफ़ा वर्ल्ड कप खेलना इट्स नॉट अ, आप कह लें कि कोई हल्की बात नहीं है पार्टी। रोनाल्डो का नाम फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा, आई ट्रूली बिलीव दैट। गोल्स, रिकॉर्ड्स, और वो आप कह लें वो जो फेमस सेलिब्रेशन है ना, स्यूगी भाई, वो बंदा ना अपने साथ लेगेसी रखता है वो इस चीज की। मैच अच्छा था, जिस जिसने मिस किया एकदम जाके हाईलाइट जरूर देख लेना, मैच अच्छा था भाई। मैच आप कहते हैं ना टक्कर का मैच, वो कहते हैं ना कि आपने अगर दुश्मनी लेनी हो तो अपनी टक्कर वाले से लो, अपने साइज वाले से लो, तो वो बिल्कुल वही वाला सीन था, बिल्कुल वही वाला, मतलब मजे का। अच्छा,

0: कुछ मजे की आपको बातें बता दूं कि स्पेन की फुटबॉल आइडेंटिटी ना पोजेशन फुटबॉल से जानी जाती है कि उनका उनका पोजेशन रहता है हमेशा, और इस गेम में भी उन्होंने यही दिखाया, यानी बॉल को अपने पास रखना और ओपोनेंट को चेस करवाना, और इस मैच में इन्होंने बिल्कुल वही किया था। स्पेन के प्लेयर्स के लिए बॉल कुछ ऐसा होता है जैसे बचपन का कोई फेवरेट टॉय नहीं होता जिसको बच्चा कहता है कि नहीं भाई ये मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, ना ना ना ना। तो इस मैच में भी उन्होंने यही किया, उस बचपन के फेवरेट टॉय को उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, और उसकी भरपाई की रोनाल्डो की टीम ने। रोनाल्डो ने अपने करियर में मल्टीपल वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस के साथ फुटबॉल की हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर दिया, लेकिन ये जो पिछला मैच है ना कल वाला, ये हार गए। चलिए भाई, इस दुख से बाहर आते हुए आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग जो हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-2210-7 पर, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। भाई कौन कौन मैसेजेस में शामिल हो गया, अस्सलाम वालेकुम सफा, कल रात मैंने देखा है मैच CR7 का, बहुत दुख हुआ, इस दुख में एक बार गम वाला सॉन्ग प्ले करवा दें। भाई मतलब देखिए, मैं ना ये नहीं चाह रही कि मेरे साथ बाकी सब भी दुखी हों, पर्सनैलिटी के ऊपर सूट नहीं करता ना। अब सफा लगाए सैड सॉन्ग, सोचो क्या होगा वो, मैं लगा दूं कौन सा, ये कह रहे हैं आवारापन मूवी का शॉर्ट सैड सॉन्ग लगा दूं, अच्छा क्या है साद नूर भाई, मतलब आप खुद सोचें पर्सनालिटी के ऊपर सूट करेगा, मेरी पर्सनालिटी के ऊपर जचेगा कि मैं सॉन्ग जो ना सैड वाले लगा रही हूँ। चले कोई बात नहीं साद नूर भाई, मैं कोशिश करती हूँ। चले भाई, और कौन है हमारे साथ, कौन है मैम, बस मत रुलाओ, और नींद तो कल रात नींद नहीं आई है ना, मेरे साथ भी यही हिसाब था। और ये कौन है, इन्होंने इनका नाम पता नहीं किया है। अरे भाई नाम लिखने में इतना दुख हो रहा है कि नाम नहीं लिखा, भाईजान नाम तो बता दें, इनका क्या लिखा, एम के नाम लिखा है, बस इतना दुख। देखिए बंदा अपना नाम भूल जाए, इतना दुख हो रहा है हमें CR7 का, हम अपना नाम भूल गए। अच्छा भाई और कौन है, अच्छा और कौन है हमारे साथ, कह रहे हैं क्या है, सुहेल एहसान, रोज़ आपका शो सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है, थैंक यू। और लेकिन अच्छा ठीक है, ड्राइवर हैं उनकी ड्यूटी है, कॉल नहीं कर पाता, ठीक है, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोटी बरकरार रखे। आप सुन लेते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है, मैसेज कर दिया करें, कोई मसला नहीं, बस खुश रहें आप, बहुत अच्छा शो करती हो। अच्छा भाई थैंक यू भाई, देखिए इनको हमने कोई एडवांस पेमेंट नहीं दी थी, कोई तारीफ, बस क्या करें, कभी गुरूर नहीं किया। तो और कौन है मैसेज पर, CR7 का ये कौन है, अर्जेंटीना फैन स्माइलिंग, देखें अर्जेंटीना वालों मैं बता दूं, अभी हेलेन से मुकाबला आपका बाकी है, आप रुक जाएं, हम जो है ना वो क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा वर्ड को, हाँ हमारा बदला नॉर्वे की टीम लेगी आपसे, रुक जाए हम जरा। कौन है अज्जू भाई कह रहे हैं, अच्छा अर्जेंटीना, अज्जू भाई रुक जाओ जरा, नंबर टेन ऑलवेज, अच्छा ठीक है रुक जाओ, अभी नॉर्वे से मुकाबला होगा फिर पूछेंगे, नॉर्वे भी फेवरेट है मेरी आजकल। अच्छा कौन है हमारे साथ, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, मुनव्वर भाई ने मैसेज किया है, मुनव्वर भाई कैसे हैं, मैसेज करके ये बताएं कि कल का मैच देखा था कि नहीं देखा था। तौफीक भाई अस्सलाम वालेकुम वाकरा से, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। यूसुफ खान भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग तुहानू भी जी। सफा जी कैसी हैं आप, मैं देखें आज मैं दुखी हूँ, आज मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सफ़ा कैसी हो, देखो जब तक नेक्स्ट मैच नहीं आता ना, नॉर्वे का मैच नहीं आता, अब तो पोर्चुगल तो गया, लेकिन जब तक नॉर्वे का मैच नहीं आता ना नेक्स्ट, कोई मुझसे ये ना पूछे कैसी हो, मेरी दुखती रख पे हाथ नहीं रखें, देखिए ये बहुत गलत बात हो जाएगी। अच्छा चलिए, वेलकम टू सर एंड साउंड, दिल से देसी, यूसुफ खान भाई हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग, आपको भी हैप्पी वाली ट्यूसडे मॉर्निंग। और भाई मैसेजेस अभी आ रहे हैं, मैसेजेस और गोइंग टू हैपनिंग फन, ठीक है, अच्छा गोइंग टू हैपनिंग, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूल जाएं, ये जो अज्जू भाई है ना, पुरानी बात 2022 की याद दिला रहे हैं, जब हमारा CR7 रोया था। देखिए CR7 इसलिए नहीं रोया था कि वो हार गया था, CR7 इसलिए रोया था कि जज्बात थे, बस छोड़ दें इस बात को ना करें बात। अच्छा भाई शो की शुरुआत करते हैं साथियों, शो की शुरुआत कुछ इंटरेस्टिंग बातों से करते हैं, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक दिलचस्प फन ट्रिविया लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज का। तो भाई आज का फन ट्रिविया ये है कि तरबूज है ना, तरबूज वाटरमेलन, आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि तरबूज जो है वो सब्जी है या फल है? कौन बता सकता है मुझे, तरबूज सब्जी है कि फल है? वो गोभी नया फूलो, आ जाओ जरा लाइन में खुशबू लगा के इसके ऊपर बात करते हैं कि तरबूज जो है वो गोभी, ओ गोभी नहीं सॉरी, तरबूज जो है वो फल है कि सब्जी है, मतलब ये कि वेजिटेबल है कि फ्रूट है? भाई आपने अभी मुझे थोड़ी देर में बताना है कि ये जो हमारा इसकी दास्तान मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे क्यों पूछ रही हूं। थोड़ी देर के लिए आपसे सिर्फ ये तसव्वुर करने को कह रही हूं कि मुझे बताएं आपकी सोच में आपको क्या लगता है कि ये जो वाटरमेलन है ये सब्जी है या फल है, ये आखिर है क्या? तो भाई 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और आप मुझे बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, आपको क्या लगता है कि सफा ने जो सवाल किया है। 4434377 इज द नंबर टू कॉल, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, अजू भाई है ना? यस अजू भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये आप ही थे जो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं?
1: ऑफ कोर्स,
0: यू नो आई वाज विशिंग कि काश ऐसा होता कि एक दफा फिर हमें इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना देखने को मिलता। आई वाज विशिंग फॉर इट।
1: द बेस्ट मैच इज पोर्चुगल वर्सेस ब्राजील।
0: पोर्चुगल वर्सेस फॉर
1: Argentina versus Brazil. It is if it is happen Argentina versus Brazil, it will be a very good match.
0: Let's see. अब तो problem ये है कि अब तो जो भी मैच आएंगे ना वो सारे ही अच्छे होंगे। अब तो जो मैच आएंगे because
1: सारे अच्छा मैच है लेकिन अर्जेंटीना जीतेगा।
0: अर्जेंटीना आने दें अर्जेंटीना को आगे, हम नेदरलैंड को साइड से भेज रहे हैं, दूसरी साइड से नेदरलैंड भी आ रहा है। नॉर्वे तो भाई आने दे अभी हेलेंड को भी मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा मैच हो जो नॉर्वे वर्सेस अर्जेंटीना हो जाए, चाह रही हूँ मैं। आई होप सो, आई सी दिस डे व्हेन आई सी Norway and Argentina.
1: However, Messi will score 5 and Norway will lose the match and that will end up in the final.
0: देखेंगे, जो भी देखेंगे, let's see. देखेंगे. The thing is, I'm a very open-minded person in this, and I say match अच्छा होना चाहिए.
1: You know the last match Argentina versus I forgot the country. This I show PD and some other Argentina fans become crazy about that match.
0: It was Cabo. It's an island.
1: Yeah, Cabo. Yeah.
0: Nobody has even heard the name of that island.
1: Yeah.
0: But it was a good
1: every
0: match.
1: Goal, I show PD was enjoying.
0: It was a good match. It was not about. Losing or winning, it was a. मैंने देखा था वो match.
1: Really appreciate that team because hard work.
0: Yes, क्योंकि Argentina कोई हल्की team नहीं है. We all know that.
1: Against Argentina, definitely hands off hard work.
0: Yes, और Argentina को ना उन्होंने बहुत hard time दिया था. Argentina के against दो goal कर लेना भी. Argentina is a good team and everybody knows that. So
1: yeah, everybody knows that Argentina will win the final.
0: नहीं final रहने दे, एक दफा win कर लिया ना, बस हमने दे दिया एक दफा आपको, बस छोड़ दें हम छोड़ दें अब किसी और को win करने दें।
1: No, pure Argentina fan.
0: चले भाई, die hard fan of Argentina. अब मेरा बेचारा Portugal तो पीछे रह गया, but I still have hopes with Norway. I still have hopes.
1: Yeah, I watched the match yesterday. CR7 is not playing well.
0: I think बस उसका era जो है ना वो बस, that's why he's taking retirement. I believe he would be taking retirement. जो मैंने जितना देखा था media में coverage वगैरह, I'm not sure he hasn't announced it yet, but he said that might be.
1: Exactly.
0: So, but he had his time. मतलब you are saying you are Argentina's die hard fan. For me also, I'm diehard fan of Portugal. So no matter what, diehard fan.

आपको ठंडा ठंडा तरबूज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. और गर्मियों में अच्छा भी इसलिए लगता है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ वाटर. अब वाटरमेलन की एक सच्चाई ये है कि अगर आप यूँ सोचें कि अगर आप जो है वो तकरीबन एक केजी तरबूज खरीद रहे हैं तो उसके अंदर से 80% जो होता है ना वो पानी होता है. नहीं सॉरी 80 नहीं सॉरी सॉरी 92% जो है वो पानी होता है, बाकी का जो हिस्सा रह जाता है वो फाइबर होता है. तो मतलब हम लोग जो पेमेंट करते हैं ना वो पानी की करते हैं. तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. भाई देखें, ये जो हमारा वाटरमेलन ना, दिल चाहा वाटरमेलन, ये जो है वो सब्जी की फैमिली से एक्चुअली में बिलोंग करता है. ये बहुत करीबी रिश्तेदार है, यूँ समझें भाई है. किस खानदान से? ये हमारे जो आप कह लें कि पम्पकिन होता है ना, पम्पकिन, क्यूकम्बर, हाँ जी, टींडे, कद्दू, ये इसके भी रिश्तेदार हैं. यूं समझ लें कि ये इसका बड़ा भाई है. सोचेंगे भाई ये क्या मजाक है कि इतनी मीठी सी चीज जो है वो कैसे हो सकती है, मतलब ऐसे कैसे. इस मजेदार फैमिली ट्री की साइंस मैं आपको समझाती हूँ. मसला पता क्या है, तरबूज असल में जो है वो आप कह लें कि क्यूकम्बर्स की फैमिली जो होती है ना उसके अंदर से बिलोंग करता है, जिसके अंदर टींडा भी आ जाता है, जिसके अंदर कद्दू भी आ जाता है, मतलब पम्पकिन आ जाते हैं. यानी टेक्निकली तरबूज फलों का राजा नहीं बल्कि खीरे का और कद्दू का बड़ा भाई है. अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो ये ऐसा ही है भाई. तो साथियों, अगली बार जब आप धूप से आकर तरबूज खा रहे हो ना तो ये मत सोचिएगा कि आप कोई फल खा रहे हैं. अपने दिमाग को बोलें मैं बहुत शौक से एक रसीला लाल रंग का कद्दू खा रहा हूं. क्यों, साइंस की दुनिया में ये वेजिटेबल में बिलोंग करता है. चले भाई, अब आप सुनते रहे FM 107 और आपको ये बता दूं कि आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड. मैं हूं सफा आपके साथ. इस वक्त घड़ी बज रहे हैं 11:26 और मैं आप लोगों की कॉल्स की तरफ भी चलूंगी और मैसेजेस की तरफ भी चलूंगी. और साथियों, जाने से पहले अपना आज का मुद्दा आपके साथ शेयर करती जाती हूं. देखें, आज का मुद्दा हमारा ये है कि एक डिलीमा तैयार करते हैं, ठीक है, मजेदार डिलीमा. देखें, सोचिए जरा, अगर जिंदगी के रिमोट कंट्रोल पर एक ही बटन हो. टीवी के रिमोट कंट्रोल तो बहुत सारे होते हैं, आपकी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल पर आपका हाथ है और उसमें एक ही बटन है, ओनली वन बटन. रिमोट कंट्रोल पर सिर्फ एक बटन मिल सकता है आपको, तो आप कौन सा बटन चूज करेंगे? रिवाइंड बटन, मतलब ये कि जब चाहे जिंदगी को पीछे ले जाए, कोई गलत मैसेज भेज दिया हो किसी को, ठक करके उसको डिलीट कर दो, रिवाइंड करो, बॉस के सामने उल्टा जवाब दे दिया उसको रिवाइंड कर दो, चाय का कप गिर गया भाई उसको रिवाइंड कर दो, बस एक प्रॉब्लम है छोटी सी उसको रिवाइंड कर दो, वो एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई भी दोबारा से ना आए उसको रिवाइंड कर दो, ठीक है, ये हो सकता है. या एक बटन आपको मिलेगा जो कि होगा पॉज का. जब लाइफ बहुत फास्ट भाग रही होती है भाई, पता ही नहीं चल रहा होता. एक टाइम ऐसा आता है ना लाइफ में जो आप कहते हो कि भाई मुझे मतलब दिन कहाँ गया, थोड़ी देर सुकून, थोड़ी देर सोच, और शायद वो जो हमारा संडे मॉर्निंग्स होती है ना उनको हमेशा के लिए पॉज कर दें. तो बताएं, आप अपनी जिंदगी में रिवाइंड बटन रखना पसंद करेंगे या पॉज बटन? और सबसे पहले उस बटन को किस सिचुएशन में यूज करेंगे मुझे आज ये भी बताएं. जो बटन आप रख रहे हैं ना, अगर पॉज का रख रहे हैं या आप बटन रख रहे हैं रिवाइंड का, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसके अंदर आप उसे यूज करना चाहेंगे? जरा सोचें, सोच समझ के मुझे कॉल करें 4434377 पर. और चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं. भाई ये जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना हमारे, ये छुप छुप के सुन रहे होते हैं, इनका दिल तो करता है बात करने को लेकिन जरा शर्मा जाते हैं. तो कोई बात नहीं, मैसेज कर दो 6662107 पर. मैसेज करके बताएं पॉज का बटन या रिवाइंड का बटन और किस सिचुएशन में यूज करोगे? बताओ बताओ, बोलो बोलो, चल चल. फिलहाल के लिए तो भाई एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं और वापस आने के बाद आपसे मुलाकात होगी उस पार सवाल के जवाब के साथ.

0: देखें वो रावी ना होवे की बात ये है कि वर्ल्ड कप हाथ नहीं आ रहा, बस क्या करें क्या करें।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: लेकिन देखें दुख करने वाली बात थोड़ी सी है, तीन चार दिन दुख रहेगा फिर उसके बाद अपना आ रहा है हमारा ये अपना नॉर्वे है ना वो आ जाएगा। हेलेन ने ऐसी अपनी कोई जगह बना ली है कि मुझे ऐसा लगता था कि CR7 के बाद ना मैं सोचती थी CR7 अगर फुटबॉल में नहीं रहा तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन। लेकिन फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मार्क कर जाते हैं अपने आप को, भाई इमोशनली आपकी उनके साथ बड़ी अटैचमेंट हो जाती है और एज अ गेमर भी एज अ स्पोर्ट्समैन भी उनके उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो आपके दिल में उतर जाती है। तो खैर आज का मुद्दा ये नहीं है, लेकिन साथ साथ हम मुद्दा भी चला ही रहे हैं। मुद्दा ये आज का कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, उसके अंदर एक ही बटन है, पॉज का बटन चूज करेंगे कि रिवाइंड का, और किस सिचुएशन में ये भी तो बताओ ना भाई। चलिए भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक, अब ठाक जो है ना वो ठा ठा करके कल से मेरा चल रहा है।
2: बस
0: दुनिया देखिए ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, ऐसी कौन सी कोई।
2: देखो 2005 में पहला जो मैच था उसका अर्जेंटीना का,
0: हाँ जी
2: पहले सीधे में बैठा था देख रहा था, सऊदी से जब हार गया था
0: सही,
2: तो फिर मैंने अर्जेंटीना का शर्ट भी लगाया था, तो मेरे साथ साथ में सऊदी वाले बैठे थे
0: सही।
2: वो मुझे बोल रहे थे वेयर इज मिसी।
0: बस देखें इस दफा ना हमने फेम थोड़ा सा, हमने कहा स्पॉटलाइट मेसी की तरफ कर देते हैं, क्या बच्चा रोएगा नहीं तो बाद में, है कि नहीं।
2: बचपन से मैं अर्जेंटीना को पसंद करता हूँ जो वर्ल्ड कप आता है
0: सही।
2: हाँ तो गेम हार जीत होती है उस टाइम हमको भी दुख मिला, लेकिन बाद में देखो अर्जेंटीना ने फिर फाइनल जीत लिया।
0: मैंने सोचा था ये भी कोई CR7 के फैन होंगे, लेकिन चले आपका नाम क्या था, नाम क्या बताया आपने। मुदस्सर भाई आप मेरा दुख बांटने आए हैं या मुझे और दुखी करने आए हैं।
2: करने आए ना, तो नाम तो का है ना।
0: अच्छा मुदस्सर भाई हमारे पास ना टाइम बड़ा शॉर्ट है, अजान से पहले का टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो थोड़ा सा एक काम करती हूँ साथ साथ आपसे बात कर लेती हूँ कि जरा मुझे बताएं जिंदगी के रिमोट कंट्रोल में आपको एक ही बटन दिया जा रहा है, कौन सा चूज करेंगे, रिवाइंड का या पॉज का, और किस सिचुएशन में। आप भी मेरी तरह रिवाइंड नहीं चाहिए, मैं भी कहती हूँ रिवाइंड नहीं चाहिए। अच्छा तो पॉज का बटन चूज करेंगे, जिंदगी को एंजॉय करना पसंद करेंगे। सही। चले हाँ जो हो गया भाई वो देखिए, अगर वो जो हो गया ना वो अगर नहीं होता ना तो आज हम एक बेहतर इंसान नहीं होते, आज हम उससे बेहतर नहीं थे जो हम पहले थे।
2: जी जी बिल्कुल सही है, जो तो हो गया वो तो बस छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे होता है उस पे फोकस करना चाहिए।
0: बिल्कुल ये बात तो मैं भी मानती हूँ भाई, हम मैं वो इंसान नहीं होती जो मैं आज हूँ अगर ये मामला ना होता कि भाई हमें सीख ना मिलती जिंदगी की। चलें फिर मुदस्सर भाई
2: अपना कल भी अजान के टाइम में फोन किया था
0: आज भी आपका क्या कोलैब चल रहा है क्या इस टाइम पर,
2: पता नहीं है बस इस टाइम में फोन लगता है, ये तो हमारा किस्मत है हमारे साथ बात होती है, मिर्जा साहब के साथ हमारा फोन नहीं लग रहा था।
0: एक काम करना थोड़ा अजान के बाद कॉल कर लिया, थोड़ा अजान के

0: बाद या थोड़ा सा पहले, 10 मिनट पहले।
1: चलो
0: ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखे। और भाई नॉर्वे के साथ जब मैच होगा ना तो उसकी डर लें, ठीक है?
1: आपको तो मुबारक हो ना।
0: चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भी अर्जेंटीना और नॉर्वे का मैच होगा तो फिर देखे।
1: अर्जेंटीना जीते हमें पार्टी देगा, नॉर्वे जीते फिर आप पार्टी देंगे।
0: चले जी ठीक है भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखे, हाफिज। तो साथियों अभी से तकरीबन कुछ सेकंड बाद जो है वो अजान आ रहा है, तो अजान की तरफ चलेंगे, ठीक है? और फिर अजान के बाद वापस आकर हमारा मुद्दा आज का यही रहेगा कि भाई ये बताओ कि जिंदगी में रिमोट पर एक ही बटन हो तो पॉज चूज करोगे या रिवाइंड। फिलहाल तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अजान की तरफ चलते हैं।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: मैं रास्ते में हूँ, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हालांकि वो अभी घर से निकला ही नहीं और उसके 10-15 मिनट एक घंटे के बराबर हो जाते हैं। मुशाहिदे में आया है कि अक्सर लोग झूठ बोलने की आदी और यही वजह है कि मुआशरे में तमाम बुराइयां मौजूद हैं। याद रखिए, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और ये गुनाह कबीरा भी है, इससे बचने की कोशिश कीजिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से का फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग वक्त सतर्क रहे और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
4: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
6: द रिक्वेस्ट शो
5: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
6: फजील के साथ
5: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
6: दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

भाई जालिमा में इसलिए कहलाई क्योंकि मैंने कहा CR7 इन द वर्ल्ड ऑफ मेसी बी CR7 फैन भाई आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा और इस वक्त हमारी FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं 11:52 ऑन द क्लॉक और भाई हमारा जो शो का इस वक्त मुद्दा चल रहा है वो ये है कि साथियों अगर जिंदगी में आपको एक बटन मिले रिमोट के अंदर जिंदगी का रिमोट है उसके अंदर एक ही बटन है नहीं वो टीवी का रिमोट नहीं है जिसके अंदर 1, 2, 3 एंटर वॉल्यूम कुछ नहीं सिर्फ एक ही बटन है और उस वॉल्यूम नहीं और उस टीवी के रिमोट के बटन की बात नहीं कर रही उस ज़िंदगी के रिमोट के बटन का जो सिलसिला है वो कुछ ऐसा है कि आपको सिर्फ एक ही बटन मिलेगा अब आपको उसके अंदर से चूज़ करना है कि आपको वो बटन किस चीज़ का चाहिए पॉज का चाहिए या रिवाइंड का चाहिए देखें सोच समझ के चूज़ कीजिएगा क्योंकि आपने मुझे वो सिचुएशन भी बतानी है कि जिसके अंदर आप वो बटन चूज़ कर सकते हैं ठीक है तो भाई मैसेजेस की तरफ अगर आया जाए तो मुझे मैसेज आया हुआ है किसका अब्दुलरहमान भाई साहब का मैसेज आया हुआ है क्या कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सफा मैडम देखें इन्होंने भी मेरी खिल्ली उड़ाई है CR7 के ऊपर तो चलें कोई बात नहीं मैं कहती हूँ ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो ये कह रहे हैं कि आप पठान हैं सच बोलना झूठ नहीं बोलना लाला मैं पठान नहीं हूँ लाला मैं जो हूँ ना वो कट्टर सिंध की हूँ मैं कराची की हूँ लाला मैं पठान नहीं हूँ तो भाई गोविंद यहाँ पुल्लो देखो यहाँ पर बात ये हम फुटबॉल की बात करते करते ये हम लोग जियोग्राफी कब से पढ़ने लग गए अब इन्होंने मुझे कुछ और मैसेज भी भेजा है जो कि मेरी पढ़ने की समझ

0: मैं अपनी चलाऊंगा, मैं अपने दिल का बादशाह हूं, ऐसा नहीं हो रहा. देखिए मैंने आपको दो चॉइसेस दी हैं, या पॉज का या रिवाइंड का. फॉरवर्ड अभी तक मार्केट में आया नहीं है, अभी आपका मतलूबा नंबर फिलहाल आया ही नहीं है मार्केट में, तो वही फॉरवर्ड का नहीं क्या कह रहे हैं, क्योंकि नहीं. अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे मैसेज आपको वापस से मुझे रिकंसिडर करके भेजने पड़ेंगे. उन्होंने एक लंबी चौड़ी दास्तान लिखी है कि ये क्या करेंगे, सुकून चाहते हैं अम्मी अब्बा और फैमिली के साथ. सही है, तो रिवाइंड का बटन दबाएंगे कि पॉज का, रिवाइंड का बटन रखना चाहेंगे कि पॉज का. और क्या कह रहे हैं, सी आर सबसे आगे है, अभी बहुत बैड लक के टीम आगे नहीं जा पाती. लक लक की बात है, मेहनत तो की बच्चे ने बहुत. ठीक है भाई, ठीक है, ओके. और कौन है हमारे साथ मैसेज में, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू माय बचपन. हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू रिवर्स टू माय बचपन. जुनैद फ्रॉम पाकिस्तान. जुनैद भाई, ये जो बचपन का किस्सा है ना, ये हम सबका है. हम सबका दिल करता है कि रिवर्स बटन दबाएं और बचपन में चले जाएं. ये आपकी बात मेरे दिल पे लग गई, लेकिन हम सब में ना मैं एग्जिट ले लेती हूँ. चलिए देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. 4434377 इज द नंबर टू कॉल, एंड 6622107 इज द नंबर टू मैसेज. अस्सलाम वालेकुम, कॉल है, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, जमाल बात कर रहा हूँ.
0: जमाल भाई, आपसे जो है ना, मुझे वो आपके नाम से एक तो नहीं, मेरे कज़न का नाम है जमील, उनसे भी राइम करता है आपका नाम, और मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो कौन सा था, जमल जमालो जमल जमल गमी.
1: वो तो नए जमाने का है ना, लुड्डी है जमालो डाले आप कराची.
0: अच्छा हाँ, क्या याद दिलाया. अरे क्या याद दिलाया, वाकई में ये हमने बहुत सुना है, और खासतौर पर शादियों में तो बहुत ही ज्यादा है ये. ये आपने अच्छा याद दिलाया. अच्छा, कैसी कैसी चीजें होती है ना लाइफ में, जो जमाल भाई याद आ जाती है.
1: ऐसा ही है, आपने आपने सवाल कैसा कर दिया ना, आपने भी तो लोगों के इमोशन
0: तार तार छेड़ दिए हैं. मैंने
1: खिलवाड़ कर दिया, खिलवाड़ कर दिया.
0: चले आप बताएं, आप बताएं, आप अपने पर्सनल लेवल पे बताएं कि अगर आपके हाथ में जिंदगी का रिमोट हो, उसके अंदर एक ही बटन हो, और आप या पॉज चूज कर सकते हैं या आप उसके अंदर रिवाइंड का बटन चूज कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो बताना है कि क्या, क्यों, कब.
1: सिनेरियो बताऊंगा बिल्कुल. सिनेरियो ये कि मैंने रिवाइंड का बटन चूज करना है, और मैं एक ही दफा चूज करना चाहता हूँ, 20 साल पहले ले जाना चाहता हूँ.
0: अरे भाई, आपको बोलना चाहिए था, मेरी तो उम्र ही 20 साल है. क्या आप लोगों को बता रहे हैं 20 साल पीछे ले जाता हूँ. अरे ये देखिए, ये जो ना उम्र
1: नहीं बता
0: रही.
1: नहीं आपने देखे ऑप्शन दिया है ना यूज करने.
0: चले ठीक है, फिर वो जो
1: पहले तो ये हो ही सकता, कर लेते तो 20 साल मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ. उसकी वजह क्या, अब आपने कहा सिनारियो ही बता रहे.
0: हाँ जी,
1: सिनारियो ये कि देखें, इंसान जो है ना, हम लोगों को जो है ना, जो हम एजुकेशन वगैरह लेते हैं, मुख्तलिफ चीजों की सर्टिफिकेशन लेते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में ना इससे कोई ताल्लुक नहीं
0: है.
1: अगर छोटे बच्चे को पहले से पता हो ना कि मैंने ये चीजें करनी है, तो मेरी जिंदगी जो है वो परफेक्ट जाएगी,
0: बोर हो जाएगी जिंदगी,
1: तो फिर वो बन गई. तो लाइफ जो है ना, उसका डिसीजन जो है ना, वो हम अपने हमारे हाथ में नहीं है, बेबस है ना हम लोग.
0: सही,
1: तो इसलिए मैंने इसलिए चॉइस किया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि काश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता बीइंग अ मुस्लिम, बिकॉज़ एवरीथिंग इज बाय द विल ऑफ अल्लाह सुभान
0: व तआला. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो बस आपने भी फनी क्वेश्चन किया, मैंने भी उसका फनी आंसर किया कि अगर काश होता ना तो मैं ले जाता. मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में मैं जो ना सब्जेक्ट जर्नल ह्यूमैनिटी की जगह जो है ना, जो जर्नल सब्जेक्ट होता है उसकी जगह प्री इंजीनियरिंग ले लेता तो शायद ठीक था. हाँ, मैंने किया सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म के अंदर जो है ना 5 डिग्री, लेकिन हमारे दौर में जो था ना उस टाइम पे लोग
0: इतना वो नहीं था,
1: क्रेज नहीं था कि डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर, वो जो सब्जेक्ट में पसंद है ना उसमें डिग्री ले लो. अब हमें क्या पता था कि AI अंकल आ रहे हैं आगे.
0: तभी जब भी जो है ना, जब भी अपने सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं ना, आज भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आज से 5 साल या आज से 8 साल बाद की देखो, अभी का नहीं देखो, अभी कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, ये पता लगाने की कोशिश करो. जी जी
1: हाँ, मैं आपसे, आप भी माशाल्लाह बहुत बोलते हैं, लेकिन कराची में मैं भी जो ना सारे रोड की पैदाइश, मेरी भी रुकती नहीं है.
0: सही, चले भी बताएं.
1: मैं कहना चाहता हूँ कि ये

0: हाँ मैं ये कहता हूँ कि दुनिया कहना डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं ना, किस हिसाब से। मैं न्यूजीलैंड का चक्कर लगाने गया ना, आप ट्रस्ट करें कि वहाँ ऐसा लगता है कि हम दुनिया में है ही नहीं। जिस दुनिया में हम पैदा हुए ना,
1: सही,
0: इस दुनिया में हम है ही नहीं। वहाँ की लाइफ, वहाँ का आबो हवा और चीजें इतनी चेंज है कि ये जो आर्टिफिशियल टाइप और मटेरियलिस्टिक थिंग है ना, ये वहाँ है ही नहीं। तो लाइफ बहुत स्लो और यानी कि एंजॉयमेंट में, ये हम लोगों ने खुद जो है ना दौड़ लगा दी है जिंदगी में ना।
1: सही।
0: अब मैं किसी को भी देखता हूँ, मेरी एज ज्यादा है, अराउंड 45, ठीक है। तो मैं अब देखता हूँ ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये जो आने वाले हम जनरेशन है ना, ये हमारे जो एरा था उसमें हम कहते थे वी आर मॉडर्न स्लेव्स, बट दे विल बी अ मॉडर्न स्लेव प्लस स्लेव ऑफ मनी। इनके पास सिर्फ दिमाग में एक ही होगा कि हाउ वी अर्न द मनी। इनके लिए कोई लाइफ की एंजॉयमेंट, कोई अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। आप पीछे डिक्शनरियां खोले ना,
1: ये तो एक बरहम बात है कि बता दिया गया है कि हाँ भाई एक फितना आएगा जो कि उम्मत के ऊपर होगा, और वो होगी ये जो अपना दौलत का माल का, ये है एक चीज, ये एक है चीज। इंसान को पता नहीं चलता कि कब इंसान उन चीजों के पीछे भागना शुरू कर देता है जिन चीजों के बारे में वो बचपन में सोचता है कि मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। I will live my life, I will enjoy.
0: देखिए ये तो आप ना करें ना, क्योंकि ये बातें ऐसे मुझे और हंसी आ गई। मुझे क्यों, आपने कहा कि बचपन में कहते ना, मुझे किस्सा याद आ गया। मेरे मामू मुझे कहते थे बेटा तुम्हारी ना हम शादी करवाएंगे। मैं ना इस चीज से बहुत चिढ़ता था, मैं कभी नहीं करूंगा। वो कहते थे जो नहीं करते, कहते ना नहीं करेंगे।
1: उसी के ऊपर
0: तीन तीन करते हैं, नहीं वो तीन तीन करते हैं, वो कहते
1: हैं। अच्छा ये मिसाल के तौर पे कहा जाता है, ये अक्सर टीज करने के लिए आता है, ये जो नाना करते हैं ना, ये हाँ जी ये कहा जाता है,
0: ये कितने तीन तीन करेंगे ये।
1: चले अल्लाह ताला की रजा में राजी।
0: हाँ बस आपने बस वो गाड़ी चला रहा था, अभी स्टॉप करके जो है वो खाना खाने जा रहा हूँ, तो बस मैंने कहा कॉल मिलाऊं, कॉल बहुत कम मिलाता हूं।
1: मुझे मुझे चिढ़ा रहे हैं, खाना खाने जा रहा
0: हूं। हाँ दो वजूहत से की, एक तो जब उन्होंने कहा ना कि आप पठान है, ठीक है तुम जो नालो छा है साईं,
1: मुझे नालो सफा है। सिंध में जाए ना तो सबको सिर्फ इतना ही आता है।
0: नहीं, नहीं
1: मुझे उससे आगे वाली सिंधी भी आती, क्योंकि मैं मेरा जो ननियाल है वो टिपिकल इंटीरियर से, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा अच्छी वाली सिंधी आती है।
0: आती है ना, तो फिर ठीक। वो तो वैसे भी पांचवी तक तो सिंधी वैसे भी कराची में भी पढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर तो आपके ननियाल का आप ये लोगों को ये भी बताएं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आज तक नादरा का शनाती कार्ड सिंधी में भी आता है, सिंधियों के लिए। बताया आपने ये कभी रेडियो?
1: अच्छा, ये चीज नहीं, नहीं नहीं ये चीज मेरे इल्म में नहीं थी, ये आपने मुझे मेरे देखिए इल्म में इजाफा हो गया।
0: देखे आप देखे ना, फिर आपका नर आप सिंध के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए।
1: मामला ये ना, हम
0: आज तक कार्ड है
1: हमारा, मामला ये कि हम पैदाइश सिंध की है लेकिन हम रहे कतम है ना, तो हमारा मामला उल्टा है।
0: तो फिर आप इसको कहेंगे बी कैटेगरी डोमिसाइल।
1: बस बस हमारा कुछ चक्कर मक्कर ऐसा है, कुछ उलझे हुए हैं।
0: आप बोले सिंध का बी कैटेगरी डोमिसाइल है, ए कैटेगरी वहाँ के होते हैं, बी कैटेगरी अब्रॉड होते हैं।
1: चले भाई रिवाइंड के बटन के साथ जो है आगे बढ़ेंगे हम।
0: मिली हाँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा,
1: आप भी अपना खाना एंजॉय करें।
0: हाँ जी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब और
1: कामरान सबको, हम सबको
0: फरमाए, आपके लिए खुश रहें, बस सबकी मुश्किलात
1: आमीन भाई सबके लिए।
0: शुक्रिया आपका वक्त देने का,
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: ओके
1: तो भाई बाबू मुशाई हमारा टाइम हो चला है, हमने गेम भी खेलनी है, लेकिन गेम खेलने से पहले एक काम करते हैं, एक और कॉल ले लेते हैं। 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और हमारा आपसे सवाल का जवाब ये चाहिए कि अगर जिंदगी में रिमोट आपके हाथ में हो जिंदगी का और उसके अंदर सिर्फ एक बटन है, रिवाइंड चूज करेंगे या पॉज, उस बटन का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, रिवाइंड में कि पॉज में। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, हमारे साथ कौन है?
2: आरिफ अंसारी।
1: आरिफ भाई बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते,
2: पर आए तो सही।
1: हाँ जो देर आए दुरुस्त आए। आरिफ भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: बड़ी दुख के साथ कहने पड़ रहा हूँ।
1: देखिए बड़ी मुश्किलों से भूली थी मैं इस दुख को, फिर आप ले आए। बड़ी दुख के साथ करवा रहा है हमारा CR7
2: पोर्टुगल निकल गया ना, इसीलिए
1: कोई बात नहीं, हमारे दिल में तो है ना, हमारे दिल में तो है ना। अरे भाई हमारे दिल में पोर्टुगल रहता है।
2: अब या नॉर्वे या फ्रांस की
1: तरफ, अब जो है ना, नहीं नहीं नॉर्वे, नॉर्वे फ्रांस को साइड पे कर देते ना थोड़ा सा। पुराने साइड में कर देते ना, उधर जाओ तुम, उधर जाओ तुम, उधर जाओ, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल,
2: फ्रांस के थोड़ा कोने में कर दिया,
1: हाँ थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा अरे भाई ये बताएं, जिंदगी में अगर एक बटन आपको मिले तो जिंदगी में कौन सा बटन आप रखना पसंद करेंगे? सिर्फ एक ही बटन है, या पॉज का रख सकते हैं या रिवाइंड का रख सकते हैं, और क्यों?
2: मेरे वाइफ के हिसाब से मैं पॉज करना चाहूंगा, मेरे दो,
1: ये क्या हो रहा है मेरे वाइफ के हिसाब से,
2: नहीं अभी के लाइफ,
1: अच्छा लाइफ के, मैंने कहा वाइफ के, मैंने कहा वाइफ को फोन करके पूछा है भाई कौन सा बटन रखूं, ये क्या कस्टमाइज्ड, क्या हो गया मामला, कुछ ज्यादा संगीन हो गया था क्या? मैंने कहा बेगम को फोन करिए,
2: बोले कि घर आ जाओ फिर पहुंच जाओ।
1: अच्छा भाई लाइफ के हिसाब से कह रहे हैं कि रिवाइंड बटन?
2: नहीं नहीं रिवाइंड नहीं, पॉज करूंगा,
1: पॉज।
2: मैं, मेरे दो बेटे हैं वो दोनों अभी बड़े हो रहे हैं,
1: दो अनमोल रन। अरे भाई, अरे भाई ऑन ऑन एयर रुलाएंगे क्या मुझे? मैं रोज अपने बच्चों को देखकर ये सोचती हूँ कि मैं कह रही हूँ भाई इनको रोको जरा, सबर करो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिला, हाँ थोड़ा मतलब दिन ब दिन माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो अपने बेटे से कहती हूँ कि देखो अब तो तुम मेरे कद से भी ऊपर जा रहे हो, तो फिर मैं मतलब ये क्या हो रहा है, ये लाइफ कहाँ जा रही है माशाल्लाह।
2: मेरा भी बड़ा बड़ा बेटा है ना, वो अभी तो उसका दो साल भी पूरा नहीं हुआ
1: माशाल्लाह,
2: जुलाई 21 को होगा उसका दो साल, पर वो लगता है चार साल बड़े से भी बड़ा लगता है
1: माशाल्लाह माशाल्लाह को तला बिला। अल्लाह ताला सबके बच्चों को खैर आफियत से रखे। अच्छा ये औलाद ऐसी चीज है, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि औलाद ऐसी चीज है जो इंसान को घुटनों पे ले आती है, और ये वाकई में जब अपनी औलाद हाथ में आती है तो इंसान को पता चलता है कि वक्त कितनी कितना कम है, जितना मिल जाए उतना कम है, और कितनी तेज रफ्तारी से भागता है ये, और औलाद कितनी अजीज होती है।
2: मैंने अपने बच्चे को रखा था ना पहला बार, रोया नहीं था पर उसे बहुत जो गुजरे थे मेरे, तो मैं यकीन नहीं बयान नहीं कर सकता।
1: अब अरे भाई आपका और मेरा एक ही हाल है, अब जो है ना हम माँ बाप की बातों पे हंसते नहीं है, अब उनको सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि क्योंकि
2: माँ बाप बोलते हैं अभी मालूम हुआ ना हम लोग कुछ बोलते
1: थे भाई,
2: तो कैसा लगता है
1: ये, मेरी अम्मा मुझे बातें बोलती है। अच्छा अब पता चल रहा है, अब पता चला, मैंने कहा आप तो गिन गिन के बदले लें, अब आप तो गिन गिन के बदले लें।
2: पहले तो हमने बात ना मान के भी मजे किए, आप वो लोग हम लोग को गिरा के मजे लेते हैं।
1: बस ये भाई ये जो औलाद वाला मामला ना, ये बड़ा इमोशनल मामला है, इसके अंदर तो वाकई में इंसान दिल करता है कि जिंदगी पॉज वाले बटन पे लग जाए। बहुत सारी ऐसी बातें जिंदगी में जिनके ऊपर अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं कहूंगी रिवाइंड नहीं जाना चाहूंगी मैं, नो नो नो नो नो, क्योंकि जिंदगी में
2: जी लिया वो जी लिया।
1: हाँ जिंदगी में मसला पता है क्या है, मसला ये कि बड़ी तलखियों के साथ गुजारी है जिंदगी, और वो तलखियां ना फिर से नहीं रिपीट होनी, क्योंकि उन्हीं के सबक से हम आगे बढ़ते हैं,
2: आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों से हम लोग सीख के तो आगे आए हैं।
1: बिल्कुल, तो पॉज का बटन, पॉज का बटन आ रहा है,
2: बहुत जल्दी जल्दी दोनों बड़े हो रहे हैं, एक तो अभी 5 महीने का भी नहीं हुआ और एक हो गया 23 महीने का।
1: चले भाई अल्लाह ताला आपकी औलाद को खुशो करम रखे, आपके जिगर की ठंडक बनाकर रखे, और सेहत दे आपको भी, आपकी औलाद को, आपकी पूरी फैमिली को, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बच्चों का बचपन एंजॉय करने का मौका दे अल्लाह ताला आपको। चले जी अल्लाह हाफिज। तो भाई देखें औलाद वाकई में एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर आकर ना इंसान कहता है भाई पॉज लगा दो, पॉज पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। चलो भाई देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं और आपका नाम?
3: हमजा भाई
1: ये बताएं आपकी आवाज क्या मैच की वजह से ऐसी हुई हुई है, या सोकर उठे हैं, या वाकई में दुख में?
3: नहीं तीनों काम नहीं है,
1: तीनों काम नहीं है,
3: मेरी आवाज ही ऐसी है।
1: थके हुए?
3: नहीं नहीं आवाज ही ऐसी,
1: आवाज ही ऐसी। ओह ओह हमजा भाई मेरी आवाज ही ऐसी रोबदार आवाज, लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं।
3: नहीं नहीं इतना भी नहीं है रोब, बस वैसे ही घर वाले बोलते हैं गुस्से वाला बच्चा हूँ।
1: हाय
3: बच्चा तो नहीं रहा खैर, अब
1: मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ, अम्मा का बच्चा हूँ मैं, अपनी अम्मा का।
3: लेकिन बात वही है कि वो एक आपका जो नजरिया बन जाता है घर वालों की नजर में, तो चाहे आप जो मर्जी लाख कोशिशें कर लो आपका नजरिया वही रहता।
1: अरे कोई नहीं हमजा भाई, कोई नहीं, इतना दुख ना करें। आप ये बताएं कि जिंदगी का रिमोट इस वक्त आपके हाथ में दिया हुआ है हमने, तो बताएं इस रिमोट के ऊपर क्या लगाएंगे, रिवर्स का बटन के पॉज का?

0: मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, मैं घर में वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में कभी टीवी का रिमोट नहीं है।
1: मेरी तरह क्या आपके मिडिल चाइल्ड हैं क्या?
0: नहीं नहीं, मिडिल तो नहीं कह सकते, भाइयों में सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, सिस्टर्स में मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ।
1: बस ये तीसरे नंबर वालों की कहानी है ये, मैं भी तीसरे नंबर पर आती हूँ भाई, हमें हम किसी को नजर नहीं आते।
0: नजर आके भी नहीं आते ये कहानी
1: देखें, बस कभी गुरूर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहन भाई इस मामले में बिल्कुल एक जैसे। चलिए कोई बात नहीं, इसका दुख, इस दुख को हम ऑफ एयर भी शेयर करेंगे। मैं समझ रही हूँ हमें तो कभी टीवी का रिमोट नहीं मिला हाथ में। अच्छा मजे की बात ये, आज भी अगर टीवी का रिमोट कभी हाथ में आ जाए ना तो यूज ही नहीं करना आ रहा होता। बचपन में कभी
0: पहले 10 मिनट तो एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज टीवी का रिमोट और एक्साइटमेंट में कोई ना कोई आता है यार, इधर लाओ मैं चैनल चेंज करता हूँ। अब उतने में बंदा सोच रहा होता है यार कौन सा वाला चैनल लगाऊं, कौन सा वाला देखना है, क्या देखना है, किधर जाना है, कोई पता नहीं था।
1: ये बहुत पर्सनल हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गया मामला। देखिए आप क्या खून के आंसू लाना चाह रहे हैं मुझे, इतना समझदार आप, मतलब मेरे अलावा मुझे आज तसल्ली हुई, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मेरे अलावा भी कोई इस चीज से सफर कर रहा है, मुझे आज बहुत अच्छा लगा।
0: कोई आप हर घर का तीसरा चौथा बच्चा जो है वो इसी चीज को सफर कर रहा है।
1: अच्छा भाई ये बताए, अगर आपके हाथ में
0: बच्चा जो है वो पता है किस चीज को फेस करता है, दरवाजे पे कोई आया उसने उठ के जाना
1: वो, घर में किसी घर का छोटा होता है, घर का छोटा
0: पानी पिला दो, वही ना सबसे लास्ट बच्चा, वही उसको ये उसके यही काम, उसके दुख अलग है बेचारे के।
1: वो तो मेरे मामू सबसे छोटे थे ना घर में, वो कहते थे अल्लाह ताला छोटा ना बनाए। अच्छा ये बताए कि उस रिमोट पे आपका कौन सा वाला बटन होगा, रिवाइंड का कि पॉज का?
0: वैसे मैं इतनी देर से जिससे आपको शो शुरू हुआ है ना,
1: जी जी,
0: मैं यही चीज सोच रहा था कि क्या रखना चाहिए, बट मैं इस नतीजे में पहुंचाऊँ कि कुछ भी नहीं चाहिए,
1: बस रिमोट मिल जाए।
0: नहीं चाहिए देखिए, रिमोट भी नहीं चाहिए
1: हमें खुशी,
0: क्योंकि ऐसा सीन ये है ना कि जो गुजरा हुआ वक्त है हम उसको दोबारा जीना नहीं चाहते।
1: सही,
0: जो हालात चल रहे हैं ठीक है,
1: सही,
0: और जो वक्त हाल चल रहा है हम चाहते हैं कि यार बस थोड़ी सी खुशी इनफ है, और जो आने वाला वक्त है अगर हम उसका अच्छा सोचें तो हम चाहते हैं कि यार वक्त ये वाला गुजरे सही है, अच्छा वक्त आएगा। और अगर नेगेटिव सोच तो कोई भी नहीं सोचता, हर कोई अपना फ्यूचर अच्छा ही सोचता, तो हर किसी की यानी जैसा बचपन में होता था, हम लोग लगूंगा मैं तजरी बताऊँ, अगर किसी को देखा ना दाढ़ी में तो हमारे ये होता था कि यार कब हमारे फेस पे दाढ़ी आएगी, हम भी स्पेशल जाके खत करवाएंगे, और आज दाढ़ी आई हुई है
1: तो कहते हैं खत
0: करवाने का
1: बचपन वापस आ जाए। सही, इंसान
0: ये कहानी है कि जो गुजरा हुआ वक्त है वो इंसान याद करता है, अच्छी यादें याद रहती नहीं, और जो यादें बैड हैबिट्स वगैरह होती हैं वो इंसान बोलते हैं यार काश ऐसा नहीं करता तो बेहतर था।
1: चले आप अगर कुछ नहीं ले रहे तो हम एक काम करते हैं, हम आपके साथ गेम ही खेल लेते हैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए, क्या कहते हैं?
0: आपका गेम कौन सा है
1: भाई? हमारा जो है ना बॉलीवुड ट्रिविया का गेम है, आपने करना ये कि आपने ये प्यारे प्यारे से गानों के हुक सुनने और आपने मुझे गानों के नाम और फिल्म के नाम बता देने एक मिनट के अंदर अंदर।
0: इसको उल्टा कर लेते हैं, गाना मैं सुना देता हूँ आप बता दें।
1: नहीं नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा ये देखिए मुझे इस चीज के पैसे नहीं मिलते। नहीं देखिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए होगी फिर इसके लिए ये गाने सुनना ना आपसे।
0: रिवर्स कर रहे हैं ना, पैरेलल काम चल रहा है ना, पैरेलल वर्ल्ड वाला, मैं गाना गा देता हूँ।
1: देखिए इसके हिसाब से मुझे तनख्वाह बहुत कम मिलती है, बहुत कम, ये मुझसे ना हो पाएगा। अच्छा क्या कहते हैं, एक दफा ट्राई तो करें,
0: जैसे बात ये है कि मैंने कभी मूवीज वगैरह इतनी देखी नहीं, और जो देखी है अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाम नहीं देखा।
1: अरे ये आसान आसान वाले, ये हमारे बचपन में हमने बहुत सुने।
0: मैं सिंगर का नाम बता सकता हूँ कि सिंगर का मुझे कुछ पता है, वो भी इतने ज्यादा नहीं पता।
1: अच्छा आपके साथ एक सिनेरियो रख लेते हैं कि आप सिर्फ गाने का नाम बता दीजिएगा, चलिए ठीक है।
0: आई विल ट्राई बट I'm not sure कि मैं आपको
1: कोशिश करते हैं, देखें कोशिश करते हैं।
0: I'm sure कि मैं हार जाऊंगा।
1: कोई मसला नहीं है, ये कौन सा तो कोई वर्ल्ड कप मिलेगा हमें। कौन सा तो कोई वर्ल्ड कप मिल रहा है।
0: लेकिन आपने एक अफसोसनाक खबर दी, मैं वैसे देखता नहीं हूँ ना फुटबॉल, कितना बड़ा फैन हूँ, लेकिन आई लव रोनाल्डो, बस
1: क्या कर सकते
0: अगर वो जा रहे हैं।
1: देखें गम गलत करने के लिए हम गेम खेल लेते हैं ठीक है, कोशिश करें फिल्म का नाम याद करके।

0: दादी जी का नहीं आता तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? देख लेते हैं आप एक मिनट के अंदर कितने गाने पहचान लेते हैं। लेकिन इस गेम का रूल ये है कि अगर आप हमें टोटल नहीं बता पाए, नाम और मूवी दोनों, तो हम नेक्स्ट सॉन्ग तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है?
1: यानी कि नया एक में काम पूरा होने वाला है।
0: चले, क्या पता चलें ट्राई तो कर देखें ना। पहले ही घबरा गए, मैदान में उतरने से पहले कौन घबराता है भाई। चलें ट्राई करते हैं, ठीक है?
1: नहीं, जो चीज पता ना हो बंदा उधर हाथ नहीं डालता।
0: अरे भाई छोटी मोटी सी तो गेम है, चलें स्टार्ट करते हैं गेम, ठीक है? चले भाई बॉलीवुड ट्रिया हमारे जो हमजा भाई हैं उनसे स्टार्ट किया जाए। एक मिनट का टाइम होगा और आपका एक मिनट स्टार्ट होता है ये, और आपका होके रहा ये।

0: ये कौन सा गाना है? बताएं बताएं।
1: ये तो मुझे लग रहा है कि मेरी पैदाइश से पहले का गाना जो भी।
0: अच्छा आपकी भाई ये गाना जो है ना ये सबको पसंद है ये गाना, और इतना इतना इजी है ये, आप तो हवाओं में उड़ते हुए देखते हैं इनको, हवाओं में उड़ते हुए देखते हैं इनको।
1: मैंने गाना नहीं सुना हुआ।
0: ये म्यूजिक, अरे भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, अरे ना करें सच में।
1: मैं आपको सच में अच्छा, बताऊं आप लोग जो गाने चलाते हैं मैं वो थोड़े बहुत सुन लेता हूँ, अदरवाइज मैं गाने सुनता नहीं। मैंने सुना मैं सज्जाद अली को मैंने सुना हुआ।
0: अगर आपने सज्जाद अली को सुना हुआ ना तो ये गाना तो सुना ही होगा आपने। चले नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं हम लोग।
1: गलत प्यारा बस ये था इसलिए सुनता हूं।
0: सज्जाद अली इज गुड, सज्जाद अली, सज्जाद अली भाई ही इज अ लेजेंड।
1: मुझे अभी वन ऑफ माय फेवरेट बस वो ही लगते हैं, या मैम आबदा परवीन है उनको सुनता होता
0: अक्सर। ये बहुत,
1: ये तीन मस्त है जिनको सुनता हूं
0: बिल्कुल। चले आगे हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे, फिर उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, उनको कितना आता है। ठीक है चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
1: दुआओं में याद रखें।
0: अस्सलाम, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश व खुर्रम रखे, हमें भी दुआओं में याद रखे। भाई भाई ये गाना किसको नहीं पता। साथियों देखो हमारा शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रिविया का सेशन, और आपको ये बताती चलूं कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना लेते हैं क्योंकि फिर जो है ना सब नाराज होते हैं। भाई देखो मुझे टीचर नहीं बनने का, तो पहले रूल बता रही हूं, एक दिन में एक ही दफा ये गेम खेली जा सकती है, एक बंदा एक ही दफा गेम खेलेगा, बार बार कॉल नहीं करने का। ठीक है तो भाई गोविंदिया फुल्लो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। कॉल करने के लिए अगर आपने बॉलीवुड ट्रिविया खेलना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, द नंबर इज 4434377। अगर चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं, आपको कॉल कर लेंगे हम। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ?
2: जी आपके वसूली भाई।
0: वसूली भाई, रईस भाई, रईस भाई आज तो स्कोर कर लो बॉलीवुड में। रईस भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: बस अल्लाह, जरा मैंने आपका शो सुन रहा था स्टार्टिंग से, आज पहले निकल गया था ऑफिस के लिए, मैं सुन रहा था आपके सवाल आपके जो थे पाउस।
0: अच्छा बताएं आप कौन सा बटन, चलें शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने गेम भी खेलना है। तो बताएं आप क्या चूज करेंगे लाइफ के रिमोट में, कौन सा बटन होना चाहिए, पॉज का के रिवाइंड का?
2: मैं अपने लाइफ में रिवाइंड का बटन, और मेरे लाइफ में जो सबसे एक बड़ा गलत डिसीजन लिया मैंने उसको मैं करेक्ट करने के लिए मैं पीछे जाना चाहूंगा।
0: और वो क्या था?
2: वो ये था शादी का डिसीजन।
0: लो जी शादी करने को रीजन कमेंट करना चाहूंगा।
2: yes.
0: अच्छा भाई देखिए अल्लाह ताला सबके मामला दुरुस्त करे। नोबडी सेड, एक बात याद रखिएगा, इस ये बड़ा ही एक सीरियस टॉपिक है, इसको मैं मजाक में नहीं उड़ान चाहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि ये याद रखें कि हमें ये प्रॉमिस नहीं किया गया था कि जिंदगी आसान होगी। सबकी मुश्किलात हैं, सबकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोशिश करें चीज़ों को सुलझाने की। बाकी जहां आप कोशिश करेंगे वह अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है चीज़ों को सुलझाने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कॉम्प्लिकेशन सबके पास होती हैं, किसी की जिंदगी, मेरे भाई रईस भाई, किसी की जिंदगी मक्खन नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, तो अल्लाह ताला सबको सबको समझ दे।
2: मैं यही बोलता हूँ अल्लाह ताला को कि मुझे भले किसी और आजमाइश में डाल दे, बस इस आजमाइश में डाल दे।
0: अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे, अल्लाह ताला को ज्यादा बेहतर पता है कि कौन किस चीज का, वो कहते हैं ना गॉड गिव्स हिज हार्डेस्ट बैटल्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स, तो इंशाल्लाह अल्लाह

0: कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के पास मसला है तो हल भी है उसका इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, आपके मसले आसान करे। चलें गम गलत करते हैं और गेम खेलते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? आज तो पहचान ही जाएंगे भाई। आज मैंने बिल्कुल वो बिल्कुल मजे के मक्खन वाले गाने रखे, ठीक है? चलें अभी ये वाला सुनिएगा, ठीक है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे भाई चले अब दूसरा वाला करते हैं, ठीक है? दूसरा वाला ये बताएं।
1: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे चोले।
0: अरे भाई आज तो फुल तैयारी के साथ आए। चलें ये वाला बताएं।
1: रावण।
0: अरे ठीक है ओके, ये वाला अब ये वाला। चलें बताएं बताएं ये वाला। फिर से चलें। बताएं
1: लेकिन
0: एक और दफा, चलें एक और दफा आपको सुनाती हूँ एक और दफा, ठीक है? और टाइम खत्म हो गया हमारा। चलें भाई टाइम खत्म, लेकिन भाई आज तो आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग, भाई ये क्या हुआ है? अरे आपने टोटल जो है वो 3 के 3 क्लिप्स सुनकर, मतलब आपके टोटल 6 पॉइंट हो गए 2 दिन जीरो से रहकर, आज तो आपने छक्का मारा। यूं ये जाओ, क्या चाहिए तुम्हारे को भाई? तालियां।
1: ना कि कोशिश करते रहने चाहिए जब तक इंसान फतेह ना हो।
0: वाह वाह इस बात की पर तालियां। वाह। चले भाई आज के मेरे ख्याल से देखते हैं आपसे ऊपर कौन जाता है, सुपर से ऊपर। आज का टॉप स्कोरर जो है अभी तक के आप बन गए, देखते हैं 6 को कौन क्रॉस करता है। चले अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अच्छा अब आपका मुझे मामला समझ में आया, आप जो है ना वो 90s के वो शुरू शुरू वाले गानों के शौकीन है मेरे ख्याल से।
1: आपका मीनिंगफुल होते थे, अभी के गाने मीनिंगफुल थोड़े होते हैं, वो मतलब के गाने होते थे, उसमें वर्ड में समझ में आता था कि कहना क्या चाह रहा है।
0: ये आज आप लोग मेरी दुखती रगों पे क्यों हाथ रख रहे हैं? ये कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसी वैसी बातें जो,
1: क्योंकि हम लोग एंटी के ही है ना।
0: सही है। चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपके मामला दुरुस्त करे, और जिंदगी में ये याद रखें कि इट्स टफ तो खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है? हार नहीं मानने का,
1: जो भी हालात हो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें,
0: ये बात। चलें जी अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, और अगर आप हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलना चाह रहे हैं तो जरूर कॉल करें। 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: यूसुफ बात कर रहा हूं।
0: हाँ जी यूसुफ भाई, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहा हूँ माशाल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आज के मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: पॉज
0: करना चाहेंगे। अच्छा पॉज क्यों? पॉज क्यों?
2: बस प्रीवियस में जाके देखेंगे तो क्या है, सब मुसीबतें सब परेशान है, क्या करें, जो हाल में है उसको जी लेना बेहतर है।
0: अरे स्लो करना चाहेंगे, मतलब आपकी सिचुएशन ना वो वाली आई हुई कि आप मेरी तरह कह रहे हैं कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है जिंदगी, बहुत शोर है,
2: और अपने आप को देखने का तो वक्त ही नहीं, अपने आप को सुनने का वक्त नहीं, अपने आप को देखने का वक्त नहीं है, इतनी फास्ट गुजर रही है वक्त।
0: अच्छा मेरा मामला कुछ और है, मुझे अपना है ही नहीं, मुझे ये होता है कि नहीं जो अपने साथ वाले ना जिनको जिन चीज़ों को, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो बड़ी नाजुक होती हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए, जैसे आपके बच्चे हो गए, घर का टाइम हो गया क्वालिटी, और आपकी फैमिली हो गई, तो वो चीज़ें ना बड़ी तेजी से भाग रही हैं।
2: सही बात है, बिल्कुल सही, एग्री विद यू।
0: सही, चलें आपका जो है पॉज का बटन, ठीक है? चलें अब एक काम करते हैं यूसुफ भाई, थोड़ा बॉलीवुड का हो जाए, ठीक है? आज तैयारी के साथ आए, आज हमारे पास रईस भाई ने, अरे भाई रईस भाई ने मारा है छक्का,
2: बहुत अच्छा खेले, जबरदस्त छक्का मार दिया,
0: दो दिन खामोश बैठे रहे, और आज का ये लो
2: जी
0: चले भी उन्होंने तो सीरियस ले लिया हमारे चैलेंज को
2: इजी मिले उनको उनको बहुत इजी भी मिले
0: चले चले अब आपके साथ खेलते हैं ना देखते हैं क्या होता है ठीक है
2: जी जी
0: शुरू करते हैं ओके वन टू थ्री और आपको दिया जाएगा अरे भाई मेरा टाइमर चले टाइमर एक मिनट का आज हमने एक मिनट का टाइम लगाया ठीक है
2: जी जी
0: वन टू थ्री एंड इसका बताइएगा
2: ये टाइटल सॉन्ग ऑफ ताल फिल्म का
0: ठीक है
2: ये बेचैन है
0: ओके चले भाई इसका बताइएगा ये वाला
2: मसक्कली मसक्कली दिल्ली से
0: अरे भाई चले भाई अब इसका बताइएगा
2: दिलबर दिलबर पत्ते में जाते हैं
0: अरे भाई चलें भाई तीन हो गए आपके और इसका भी बताइएगा ये वाला हमारा ये वाला

0: कौन सा वाला?
1: फिल्म केतरी जी।
0: ओके चलें भाई एक और हो जाए, ये वाला बताइएगा।
2: धड़कन में प्यास तेरी सांसों में से।
0: हाँ टाइम चला गया हमारा टाइम जी।
1: फिल्म याराना फिल्म का है, पुराना फिल्म याराना।
0: गाना कौन सा है जरा ये तो बताइए। गाना तो आपने बता नहीं, गाना हाँ सॉरी गाना नहीं बताया आपने।
1: ये गाना है वो अमेरिकन जो है तेरे जैसा, नहीं तेरे जैसा यार कहा।
0: नहीं ना फिल्म का नाम भी गलत बताया आपने, फिल्म का नाम भी गलत बताया है। और चले इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने 1 2 3 4 जवाब सही दिए, मतलब आप टॉप स्कोरर में आ गए हैं 8 पॉइंट। वाह वाह शैम्पी वाह वाह अरे भाई वाह। अरे तालियां वाले कहाँ चले जाते हैं भाई, तालियां तो बजा दो तालियां। इनकी तनख्वाह में से 500 रियाल मैं अभी काटूंगी तालियों वाले की। वैसे इनकी तनख्वाह है 5 रियाल लेकिन मैं 500 रियाल एडवांस में काटूंगी। चले भाई वेरी गुड हो गया, आप अभी के टॉप स्कोरर बन गए, मतलब अब जाके लोगों को गेम समझ में आ रही है। गुड गुड हो गया, गुड गुड हो गया। चलिए भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
1: सेम टू यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
0: तो भाई हमारे पास हमारे साथ आप इस वक्त सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड सफा के साथ, और हम लोग आपके साथ क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं बॉलीवुड ट्रिविया की। तो भाई जो जो खेलना चाहता है लाइन में आ जाओ और अटेंडेंस लगवाओ। मैं थोड़ा सा चलती हूँ मैसेजेस की जानेब। अगर आप भी मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-2107 पर। और मैसेज हो रही है भाई, इतने सारे मैसेज जमा हो गए। हमारे साथ कौन है, एम के भाई हैं कह रहे हैं, यूसुफ भाई को सलाम, यूसुफ भाई आपको सलाम दे रहे हैं। और ये कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कबूतर जा। अच्छा वाह वाह वाह आदिल भाई कबूतर जा, कबूतर चला गया, कब का चला गया। और कौन है हमारे साथ, सफा मैडम आप बहुत अच्छी हो, खुश रहो आबाद रहो। आमीन आप भी खुश रहें आबाद रहें। और हमारे साथ एक और भाई हैं, अजमल भाई हैं। अजमल भाई आपका वॉइस मैसेज मैं सुनती हूँ, अभी ब्रेक नहीं लिया है कब से, तो ब्रेक में सुनकर आपका वॉइस मैसेज का जवाब देती हूँ। और क्या है, माँ अपनी हैं, मैं अपनी शाफी की नहीं ठीक है शाफी। अच्छा मूवी रिवाइंड करके निकाला पर सॉन्ग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये कौन सी लैंग्वेज, मुझे डीकोड करनी पड़ेगी, है कौन ये जिसकी मैं लैंग्वेज। जासिम भाई आपने जो कुछ भी लिखा है बहुत ही दिल से लिखा है, लेकिन ये मुझे थोड़ा डीकोड करना पड़ेगा, ये बहुत टेक्निकल इशू हो गया है यहाँ पर। अच्छा भाई नसीम भाई मुझे दादी अम्मा कहते हुए, नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दिल दिया गल्ला आरिफ अंसारी, आरिफ भाई को देखें इनका अलग ही पैटर्न चल रहा होता है आरिफ भाई का, इन्होंने जो ना वो सॉन्ग शो बनाया हुआ मेरे साथ। अच्छा कौन है, कबूतर जा डांस करते हुए चलें भाई। और है हमारे साथ कौन, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, नो लाइक मैसी ठीक है चलें। सरताज भाई ये बड़ा पर्सनल हो जाएगा मैसी को ना लाइक करने का रीज़न। और कौन है हमारे साथ, मैसेज में वापस से मैसेज भेजा है, और भी बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। और अरे अरे भाई ये किसने मज़े की तस्वीर भेजी है, किसी कार्टून की तो भेजी है, कोई मैस्कॉट।

0: है कौन ये वसीम भाई? ये मुझे नहीं पता किस चीज की तस्वीर है, लेकिन है बड़े मजे की, मैस्कॉट टाइप की कोई तस्वीर है, मुझे जरा बताइएगा इसकी डिटेल क्या है। अच्छा भाई, अब आप लोगों की कॉल्स की तरफ आती हूँ। 4344377 इज द नंबर। हम खेल रहे हैं बॉलीवुड ट्रिविया का गेम। साथियों, अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, चाहें तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6662107 पर। देखती हूँ हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ? आदि नसीम भाई है। नसीम भाई देखें, आपकी वजह से ना, आपकी दादी अम्मा कहने की वजह से मेरे चार बाल और सफेद हो गए। देखिए मेरे पास ना सर पे इस वक्त गिने चुने 8 बाल हैं, जिसके वजह से दादी अम्मा बोल बोल के आपने 6 तो वैसे ही सफेद कर दिए। अब जो बाकी के जो 2 काले रंग के मेरे पास सर पे बाल बचे हैं, उनका मैं सोच रही हूँ कि कुछ इनको कलर वलर करवा लूँ। क्रिएटिव होने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्रिएटिव। अगर आपने अगर आपने 3 दफा और मेरी दादी अम्मा बोल दिया ना, तो जो बाकी के 2 बचे ना, ये भी चले जाएंगे।
1: सही, 3 दफा में?
0: हाँ बस। नहीं नहीं, थैंक यू, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नसीम भाई बताएं, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है,
1: दुआ है आपके।
0: अच्छा बताएं, गेम खेलेंगे बॉलीवुड ट्रिविया।
1: दादी अम्मा की दुआ रहे तो
0: दादी अम्मा की दुआ कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, इस दादी अम्मा की दुआ से तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता। ये देखें, समझने वालों की बात थी, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया। चले गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? बॉलीवुड ट्रिविया क्या कहते हैं?
1: ये तो गाना के बारे में मेरे नहीं मालूम है, बस मैं सही
0: तो अच्छा चले, आपको गाना वाना नहीं पता, लेकिन आपसे एक सवाल कर लेते हैं। अगर जिंदगी के रिमोट में आपको सिर्फ एक चॉइस मिले, रिवाइंड का बटन या जो है पॉज का बटन, तो क्या रखेंगे?
1: पॉज तो पॉज होने से काम नहीं चलेगा,
0: तो रिवाइंड होने से भी क्या ही काम होना है भाई?
1: जो हो रहा
0: वो तो रिवाइंड हो, तो पीछे चले जाएंगे वापस से, वापस पीछे चले जाएंगे। क्या करना पसंद करेंगे, रिवाइंड या पॉज? हमारे मशवरे से चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा नसीम भाई। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और आगे आगे बढ़ाता रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। नसीम भाई जिस तरीके से बात करते ना, ऐसा लगता है वाकई में पॉज मोड पर ही है नसीम भाई। तो साथियों, मैं जो हूँ वो बॉलीवुड ट्रिविया खेल रही हूँ। अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, 4434377 पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बॉलीवुड ट्रिविया के गेम में। मैं आपको सुनाऊंगी मज़े मज़े के गाने के हुक्स और आपने मुझे बताना है कि भाई देखो ये गाना इस मूवी का है और इसका टाइटल ये है गाने का, ठीक है? तो कौन है जो बॉलीवुड ट्रिविया हमारे साथ खेलना चाहेगा? एक और कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कोई है कि चला गया? हेलो, मैं तो यही हूँ। हेलो जी, आवाज आपकी बिल्कुल भी मुझे क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी आई लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आई एम अंडर द वॉटर। हेलो, मेरे भाई थोड़ा सा कुछ मुझे नहीं पता, आप ब्लूटूथ पर हैं या आप स्पीकर पर हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, स्पीकर का प्रॉब्लम ये होता है कि आवाज क्लियर नहीं आती। थोड़ा सा पर्सनल होकर बात कर लें, स्पीकर से हट कर, यानी के हाँ जी, हाँ जी। कौन है हमारे साथ?
2: ये मैं शाहनवाज बोल रहा।
0: शाहनवाज भाई कैसे हैं?
2: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए।
0: अल्लाह का शुक्र है। शाहनवाज भाई, मुझे पता है कि दोपहर का टाइम शुरू हो चुका है और लोगों को इस वक्त भूख लगी होती है और पूरे दिन के लोग थके हुए होते हैं, तो आपकी आवाज से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है।
2: नहीं नहीं, अभी तो
0: पार्टी शुरू हुई है।
2: जी जी,
0: अच्छा चले चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। और ये बताएं, हमारे साथ बॉलीवुड का गेम खेलना पसंद करेंगे?
2: जी जी, पसंद करेंगे।
0: चले फिर, होगा ये कि मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी, उस 1 मिनट में आप मैक्सिमम जितने गानों के मुझे नाम प्लस मूवी का नाम, वो जिस मूवी का है वो भी आपने मुझे बताना है, ठीक है?
2: ओके जी।
0: गाने का टाइटल और मूवी का नाम।
2: ओके
0: चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। और ये सुनिएगा,

0: कुछ याद आ रहा है इसको सुनकर आपको? और इतना मशहूर था, चले आपका टाइम तो अप हो गया, लेकिन आपने दो का स्कोर कर लिया है शाहनवाज भाई, नॉट बैड। हमारे आज के टॉप स्कोरर ने 8 का स्कोर किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, हम कल फिर से गेम खेलेंगे और देखते हैं कल के क्या पता टॉप स्कोरर आप बन जाए। ठीक है, चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो वही साथियों, 4434377 इज द नंबर टू कॉल और मैसेज के लिए 6662107। और भाई हमें किसका, यूसुफ भाई का मैसेज आया। यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सफा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू लाइक ऑलवेज यूसुफ भाई, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू टू। और हम एक कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: इमरान खान,
1: निमरान,
0: निमरान, अच्छा निमरान खान, अच्छा वो राइमिंग था तो मैंने कहा इमरान खान, अच्छा ठीक है निमरान भाई, निमरान भाई मैंने पहली दफा निमरान नाम सुना है, क्या मतलब क्या है इस नाम का?
1: ये असल में ये जो जो मेल लायन का पैर जो रहता नहीं, जैसे जोड़ी बोलते हैं अपन कोई चीज की जोड़ी हो गई, तो ये पैर को ऐसा अरबी में बोलते हैं कि निमरान, जो शेरों का जोड़ा जाता रहता है ऐसा कुछ, मेरे को मेरे वाली साहब ने बताया कि ऐसा उसका मतलब है। ये बेसिकली ये अरबिक नहीं, मैं एकदम प्योर, तो इसी बस मेरे पे भी आ गया ये नाम,
0: यूनिक नेम है, यूनिक। अच्छा मैं देखूंगी, मुझे आपने वो कर दिया, तजस्सुस पैदा हो गया मेरे अंदर कि ये चले मैं देखूंगी इंशाल्लाह, मैं इस नाम का मतलब दूंगा। अच्छा ये भी कि आपने भी बता दिया कि अरबिक नेम है, सही। अच्छा भाई चले हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया का गेम खेलेंगे,
1: जरूर जरूर।
0: चले भाई चले हम एक काम करते हैं, बॉलीवुड ट्रिविया के लिए रेडी होते हैं। अच्छा जी आपको दिया जाएगा एक मिनट, और अभी तक के हमारे टॉप स्कोरर जो हैं वो कौन रह चुके हैं? यूसुफ भाई रह चुके हैं जिन्होंने 8 का स्कोर किया है,
1: 8 का जी भाई,
0: और रईस भाई ने 6 का किया आसपास। अच्छा चले आपका देखते हैं निमरान भाई कि आप कितना करते हैं, आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? चले 1 2 3 और टाइम स्टार्ट नाउ।
2: हर धड़कन में प्यास है तेरी,
1: ये तो पास पास बहुत पुराना है,
0: ये बहुत ज्यादा पुराना। अरे ये तो भाई बहुत अच्छा गाना है,
1: दिल के पास
0: है ना? नहीं नहीं नहीं नहीं, पल पल दिल के पास वाला नहीं है ये।
1: चलो नेक्स्ट बजाए, मैं दूसरा ट्राई करूंगा।
0: वैसे हमारा जो है ना वो क्राइटेरिया ये है कि हम अगर कोई एक नहीं बता पाता तो हम आगे ना बढ़ते।
1: अच्छा
0: जी हाँ, और आप अच्छा मुझे अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं आप कब की पैदाइश है, कौन से सन की?
1: मैं 85।
0: तो फिर ये तो गाना एक दफा सुने, एक दफा सुने सुने सुने okay. ये तो भाई ये
2: हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है।
0: अच्छा मैं आपको बता दूं ये बहुत नोन गाना किशोर कुमार का,
2: उस अंबर तक
0: शायद सुने तो आपको थोड़ा सा और कुछ आए।
1: पल पल दिल के पास
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
1: वो साथी रहे तेरे बिना क्या जीना।
0: भाई इसे कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आ गए, टाइम अप हो गया था। चले ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, यही एग्जैक्टली सॉन्ग है, किस मूवी का है? टाइम अप हो गया वैसे हमारा, लेकिन मैं चाह नहीं रही कि आप गिव अप करके चले जाएं। आपको याद पड़ रहा है किस मूवी का?
1: याराना है शायद, याराना
0: क्योंकि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
1: कल फिर ट्राई करूंगा।
0: चलिए कल फिर ट्राई कीजिएगा,
1: ओके जी।
0: चलिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नहीं ये तो पता चल गया कि अच्छा पहले ही हार नहीं मान जाया करें ना, एंड तक सुना करें क्लिप को, वो एंड में जो ना जब वो रिदम पकड़ते ना तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। वो निमरान भाई ने पहले ही हार मान ली, नहीं तो निमरान भाई ना कुछ डिस्कवर कर ही लेते। अच्छा भाई अब हमारे पास जो है वो किसी ने कुछ तो भेजा है मैसेज, ठीक है सॉन्ग रिलीज हुआ है या नहीं, नहीं? कौन सा सॉन्ग, केड़ा सॉन्ग, केड़ा सॉन्ग भाई? इनका नाम मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन है। सलाम जी के टू सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं कि नहीं? अब ये जो आप मुझसे मांग रहे हैं डिटेल, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये वाली डिटेल मैंने ध्यान नहीं दिया इस डिटेल के ऊपर। अच्छा भाई और कौन है? शहजादा सलीम है, वालेकुम अस्सलाम सफ़ा मैम, वेलकम टू द शो शहजादा सलीम। हाँ जी शहजादा भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई, कॉल क्यों नहीं कर रहे भाई? आप तो गेम खेलते हैं शौक से, हैरत है मुझे कि शहजादा भाई ने कॉल नहीं की। वैसे तो ये शौक से खेलते हैं गेम लेकिन पता नहीं क्यों मूड वूड सही है क्या? CR7 हार गया इसकी वजह से गेम ना खेलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम अपना गम गलत करने के लिए गेम खेलेंगे भाई। तो साथियों अगर आप भी हमारे साथ गेम में शामिल होना चाह रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। लेते हैं कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पर।

0: मैं आपके कौन,
1: हमें आपके कौन, कौन सा गाना है? अरे भाई वाह भाई वाह, फिट चल रहे हैं। अच्छा एक और, एक और, एक और, एक और का, ठीक है। बस तुमको

0: time khatam ho gaya na, time khatam ho gaya. चलिए भाई, not bad. आपने भी 6 का score किया है. आप second number पर हैं. किसके साथ? रईस भाई के साथ खड़े हैं आप. हमारे top scorer जो वो रहे हैं यूसुफ भाई. यूसुफ भाई ने 8 का score किया. वाह वाह शैम्पी वाह. चले नॉट बैड. आपके लिए इतना तो है कि तालियां बजा दी जाए. तालियां शरा सलीम के लिए. तालियां. क्या चीज क्या चीज?
1: सरवर भाई कहाँ वेकेशन गए?
0: सरवर भाई को हमने भेजा है छुट्टी पर. हमने कहा सरवर भाई बहुत टेंशन हो गई है, जाओ जरा रेस्ट रेस्ट कर कराओ. तो इंशाल्लाह 15 तारीख से वो हाजिर हो जाएंगे.
1: जी जी.
0: आप कहते हैं तो वापस बुला लेते हैं.
1: नहीं ठीक है, अभी मैं तो अभी दोपहर को थोड़ा ज्यादा ही कभी रहता हूँ बिजी और कभी फारिक हुआ. तो आज मैंने सुन लिया कि सफा मैम आज है प्रोग्राम में, तो फिर मैंने बोला पार्टी सफेद करना जरूर बनता ही है.
0: चले भाई अच्छा किया आपने कॉल कर ली, हम आपको मिस कर रहे थे. अपना ढेर सारा ख्याल रखे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.
0: तो साथियों आप लोगों की कॉल का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना, थोड़ा सा ब्रेक तो दो. रुको जरा, सबर करो. ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ. सुनते रहें पे 107 दिल से देसी. आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स. अभी के लिए मूड को वाइब को मैच करता हुआ ये गाना. वॉल्यूम बढ़ा लें थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये कहीं दिल के अलग ही कोने पे जाकर लगता है गाना. तुम ही देखो ना. ये क्या हो? आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड.

तो साथियों इसी के साथ मेरा जो है आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। चाहूंगी आपसे चार बातें कहना जाने से पहले। याद रखें साथियों कि आपसे आज सवाल किया गया था कि आप जो हैं अगर जिंदगी में आपके हाथ में रिमोट होता और आपसे कहा जाता कि रिवाइंड का बटन रखें उसके अंदर या पॉज का, कोई एक चूज कर सकते आप, तो आप क्या करते। बात बड़ी मजेदार सी ये है कि सवाल बड़ा रैंडम सा है। जिंदगी में ना रिवाइंड बटन होता है साथियों और ना ही पॉज, लेकिन यादें, सीखने के मौके और नए लम्हे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें आने वाले वक्त के लिए भी प्रिपेयर करती हैं ये चीज़ें। याद रखें कि भाई इनमें से कोई भी चीज़ हमें रियलिटी में तो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आप अपनी रियलिटी को कितना खूबसूरत बना सकते हैं आज के दौर में, अभी के अंदर रहकर वो आपके हाथ में है। उसके लिए आपको किसी रिमोट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी बटन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी रिग्रेट की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोचेंगे ज़िंदगी वैसी ही निकलेगी। और हमेशा ये भी याद रखें कि भाई देखो कोई भी बहुत आसान वाली ज़िंदगी नहीं जी रहा। द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर एंड। तो याद रखें जिस मुश्किल में हमें, जिस ज़िंदगी में हमें आजमाइशों के लिए भेजा गया है, वो भाई इतनी आसानी से तो ना गुजरेगी। उसके अंदर अगर आप सुकून ढूंढेंगे तो आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसी नोट के साथ साथियों आपसे अलविदा चाहूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। आनी तो सबके ऊपर है, अब वो गुजारनी कैसे है ये आपके ऊपर है। मुझे दीजिए इजाजत और मैं जो हूं वो एक बड़े खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। आप सुन रहे थे सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। टाइम फॉर टाइम चेक, एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:02।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: समर स्पोर्ट्स की दुनिया में दोस्तों आप सभी का स्वागत है और मैं हूं फजील। और समर स्पोर्ट्स में आपको सारी जानकारी स्पोर्ट्स के मुतालिक मिलती रहेगी और हर संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा एफएम 107 पे, जहां पर आपको एक एक डिटेल स्पोर्ट्स की दुनिया से मिलती रहेगी। लेकिन इन सब में सबसे भारी जो चीज़ होती है, सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो होता है हमारा सवाल। एक ऐसा सवाल जिसे आप सुनकर थोड़ा उलझते हैं, जिसके जवाब भी आपको पता होते हैं या फिर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा, साथ ही आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है आज स्पोर्ट्स की दुनिया में, चाहे वो क्रिकेट को लेकर बात हो, चाहे वो T20 को लेकर बात हो, चाहे वो 50 ओवर की बात हो, या फिर चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात हो। यार फीफा ने तो ऐसा रुलाया है यार, मैं बयान नहीं कर सकता क्या कुछ सुनने को मिल रहा है। मतलब ऐसी ऐसी टीमें जो हैं वो आगे जा रही जिनको हमने सोचा भी नहीं था, और वो जो बड़ी टीमें हैं जिनको शायद अब तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए था, मतलब ऑब्वियसली आगे बढ़ना ही चाहिए था वो टीमें अब यू नो फीफा वर्ल्ड कप में है ही नहीं। सो राउंड ऑफ 16 भी रैप अप हो चुका है, अब काफ़ी ऐसे मैचेस जो हैं आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी, और जो टीम जीती वो सेमीफाइनल के लिए खेलेगी, और ज़्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है फाइनल के लिए। लेकिन इस बार का दावेदार, इस बार का विनर कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या USA, क्या बेल्जियम, क्या एक बार फिर से अर्जेंटीना जीतेगी, या फिर इजिप्ट का नंबर है। स्विट्जरलैंड और कोलंबिया ने भी किसी भी तरह से कोई कह सकते हैं कि अपनी कमजोरी दिखाई नहीं अभी तक। बाकी क्रिकेट के बारे में भी हम बात करेंगे, इंग्लैंड और इंडिया के बारे में आज मैच होने वाला है, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का सेकंड टेस्ट, क्या कुछ चलेगा सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में, क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 1:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब वक्त है सवाल करने का। सवाल बड़ा ही लाजवाब है, वैसे मुझे लगता है कि इसका जवाब मोस्टली लोगों को पता होकर भी नहीं पता होगा, क्योंकि रीजन है हम ये देखते हैं कि कौन जीतता है लेकिन ये नहीं देखा किससे जीता। ठीक है, तो सवाल करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि ये लाइन मैंने क्यों बोली। सो द क्वेश्चन इज के ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो मार्च 2026 में इंडिया ने जीता था, 10 सेकंड के अंदर बताना ये जवाब, तभी मैं मानूंगा, वरना उसके बाद तो फिर ये मानूंगा नहीं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल मार्च 2026 में जो इंडिया ने जीता था, किस टीम को फाइनल में हरा कर जीता था, ये आपको बताना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662107, जो जवाब दे गया वो जीत गया, लेकिन 10 सेकंड का है। 3, 4, 5, चलो 20 सेकंड दे दिया, ठीक है। जवाब रुकने नहीं चाहिए दोस्त, किस टीम को इंडिया ने फाइनल में हराया और तीसरी लगातार ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम करी मार्च 2026 में, ये आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662107, 6662107। ऐसा अभी एक जवाब तो आया है लेकिन ये जवाब बाबू गलत है। मैं जो बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप जो जवाब दे रहे हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बारे में जवाब दे रहे हैं। खेल है बाबा, खेल है। इसका जवाब मैंने कहा था ना कि पता होकर भी नहीं पता होता, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला गेम था 2024 वाला, तो इस वजह से आपको वो वाले जवाब याद है जो 2024 के पहले वाले, लेकिन सही जवाब आपको याद नहीं आ रहा। 2026 में कुछ और अनोखा हुआ था, वो क्या अनोखा हुआ था इसके बारे में आपको बताना है 666-22-107। एक बार फिर से सवाल सुन लिए हल्के बगैर म्यूजिक के, म्यूजिक बंद हो। सवाल एक बार फिर से, इंडिया ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टाइटल मार्च 2026 को जीत लिया था, फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार तीसरा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था, तीसरा। वैसे 20 सेकंड से तो ऊपर ही हो गए, 10-10 सेकंड करके जो आपने जवाब दिया वो गलत है, मोस्टली गलत है। एहतराम साहब का अभी एक जवाब आया है, सही जवाब है। बाकी आरिफ, फिर मुमताज, एक और भाई हैं, उन्होंने गलत जवाब दिया है। ठीक है, तो आसान तो कर दिया मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत। इंडिया ने किस टीम को फाइनल में हराकर तीसरा लगातार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया 2026 मार्च में, बताइए और जीतिए हमारा भरोसा। 666-22-107। एक और जवाब आया है भाई, तो मतलब अलग ही निकल गए। बाकी लोग जो जवाब दे रहे हैं मैं मानता हूं कि ठीक है, उनका जवाब थोड़ा ज्यादा ही अलग है, लेकिन एक भाई ने तो एकदम ही कहीं दूर चले गए हैं भाई, बहुत दूर चले गए यार, पाकिस्तान। अरे यूरोप की साइड जाकर देखो, कुछ कुछ शायद मिल जाए सही जवाब, पाकिस्तान तो जवाब नहीं है। और अच्छा, मुमताज और बाकी लोगों का, आरिफ का जो जवाब था वो थोड़ा बहुत तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट में इंडल्ज थे, इस वजह से उनको पता है कि कौन सी टीम 2024 में थी, बट 2026 में उनको याद नहीं आ रहा। बट इट्स ओके, यही तो फन है इस गेम का, आपको बताना है 666-22-107। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे यूएसए वर्सेज बेल्जियम के बारे में, अर्जेंटीना वर्सेज इजिप्ट के बारे में, स्विट्जरलैंड वर्सेज कोलंबिया के बारे में, उसी के साथ हम बात करेंगे क्रिकेट और वेस्ट इंडीज वर्सेज श्रीलंका के मैच के बारे में। FM 107 पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
0: सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद RJ फजील, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी अभी FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का और समर स्पोर्ट्स, ये शो जहां पर आपको स्पोर्ट्स की दुनिया की सारी खबरें मिलती हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है फुटबॉल का क्रेज। रात को 12 बजे के बाद एक साथ अगर आपको 20 से 30 लोग शोर करते हुए दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आप मंसूरा में हैं, नजमा में हैं या फिर कैफे के आसपास हैं, जिसके वजह से लोग भीड़ लगाकर वहां पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी फेवरेट टीम ने या फेवरेट प्लेयर ने गोल कर दिया है। इसके वजह से शोर आपको सुनने को मिल रहा है और यही तो मजा है, गेम का मजा यही है कि सारे लोग एक साथ मिलकर बैठे और शोर मचाएं, मजे करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट हो, है ना। फिर साथ में चाय आ रही, क्रसेंट आ रहा, महंगी महंगी चीजें आ रही, दिल खुश हो जाता है। ऐसे में ये मोमेंट हम सबको बहुत ही ज्यादा लाजवाब और यादगार रहते हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, या कहें ऐसे प्लेयर जो खेलते हैं जो बहुत हमारे दिल के करीब रहते हैं, अगर वो अलविदा कह जाए तो बड़ा दुख होता है। ऐसे ही कुछ हुआ है फीफा वर्ल्ड कप की नेशनल टीम जो खेल रही हैं, उनमें से दो ऐसे बड़े प्लेयर जिन्होंने अलविदा कह दिया है और अब वो इंटरनेशनल में या फीफा वर्ल्ड कप में कभी आपको खेलते हुए

0: नहीं दिखाई देंगे और आंसुओं से विदाई दी है जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे। इवन जो ऑपोजिशन था उन्होंने भी आंसुओं से विदाई दी बड़े प्लेयर्स को। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ खास और जबरदस्त होने वाले मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए वर्सेस बेल्जियम, जैसे कहा था राउंड ऑफ 16 का ये मैच, और क्या चल रहा है वैसे, ये मैच जो है वो खत्म हो चुका है जहां पर बेल्जियम ने यूएसए जो होस्ट कर रही है होस्ट कंट्री को 4-1 से हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। वेल, मैच किसने बदला इस पर अगर हम बात करें तो चार्ल्स ने जो शुरुआती मिनट में या शुरुआती हाफ में जबरदस्त दो गोल करे हैं उसकी वजह से यूएसए पर प्योर डोमिनेंस जो है बेल्जियम ने बना लिया था। उसके बाद रोमेलू लुकाकू और हंस ने, इन दोनों ने बाकी के दो गोल्स करके स्कोर किए और यूएसए के कमबैक की उम्मीदों को खत्म कर दिया, 4-1 से हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। वेल, दूसरा मैच भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप देखेंगे कि कतर के रोड पे बेतहाशा एंजॉयमेंट या बेतहाशा सेलिब्रेशन, या फिर आप देखेंगे अर्जेंटीना के फैंस जो सिर्फ एक लोकेशन पे इकट्ठा होंगे और एंजॉय करेंगे। वेल, ये बहुत कम है कि अर्जेंटीना के जो फैंस हैं वो कतर में हैं, ऑब्वियसली हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं है जो इजिप्ट के हैं, और इजिप्ट के रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो यहां पर एंजॉय कर रहे हैं, इन मैचेस को एंजॉय भी करेंगे। राउंड ऑफ 16 में आज मैच है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का। अगर इजिप्ट जीतती है तो बेतहाशा सेलिब्रेशन और कार के हॉर्न्स, फिर उसके बाद झंडे लहराते हुए लोग ये आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें से हैं जो इजिप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का सेलिब्रेशन आपने प्लान किया है तो लेकिन एहतियात से प्लान करें, एहतियात से सेलिब्रेट करें ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। वेल, क्या चल रहा है इस पर बात करते हैं। पिछले साल या कहें 2022, पिछले साल तो नहीं, अच्छा पिछले चैंपियन जो रहे वो अर्जेंटीना, इनका सामना है रेजिलिएंट इजिप्ट से जो अटलांटा स्टेडियम में होने जा रहा है। अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज के तीनों मैचेस जीतकर फुल कॉन्फिडेंस में है। गेम चेंजर इसमें कौन है? लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं और उनका विजन प्योर गेम को कंट्रोल करेगा। लेकिन इजिप्ट के सबसे एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद सलाह जो क्विक काउंटर अटैक से अर्जेंटीना की डिफेंस को अपसेट कर सकते हैं। वेल, ये तो मैच देखने पर पता चलेगा, लेकिन राउंड ऑफ 16 में एक और मैच है विच इज स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया का मैच। वैंकूवर के बीसी प्लेस पर ये एक टाइट टैक्टिकल बैटल होने वाली है। स्विट्जरलैंड ने पिछले मैच में अल्जीरिया को 2-0 से हराया और कोलंबिया घाना को 1-0 से हराकर आई है, तो ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड जबरदस्त पोजीशन पे है। गेम चेंजर जाका, ग्रानित जाका और ब्रील इम्बोलो, ये दोनों मिडफील्ड कंट्रोल करेंगे और इम्बोलो अटैक को लीड करेंगे, ये जबरदस्त जोड़ी है। उसके अलावा अगर हम जेम्स के बारे में बात करें, वो जेम्स इंजरी के बाद होता ना कि शेर अगर घायल हो गया हो तो दोबारा आता और बहुत जोर का पंजा मारता है भाई साहब, तो ये वो दो शेर हैं जो आएंगे और गेम चेंजर या गेम को चेंज कर देंगे। कोलंबिया के दो प्लेयर जबरदस्त, लेकिन जाका और ब्रील जो स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं ये भी हल्के तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन अब उन दो प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो अलविदा कह गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल और नेमार की ब्राजील दोनों ही शॉक लॉसेस के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इस हार्ट ब्रेकिंग एग्जिट के बाद दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी रिटायरमेंट पर बड़े बयान दिए हैं और ये अब दोनों वापस आपको फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। मैच में क्या हुआ पहले वो बात कर लेते हैं। नेमार और ब्राजील का मैच नॉर्वे के साथ जो हुआ, ब्राजील और नॉर्वे का ये नॉकआउट मैच बहुत ज्यादा टाइट चल रहा था। मैच का रुख तब बदला जब नॉर्वे के अर्लिंग हैलैंड ने लेट गेम यानी कि 79th और मेरे ख्याल में 90th मिनट में बैक टू बैक गोल्स स्कोर किए और ब्राजील को हैरान कर दिया। नेमार ने मैच को बिल्कुल आखिरी मिनट में लेकर गए और 100वें मिनट में पेनल्टी पर गोल जरूर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राजील 2-1 से हार, और मतलब कहते हैं ना कि हार एक्सेप्ट कर चुकी थी, कुछ हो नहीं सकता था। और फिर रिटायरमेंट का क्या प्लान था, मैच के बाद 34 साल के नेमार बहुत इमोशनल होकर गए और उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन उनका जो बयान है वो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, अब ये ख़त्म हो चुका है, मैंने अपना सफ़र इसी स्टेडियम यानी कि मेटलाइफ स्टेडियम से शुरू किया और आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये बहुत एक खूबसूरत अलविदा भी है जहां से शुरू किया आखिर में वहीं से खत्म भी किया। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के CR7 की। मैं तो फैन हूं CR7 का, मैसी का नहीं। वो जो लड़ाई होती है ना मेसी और रोनाल्डो में, तो मैं हमेशा रोनाल्डो के साथ रहता हूँ और बहुत दुख के साथ अलविदा कहना पड़ रहा है कि एक बार। वैसे तो बाकी जो मैचेस होते हैं उसमें हम शायद रोनाल्डो को देखें, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं। मैच में क्या हुआ इस पर बात कर ले पहले। पोर्चुगल और स्पेन के बीच का ये ज़बरदस्त मुकाबला था, 90 मिनट तक 0-0 पर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन स्टॉपेज टाइम 91st मिनट में स्पेन ने सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेकर आया, वो माइकल मेरिनो। इन्होंने एक ड्रामेटिक गोल स्कोर किया और पूरे मैच को बिल्कुल पलट कर रख दिया। पोर्चुगल ये मैच 1-0 से हार गया। रिटायरमेंट 41 साल के हो गए हैं, लेकिन जवानी यार एकदम तड़कती बढ़ती, ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ वो और जवान हो रहे हैं। तो 41 साल के हैं रोनाल्डो। मैच से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फर्म किया था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। हालांकि उन्होंने अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से तुरंत रिटायरमेंट नहीं ली है और वो अल नासर के लिए क्लब फुटबॉल खेलेंगे। तो क्लब फुटबॉल तो होता रहेगा, लेकिन फीफा में आप उनको नहीं देखेंगे। उन्होंने ये बात भी कही कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, मैंने फुटबॉल को अपना सब कुछ दिया, जो भी नतीजा है मैं 1000% यानी कि परसेंट साफ दिल से क्लियर कंसाइन से गेम खेलता हूँ, साथ रहता हूँ, गेम में प्रेजेंट रहता हूँ, सब कुछ मैंने झोंक दिया इस मैच में। मैं फुटबॉल इसलिए खेलता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। और इसी के साथ क्रिस्टियानो ने फीफा वर्ल्ड कप से अलविदा कह दिया। वर्ल्ड कप में अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वेल, अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बारे में। तीसरा T20 आज होने वाला है और इस T20 में क्या कुछ होगा ये भी एक खेल है, क्योंकि पहला मैच कोई रिजल्ट नहीं था, दूसरा मैच इंग्लैंड बड़े आसानी से ले गई, बिश्नोई को बहुत कूटा था भाई।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया तीसरा T20 आज ट्रेंट ब्रिज में होने वाला है, सबसे बड़ा लाइव इंकाउंटर है ये। जबकि वर्ल्ड कप फुटबॉल के नॉकआउट मैचेस और रेड बॉल क्रिकेट मैचेस भी बड़े एक्साइटमेंट के साथ चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि इंग्लैंड और इंडिया के बारे में बात क्यों ना हो, भले कितना ही हल्के फुल्के मैच हो। अब यार फुटबॉल के सामने ये तो फीके लगेंगे, लेकिन व्यूअर्स इंडिया के जो हैं वो बढ़ा देते हैं। क्या कुछ चल रहा है इस पर बात कर लेते हैं। सीरीज तो ऑब्वियसली 1-0 से आगे चल रही है इंग्लैंड और टोटल 4 मैच होने, अब 2-2 से बराबर कर सकते हैं, तो लगातार 2 मैच जीतना पड़ेगा एटलीस्ट इंडिया को, तब ही 2-2 से बराबर हो पाएगा। पहला मैच अबेंडेंट हो गया था, दूसरा मैच में इंग्लैंड ने जबरदस्त जीत हासिल करी। 22 बॉल पे 49 रन चाहिए था, आई गेस 24 बॉल पे 49 रन चाहिए। फिर बिश्नोई को जो कूटा है 29 रन भाई, फिर 18 बॉल पे 22 आ गया था। खैर, जेकब ने जबरदस्त इनिंग खेली, हैरी ब्रूक कैप्टेंसी के साथ मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन्स भी बनाते हैं। श्रेयस अय्यर इंडियन कैप्टन पर मिडिल ऑर्डर का संभालने का एकदम बोझ सा आ गया, समझू सैमसन तो है ही नहीं। फिर अब आज क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि अगर इनकी प्लेइंग 11 में रिटर्न यानी कि वापसी होती है तो ये डिस्ट्रक्टिव बैटिंग से पलटवार तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है पिछले मैचेस को अगर देखा जाए। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बारे में बात करें तो क्या चल रहा है। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में चल रहे इस टेस्ट मैच का फाइनल और सबसे क्रिटिकल स्टेज चल रहा है। दोनों टीम्स के स्पिन बोलर्स और डिसिप्लिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहां मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। सो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का जो ये मैच है तगड़ा है, क्यों? क्योंकि अच्छा ये भी है कि होता है ना कि मैच अगर हाथ से निकल गया, छोड़ो यार जाने दो, फिर तो इंसान कुछ करता ही नहीं है, लेकिन दोनों टीम लगी पड़ी है। अगर हम बात करें, चौथा दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। श्रीलंका ने 142 रन की लीड बना ली है सेकेंड टेस्ट में और श्रीलंका 549 पर डिक्लेयर कर चुका था जैसे कि हमने 2 दिन पहले बताया था। और वेस्ट इंडीज पहले इनिंग में 499 ऑल आउट, श्रीलंका दूसरी इनिंग खेल रही है, 92 रन बना लिया 22 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे, और चंदीमल खेल रहे हैं 40 और मेंडिस खेल रहे हैं 30 पर नॉट आउट। वेल, जस्टिन ग्रीव्स ने 180 और शाई होप ने 112 की जबरदस्त पारी खेली, इसकी वजह से 499 तक पहुंच पाए वेस्ट इंडीज, लेकिन छोड़ नहीं रहे भाई ये जो अपने प्लेयर है ना श्रीलंका के, ये छोड़ नहीं रहे। दूसरी इनिंग में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका टीम ने 2 विकेट जल्दी गिराए हैं। दिनेश चंदिमल और कविंदु मेंडिस अभी भी रुके हुए 60 रन की पार्टनरशिप के साथ और खेल खत्म होने तक 92 पर 2 विकेट। आज मैच का फाइनल डे यानी कि 5वां दिन है जहां श्रीलंका तेजी से रन बनाकर वेस्ट इंडीज को टारगेट देने की कोशिश करेगी, लेकिन ये मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी

0: आंसर जो शुरुआत में मैंने सवाल किया था, उस सवाल पर वापस आते हैं। सवाल क्या था? बड़ा ही सिंपल सवाल था दोस्तों। इंडिया ने फाइनल 2026 मार्च में जो मैच जीता था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का, वो किस टीम को हराकर जीता था? इसका जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे मैसेज करना है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: हाँ तो भाई बात कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों ने पहले गलत जवाब दिया, लेकिन अब वो सही की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हरजिंदर ने जवाब दिया था साउथ अफ्रीका लिखा था, ये गलत जवाब है। फिर एहतराम साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हैव अ नाइस डे ब्रो। अंसारी साहब आपको भी दिन, आपका भी दिन जबरदस्त हो। फिर उसके बाद एक और ये जवाब आया बिल्कुल सही है, इनका नाम कल मैंने गलत पढ़ा था शाम के शो में, अली मकसूद। फिर उसके बाद ये है गुलरेज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पाकिस्तान लिखा था सरताज ने लेकिन गलत जवाब, जुल्कैफ ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, मुमताज ने पहले गलत जवाब लिखा था साउथ अफ्रीका और फिर अब सही जवाब लिखा है, निमरान ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, आरिफ अंसारी ने पहले साउथ अफ्रीका और फिर जवाब सही किया, तौफीक भाई की तरफ से सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ बाद में पता चलेगी आपको। फिलहाल अली ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है और अकील ने दिया है गलत जवाब। लेकिन 2026 मार्च में जब इंडिया जीती तो न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड को हराकर नहीं। न्यूजीलैंड अगेंस्ट में थी और न्यूजीलैंड की टीम को हराया था। इंडिया 20 वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में दो बार लगातार बैक टू बैक जीता है, एक 2024 में जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रही थी फाइनल और सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त कैच पकड़ा था, तो अगेंस्ट में कौन था तब? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका। लेकिन 2026 में कौन था? 2026 में इंडिया टी20 वर्ल्ड कप आसानी से जीत लिया उसने और अगेंस्ट में थी द वन एंड ओनली जबरदस्त टीम न्यूजीलैंड। सो ये तो वही वाली बात है कि साउथ अफ्रीका का मैच ऐसा चला कि फिर याद यही था। फिलहाल एक और ही मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जसविंदर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल सही जवाब, न्यूजीलैंड भाईजान। खलील पराशा बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब बहुत ही लाजवाब एकदम सही है। सो अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आज शाम एग्जैक्ट 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? Yes, welcome, welcome, welcome. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है on FM 107. मैं हूँ आपकी एफर अमीता और एस्केप रूम के चैलेंज के लिए. Are you ready? क्या कहते हैं जनाब, क्या कहते हैं? तो जनाब आज कहाँ जाने वाले? वैसे हमने काफ़ी अरसे से ऐसी फीलिंग आती है ना कि कतर में तेज़ बारिश इंजॉय नहीं की है ना, तो हम दुआ करते हैं कि अच्छी बारिश हो, हम इंजॉय करें, हर एक मोमेंट को इंजॉय करें. लेकिन अगर वेकेशंस का टाइम है और आपको मैं कहीं और भेज दूं, मतलब आउट ऑफ कंट्री भेज दूं, सपोज़ मैंने आपको न्यूयॉर्क भेज दिया और वहाँ भी बारिश हो रही है, बट आप उस बारिश में ना इंजॉय नहीं कर पा रहे, उस बारिश में कुछ ऐसा चैलेंज आ गया है कि आपको अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? यस, आज की सिचुएशन ऐसी ही होने वाली है और आज आप किसी नॉर्मल पानी वाली बारिश में नहीं भीगने वाले. आज आप ये दुआ करोगे कि हम बारिश में भीगे ही ना, क्योंकि आज की जो बारिश है दैट्स गोना बी एन एसिड रेन. सो चैलेंज बड़ा कमाल का है और जितने भी लोग केमिस्ट्री में अच्छे हैं, आई शुड से केमिस्ट्री में अच्छे हैं, आज मुझे लगता है कि वो हर एक क्लू को आराम से सुलझा लेंगे. और जिन्हें केमिस्ट्री पसंद नहीं है भाई, आज आपको ना सोच समझ कर हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा और केमिस्ट्री से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एस्केप रूम की सिचुएशन से एस्केप कर पाएंगे. सो नंबर याद रखिए 6622107, 6622107, क्योंकि इसी नंबर के जरिए हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूड रहने वाला है.
5: कलंदर, मस्त कलंदर.
3: अभी भाई देखो टाइम है, थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्योंकि थोड़ा सा लूजन अप हो गए तभी आपको चैलेंज जब मिलेगा तो आराम से सोच पाओगे. ठीक है, फिलहाल इंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। क्रिकेट हो,
3: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स 4 रन,
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे @1 PM,
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
5: की। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A4 अमिता। और आज की एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। देखिए, अभी समर्स का टाइम चल रहा है, लोग वेकेशंस पर इधर उधर जाते हैं एंड

जाहिर सी बात है कि जब आप वेकेशंस पे जाते हो तो यू जस्ट वांट टू बी रिलैक्स्ड, है ना. तो आप आज पहुंचे हैं न्यूयॉर्क सिटी में. सच में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है. आप अपने दोस्तों के साथ हैं, जो कुछ लोग फैमिलीज के साथ गए तो फैमिलीज के साथ हैं. आप उस न्यूयॉर्क सिटी की एक चमकती हुई सड़क पर खड़े हैं, ठीक है. वहीं आइकॉनिक पीली कैब्स और हर तरफ वो फ्लिकरिंग न्यू साइंस, न्यून साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं. आपको बड़ा अच्छा लग रहा है. हर तरफ शॉप्स ही शॉप्स, मतलब यू आर जस्ट इन्जॉइंग द मोमेंट. लेकिन मंजर बड़ा सुहाना लगते लगते कुछ हुआ. थोड़ा सा आप रुके और आपने देखा कि एक खामोशी सी छा रही है. मुझे लगता है जब खामोशी होती है तो एक बड़े तूफान के आने की दस्तक होती है, है ना. अब अचानक से हर जगह सायरन्स गूंजने लगे. यस, सायरन्स गूंजने लगे. आपको समझ नहीं आया क्या हुआ और एकदम से एक अनाउंसमेंट हुआ कि हर 10 मिनट में यहाँ बारिश होगी. उफ, और इस बारिश से हमें बचना है. हर 10 मिनट में हमने देखा एकदम से आसमान में, वो कहते हैं ना, बिजली चमकी. यस, बारिश होना हल्का हल्का शुरू हो गई है. एंड हल्की हल्की जब बारिश शुरू हुई तो हम सब भागे अपना शेल्टर लेने के लिए, कहीं ना कहीं जाकर रुक गए ताकि बारिश में ना भीगे. और ये आपने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये जो बारिश है ना, ये नॉर्मल पानी वाली बारिश नहीं है. इसमें पानी तो है लेकिन इसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, जो आपके बूट्स को सड़क से चिपका कर गला देगा. सो ये एक बड़ी मुश्किल का मंजर हमारे सामने आ गया. भाई देखो, वेकेशंस पे गए थे बड़े खुशी खुशी, वी फेल्ट कि हम न्यूयॉर्क सिटी को इन्जॉय करेंगे, बट सडनली एक सायरन की आवाज़ एंड देन एक अनाउंसमेंट कि हर 10 मिनट में यहाँ बारिश होगी, इससे बचना है. एंड हमने जब देखा कि बादलों में गरज हुई और फिर जब बारिश गिरी तो वो नॉर्मल पानी नहीं था, उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, यानी इट्स एन एसिड रेन. अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, सबवे स्टेशंस. पर अफसोस, वहाँ केमिकल गेट्स लगे हैं. अगर जिंदा हमें बचना है ना, तो हमको एलिमेंट्स की ना जुबान समझनी होगी. यस, तो पहली बूंद जैसे ही गिरनी शुरू हुई, उफ, चारों तरफ वो कहते हैं ना, एसिड की महक हवा में फैल गई. हम थोड़ा सा घबरा गए, हालांकि हम एक शेड में हैं तो एकदम से हमें एसिड रेन ने किसी तरह से परेशान नहीं किया या किसी ना नुकसान नहीं पहुंचाया. अब सामने एक दुकान के साइन बोर्ड पर हमको हमारी पहली, या यूं कहें हमको हमारा पहला क्लू मिला. अब ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी इस पहले क्लू को. जिंदगी हो या केमिस्ट्री, बैलेंस बहुत जरूरी है. एक ऐसी कड़ी है जो बताती है कि पानी मीठा है या कड़वा. 0 से 14 के दरमियान मेरी दुनिया बसती है, ठीक है. 0 से 14, ये नंबर याद रखिए, कि दरमियान मेरी दुनिया बसती है. 7 पर मैं न्यूट्रल हूँ, पर उसके आगे पीछे मैं रंग बदलता हूँ. मैं कौन सा स्केल हूँ? ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है. और हमने साइंस में, केमिस्ट्री में स्पेशली इसे पढ़ा है. और हम अपने घरों में भी जब पानी का लेवल वगैरह चेक करते हैं ना, तो इस स्केल से चेक करते हैं कि पानी कितना सही है. ओके, सो आई रिपीट द क्लू अगेन. थोड़ा सा गौर फरमाइए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि हमें इस एसिड रेन से बचना है, हमें सबवे स्टेशन तक पहुंचना है. सो क्लू नंबर 1 इज, जिंदगी हो या केमिस्ट्री, बैलेंस बहुत जरूरी है. दिस वी नो, एक ऐसी कड़ी है जो बताती है कि पानी मीठा है या कड़वा. 0 से 14 के दरमियान मेरी दुनिया बसती है. 7 पर मैं न्यूट्रल हूँ, पर उसके आगे पीछे मैं रंग बदलती हूँ, ठीक है. मैं कौन सा स्केल हूँ? कम ऑन, थिंक अबाउट इट, गिव मी द राइट आंसर. 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब मुझे मैसेज करें. और अभी भाई ब्यूटीफुल ट्रैक्स आ चुके हैं और ये रेट्रो वर्जन्स के गाने हैं, थोड़ा सा नए अंदाज में एंजॉय कीजिए. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम की आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब एक तो वेकेशंस मनाने के लिए हम न्यूयॉर्क सिटी गए एंड हमने सोचा था कि हम वहाँ पर हो सकता है बारिश एंजॉय करें, शॉपिंग एंजॉय करें, अपने अपनों का साथ एंजॉय करें। बट सडनली जब ये सब एंजॉयमेंट के बारे में हम सोच ही रहे थे, एकदम से सायरन सुनाई देने लगे। एंड व्हेन सायरन्स बजने चालू हुए तो एक अनाउंसमेंट भी हुआ जहाँ पर ये कहा गया कि हर 10 मिनट में तेज़ बारिश होने वाली है और आप उससे बचें। उफ, अब ये बारिश जब शुरू हुई जोरदार थंडर स्टॉर्म के साथ, तो हमने देखा कि ये पानी तो कुछ और ही है, ये वो बारिश नहीं है जिसे हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, इसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि चीज़ों को गला सकता है। अब यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है कि हमको सीधा सबवे स्टेशन तक पहुँचना है। अब वहाँ कैसे जाएं, वहाँ तो केमिकल गेट्स लगे हैं, बट एनीवे हमको भागना है। तो सबसे पहले हमें क्लू नंबर 1 सॉल्व करना था और क्लू नंबर 1 ये है कि एक ऐसी कड़ी है जो बताती है कि पानी मीठा है या कड़वा। 0 से 14 के दरमियान इनकी दुनिया बसती है और 7 पर ये न्यूट्रल हो जाती है, पर उसके आगे पीछे रंग बदलती है। मैं कौन सा स्केल हूँ, ये कौन सी स्केल है, यही मैंने आपसे पूछा और मैंने आपको एक क्लू भी दिया कि ये वही स्केल है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक या कितनी बेसिक है। हमारे लिसनर्स ने कोशिश की, ज़्यादातर हमें जवाब थर्मोमीटर के मिले हैं, कुछ ने एस्केप रूम का मीटर कह दिया और कुछ कह रहे हैं पीएच स्केल, कुछ ने कहा पीएच मीटर। अभी लेटेस्ट में एक जवाब आया है लिटमस पेपर। देखिए आपको ना टिक के रहना पड़ेगा एक ही जवाब पर, ठीक है, वरना आपका नंबर गिनती में नहीं आएगा। सो जिन्होंने भी कहा है थर्मोमीटर और लिटमस पेपर, देखिए आप लोग ना आगे पीछे घूम रहे हैं, वही चीज़ें हैं पर उसका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, मेजरमेंट की ही चीज़ है वो, लेकिन क्या है? ओके, सो आई टेल यू, जिन्होंने पीएच स्केल पीएच मीटर लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्या बात है, आपने पहला लेवल पार कर लिया है जो कि आसान नहीं था। और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए उनके नाम हैं उमर, जावेद, नूर और फातिमा यूसुफ, बिल्कुल लग के सही जवाब देने की कोशिश में। मोहम्मद यूसुफ खान, आरिफ अंसारी, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। और कौन है, मिस्टर राव भी हमारे साथ हैं, ठीक है। तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो धीरे धीरे करके सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद बशारत भी हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है। और कौन है, मोहम्मद अरफात। सो अरफात

वेल में कूद गए. हाँ, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है. सबवे ट्रैक्स के ठीक सामने एसिड का एक बड़ा सा पडल जमा है. वो कहते हैं ना, एक छोटा सा छोटा गड्ढा तो कह सकते हैं, एक मतलब एक छोटा सा तालाब समझ लीजिए, ठीक है. अब आप उसे पार कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो एसिड ही एसिड है. अब इसे पार करने के लिए आपको इसे न्यूट्रलाइज करना होगा. तो क्लू नंबर टू यहां पर आपके सामने आया एंड इसका जवाब आपको देना है. क्लू नंबर टू इज, मैं एसिड का मुख्तलिफ, या यूं कहें ऑपोजिट, नॉट मुख्तलिफ एक्चुअली, मैं एसिड का ऑपोजिट हूँ. और सिंपल मैं वर्ड्स में बोल देती हूँ, मैं एसिड का ऑपोजिट हूँ. जब हम मिलते हैं तो नमक और पानी बनते हैं, ठीक है. बताइए उन सब्सटेंसेस का कॉमन नाम क्या है जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है. अब यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री ही काम आने वाली है गाइस, थिंक अबाउट इट. मैं एसिड का ऑपोजिट हूँ, जब हम मिलते हैं तो नमक और पानी बनते हैं, ठीक है. बताइए उन सब्सटेंसेस का कॉमन नाम क्या है जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है. सो यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर अपने नाम के साथ 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए. मुझे मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक एक बार फिर से दोहरा दीजिए. ओके, सो क्लू नंबर टू पर थोड़ा सा फोकस कीजिए. चाहे दो म्यूजिकल ब्रेक में आप इसका जवाब ढूंढ भी सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं. बेसिकली आपको जवाब सही देना है. मैं एसिड का ऑपोजिट हूँ, जब हम मिलते हैं तो नमक और पानी बनते हैं. बताइए उन सब्सटेंसेस का कॉमन नाम क्या है जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है. Give me the right answer और इस level 2 को पार कर लीजिए. और अभी के लिए by नेहा कक्कड़ and जस्सी गिल आ चुके हैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए. सो एंजॉय द सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ये जनाब इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:02। एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। अब भाई विश मांग लो क्योंकि आज आपको एसिड रेन से बचना है।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: यस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो कैसा लग रहा है आप वेकेशंस पे गए एंड सडनली न्यूयॉर्क सिटी की खूबसूरती इंजॉय कर रहे थे और एक सायरन ने आपको बिल्कुल अलर्ट कर दिया। फिर क्या तेज थंडर स्टॉर्म्स और बारिश। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम इस बारिश में इंजॉय नहीं कर सकते। हमको अपने आप को बचाना पड़ रहा है। क्या किया जाए क्योंकि ये एसिड रेन है। अब यहाँ पर हमें एक एक करके क्लूज सॉल्व करने हैं, जवाब ढूंढने हैं, बाहर निकलना है और बचने का एक ही जरिया है, दैट इज सबवे स्टेशंस। तो अब हमने पहले क्लू को सॉल्व किया, सही जवाब था पीएच स्केल, ठीक है। दूसरा क्लू हमारे सामने आया जिसे लेकर हमारे लिसनर्स लगता थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इट्स टोटली बेस्ड ऑन साइंस, लेकिन ये इजी साइंस है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे जिसका यू नो हमें इंतज़ार है या जिसकी हमें ज़रूरत है। सो क्लू नंबर टू वॉज मैं एसिड का ऑपोजिट हूँ, ठीक है। जब हम मिलते हैं तो नमक और पानी बनते हैं। बताइए उन सब्सटेंसेस का कॉमन नाम क्या है जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब देखो कॉमन नाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल साइंस के लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं तो हमें वैसा ही चाहिए। तो हमारे कुछ लिसनर्स हैं जवाब दे रहे हैं सी वाटर, किसी ने कहा है नमक का पानी, किसी ने लिखा है कोस्टिक, हर कोई अपने अपने जवाब दे रहा है। ओके सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज साइंस के लैंग्वेज में से बेस या एल्कलाइन कहते हैं। तो जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वंडरफुल। कुछ हमारे लिसनर्स अभी हमें जवाब दे रहे हैं, देखिए इस जवाब सुनकर जवाब नहीं देना है। तो जिन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब दिए उनके नाम आइए जरा गिन लेते हैं। फातिमा यूसुफ, ओमर, नूर मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ खान और कौन है, मोहम्मद बशारत एंड देन और कौन है और हैं नियाम। वेरी गुड। तो आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां आप सब के लिए। फैंटास्टिक। दूसरा लेवल भी हमने पार कर लिया है। अब जब आपने सही जवाब दे दिया तो अब

दूसरा मौका आपको मिला, आपने वहाँ रखा जो बेकिंग सोडा था, ठीक है, वो एसिड पर डाला और रास्ता साफ हो गया, ठीक है. अब आप सीधा सबवे स्टेशन पे पहुँचे, अब ट्रेन के दरवाजे तक पहुँच गए लेकिन डोर लॉक्ड है. अब क्या किया जाए, मतलब अब बिल्कुल आखिरी एग्जिट है, अगर ये डोर्स नहीं खुले तो फिर हम कहाँ जाएंगे बच के, हमें बच के निकलना है. सो वी हैव टू गेट इनसाइड, ट्रेन में हमें जाना है. तो क्लू नंबर 3 ट्रेन के दरवाजे पर लिखा है, अब इसे ध्यान से सुनिए. आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड ईजी वन एंड डेफिनेटली यू कैन डू दिस. ओके, सो क्लू नंबर 3 इज, मैं वो केमिकल सिंबल हूँ जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है. मैं पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हूँ. मेरा सिंबल क्या है ये आपको सोचना है. मैं इस पूरे यूनिवर्स का सिंबल, मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हूँ. मेरे बिना पानी भी नहीं बन सकता. हिंट देखो मिल गई है आपको कि मेरे बिना पानी भी नहीं बन सकता. वो कौन सा एक केमिकल सिंबल है, वो कौन सा केमिकल है, कम ऑन. मैं वो केमिकल हूँ जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है. मैं पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हूँ. मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हूँ और मेरे बिना पानी भी नहीं बन सकता. क्या हो सकता है वो, कम ऑन थिंक. सही जवाब देना है आपको 6622107 पर, 6622107. एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग सही जवाब देकर आगे बढ़ पाते हैं और आज इस एसिड रेन वाली सिचुएशन से बच के निकल पाते हैं. देखिए गुड लक है आपको, है ना. फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस यस यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम पर आप सभी का इस्तकबाल है। एंड आई नो आज की जो सिचुएशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग लग रही है। हमारे लिसनर्स ये भी कह रहे हैं कि अमिता मतलब आज क्या, मतलब इतना टफ क्यों। देखिए जहाँ साइंस आता है ना वहाँ पे आसानी भी होती है और टफ भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा हमें सोच समझ के जवाब ढूंढने हैं। देखो आपके पास टाइम भी होता है, म्यूजिकल ब्रेक्स भी होते हैं, आप हेल्प भी ले सकते हैं, बस सही जवाब और एस्केप रूम से आप बाहर है कि नहीं। वेल, आज की सिचुएशन कि भाई आप वेकेशंस मनाने के लिए गए न्यूयॉर्क सिटी में, फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे, सडनली बारिश शुरू हुई और ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, इट वॉज एन एसिड रेन। परेशान तो आप हुए, आपको अपनी जान बचानी है क्योंकि कोई गलना नहीं चाहता ऐसे ड्रेन की चपेट में आके, है कि नहीं। तो फिर हमें क्लोज सॉल्व करने थे और सबवे स्टेशन एक लौता रास्ता है बचने का, वहाँ हमें जाके ट्रेन पकड़नी है। ओके, तो सबसे पहला क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया, दैट वाज पीएच स्केल। क्लू नंबर टू हमने सॉल्व किया, उसका जवाब था बेस अल्कलाइन। उसके बाद आया क्लू नंबर थ्री, क्योंकि जब हमने दो सही जवाब दिए तो हम सबवे स्टेशन में भी पहुंच गए, ट्रेन के दरवाजे के सामने भी पहुंच गए, लेकिन दरवाज़ा लॉक है और वहाँ क्लू नंबर थ्री हमको मिला। एंड आई कैन सी हमारे लिसनर्स नॉन स्टॉप जवाब दे रहे हैं। ओके, लिसन टू इट केयरफुली। ओके, क्लू नंबर थ्री क्या है, फिर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सही जवाब यूं चुटकियों में मिल जाएगा। ओके, मैं वो केमिकल सिंबल हूँ जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हूँ, या यूँ कहें मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हूँ। मेरे बिना पानी भी नहीं बन सकता। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है, आई एम वेरी सर्टेन कि हर किसी को पता है उसमें कौन सा एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल होता है। कम ऑन, यू कैन गिव द आंसर। 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर। उस पर अपने जवाब अपने नाम के साथ हम तक पहुंचाइए। एंड ये आखिरी जो पड़ाव है हमारे शो का, आखिरी चैलेंज, इसे पार कीजिए, ठीक है। क्लू नंबर थ्री एक आखिरी बार मैं दोहराऊंगी और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके मुझे सही जवाब ही मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब आज की इस एसिड रेन से बच के निकल जाएं। ऑलराइट, सो क्लू नंबर थ्री अगेन, मैं वो केमिकल सिंबल हूँ जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं पीरियो

पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हो, मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हूँ. देखो अगर ये याद नहीं आ रहा है तो ये याद करने की कोशिश करो कि इसके बिना पानी भी नहीं बन सकता. कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर. और ये आखिरी मौका है और उसके बाद आप सबवे स्टेशन में ही कैद हो जाएंगे अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो. कम ऑन गाइस, 666-22-107 इज आवर नंबर. इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दें और अभी बने रहे एस्केप रूम पर अपनी एफ और अमृता के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ भाई, वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम की सिचुएशन से एस्केप करना है हमको आज, ठीक है। आज वेकेशन पे हम बड़ी खूबसूरती के साथ गए न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन वहां जाके फंस गए क्योंकि हो गई एसिड रेन। हाँ, और अब तीन सवालों के सही जवाब ही हमें उस जगह से निकाल सकते हैं, और सबवे स्टेशन हमारा एक लास्ट, वो कहते हैं ना, एग्जिट है, ठीक है। तो हमने पहला क्लू सॉल्व किया जिसका जवाब था पीएच स्केल, दूसरे क्लू का सही जवाब वाज बेस एल्कलाइन, तीसरा क्लू जो हमको मिला उसके लिए हमारे लिसनर्स हो रहे हैं कन्फ्यूज। देखिए भाई, कन्फ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो क्लू नंबर थ्री का यूं जवाब आप दे देंगे। चलिए, आखिरी बार दोहराने का वक्त। मैं वो केमिकल सिंबल हूँ जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हूँ। मैं पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हूँ। मेरे बिना पानी भी नहीं बन सकता, ठीक है। एंड आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं ऑक्सीजन, फिर कुछ लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, हाँ। चलिए मैं बताती हूँ, सही जवाब है हाइड्रोजन। कम ऑन, H2O, कैसे भूल सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। देखिए, जिन्होंने सही जवाब दिया ये उनके नाम फटाफट गिनाते हैं। उमर ने सही जवाब दिया है, फातिमा यूसुफ ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद बशारत ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है, मिस्टर राव ने भी सही जवाब दिया है, जहीर ने भी सही जवाब दिया है, महफूज ने भी सही जवाब दिया है, खलिल ने भी सही जवाब दिया है, मनीष ने भी सही जवाब दिया है, एंड इनकी प्रोफाइल में इनका नाम है अयूब। ओके, अयूब ने भी सही जवाब दिया है, और कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, उनका नाम है समी, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सो आंसर ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, जैसे ही आपने सही जवाब दिया, जिस ट्रेन के सामने आप थे, मेट्रो ट्रेन के सामने, उसके दरवाजे अब खुल चुके हैं और आप उस ट्रेन के अंदर अब जा चुके हैं। क्या बात है। और अब एसिड रेन जो तेजी से गिर रही है न्यूयॉर्क सिटी में, भाई उस तबाही से आप बच गए हैं। और इसी बात पे हमारे जो केमिकल जीनियस हैं, वो कौन है जिन्होंने लगातार हमें सही जवाब दिए और ये साबित कर दिया कि उनका दिमाग किसी भी एसिड से ज्यादा तेज है। उनका नाम है उमर। भाई मुबारका मुबारका, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, वेरी नाइस। और सही जवाब देकर आज के आप लकी विनर बन चुके हैं। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और हमारे वो सारे लिसनर्स के लिए जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे जवाब सही हो या गलत, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ थे और आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन से हम बाहर निकले। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो एस्केप रूम की सिचुएशन का, वो कहते हैं ना, वो नमक नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर दोपहर 1:30 बजे हमारा जो एस्केप रूम है, एक नए चैलेंज के साथ आपके सामने आएगा। सो वेट फॉर दैट। और अभी के लिए क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे आप ढूंढ सकते हैं, वहां हमसे जुड़ सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द डे फिलहाल इंजॉय कीजिए, और जाते जाते कहना बनता है हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। देखो, कहीं भी चलो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ठीक है। फिलहाल एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू एफएम।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन एफएम 107, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ के उन छुपे हुए एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगियों पे असर डाल रहे हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जीरो वेस्ट किचन, यानी ऐसा किचन जहां खाना बनाते वक्त वेस्ट को मिनिमम या बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जाए। अब किचन घर का दिल होता है भाई, लेकिन यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा फूड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और वाटर वेस्ट जनरेट होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स फूड वेस्ट होता है और उसका ऑलमोस्ट 60% घरों से आता है, रेस्टोरेंट से नहीं। साथियों, जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और वहाँ हाफ यूज्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह पड़ी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, लेफ्ट ओवर जो चावल होते हैं या एक्सपायर्ड सॉसेस अक्सर औकात में नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पुराना खाना वेस्ट हो जाता है और नया पैकेजिंग वेस्ट भी एड हो जाता है उसके अंदर। तो भाई, इको स्विच अप्रोच कहता है कि पहले एग्जिस्टिंग खाने को तो यूज कर लो भाई, जो पड़ा हुआ है बेचारा मिस्कीन फ्रिज में आपकी राह देख रहा है, फिर बेशक नया खाना खरीद लेना अगर भूख लगे तो। सिर्फ ये हैबिट अपनाने से आपके हाउस होल्ड फूड वेस्ट में तकरीबन 20-30% तक कमी हो सकती है। अच्छा, अब ना मैं आपको कुछ मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, किचन वेस्ट की हिडन रियलिटी बताती हूँ, ठीक है? देखें, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको किचन हैबिट्स पर रीथिंक करने पर मजबूर कर देंगे। पानी का ऑलमोस्ट 25% घरों में सिर्फ फूड प्रिपरेशन और डिश वॉशिंग में यूज हो जाता है। एक सिंपल बनाना पील को कंपोस्ट होने में 2-5 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर लैंडफिल में हो तो भाई और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, अगर दुनिया की फूड वेस्ट एक कंट्री होते ना, सारा फूड वेस्ट एक कंट्री में डाल दिया था और वो उसे एक कंट्री बना दिया था, एक कंट्री होता वो, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूएसए और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन होल्डर होता, वो इतना बड़ा स्पेस बन जाता है उसका। अब भाई आप पूछेंगे कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका हमारा नजरिया है जीरो वेस्ट माइंडसेट। देखिए, इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल सा है, किचन को वेस्ट फ्री बनाना मुश्किल नहीं है, बस माइंडफुल बनना होता है। जब हम जीरो वेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि पैसा भी सेव कर रहे होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक एवरेज फैमिली अपने ईयरली ग्रोसरी बजट का 10% सिर्फ वेस्ट फूड की वजह से लूज कर देती है। अगर हम प्लानिंग और स्टोरेज बेटर करें ना अपना, तो ये लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। जरा सोचिए ना, आप सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस माइंडसेट में ज्यादा सब्जियां, फ्रूट और स्नैक्स ले आते हैं, जस्ट इन केस में कि आपका माइंड होता है भाई क्या पता हम इस्तेमाल करेंगे। घर आकर 3 दिन तक सब यूज नहीं होता, 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आधे आइटम तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सब्जियां और फ्रूट हैं तो वो जल्दी गल सड़ जाते हैं। देखिए, मैं इको स्विच कहता है कि शॉपिंग लिस्ट के बगैर ग्रोसरी शॉपिंग एक वेस्ट जनरेटर मिशन बन सकता है। देखिए, प्लानिंग सिंपल सॉल्यूशन है, जो फ्रिज में है उसी के अराउंड मील्स अपने डिजाइन करें और जो चाहिए सिर्फ वो ही लेकर आए। अब मैं आपको चलते चलते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जीरो वेस्ट किचन बनाने के लिए। तो भाई, पहली टिप ये है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करें, पुराना खाना पहले यूज करें और फिर बाद में दूसरा खाना। दूसरी टिप है, कंपोस्टिंग स्टार्ट करें ना किचन वेस्ट के लिए, जैसे फ्रूट पील और वेजिटेबल स्क्रैप्स, इनके ऊपर कंपोस्टिंग स्टार्ट करें। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक रैप की जगह रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें। चौथा, पोर्शन कंट्रोल करें ताकि ओवर कुक से वेस्ट ना हो कोई भी सामान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली रीयूज करें, जैसे लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस या वेजिटेबल सूप, ये भी बन सकता है। साथियों, देखिए, जीरो वेस्ट किचन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुकिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें। जब हम खाने को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम उसे वेस्ट नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब फैमिलीज मील प्लान करती है ना, तो उनका फूड वेस्ट नियरली हाफ हो जाता है और कुकिंग स्ट्रेस भी कम होता है। तो भाई हमारा कंक्लूजन ये है आखिर में कि भाई इकोसिस्टम का सिंपल मैसेज ये है कि किचन सिर्फ कुकिंग स्पेस नहीं होता बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट का सेंटर होता है। हर छोटी आदत जैसे लेफ्ट ओवर्स यूज करना, वेस्ट सेग्रीगेट करना और कंपोस्ट बनाना, ये सब कुछ मिलकर एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो भाई अगली बार जब आप किचन में एंटर करें ना, तो एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, आज मैं कितना वेस्ट अवॉइड कर सकता हूँ। तो साथियों इसी के साथ मैं हूँ सफा इको स्विच में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहाँ हर मील सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल डिसीजन होता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है खाना शेयर करने की अहमियत पर। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। खाना शेयर करना सिर्फ एक सोशल हैबिट नहीं बल्कि एक इबादत है जो रहमत और बरकत का सबब बनती है। जब हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं तो ना सिर्फ किसी की ज़रूरत पूरी होती है बल्कि दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये छोटा सा अमल लोगों को करीब लाता है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोच पैदा करता है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी चीज़ों तक महदूद रहते हैं लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। आज का अमल ये है कि अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे वो घर का फर्द हो या फिर कोई ज़रूरतमंद। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: और आज मैं बात कर रही हूँ एक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की और ये है AI companions, your future personal assistant. सुना है आपने इसका नाम? देखिए, आजकल हम AI को तो खूब अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। AI को हम एक डिजिटल टूल समझते हैं, जो कि ठीक भी है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कमांड्स फॉलो करता है। हम सीरी से सवाल पूछ लेते हैं, एलेक्सा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह देते हैं, चैट GPT से हम आंसर्स ले लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 2030 तक AI सिर्फ एक असिस्टेंट ना रहे बल्कि एक रियल कंपेनियन बन जाए, एक दोस्त जो आपको समझे, आपके साथ ग्रो करे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो कैसा लगेगा? सोच के थोड़ी सी उलझन होती है। लेकिन फ्यूचर का AI सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एंटिसिपेट भी करेगा। मतलब आप बोलने से पहले

0: वो समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या. AI Companion. जी हाँ, AI Companion का कॉन्सेप्ट है क्या. देखिए, AI Companion असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, आपकी आदतों को समझने के लिए, आपके रूटीन को ट्रैक करे, आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे. ये AI सिर्फ डेटा पर काम नहीं करेगा, ये इंसान की तरह इंटरैक्ट करेगा. अगर आप रोज सुबह एक ही वक्त उठते हैं तो AI आपका अलार्म उससे पहले ही एडजस्ट कर देगा ताकि आप नेचुरली उठ सकें. अगर आपका दिन हेक्टिक हो, AI ऑटोमेटिकली आपके स्केड्यूल में ब्रेक्स ऐड कर देगा जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सके. फ्यूचर का जो AI है वो सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड नहीं होगा बल्कि इमोशंस को भी समझेगा. अगर आप सैड हो, अलेक्सा से बात करो तो वो आपको उसके जवाब देगा. लेकिन कल का AI आपकी टोन, आपकी आवाज और आपके बिहेवियर से समझ जाएगा कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में है. उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि आप स्ट्रेस में हो. अगर आप थके हुए हैं, AI आपको रेस्ट सजेस्ट करेगा. अगर आप अपसेट हैं, तो AI कामिंग म्यूजिक आपके लिए प्ले करेगा. अगर आप एंशियस हैं, AI ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग सजेशंस आपके लिए देगा. ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि AI अब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने के करीब आ चुका है. दोस्तों, AI कंपेनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद अभी हमारे और आपकी सोच से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे अडॉप्ट करना ही है. कभी ना कभी AI को अपना कंपेनियन तो बनाना ही है. AI कंपेनियन सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हेल्थ केयर में ला सकता है. सोचिए, आपके पास एक AI हो जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसे एनालाइज कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है. अगर सिस्टम को कोई अनयूजुअल चेंज नजर आता है तो फौरन आपको अलर्ट मैसेज भेज देता है. तो ये सारी चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी. अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो आप अनयूजुअल थकान फील करते हैं, AI डॉक्टर को नोटिफाई करेगा या ऐप को चेकअप के लिए सजेस्ट करेगा बिफोर इट कम्स सीरियस. इसका मतलब है कि फ्यूचर मेडिसिन ज्यादा प्रिवेंटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव नहीं रहेंगी. हर चीज मॉनिटर करना, हर चीज देखना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल एस्पेक्ट है. AI कंपेनियन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक डिजिटल दोस्त जैसी फील कराएगा. लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, थॉट्स डिस्कस करेंगे. आज भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन कल हो सकता है कि ये लोग अपने AI कंपेनियन से डायरेक्टली बात करें. क्या AI इंसान की जगह ले सकता है? ये सवाल हमारे जहन में बहुत बार आता है. जवाब है नहीं. AI सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है. हर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी होते हैं और उसके फायदे भी, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी प्राइवेसी के इश्यूज तो क्रिएट करती है. वहीं AI क्या डिसाइड करेगा और कैसे करेगा, ये सोचना थोड़ा सा अभी के लिए डिफरेंट और डिफिकल्ट है. लेकिन हाँ, AI फ्यूचर, AI कंपेनियन जो है वो फ्यूचर तो है. ये मशीन इंसान के बीच में एक नया रिश्ता क्रिएट करने के लिए तैयार है. 2030 तक हो सकता है कि हम सिर्फ डिवाइस के साथ नहीं बल्कि डिजिटल कंपेनियन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. ये कंपेनियंस हमारी हर जरूरत समझे, हमारी हेल्थ का ख्याल रखे, हमारी लाइफ को आसान बनाए. लेकिन साथ ही ये भी सवाल होगा, क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमें? भारत, AI हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम किस तरह से इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं इसका पता नहीं. फिलहाल तो मेरा मकसद आपको डराना या घबराना या किसी तरह से टेंशन में लेकर आना नहीं है, बस कहीं ना कहीं आपकी सोच को और आपको जहनी तौर पे तैयार करना है टुवर्ड्स 2030, जो कि फ्यूचर है जिसे हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो अडॉप्ट करना ही है. फिलहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो चुका है कि मैं आपसे इजाजत ले लूं. इस वादे के साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात लेकर आपके लिए मैं हाजिर होगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: سنیے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے فیوچر کی آواز، قطر کا کل، کلین، گرین اینڈ فل آف لائف. یہ کل کوئی سپنا نہیں ہے، اٹس اے پرومس، پرومس آف قطر نیشنل ویژن 2030. اور اس پرومس کو ریالٹی بنانے کا سفر وہی ہے قطر گرین بیٹ. ہم کیسے بدلیں گے، کیسے انوویٹ کریں گے، کون سے چھوٹے اسٹیپس بگ امپیکٹس لائیں گے؟ ہاؤ کین یو میک اے ڈفرنس؟ فرام اسمارٹ سٹیز ٹو سیونگ پریشس واٹر، ڈیزرٹ کو گرین کرنے کے آئیڈیاز سے لے کر سسٹینیبل لیونگ تک، ہم ایکسپلور کریں گے ہر گرین کارنر آف قطر. مطلب سمپل ٹپس، کول ہیکس، انسپائرنگ اسٹوریز فرام قطر.
6: سوچو مت، جڑ جاؤ، بی پارٹ آف دا کانورسیشن جو قطر کو بنا رہا ہے لیڈر ان سسٹینیبلٹی. ٹیون ان ٹو قطر گرین بیٹ وتھ اے فار امیتا. فیوچر کی آواز آج سنو صرف FM 107 پر، دل سے دیسی.
7: السلام علیکم، بہت بہت استقبال ہے آپ سبھی کا آن FM 107 پر. میں ہوں آپ کی امیتا آپ کے ساتھ، اور آپ کو لے کے چل رہی ہوں آج قطر گرین بیٹس کے ایک نئے نویلے ایپیسوڈ میں. تو جناب، جب آج میں اسٹوڈیو آ رہی تھی تو میں نے اپنی گاڑی روکی اور صرف ایک منٹ کے لیے باہر کھڑی ہوئی. سورج کی وہ پہلی کرن جب چہرے پر پڑتی ہے نا، تو اس میں ایک عجیب سی طاقت، ایک وہ کہتے ہیں نا شکتی، محسوس ہوتی ہے. آج کی روشنی صرف چمک ہی نہیں رہی ہے جناب، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، جیسے یہ قطر کی مٹی سے کوئی پرانا وعدہ نبھا رہی ہو. یس، صدیوں سے اس مقدس سرزمین کے لوگوں نے ایک رشتہ نبھایا ہے اس آسمان کے ساتھ. ہمارے بزرگوں نے، ان دریا دلوں نے، ستاروں اور سورج کی مدد سے ریگستان کے ٹیلوں، یا یوں کہیں ڈیونز اور سمندر کی لہروں میں اپنا راستہ ڈھونڈا ہے. The sun was their compass اور ان کا گائیڈ ہوا کرتا تھا. لیکن آج وقت بدل گیا ہے. وہی آسمان، وہی پرانا سورج آج ہمیں صرف راستہ نہیں دکھا رہا، وہ ہمیں انرجی دے رہا ہے، وہ ہمیں طاقت دے رہا ہے ہمارے گھروں کو روشن کرنے کی اور ہماری گاڑیوں کو چلانے کی. ہمارے پوروجوں نے سورج کو دیکھ کر راستہ طے کیا تھا، اور آج ہم سورج کی بدولت اپنا فیوچر طے کر رہے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل سائیکل، ڈونٹ یو تھنک؟ वैसे नेविगेशन से शुरू होकर जनरेशन तक का ये सफर वाकई में बेमिसाल है।
5: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
7: कतर ग्रीन बीट। हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां सोलार इरेडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर मैं सच कहूं तो एक वक्त था जब हम गर्मी से बचते थे। समर मंथ्स मतलब ये हमें बस ऐसा एहसास कराते थे कि बस शेड ढूंढना है। सूरज को एक एडवर्सरी, एक दुश्मन की तरह हम देखने लगे थे कि अरे मतलब क्योंकि सूरज के आते ही हमें थकान हो जाती है, गर्मी बहुत लगती है, तपिश हो जाती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। पर आज ट्रांजिशंस हो रहे हैं। अंडर द कतर नेशनल विजन 2030 हमने अपना नजरिया बदल दिया है। हम इस गर्मी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी, अपना एलाय बना रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि वो धूप जो हमें चुभनी चाहिए थी, वही धूप अब कतर के सस्टेनेबल फ्यूचर की बुनियाद बन रही है। वी आर गोइंग बियॉन्ड द ऑयल एंड गैस। हाँ जी, और ये बहुत जरूरी है समझना कि सिर्फ हमारा कतर एक मैग्निफिसेंट स्काई स्क्रेपर्स की जगह नहीं है। यहाँ हम अब उन छोटे छोटे फोटॉन्स की बात करेंगे, यूं कहे कर रहे हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवल करके आते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को ग्रीन बना सके। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, क्या कतर वाकई ग्लोबल सोलर लीडर बन सकता है? क्या एक ऐसी इकोनॉमी जो हाइड्रोकार्बन्स पर खड़ी है वो सूरज की रोशनी पर शिफ्ट हो पाएगी? बल मेरा जवाब हाँ नहीं है। मेरा जवाब है कि ये तो शुरू हो चुका है। यस, लुक अराउंड यू। अल खरसा से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक बसेस तक, कतर इज नॉट जस्ट ड्रीमिंग, कतर इज डिलीवरिंग। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। ये जो रेडिएंट रेवोल्यूशन है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, ये हमारी लेगेसी की बात करती है। हम अपने आने वाली नस्लों या यूं कहें अपनी जनरेशंस को क्या देकर जाएंगे? एक ऐसा कतर जो कुदरत की दी हुई हर नेमत को शुक्रगुजार करता है और उसका सही इस्तेमाल करना जानता है, या फिर ऐसा कतर जो बस बढ़ना जानता है और जनरेशन का ख्याल नहीं रखता? भाई देखे, मैं तो कहूंगी हमारा कतर ऐसा है जो हर एक छोटी चीज का ख्याल रखते जा रहा है। आज कतर ग्रीन बीट के इस एपिसोड में हम सूरज की इस अजीम शक्ति, इस अजीम पार को डीकोड करेंगे। हम बात करेंगे उस अल खरसा मावल की जो स्पेस से भी दिखाई देता है। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के बिल कम कर सकते हैं तशीद के टिप्स के साथ। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइलेंट और क्लीन हो रही है। तो कहीं नहीं जाना है, आपने बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
7: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक टू कतर ग्रीन बीट्स। मैं हूँ अमिता आपके साथ। टाइम हो चला है हमारे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का, द ग्रीन वायर का। और आज का डेटा वाकई बहुत ब्राइट है। यस, कतर एनर्जी की जो अपडेटेड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी है, उसका मकसद पता है क्या है? 2035 तक 5 यानी कि 5 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी हासिल करना। ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ मैसिव लीप। अब सिर्फ एक छोटा प्लान नहीं बल्कि कतर एनर्जी रिन्यूएबल सॉल्यूशंस ने आईसी सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। रास लफान और मेसईद इंडस्ट्रियल सिटीज में 2 बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं। यस, जो हमारे सोलर फुटप्रिंट को डबल कर देंगे। और सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, अगर आप दोहा की सड़कों पर देखें तो आपने बदलाव देखा ही होगा। यस, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। 800 यानी 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस, वर्ल्ड कप के दौरान तो ये था ही, पर आज भी ये बसेस साइलेंट और क्लीन एनर्जी के साथ हमारे शहर में चल रही हैं। इन्हें सपोर्ट करने के लिए कारामा और तर्शीद ने ग्लोबल ईवी चार्जिंग इनिशिएटिव के तहत 1000 यानी 1000 स्टेशंस का टारगेट रखा है। हम एक नेशन को रियल टाइम में प्लग इन होते देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, ये पूरा का पूरा एक्शन है। तो आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स और यहाँ हमारी बातें बड़ी कमाल की हो रही हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट की। यस, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जो दोहा की चहल पहल से थोड़ा दूर है पर हमारे फ्यूचर के लिए सबसे करीब है। तसव्वुर कीजिए कि आप दोहा से निकलते हैं और तकरीबन 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ड्राइव करते हैं। शहर पीछे छूट रहा है और चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत है। तभी अचानक होराइजन पर आपको कुछ चमकता हुआ दिखता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक नीला समुंदर लहरा रहा है, पर ये पानी नहीं है। ये है अल खरसा सोलर पीवी प्लांट, एक ऐसा अजीम लैंडमार्क जो इतना बड़ा है कि शायद आप इसे स्पेस से भी साफ देख सकते हैं। अल खरसा सिर्फ एक सोलर फार्म नहीं है, ये कतर का गर्व है या यूं कहे प्राइड है। 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये प्लांट 800 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। 800 मेगावाट, इसका मतलब समझते हैं आप? पीक टाइम पर ये कतर की टोटल पावर डिमांड का 10% तक पूरा कर सकता है। लेकिन जो चीज इसे वाकई मार्वलस बनाती है वो इसकी टेक्नोलॉजी है। वहाँ 2 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं। जी हाँ, पूरे 20 लाख पैनल्स। जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ कांच और सिलिकॉन की चमक दिखती है। और ये कोई आम पैनल्स नहीं है, इन्हें कहते हैं बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स। बाइफेशियल मतलब दो चेहरों वाला। इनका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि ये सिर्फ ऊपर से आने वाली सीधी धूप को ही नहीं पकड़ते बल्कि हमारे रेगिस्तानी मिट्टी जो धूप रिफ्लेक्ट करती है ना, उसे भी ये पैनल कैच कर लेता है, उस रोशनी को बिजली में बदल देता है। इट्स लाइक डबल द पावर फ्रॉम द सेम सन। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसी जगह पर सोलर पैनल लगा है तो कतर में जब डस्ट स्टॉर्म वगैरह होते हैं तो धूल धक्कड़ बहुत हो जाती है, तो ये पैनल्स साफ कैसे रहते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर पैनल्स पर मिट्टी की एक बारीक परत भी जम जाए तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। और इतने बड़े एरिया में इंसानों का जाकर साफ सफाई करना, इट्स नॉट ईजी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? अल खरसा में रोबोटिक क्लीनिंग आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तसव्वुर कीजिए, रात के सन्नाटे में जब पूरा कतर सो रहा है, ये रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। ये पैनल्स के ऊपर बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म की तरह ग्लाइड करते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये वाटरलेस क्लीनिंग है। हमारे खुश्क या यूं कहें ड्राई इलाके में पानी की कीमत हम सबसे बेहतर जानते हैं। ये रोबोट्स बिना एक बूंद पानी खर्च किए सिर्फ अपनी रोबोटिक ब्रशेस से सारी धूल साफ कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्योर क्लीन एनर्जी, जहां हम एनर्जी बनाने के लिए भी कुदरत के रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते। लेकिन जनाब, ये सब मेहनत क्यों? सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। अल खरसा प्रोजेक्ट अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 26 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को रोकेगा। 26 मिलियन टन्स, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम इसे ट्रीज से कंपेयर करें तो हमें करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे इतना कार्बन ऑफसेट करने के लिए। ये है कतर की वो तरक्की जो हमारी आने वाली नस्लों को ध्यान में रखकर की जा रही है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, तो कतर ग्रीन बीट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह की बातों को आपके सामने लेकर आए। वैसे अभी तक हमने बात की अल खरसा के अजीम सोलर प्लांट की, अब ये काफी इंस्पायरिंग है, इजंट इट? लेकिन अभी एक तरफ वो लाखों सोलर पैनल्स हैं जो देश की तकदीर बदल रहे हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के काम है। मैं अपने छोटे से फ्लैट में या अगर मैं अपने विला की बात करूं तो वहां मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं जिससे हम हमारे कतर के एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें? याद रखिए, वो कहते हैं ना कि दरिया या रिवर हमेशा छोटी छोटी बूंदों से बनता है. सुकारमा और तशीद मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है. और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के किचन और बेडरूम से इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कमांडर बन सकते हैं. मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ बड़े ही कमाल के गोल्डन रूल्स जो आपकी पॉकेट और हमारे प्लैनेट दोनों को खुश रखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले रूल नंबर वन, इसे मैं कहती हूँ द 24 डिग्री रूल. हाँ जी, तो कतर की गर्मी में एसी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और ये सब हम जानते हैं. पर क्या आपको पता है कि हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कूलिंग में चला जाता है. हम अक्सर घर आते हैं, गर्मी लगती है और सीधा एसी को 16 या 18 डिग्री पर सेट करके चला देते हैं. पर जनाब, हम सोचते हैं कि इससे कमरा ठंडा हो जाएगा. नहीं, ये एक मिथ है. एसी का कंप्रेसर तब तक फुल स्पीड पर चलता है जब तक वो टारगेट टेम्परेचर अचीव ना कर ले. 18 डिग्रीज तक पहुंचने में कंप्रेसर पर जो बोझ या यूं कहें लोड पड़ता है वो ना सिर्फ बिजली खपाता है बल्कि मशीन की जिंदगी भी कम कर देता है. वेल, एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस ये स्मार्ट जोन है. इस टेम्परेचर पर आपको बेहतरीन ठंडक मिलेगी और आपका कंप्रेसर ओवरड्राइव में नहीं जाएगा. सोचिए, सिर्फ 2-3 डिग्रीज का फर्क आपकी मशीन के बिल में कितनी बचत कर सकता है. इट्स अबाउट बीइंग कूल और साथ में स्मार्ट भी. दूसरा रूल है द स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन. हाँ जी, क्या आपने अपने घर के बाहर वो नया डिजिटल मीटर देखा है? अगर कारमा ने आपके यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिया है तो समझिए आपके हाथ में एक एनर्जी फिटनेस ट्रैकर आ गया है. पहले क्या होता था, महीने के आखिर में बिल आता था और हम हैरान हो जाते थे कि इतना खर्चा कैसे हुआ. लेकिन अब इस कारमा ऐप के जरिए आप लाइव कंजम्पशन देख सकते हैं. मैं इसे फिटनेस ट्रैकर भी कहती हूँ. हाँ जी, क्योंकि जैसे आप अपने स्टेप्स काउंट करते हैं वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि किस वक्त आपका घर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. तो फिर इसे आप आराम से मैनेज कर सकते हैं. रूल नंबर 3 इज सोलर रेडी लिविंग. यस, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना घर बना रहे हैं एंड रेनोवेट करने जा रहे हैं. कतर की धूप मुफ्त है और ये हमेशा रहेगी, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा लें. आपने सोलर वाटर हीटर्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. तो कतर में ये पूरी तरह ऑथराइज्ड और सपोर्टेड है. हम अक्सर सर्दियों में या किचन के काम के लिए बिजली से पानी गर्म करते हैं, लेकिन सोचिए जब बाहर सूरज इतनी गर्मी दे रहा है तो हम बिजली क्यों खर्च करें. सोलर वाटर हीटर्स लगाना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक आपको मुफ्त में गर्म पानी देगा. ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे फ्यूचर को महफूज बनाते हैं. तो भाई क्या करना है, 21st सेंचुरी है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए. वैसे अब वक्त हो चला है कि मैं कहूँ कि भाई आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. और आज जब कतर सोलर इनोवेशन की बात हमने की तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हमारी तरक्की हमेशा कायम रहे. बिल्कुल इस सूरज की तरह जो हर रोज बिना छुट्टी मारे निकलता है कि नहीं? तो जनाब, आज का कतर ग्रीन बीट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा. और छोटे छोटे कदमों को हमें लेकर एक बड़े गोल को अचीव करना है, तभी जाके हम अपने कतर को क्लीन, ग्रीन और हेल्दी बना पाएंगे. वेल, आज के एपिसोड में हमारे कतर ग्रीन बीट्स में इतना ही था और अगले एपिसोड में कुछ खास होगा जिसके लिए मैं कहूंगी कि सुनना ना भूलें. पर अभी के लिए आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर. साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर FM 107 के, और अपनी अमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं. तभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा. और इसी के साथ मैं अब लेती हूँ इजाजत. स्टे ब्राइट, स्टे ग्रीन एंड कीप द बीट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
8: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 Time Check.
1: कहाँ हो भाई? बहुत दूर निकल गए लग रहा है. अरे भाई थोड़ा पास आओ यार, टाइम भी तो चेक कर लो. 4:01 हो रहा है यार. आपके अपने मर्जी के गाने यहाँ तैयार बैठे हुए हैं हम. कीबोर्ड में मेरी उंगलियाँ थरथरा रही हैं कि कब आप अपने मर्जी के गाने बताएंगे और मैं यहाँ पर प्ले करूँगा. कहाँ निकल गए भाई? लो अमा भैया वॉल्यूम तो ऊपर करो, सुनाई नहीं दे रहा. तो फिर मेरी गलती क्या है? वॉल्यूम तो ऊपर करो.
2: आप सुन रहे हैं द

रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी चार बजकर दो मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अभी से लेकर पांच बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा जहां पर बेहतरीन गाने आपके डिमांड पर प्ले किए जाएंगे। लेकिन हर रोज एक थीम होती है और बगैर थीम के कहां दिन चलता है। आज तारीख है 7 और 7 तारीख के हिसाब से आज की जो थीम बन रही है फिर वही वाले गाने प्ले करेंगे ना अपन। तो भाई बहुत से ऐसे गाने लिखे गए हैं जो सिर्फ लिखावट की वजह से, जैसे कॉम्पोजिशन की वजह से नहीं, किसी ने गाया है उसकी वजह से नहीं, सिर्फ लिखावट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और उसे दबा के सुना भी गया है। ठीक है, तो हमारे शहर में या मुंबई में या जो बॉलीवुड में काम करने वाले हैं उनके बेहतरीन राइटर कौन हैं? उनमें बहुत से हैं, मनोज मुंतशिर हैं, उनमें जावेद अख्तर हैं, उसके बाद गुलजार साहब हैं, जगजीत सिंह हैं, एक से बढ़कर एक राइटर हैं। लेकिन जावेद अख्तर की जब जब बात आती है तो उनकी राइटिंग थोड़ी सी अलग है ना। सलीम साहब हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही अलग है, लेकिन जावेद अख्तर अलग इसलिए हैं क्योंकि वो आसान लफ्ज़ों में अपनी बात बहुत ही उम्दा तरीके से कह भी जाते हैं, लिख भी जाते हैं और दूसरों तक बहुत दिलों में उनके उतर भी जाती हैं बातें उनकी, जावेद साहब की। ऐसा मुझे एक बार किसी राइटर ने बताया, तो बहुत अच्छे राइटर थे वो, होते हैं ना जो बहुत फेमस नहीं हो पाए, बहुत नाम नहीं कमा पाए, लेकिन वो बहुत काबिल राइटर होते हैं या बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था, और शायद जावेद अख्तर ने भी ये बात बहुत अपने सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी और बताई भी है कि टफ या कठिन लिखना बहुत आसान है, कठिन तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन कठिन बात को आसान लफ्जों में लिख पाना और लोगों के दिल और दिमाग में उतार पाना, उनके दिल और दिमाग पर लिख पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। वो अगर आपने काम कर लिया कि कठिन बात को आसान लफ्जों में लोगों के दिमाग में छाप छोड़ दिया आपने, तो आप एक मुकम्मल राइटर हैं, आप एक बेहतरीन राइटर। और मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब लिखते तो अच्छा है ही, लेकिन जब जब वो कहीं पर बोलना शुरू करते हैं तो वो इतने आसान लफ्जों में इतनी कठिन बात इतने आसानी से लिख जाते हैं या बोल जाते हैं कि उनकी बात बड़े आसानी से समझ में आ जाती है कि एक से बढ़कर एक लोग आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे, सेम बात अख्तर साहब कहेंगे, तो वो बात दिल में उतर जाती है। तो आज की थीम आप समझ गए होंगे, आज की थीम है द वन एंड ओनली द राइटिंग ऑफ जावेद अख्तर। ऐसे गाने 7 जुलाई को चलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर के लिखे हुए हैं, गाया किसी ने भी हो आई डोंट केयर, लिखे हैं जावेद अख्तर ने। ठीक है, तो आज की थीम जावेद अख्तर के लिखे गाने, और कई बार जावेद अख्तर साहब ने बैठे बैठे ऐसे गाने दिए हैं, ऐसे गाने लिखे हैं कि दिल खुश हो जाता है, जैसे कि दर्दे डिस्को। ये कोई गाना है दर्दे डिस्को, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आता है कि यार कुछ अलग ही लिख गए यार बैठे बैठे। दर्दे डिस्को इज एक्चुअली रिटन बाय द वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब। सो गाने की रिक्वेस्ट करिए, FM 107 पे मैं प्ले करने को तैयार हूं, और गाने वो जो जावेद साहब ने लिखे। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। वेल, ऐसे कई लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि जावेद अख्तर ने कौन से गाने लिखे, तो मैं लिस्ट दूंगा आपको क्योंकि उनके तो एक से एक राइटिंग है, उनकी पूरी लिस्ट बनाकर आपको दूंगा। अब आपकी मर्जी है फिर उसमें कि आप कौन सा गाना प्ले करवाना चाहते हैं। सो जावेद अख्तर के जो सॉन्ग्स हैं, कुछ लोगों ने तो रिक्वेस्ट कर भी ली हैं,
लेकिन ये रिक्वेस्ट पता नहीं जावेद साहब की है या नहीं, मैं पता करेंगे अभी वक्त के साथ अपने को पता चलेगा। मोहम्मद गाजी हैं, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे हैं, लिखे जो खत तुझे आए हाय। एक और चीज़ यार, ये हर बार मैं कहना भूल जाता हूँ, जावेद अख्तर साहब ने पुराने गाने तो लिखे हैं, तो पुराने गाने नहीं प्ले करेंगे, पुराने गाने का दिन किसी और दिन, 2005 या 10 के बाद या 2000 के बाद थोड़े से हाई बीट वर्जन वाले, अच्छे बीट वाले गाने जो हैं वो सॉन्ग आप मुझसे रिक्वेस्ट करें तो मैं ज़रूर प्ले करूँगा। सो ऐसा होना चाहिए कि दिल जो है बाकी लोगों का भी खुश रहे ना, ऐसा ना हो यार कि आपने जो है दर्द और दुख और पीड़ा और सैडनेस की बात कर ली और फिर उसके बाद बाकी लोग जो है सुन सुन के गाड़ी चला रहे हैं और फिर एक तरफ राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे गाड़ी एकदम से मोड़ दी है ना वो नहीं चाहिए, थोड़ा हौले हौले ठीक है। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं। इमरान साहब मैं ये वाला देखता हूँ, यूसुफ भाई ने कहा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये अच्छा गाना है 1942 अ लव स्टोरी, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, सलाम लिखा है यूसुफ भाई ने, वालेकुम अस्सलाम, आपकी बात सुन के ये याद आया, जब बॉस कहता है मुझे ये प्रॉब्लम एक 5 साल के बच्चे की तरह समझाओ दिमाग खराब हो जाता है आपकी बात सुन के ये बात ये याद आया। सादिक साहब अगर अगर ये ऑप्शन होता जैसे हमारे अब्बा का था ना, हमारे अब्बा के पास ऑप्शन होता था कि अगर आज मूड सही है तो इसको घुमाने फिराने ले जाएंगे, मूड नहीं सही है तो आज कूट देंगे, वो अब्बा के मूड के ऊपर होता था, भले आप कितना अच्छा भी कर देंगे, मतलब आपने होमवर्क वगैरह कर लिया है। ऐसे ही अगर टीचर के साथ हम कर पाते अपने मर्जी का कि अगर इसने सही से पढ़ाया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो उठ के चल देंगे। और भाई आजकल होने लगा ये, मैं ये बात तो अभी कह रहा हूँ, लोग ना अगर जैसे टीचर को पसंद नहीं करते ना, वो कहता हम जाओ भैया हमने नहीं पढ़नी हम चल और वो चले भी आते हैं भाई। मेरे अपने लोगों में, मेरे अपने दोस्तों के बच्चों ने ये करना शुरू कर दिया है, मेरा थोड़ा लेट हो गया लेकिन मेरे बच्चों के मेरे दोस्तों के बच्चे जो है 10-10 साल के हो गए यार, और वो ये काम करना शुरू कर भी दिया है। वो आके अम्मी से शिकायत करते हैं कि वो टीचर मार रहे हैं और अम्मी सुन भी ले रही है। खैर सादिक साहब हमारे दिन तो ये अच्छे वाले नहीं थे। कल हो ना हो जावेद अख्तर का ये गाना सुनना चाहते हैं, इनका नाम है अनीस, क्या बात है, ये राइटिंग अनीस भाई, अगर जावेद अख्तर की तो बिल्कुल प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं ना इब्राहिम हेयर, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम ने भी बेहतरीन गाने की रिक्वेस्ट कर लिया और आई गेस ये वाला गाना तो लाजमी प्ले होना भी चाहिए, मुझे लगता है शायद ये उन्होंने लिखा है। रब ने बना दी जोड़ी ये भी क्या उन्होंने लिखा है, फैजल इनका नाम है। तो ये गाने जो हैं मुझे चेक करना पड़ेगा कि रब ने बना दी जोड़ी किसने लिखा है, मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, खटाक से इधर से सर्च करूंगा और खटाक से प्ले करूंगा। अगर आप लोग श्योर हैं तो श्योर लिख दिया करिए बस लेकिन जावेद अख्तर ने ये सॉन्ग नहीं लिखा है, जावेद अख्तर डिड नॉट राइट दिस सॉन्ग, रब ने बना दी जोड़ी, वो स्पेंड बाय लिरिसिस्ट जयदीप साहनी। देखा अभी तो गड़बड़ हो जाती, फिर नुसरत की गजल लगा दे। और देखो जब ये बात ही चल रही है कि गाना हम सिर्फ जावेद अख्तर की राइटिंग का प्ले करेंगे तो कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कल हो ना हो लगा दें, अरे भाई जबरा फैन हूँ मैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये लगा दो एक साथ इतने सारे गाने, हुसैन साहब कल हो ना हो के गाने, मैं ये देखो कोशिश कर सकता हूँ कल हो ना हो, आई गेस ये कल हो ना हो तो उन्होंने लिखी है, देखना पड़ेगा। चलो डायरेक्ट सर्च, राइटिंग सिंगर तो हमें मिल जाएंगे लेकिन हमें राइटर इसके मिल पाए ये हमें सर्च ही करना पड़ेगा भाई। जावेद अख्तर ने लिखा है कल हो ना हो और गाना ये हमें मिल रहा है, एक सैड वर्जन है, एक है सोनू निगम का गाया हुआ 5 मिनट का गाना, ठीक है तो अपने को मिल गया सबसे पहला गाना तो अपन प्ले कर सकते हैं, उसके बाद फिर बैकग्राउंड से अपन धीरे धीरे सारा हिसाब निकाल लेंगे। तो चले सुनते हैं कल हो ना हो सोनू निगम की आवाज में, रिक्वेस्ट बाई हुसैन साहब। आवाज नहीं आ रही है इसमें है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज ना, प्ले हो गया यहां पर वैसे। शान साहब दूसरा गाना है शान साहब का है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अरे यार इसमें म्यूजिक ही नहीं है, कोई बात नहीं अपन दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे ये भी कभी कभी हो जाता है, सैड वर्जन तो अपने पास रखा है ना, देखिए सैड वर्जन की आवाज आ रही नहीं आ रही, सैड वर्जन तुम्हारे पास भी आवाज नहीं है क्या, है सैड वर्जन के पास है, बहुत ज्यादा सैड भी नहीं है,
है दूसरे वाले में कहना है, ये जो मिल गया मिल गया, कल हो ना हो वाले में मिल गया, इसमें वॉइस आ रही है। तो इतने डीले के लिए थोड़ा सा माजरत, और कल हो ना हो गाना सुनते हैं FM 107 पे सुरनगम की आवाज में, दिल से दैसी।

0: यार कॉम्पोजिशन में भी अगर देखा जाए तो ये गाना बड़ा अच्छा है और कल भी अपन प्ले कर सकते थे ये सोनू निगम की आवाज में, ब्यूटीफुल सा ट्रैक। कल हो ना हो एफएम 107 पे सुना आपने। हाँ जी हबीब इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे और 4:17 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अब वक्त आ गया है कि अपन जो है बाकी के गाने प्ले कर दे। वेल अगर हम बाकी के गाने के बारे में बात करें ना तो बहुत से ऐसे गाने मैंने निकाल लिए हैं जो जावेद अख्तर ने लिखे हैं और ये सब आपके रिक्वेस्ट पे। मुझे ये लग रहा था कि यार आप लोगों को ऐसा अंदाजा नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा अंदाजा है मेरे को अभी अभी पता चले ला है। सो टोटल 5 गाने मैंने निकाल लिए, ये सारे बैक टू बैक तो प्ले नहीं होंगे बट देख लेते हैं किसने किसने रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहले जो गाना रिक्वेस्ट है वो है शरारा शरारा। यार ये भी बड़ा लाजवाब गाना है। सो ये आशा भोसले ने गाया है, ये भी बहुत ही उम्दा है, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने। मोहम्मद इमरान ने इसे रिक्वेस्ट किया है, सलाम किया है बासिर याह्या ने। इन्होंने ब्रेथलेस गाने की रिक्वेस्ट की है, शंकर महादेवन ने गाया है। लगातार 3 मिनट कहा जाता है कि ये बगैर सांस लिए इन्होंने गाना गाया, बट ऐसा कुछ नहीं है, नाम गाने का नाम है सिर्फ ब्रेथलेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर सांस लिए गाया गया है। वेल उसके बाद एक और गाना है और ये गाना है मैं हूं ना, जिसे रिक्वेस्ट किया है मोहम्मद इब्राहिम ने। इब्राहिम के रिक्वेस्ट पे ये गाना भी अपन लगा चुके हैं। सो एक एक करके आप ऐसी ही गाने की रिक्वेस्ट करते रहे, अपन प्ले करेंगे। बाकी एक ये मैसेज किसका था, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, भाई आपकी भी तैयारी हो गई है आपके गाने की भी, मैंने यहाँ पर लगा दिया मोहम्मद उस्मान इनका नाम है। और ब्रेथलेस गाने के बाद एक्चुअली मैं हूं ना नहीं, हाँ ब्रेथलेस के बाद मैं हूं ना है, उसके बाद है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। फिर उसके बाद एक और ये रिक्वेस्ट फैजल भाई की रिक्वेस्ट चली गई है और एक मैसेज है, मुझे ये गाना चाहिए निकले थे कभी हम घर से, महफूज रॉबिन आपका भी गाना यहाँ पर सेट कर दिया गया है, हम अपने आप को कूट लेते। अच्छा ये दूसरी दूसरा मैसेज है, एक भाई ने और रिक्वेस्ट करी थी, वो गाना एक्चुअली जावेद अख्तर का तो नहीं था, उस गाने का नाम क्या था, लिखे जो खत तुझे, ये गाने की रिक्वेस्ट की थी किसी ने, जैसे शंकर जयकिशन ने गाया है और जिसमें मोहम्मद रफ़ी हैं, लिरिक्स हैं नीरज के, म्यूज़िक शंकर और जयकिशन का है। सो लिखे जो खत तुझे का ये तो प्ले नहीं हो सकता, रियली सॉरी। सलाम भी लिखा है वर्ग में, मनी का नाम है मनी भाई, सॉरी। बाकी और कोई गाना अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये गाने आपके लिए प्ले किए जाएंगे और बाकी लोगों के मैसेज तुरंत लेंगे, लेकिन ये 3 गानों के बाद वापस आते हैं कुछ ही देर में। दिल से देसी,
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी अभी भी दिल से देसी एफएम 107 और बाकी के वो दो गाने जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए यहां पर तैयार रखे हैं जो कि है सुनगम और सुनिधि चौहान का ये गाना कॉल्ड मेरे हाथ में फना मूवी का ट्रैक और अगेन ये है एक लाजवाब सॉन्ग। किस भाई ने रिक्वेस्ट किया था वो कहीं गायब से होगा यार यहीं पर तो थे अभी मुझे देखना पड़ेगा कहाँ गए लेकिन खैर इसमें दानिश भाई का मैसेज है गुड आफ्टरनून फजल भाई आज मेरे रिक्वेस्ट पे दिल दिया गल्ला आतिफ असलम का सॉन्ग। अरे मेरा भाई इंशाल्लाह फिर कभी आज भी पहचान में विनिंग लिस्ट में दानिश आज़ाद का नेम होगा टॉप पे इंशाल्लाह। लग रहा है रणवीर के साथ जावेद फरहान अख्तर के अब्बा जावेद के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए भाई अब वक्त निकल चुका है मोहम्मद इश्तियाक साउंड कल भी आपने मैसेज नहीं दिखा था कबीर भाई ने पढ़ा था यार कैसा ऐसा हो ही नहीं सकता यार मुबीन भाई एक दो बार हो जाता है मतलब या तो आपने लेट कर दिया हो या फिर बाकी मैसेज के नीचे दब गए हों होता है ना वो सरकारी दफ्तर की फाइल हो जाता है हमारा ये व्हाट्सअप क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं तो वो दफ्तर जैसे होता है ना कि एक के बाद फाइल जो है पाइल अप होते चली जाती है तो जो सबसे पहले फाइल आई है वो सबसे नीचे आ जाती है तो हो सकता है इसमें ये गलती हो गई लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी हिशाम भाई का मैसेज सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई लेकिन अगर ये गलती हो गई तो माजरत मेरा भाई। फिर है प्लीज़ घर आ गया कौन सा वाला मेरे हाथ में तेरा हाथ अच्छा हाँ आप ही को तो मैं ढूंढ रहा था उस्मान साहब थोड़ा गाड़ी धीमे चला लो यार रुक जाओ ठीक है। तो ये गाना उस्मान भाई की रिक्वेस्ट पे और फिर एक गाना है निकले थे कभी ये मेरे को देखना पड़ेगा निकले थे कभी हम घर से कहाँ जल्दी मिल जाओ जल्दी प्ले कर दूंगा यार मैं ठीक है ये है महफूज रॉबिन के रिक्वेस्ट पे तो ये गाने एंजॉय करें एफएम 107 पे। वापस आएंगे तो पहचान कौन गेम खेलेंगे दानिश ने कहा है फिर से कि उनका नाम टॉप पर होगा। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप दिल से देसी।

में निकले थे कभी हम घर से, डंकी मूवी का ट्रैक सुना आपने FM 107। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और वक्त आ गया है पहचान कौन गेम खेलने का। नए लोगों के लिए एक बार बता दें, इस गेम में होता क्या है, एक गाना और इस गाने में से कहीं से यानी कि बीच से कोई ऐसी लिरिक्स काट के प्ले की जाती है कि आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा आसान हो, और आप अगर गाने के, उस गाने के या उस राइटर के, उस सिंगर के फैन हैं, म्यूजिकल डायरेक्टर के फैन हैं, तो आप गाने को आसानी से पहचान सकते हैं। वेल, कल बहुत आसानी से रणवीर के गाने दानिश ने पहचान लिए थे, और आज भी उम्मीद है कि बाकी लोगों के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आज जावेद अख्तर की राइटिंग वाले गाने हम यहां पर प्ले कर रहे थे। और अभी जो गाने हैं पहचान कौन के लिए, ये गाने भी जावेद अख्तर के लिखे हुए हैं, लिखे हैं जावेद अख्तर के, गाए हैं अलग अलग लोगों ने, कभी मुस्तफा निगम ने गाया, कभी शंकर ने गाया है, कभी शान ने गाया है, कभी फरहान ने गाया है। सो शुरू करते हैं, और ये जो गाने हैं ये गाने बड़े आसान हैं। एक गाने में मुझे लगता है शायद टफ हो, लेकिन ओवरऑल अगेन कल के जैसा हिसाब हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि शायद टफ है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान हो जाता। पहला गाना ये रहा,

गाना था वो बता दिया है, ये वाला फरहान का गाना। ऑब्वियसली ये आवाज़ तो बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है, दानिश आज़ाद लगता है फरहान और जावेद के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बिल्कुल सही पहचाना है। आगे बढ़ते हुए ये मैसेज किसका है, यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, उसके अलावा हिशाम ने सही पहचाना है, एहसान अली ने सही पहचाना है, बहुत ही उम्दा। अब्दुल्ला का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फैज़ल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, एक गाने की रिक्वेस्ट है, ओसनम ओसनम काश होता। भाई माजरत, आज जावेद अख्तर के गाने हम प्ले कर रहे थे और थोड़ा सा लेट हो गए आप। शेख अतीक का मैसेज है, ब्रदर शेख अतीक सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हैं आप, कैसे हैं अतीक साहब? उसके अलावा खलील और रहमान कहते हैं सलाम फजील भाई, फरहान सिंगर हैं और खलील पारचा, नहीं आपने फरहान तो बता दिया, गाने का नाम क्या है ये आपको बताना है। एक बार गाना फिर से सुनिए।

देखो फरहान अख्तर की आवाज में रॉकऑन अच्छा भी लग रहा था, मेरे वाले में सही में पत्थर लग रहा है कानों में कि भैया तुम मत करो रॉकऑन। आइए दोस्तों अगली गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना कौन सा है आपको पहचानना है, बीच से ये लिरिक्स प्ले किया जा रहा है और गाने का नाम

0: बताओ भाई, चलो गाने का नाम क्या है आपको बताना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107-6662-2107। अगर मुझे ये लग रहा था, अगर टफ है हल्का फुल्का भी, तो वो यही है। बाकी तीसरा वाला तो इतना आसान है कि आप आंख बंद करके भी टाइपिंग करेंगे तो वही लिखेंगे जो गाने का नाम है, ठीक है। बाकी ये मैसेज, सलाम वालेकुम अस्सलाम, एक सॉन्ग प्ले करो जो भी हो जाए। अरे भाई बहुत लेट हो गया, माजरत मेरा भाई, कल इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे मैं जो हूँ गाना प्ले कर चुका हूँ, आपको बताना है। दानिश ने बिल्कुल सही बताया, बहुत ही उम्दा दानिश। अगर एक और गाना आप पहचान गए तो अगेन लिस्ट में सबसे पहला नंबर आपका होगा। यूसुफ भाई लेट कर रहे हैं गाने का नाम लिखने में, टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग जाता होगा। नहीं, शान ने गाया है और यूसुफ भाई ने जो जवाब दिया है वो है बिल्कुल सही। हिशाम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और गाने का नाम है
1: मैं ऐसा क्यों हूँ।
0: ये गाने का नाम है, शान ने गाया है और बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग था ये। एक और शख्स है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, ऋतिक रोशन है इस गाने में, मुबीन साहब का कहना है और गाने का नाम मैं ऐसा क्यों हूँ। मोहम्मद सादिक ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं ऐसा क्यों हूँ। तीसरे नंबर का गाना आ रहा है आपके लिए, इस गाने को पहचानिए, आसान बनाइए, इस गाने का नाम क्या है।

हाँ जी बताइए गाने का नाम क्या है। शंकर महादेवन और शान ने गाया, ये आपके लिए आसान कर देता हूँ। और एक बार फिर से दानिश आजाद, क्या बात है यार, खिलाड़ी हो तो ऐसा है, चैलेंज करके अपना नाम टॉप पर लेकर आया है और दोनों बार बिल्कुल सही तीनों जवाब दिए हैं। सबसे पहला गाना रॉक ऑन, दूसरे नंबर पे मैं ऐसा क्यों हूँ, और तीसरे नंबर का गाना बिल्कुल सही लिखा है। उसके अलावा दो कैप्टन मुबीन अमीर हीरो दिल कैप्टन है ओके मुबीन साहब समझ गया, मैं आपके जज्बात को समझ गया हूँ। फिर उसके बाद शंभू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सॉरी गाने के बोल याद नहीं आ रहे। क्या बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, हल्के हाथ से एडिट कर लीजिए जल्दी से ईशान भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब

बताया है, उसके अलावा सादिक मोहम्मद सादिक ने सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा। क्या खेल का मुजाहरा करते हैं यार लोग, मजा आ जाता है। लेकिन यूसुफ भाई से उम्मीद नहीं थी, एक बार फिर से सुन लिए।

ये तो बहुत फेमस गाना है और बड़े आसानी से याद होना चाहिए. वेल, लेकिन किसने किसने बाजी मार ली है इस पर जरा अगर नजर डाले तो ऐसे कई लोग हैं. वेल, पहले एक दो गाना जो उन्होंने बताया, एहसान अली ने रॉक ऑन बताया, बिल्कुल सही था. लेकिन तीन के तीन सही जवाब बताए दानिश ने, तीन सही जवाब बताए मुबीन ने. ठीक है, नहीं, मुबीन का दो ही, हाँ मुबीन का दो ही सही है, एक तो गलती है. फिर उसके बाद तीन बिल्कुल सही बताए हिशाम ने, भी बाजी मारी है बहुत ही उम्दा. फिर उसके बाद ये हैं सादिक दूसरे नंबर पे रहेंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो गाने सही बताए हैं. और यूसुफ भाई, क्या यार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने भी सिर्फ दो ही गाने सही बताए. तो दो लोगों ने बाजी मारी है, हिशाम है और आज़ाद है. बाकी तो ठीक है, सही खेल का मुजाहरा है, बाकी और मेहनत करके आओ.

0: बिल्कुल सही जवाब है लोगों का, और गाने का नाम है दिल चाहता है।
1: दिल चाहता है कभी ना बीते
0: चमकीले दिन, मेरा तो मतलब है फेवरेट है। अगेन प्लेलिस्ट में अगर मुझसे कहेंगे तो टॉप 20 में ये गाना जरूर होगा। इसकी कॉम्पोजिशन भी अच्छी है, ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है। मेरा तो दिल कर रहा था कि कोई मुझसे कहते दर्द डिस्को प्ले करने को तो मैं प्ले कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो वाला गाना गा लूंगा। दिल के अरमासुओं में बह गए। लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट, आज आप मुझसे प्ले करवा सकते हैं इन तीनों में से एक गाना, जो आप कहेंगे वो मैं प्ले करूंगा। और पहले नंबर पे है ये

फरहान अख्तर का गाया हुआ ये गाना, अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो नंबर वन लिख दें या फिर लिख दें रॉक ऑन। दूसरे नंबर पे गाना है तो ये वोटिंग पर आधारित होगा, जो लोग गाने लिखेंगे उस पर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसने रिक्वेस्ट किए हैं एक ही गाने को, वो ही गाना। तो वोट बेस आज रख रहा हूं, वोटिंग होगी उसके बाद ही गाना प्ले करूंगा। तीसरे नंबर पे

अपने जो भी आपके फेवरेट लोग हैं उनको आप वोट करिए, फरहान अख्तर, शान या तीसरे नंबर पे शंकर महादेवन और शान, किनको आप वोट करेंगे, भारी मतों से विजयी बनाएं। और जिनको भी आप भारी मतों से विजयी बनाएंगे उनके ही गाने यहां पर प्ले किए जाएंगे, हबीबी, रॉक ऑन, मैं ऐसा क्यों हूं और दिल चाहता है। सो आपके फेवरेट कौन है जल्दी से बताएं। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, दानिश भाई के जैसा फास्ट दिमाग नहीं है मेरा, माशाल्लाह इज गुड। क्या बात है दानिश भाई की, इतनी इज्जत माहौल में एकदम भौकाल ही भौकाल। फर्स्ट लाइन के बोल सडन से याद नहीं आए थे, ओके कोई नहीं। रॉक ऑन प्ले कर दे दानिश ने कहा है, और दो नंबर का गाना है कहा है इश्तियाक ने प्ले करने को, तो तीसरे नंबर का कहा है तीन में से एक भी नहीं, कोई और लगाए। कोई वोट नहीं, भाई ने नोटा कर दिया, नोटा पे वोट दिया है मुबीन भाई ने। मुबीन भाई को पसंद नहीं है जरा भी कि वो किसी भी कंटेंडर को यहाँ पर मौका दें गाना सुनाने का, लेकिन महादेवन और शान वाला गाना सुनने को कहा एक और मुबीन साहब ने, ये दूसरे वाले मुबीन है। एक मुबीन वो है जो नोटा पर वोट कर चुके हैं, एक मुबीन अलग है। यूसुफ भाई कहते हैं दिल चाहता है, ओके। सो दिल चाहता है के वाले दो लोग हो गए हैं, रॉक ऑन वाले हो गए हैं सिर्फ दानिश, और दो नंबर पे इश्तियाक वाले कह रहे तो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अरे ये सब लोग काम भागे जा रहे, काम जा रहे भाई साहब, शो है कोई, ये तो पाँच बजे कोई आता है क्या? रेडियो बल्लू ये कह रहा है रेडियो में कुछ आ रहा है, रेडियो में कुछ मैं लगा के देख लेता हूँ।

0: याद किया नहीं किया है सुबह से, एक बार तो याद किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। भाई साहब लठे लगा, किसी ने भी जान नहीं देंगे और रेडियो एकदम बढ़िया अच्छा लगा FM 107 पे। सारों को मैं सही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ गए। व्हाट्सएप के दौरे भी आ जाओ, 666-22107 नंबर है भाई साहब, 666-22107। आप आए बाहर आई, ये जो है बड़ा जरूरी है कहना, आप नहीं आएंगे तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी चलेगी कैसे हमारी भाई। तो 666-22107 आवारापन का गाना चुका है, आवारापन चुका वो भी चलाएंगे, कैसे नहीं चलाएंगे भाई, कैसे नहीं चलाएंगे बताइए आप। और दूसरी चीज आज की कहानी, अरे भाई मैं क्या बताऊं, आपने दो छोटी छोटी कहानियां सुन ली, आज लंबी कहानी के लिए तैयार हो जाइए, आज थोड़ी बड़ी कहानी है एंड बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। तो जो लाइव सुनेंगे उनको तो मौज आ जाएगी भाई, क्योंकि ये कहानी लाइव सुनने वाली है, बैकग्राउंड में म्यूजिक हो और बिल्कुल चल रहा हो तब फील है। कुछ मैसेजेस हैं, राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम, फिर कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कितने आदमी थे पूछ रहे हैं, एमके साहब वालेकुम अस्सलाम, और फिर प्रेजेंट सर लगाया है वैसे अहमद साहब ने वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, फिर शाहिद भाई वालेकुम अस्सलाम, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, फिर कैसा मेरा भाई अब्दुल भाई वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया चल रहा हूँ भाई। तो एजेंडा समझिए ना, आज की कहानी विल ब्लो योर माइंड। आप बोलेंगे क्या सुना दिया ये, अब इससे ज्यादा मैं बेच नहीं पाऊंगा, 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, आप आ जाइएगा 666-22107 पे, क्योंकि आप हैं तो हमें भाई साहब हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

बहुत सामान सी लेगा यहाँ पे. अरे ओ सांबा, अरे FM 107 पे आ जाओ. आज ही मैं आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. मेरा नाम है जिद्दू हवाला कबीर. FM 107 पे आप सुन रहे हैं. कुछ मैसेजेस आए हैं. नाजिया भाई लिखती हैं, रोजा की स्टोरी खतरनाक थी, बट शी इज अलाइव गुड, बट अदर स्टोरी शी वाज अलाइव दे बरीड हर. कहां से मिलती है ऐसी यूनिक स्टोरी? हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच बहना. आगे लिखती हैं, आपको अल्लाह ने रिसर्च करने की जबरदस्त चिप फिट किए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहन, मैं तो अंदर से जासूस हूँ, जासूस. एक और मैसेज है नसीम साहब का, गुड मॉर्निंग खोजी भाई, ना खोजी पे नाम रखा मेरा खोजी भाई, बहुत प्यार नसीम भाई को. और उनके बाद मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. वालेकुम अस्सलाम अम्मार यासिर साहब. और स्टोरी टाइम 4:45 भाई, देखते हैं उसके आसपास शुरू कर देंगे, ऐसी टेंशन को नहीं भाई. अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे. सवाल यह है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जो हमें लगता है इस पर तो भाई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, भाई ये तो पक्का डॉक्यूमेंट्री लायक है ये किस्सा. आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो आपको लगता है भाई डॉक्यूमेंट्री वर्दी बात है ये? क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे हैं भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कि अभी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा हुआ है जो आपको लगता है इस पर तो भाई फीचर फिल्म या पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए? तो अगर ऐसा है तो बताइएगा. 666-22107 नंबर है, 666-22107

0: 7 बताई, मैसेज कर दी और फिर बात हुई इस बारे में। एक और मैसेज आया मेरे पास, तबस्सुम लिखती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, क्या हाल है तबस्सुम बच्चे? आपकी डायरी दिखाओ, आपने साइन करवाया घर पे? एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इश्तियाक। वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, भाई मैंने आवारापन देखी, उसमें मैं एक चीज़ नोट की, शिवम के दोस्त का नाम भी कबीर था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अरे ऐसी थोड़ी भाई, हम फैन हैं मोहम्मद भाई। अभी तो देखो आपका भाई कैसे एकदम, मतलब 14 अगस्त को आप देखना, पूरी पलटन लेके पहुंचेगा आपका भाई, थिएटर भर देंगे भाई, भर देंगे थिएटर। हीरो भाई वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई, कैसे हो आप? हाँ तो मैं कह रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट है या कोई ऐसा किस्सा है आपकी लाइफ का जो आपको लगता है कि इस पे तो भाई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। आप कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे, 4434377 पे, या मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर। एक मैसेज क्या, सादिक भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर, मिडिल क्लास बंदा अपनी नौकरी बचाने के जो टोटके अपनाता है उस पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। भाई मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। सादिक भाई बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। अगर आदमी जान लेना कि मिडिल क्लास बंदा कौन कौन से टोटके अपनाता है अपनी नौकरी के लिए, तो एक पूरी कॉमेडी फीचर फिल्म बन सकती है। डॉक्यूमेंट्री तो छोड़ दो भाई, डॉक्यूमेंट्री छोड़ दो, ऐसी पिक्चर बनेगी इसके हद नहीं। मेरी लाइफ का एक डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ आपको। तो बहुत बहुत बहुत बहुत सालों पहले चलते हैं, मेरा किस्सा ऐसा है कि मैं शुरुआत में ना जैसे 12th करीब कॉलेज में आया, तो कॉलेज के बाद लॉन्डो को लगता था चलो भाई अब बढ़िया जो है बढ़िया हम किसी कॉल सेंटर में काम करेंगे। एंड कॉल सेंटर में काम करने चले गए भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है भाई, बिठा दिया हमें 2-3 लोगों के पीछे, बोला यहाँ की कॉलिंग सुनो कॉलिंग सीखो। मैंने कहा ये तो आसान होगा भाई, उन्हें हर कॉल पे धैगाली और धैगाली सबको सुनने को मिल रहा है, इतने सुना रहे हैं लोग जिसकी हद नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैं तो कर ही लूँगा, क्या बड़ी बात है। फिर मेरा नंबर आया भाई, फिर मेरा नंबर आया, मैं कॉलिंग करने बैठा ठीक है। और फिर मैंने कहा सर मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? जो मुझे उन्होंने सुनाया है, हाँ, ऐसे लग रहा था फ़ोन पे कव्वाली चल रही है भाई, पूरी प्रॉपर कव्वाली लगातार लाइन। अच्छा ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे बस का नहीं है, पर मैं भाग नहीं सकता। फिर अगले दिन मुझे लगा कि मैं भाग सकता हूँ, क्यों नहीं भाग सकता। तो मैंने कहा सर वो लंच टाइम हो गया मैं जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाओ जाओ जाओ। मैं लंच करने के लिए नीचे गया और वहाँ से सीधा घर चला गया। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है वो। मैं कहा नहीं भाई मेरी तो ये नहीं हो पाएगा, हिंदी कॉल सेंटर में जिन्होंने काम किया है वो जानते हैं। क्योंकि क्या है ना, सामने वाला अंग्रेजी में कुछ सुनाता है तो दर्द नहीं होता दिल पे, पर अगर कोई हिंदी में सुनाए। एक मैसेज है आसरा बहन लिखती है, सवाल छोड़ो, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट आवारापन टू, सब आदमी लोग के लिए। नहीं नहीं नहीं बहन, आप तो हमारी बहन है, आप तो आवारापन वो है हमारे साथ, क्या कहते हैं उसको, आवारापन सिस्टर। तो सिस्टर बहन प्लान बनाइए, लेट्स वॉच टुगेदर। एक कॉल आ रही है, रुको भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाजी।
0: हाँ पार्टी क्या हाल है? बढ़िया भाई एकदम शानदार, आप सुनाइए क्या हाल है?
1: सब बढ़िया कबीर भाई, एकदम चकाचक
0: चकाचक चल रहा है। तो गाबा भाई ये बता दो, कौन सी ऐसी कहानी है जिंदगी की जिसको आपको लगता है भाई इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए लोगों, मतलब बहुत हाईलाइट हो आपकी लाइफ का?
1: कबीर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अपने मेजोरिटी में जो यूथ है उनकी जो जॉब स्टार्ट होती है वो यार कॉल सेंटर से ही क्यों होती है
0: भाई? ये मिडिल क्लास फैमिली की निशानी है। ये निशानी है भाई, मिडिल क्लास होने की निशानी। उस टाइम पे तो जरूर हुआ करती थी, बिकॉज उसके बिना कहानी नहीं शुरू होती थी भाई। तो लगता था कि कमाने का सबसे पहला जरिया यही है, भले ही 3,000 मिले 2,000 मिले, लेकिन यहीं से शुरुआत करेंगे। आपने भी कॉल सेंटर से शुरुआत करी है?
1: जी कबीर भाई, मेरे को लगता ही नहीं है कोई बंदा हो जो इस जॉब से बचा हो।
0: अरे बच्चे हैं भाई, बड़े बड़े लोग भी हैं मैं सुनने वाले, क्या बात करोगे आवा भाई, आपको क्या लगा?
1: मेजोरिटी में
0: तो भाई हमारे जैसे हैं, हमारे और आपके जैसे हैं, बाकी बड़े बड़े लोग भी हैं जिनकी सीधा नौकरी लगती थी 20,000-30,000 की, हमें तो नहीं मिली भाई।
1: तो
0: कोई गाबा जी बताओ, कोई इंसिडेंट बताओ यार, आपकी नौकरी कैसे कैसे
1: कबीर भाई,
0: हाँ कैसे थे आप?
1: नहीं बताना कौन सा इंसिडेंट बताना है, क्या बताना है
0: ये बताओ। कितने पहले तो बताओ, कितने अच्छे थे आप कॉल सेंटर में, परफॉर्मर थे, क्या सीन था आपका?
1: यार कबीर भाई बस वो समझ लो जिन बंदों को हर तरफ से गालियां पड़ती हैं उस कॉल सेंटर में।
0: क्या बेचते थे आप, क्या बेचते थे आप?
1: कुछ नहीं यार कबीर भाई, अपने एक दिक्कत पता क्या है इंडिया में, मैं बताता हूँ आपको।
0: हाँ।
1: जब तो आपने लोन लेना होता है ना,
0: हाँ।
1: या क्रेडिट कार्ड बनवा रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी आवाजें सुनने को मिलती हैं,
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं,
0: हाँ।
1: जब आप उन क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में या लोन में फंस जाते हो ना,
0: हाँ।
1: जो बंदे रिकवरी करने वाले आते

0: करते हैं ना भाई, यकीन मानिए वो बॉलीवुड के किसी फेमस गुंडे से भी ज्यादा बुरे होते हैं बंदे वो।
1: क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल
0: यार। आप देखिए ना कबीर भाई, जब बंदे ने लोन लेना होता है तब तो टोन और होती है लोन देने वालों की। उनको पता भी है भी ये बंदा रिटर्न नहीं करेगा। जब सिनेरियो चेंज हो, जो रिकवरी वाली टीम होती है भाई वो,
1: तो आपका सामना हुआ है रिकवरी टीम से कभी?
0: भाई मेरा तो फोन पे ही हुआ है कबीर भाई, यकीन मानिए यार
1: भाई।
0: हमारे वहाँ पे तो बंदे इतनी भारी भरकम गालियां निकालते हैं ना
1: क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव
0: क्रिएटिव यार।
1: नहीं ये तो है परेशानी भाई, ये बात तो सही की आपने। तो आपका क्या मतलब, डॉक्यूमेंट अगर किया जाए आपकी लाइफ का, कोई इंसिडेंट, आपकी कोई लव स्टोरी या करियर का पाथ कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहें, कोई किस्सा आपका?
0: किस्सा कबीर भाई मेरी ऐसा तो कुछ याद आ नहीं रहा यार कबीर भाई।
1: याद करो यार
0: बताना है या इंडिया का?
1: कहीं का ही बताओ भाई, या कहीं होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ मेजरली कुछ हुआ नहीं होगा मैं ब्रिटिश हूँ, लेकिन इंडिया में जरूर हुआ होगा।
0: एक्चुअली कबीर भाई मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता देता हूँ।
1: बता दो।
0: आपने ऑन द स्पॉट सवाल रख दिया ना,
1: यही तो फायदा है। बताओ।
0: कतर में आना था ना,
1: हाँ।
0: तो उसी सेम टाइम मेरा स्टूडेंट वीजा निकला था सिंगापुर का।
1: हाँ हाँ।
0: सेम टाइम पे।
1: हाँ।
0: तो मेरे को ऐसे लगा यार, देखो यार मैं किसी वजह से पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए मेरे पास।
1: हाँ हाँ।
0: उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी हमारी।
1: अच्छा।
0: तो क्या हुआ कबीर भाई, मैंने प्रेफरेंस दी कतर में आने को, सिंगापुर को साइड में रख के, ठीक है। तो उस टाइम मन में बहुत सारे डाउट्स थे यार, यहाँ पे जाके कैसे सरवाइव करना है, गल्फ कंट्री है, ये है वो है। जैसे जैसे टाइम पड़ता गया कबीर भाई, यकीन मानिए यार जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है,
1: है ना? ये तो है।
0: तो मैंने सोचा भी, मेरा जो वो डिसीजन था ना उस टाइम पे, तो मेरे को लगा भी ये बहुत ज्यादा रॉन्ग है भाई, अच्छा नहीं रहेगा ये मेरे फ्यूचर के लिए। मगर अभी अभी कबीर भाई सब कुछ है यार,
1: सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए गाबा जी, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए, लिटरली दिल से खुशी है भाई। और मैं दुआ करता हूँ कि आपका काम ऐसी भला चलता रहे और आपके काम में बरकत हो मेरे भाई, दिल से दुआ गाबा भाई। स्वीट हार्ट
0: बिल्कुल कबीर भाई, काम तो मेरी इतनी व्हाइट कॉलर जो ही है, नॉर्मल सा काम है, मगर काम बिल्कुल अच्छा है। एक्चुअली कबीर भाई चक्कर पता क्या है, एक छोटी सी लाइफ में बात मैंने पल्ले बांधी हुई है, किसी को हराने वाली रेस नहीं लगाई कभी भी जिंदगी में।
1: नहीं सही है भाई, ये करना भी नहीं भाई, करना भी नहीं, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लाइफ मैराथन है भाई, रेस को नहीं, मैराथन है भाई।
0: अगर रेस लगानी भी है तो भाई अपने आप से ही लगाई है, कभी किसी को हराने वाली, किसी को पीछे छोड़ने वाली दौड़ नहीं लगाई।
1: नहीं सही है, सही है, पर अपने लिए भागते रहना भाई, अपने लिए भागते रहना, वो कभी नहीं रोकना, बस बाकी चलता रहेगा भाई।
0: वो तो सर्वाइवल मोड है ना भाई, वो तो भागना ही पड़ेगा,
1: ऑन रहना चाहिए अब्बा जी। ये हुई बात मेरे भाई,
0: बिल्कुल कबीर भाई,
1: थैंक यू मेरे भाई। और आज की कहानी जरूर सुनिएगा अगर टाइम मिले तो, बढ़िया कहानी आज की, मजा आ जाएंगे आपको।
0: मैं भाई जरूर कोशिश करूंगा कबीर भाई। पहले पता क्या था, पहले मैं सोचा करू था भी मेरी राशि मिले सर्वर भाई और नाजिया जी मैडम के लिए।
1: अच्छा।
0: अभी उसमें एक तीसरा पर्सन भी शामिल हो गया कबीर भाई।
1: आ रहा है मेरा भाई, बहुत प्यार,
0: और
1: बहुत
0: वो लकी पर्सन है मेरा भाई, बॉडीगार्ड भाई कबीर भाई।
1: अरे मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, वर्चुअल झप्पिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू भाई, बहुत
0: ठीक है भाई। बाकी भाई प्लान भी करेंगे, ठीक है,
1: डन है भाई, डन है भाई, डन है, एकदम सॉलिड।
0: ओके भाई, मजा आ गया आप डेली बात करके, यकीन मानिए भाई,
1: भाई मजा और आएंगे,
0: दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई, टेक केयर टेक केयर। इनके बाद भाई ने मैसेज किया है, अमन भाई थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग लिखा है। सादिक भाई कह रहे हैं भाई मुझे नौकरी के 10 दिन में वेयर हाउस का इंचार्ज बना दिया गया था, उसके बाद जो मैंने केमिकल्स की खिचड़ी बनाई है आज तक बहुत को समझ नहीं आया, कोविड के टाइम पे भी हम फायदे में कैसे हैं। अरे मेरा भाई, भाई कह रहे हैं इनकी लाइफ का ये मोमेंट डॉक्यूमेंट करना चाहिए। वैसे सादिक भाई ये मतलब ये जो खिचड़ी बनाई है आपने, इससे कुछ हुआ कभी, कुछ एनीथिंग हैपन? वैसे भाई रिमेंबर लाइफ इज अ रेस एंड ओनली कंपेटिटर इज द मैन इन द मिरर, ओनली पर्सन यू कैन ड्रैग यू डाउन इज योरसेल्फ। कतई कठोर सच बोला है आपने यहाँ भाई। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: हाँ भाई क्या हाल है?
2: बस सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चल रही है।
1: हाँ अब बताओ क्या तुम्हारी लाइफ में क्या है जो डॉक्यूमेंट करने लायक है, अभी तो तुम्हारी उम्र ही इतनी सी है फिर भी बताओ।
2: भाई डॉक्यूमेंट पहली तो ये बात है कि कबीर पहले तो मेरा था ही नहीं रेडियो का, पहले तो मैं टीवी प्रेजेंटर का सोच रहा था, लेकिन फिर बाद में मैं सोच रहा था कि पॉलिटिक्स में भी साथ में ऐसे तो आई, मुझे पता है यो पेन एज बीइंग एन आरजे, मैं समझो था एज बीइंग एन आरजे इतना मुश्किल नहीं होता कि चलो बस थोड़े बटन ही दबाने होते हैं और ऐसे आई फील योर पेन।

0: है किसका पिन? मेरा पिन?
1: Yeah,
0: मेरा तो कोई पिन भाई, मेरा कोई पिन नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है
1: है? नहीं यार आई नो, क्योंकि पहले जब बंदा शुरू करता है ना तो बड़ा मुश्किल आता है बंदे को कि ये बटन कैसे, कौन सा
0: नहीं
1: बटन।
0: वो तो ठीक है, मेरा सवाल नहीं समझो तुम, मेरा सवाल मुझसे मुतालिक नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई किस्सा है जो डॉक्यूमेंट्री बनाने लायक है, मैं ये पूछ रहा हूँ।
1: वही कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस क्या है कि अब जैसे आप कहते ना कि हम आपकी जो है आपकी जो होती लाइफ वो कॉल सेंटर से शुरू होती है ना, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ अलग होता है, यानी यहाँ छोटी मोटी दुकान से यहाँ हमारी जिंदगी शुरू होती है। जैसे
0: वो तो ठीक है बेटा, सुनो मेरी बेटे मेरी बात सुनो, मेरा सवाल ये नहीं है तुम समझ नहीं रहे हो, ये मैं ही नहीं कर रहा।
1: मेरे में क्योंकि मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हाई होप रखते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, लॉयर बनूँ, डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं और आगे में मुस्तकबिल बनूँ अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक से, क्योंकि बेशक हर माँ बाप का तो ये होता है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा तालीम दे, अच्छे जो है जॉब भी दे, सब कुछ सिखाए, तो हर किसी का होता है, बट सम को यानी सम जो दे कैन अचीव एंड सम दे डोंट अचीव, तो बस यही दुआ है कि बस आगे में जो लिखा है अल्लाह ने वही मेरे में हो जाए
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर थैंक यू सो मच कॉल करने, और कुछ याद आ जाए तो मुझे याद दिलाना, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: चलो टेक केयर, टेक केयर। तो भाई ने मोटिवेट कर, 12 साल का लड़का मोटिवेट करके चला गया, बताओ नहीं ये जो कह रहे हैं हमारी जिंदगी में कोई देर इज नो पेन, अगर मुझसे कोई इंटरव्यू पूछेगा आपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताइए, मैंने भाई कोई स्ट्रगल नहीं किया है, पहले बता दो मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाइफ मैंने खुद चुनी है, बढ़िया जा रही है भाई, कोई स्ट्रगल को नहीं भाई। कॉल सेंटर की लाइफ भी एकदम बढ़िया थी, शानदार थी भाई, वो भी ये भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक मैसेज है, मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट्री नहीं कबीर भाई, सीरीज बनेगी सीरीज, ये हम आ गए एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत यार आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आपका इंटरेस्ट नहीं सुन सका।
0: कोई बात नहीं,
2: जो आपने वो बनाई हुई है
0: मेरा भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई को।
2: एड वाला सुना दो, शाबाशी देगा क्यों?
0: शाबाशी देगा क्यों? तो भाई बताओ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लायक है, ऐसा है कुछ पार्टी एकदम शानदार सा तड़कता भड़कता हुआ किस्सा हो?
2: अरे बाबा क्या याद दिला रहे हो, छोड़ो।
0: अरे ना ना मिट्टी नहीं बाओ भाई, मिट्टी खोदो वापस निकालो उसको किस्से को, क्या है कुछ तो होगा
2: कबीर भाई,
0: जरूरी नहीं दर्दनाक।
2: जिस दिन ब्रॉडकास्ट शुरू करोगे ना ब्रॉडकास्ट, उस दिन बताऊंगा स्पेशली।
0: अच्छा इतना इतना गहरा राज है क्या?
2: कहने को है भी और नहीं भी, अगर अपने लिहाज से देखा जाए तो बस नॉर्मल है, क्योंकि तो लाइफ का स्ट्रगल है, नॉर्मली बस गुजर रहा है। और अगर किसी और के लिहाज से देखा जाए, हम मम्मी डैडी जिनको बच्चे बोलते हैं ना, जिन्होंने आलीशान लाइफ गुजारी है, उनके लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है।
0: अच्छा ओके ओके।
2: ये है कि जिंदगी कुछ ना कुछ हर लम्हा सिखाती रहती है।
0: और ऐसा किस्सा याद नहीं आ रहा
2: आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: पर वो तो ठीक है, पर आपको किस्सा कोई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई ऐसा आपकी लाइफ में बीता हो जो आपको लगता है बताने लायक है? नहीं है ऐसा कुछ याद कर लो
2: यार, नहीं मैं इतना ऑन एयर नहीं बता सकता।
0: अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं
2: ऑन एयर नहीं बता सकता, जो सीधी बात है। हाँ
0: कोई गल नहीं बाजी, पर आज की कहानी मत छोड़ना भाई, बहुत बढ़िया कहानी है भाई।
2: लेकिन सिंपल ये बात बताता हूँ कि स्ट्रगल के 24 आवर्स में मैं और मेरे कुछ दोस्त के साथ, तो हम लोगों का ये हाल था कि हम लोग 24 आवर्स के अंदर सिर्फ एक रोटी और एक समोसा लेकर उस पे गुजारा कर रहे थे 24 आवर्स के अंदर, ठीक है?
0: अच्छा।
2: और वो भी उधार पर।
0: ओके
2: ठीक है
0: ठीक है।
2: तो वो जो दिन गुजरे थे, वो गुजरे तो बहुत मुश्किल, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन याद आते हैं तो कभी कभी तो रोना भी आता, लेकिन
0: भाई वो दिन बड़े जरूरी है भाई, वो दिन बड़े जरूरी है भाई,
2: बहुत ज्यादा भाई,
0: बहुत जरूरी है भाई।
2: उसमें ये है कि इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारे चेहरे देखता है,
0: राइट,
2: और बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ।
0: नहीं बड़ा जरूरी भाई, ये बड़ा जरूरी है, ये हर किसी की लाइफ में आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए, पता है ये सब होना बहुत जरूरी है भाई, यही तो कहानी है, फिल्मी कहानी है।
2: अच्छा उन दिनों में ना वो पेरेंट्स की वो बातें याद आ रही थी कि एक वक्त होता था हम लोगों ने इस तरह गुजारा किया।

0: बचपन में ना हमें वैसे लगते थे ठीक है यार अब्बा आप बता रहे हैं ठीक है उस वक्त की बात होगी मुश्किल नहीं है। तो फिर जब उस वक्त फील हुआ ना तो उस वक्त यार बाकी पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करते हैं
1: नहीं बहुत तो
0: भाई, ये कहानी बहुत बहुत फील हुई उस वक्त।
1: नहीं भाई अच्छी बात है आप आपने भले नहीं बताया लेकिन आपको याद सब कुछ आ गया ये भी मेरा मकसद पूरा हो गया बिकॉज दैट विल रिमाइंड यू कि जहां आप आए बड़ी मेहनत से आए अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे मेरे भाई।
0: अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ
1: जी भाई।
0: वाक्य नहीं ड्रामा बना पूरा पाकिस्तान में
1: अच्छा
0: बहुत पुराना ड्रामा है जिस अगर मैं टीवी देखता था ये है 2007-08 की बात है। अच्छा तो उसमें ना दिखाया कि एक लड़का ना बड़ा बिजनेसमैन होता लेकिन वो ना हमेशा एक इलाका ऐसा था कि जो जहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते थे और उधर जाके एक घर में रुकता होता था महीने में एक बार लाजिम।
1: ठीक है
0: तो एक बार उसके ना पार्टनर ने जो उसका पार्टनर था साथ में उसने पूछा कि क्या है तो पहले तो और उसको लेकर गया साथ बोलते ये मेरा स्टार्टिंग सफर था मैंने रक्षे से स्टार्ट लिया था रक्षा चलाता था मौसम और यहाँ पे रहता था और वो दिन मैं अपने नाम भूलने के लिए ठीक है कि मैं अपना पुराना ना भूल सकूं और मैं किसी पे ऐसा जुल्म वगैरह ना कर बैठूं कि जो मुझे बाद में पछतावा दे तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं अपना जमीर जिंदा रख सकूं।
1: हाँ तो यही आपकी कहानी है
0: संभाल के रखा हुआ
1: है इसलिए तो आपकी कहानी है कि आपको भी याद आ गया। अच्छी बात है कि आप भी इस चक्कर में रहेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्ति किल्लत है तो अभी हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: अच्छा एक बात बताओ कबीर भाई।
1: हाँ पूछो ना।
0: ये आप करना क्या चाह रहे हो कभी मक्खियां कटवा रहे हो अरे कहाँ कहाँ से जानवर पकड़ के ला रहे हो भाई
1: भाई भाई मैं
0: कल मैं हाजिर नहीं था लेकिन मैंने रात में सुनी तो अफसोस हुआ कि वो बेचारी जिंदा दफन हो गई और उसकी कंडीशन बात की।
1: इन कहानियों के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे मैं जानता हूं।
0: तो बात ठीक है यार इस बात में आपको हैट्स ऑफ है आप इतना जना प्रिपरेशन करते हो और इतना सब कुछ करते हो।
1: थैंक यू भाई।
0: ठीक है लेकिन कल ये मजा आया इन्फॉर्मेशन की ये बात थी कि क्या नाम है इसका एक तो मक्खियां और दूसरा एक कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले उसको खत्म नहीं करना चाहिए।
1: भाई शुक्र है अभी टेक्नोलॉजी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसे हादसा नहीं होते हैं अभी भी हों तो पता नहीं कह नहीं सकते पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड।
0: लेकिन इंसान की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि या कोई बात ऐसी होगी इंसान ने बोला ठीक है यार ठीक है खत्म होगी ना बस सही है खत्म उसके पीछे का वाकया वो इंसान अगर नहीं जानता ठीक है तो क्या पता कोई बीच में ऐसा बंदा पिस रहा हो जिसको नहीं पिसना चाहिए।
1: ठीक है
0: वो ये कहानी चलो अल्लाह
1: आप भी मेरे भाई ख्याल रखिए अल्लाह
0: हाफिज़
1: मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई के बाद कुछ मैसेजेस पढ़ता हूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओके वालेकुम अस्सलाम इनके मैसेज किया प्रिंस भाई ने। वालेकुम अस्सलाम शाह सलीम साहब भाई अभी कॉल का टाइम ही नहीं है मैं इनको थोड़ी देर में लगाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम खादिम हुसैन साहब फिर मैसेज किया सलाम सर गुड जॉब अल्लाह कामयाब करे आमीन। यूसुफ भाई ने लिखा है कि कबीर ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है यही कि यहाँ आ गया कमाना इंडिया छोड़ के मतलब कमाने के लिए यहाँ पर आ गए घर के सबसे छोटा फर्द छोटी उम्र में जो बंदा अपने सिटी में कभी कभी छोड़ के नहीं गया हो उसको अचानक अब्रॉड आना पड़े। अच्छा आप इससे पहले कहीं नहीं गए उस भाई मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आए। मेरा भी बड़ा कमाल का मैंने मतलब ये हज़ार बार बताया मैं आपको बोर नहीं करूँगा जल्दी बता देता हूँ मैं भाई कतर भाग के आया था लिटरली बता रहा हूँ मैं लिटरली मैंने वहाँ पर किसी को नहीं बताया था यहाँ आके कॉल करिए मैं कतर में लैंड कर चुका हूँ तो ये सरप्राइज मैंने भी दिया है तो पीपल हैव स्टोरीज। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई लाइव नहीं सुन पाऊंगा ड्यूटी प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम पर मैं आज की स्टोरी का आपको थोड़ा सा मैं बता दूं बिकॉज आज की स्टोरी है बड़ी कमाल की। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं कट गई कॉल कोई कॉल नहीं। तो आज की जो कहानी है इट्स अ लॉन्ग एस स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है तो आपको मजा आएगा ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस पर कुछ तो बनना चाहिए। एक जरा मैं कॉल उठा लूं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ जी कमाल भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए भाई।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक नंबर आप सुनाइए।
2: आप जो जब स्टार्ट किए बताए कि जो है आपने याद तो किया होगा कल मालूम है कल माविज मैडम ने सवाल किया था कि अगर किसी को कोई अपनी लाइफ किसी की लाइफ जीना हो तो किसकी लाइफ पसंद करेंगे भाई दो तीन लोग ऐसे आए जो कबीर भाई की लाइफ पसंद कर रहे हैं दिन के लिए।
1: क्या बात कर रहे हैं ऐसा भी था क्या?
2: हाँ भाई
1: अरे बोर हो जाएंगे यार ये की चूज कर रहा है मेरी लाइफ की चूज कर रहा है। अच्छा ओके ये मुझे नहीं पता था
2: कौन क्या सवाल क्या था भाई
1: मैं ये पूछ रहा था कमाल भाई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाक्य कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है जिसपे आपको लगता है इस पे तो यार डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे कतर जो है जब आया हूँ तो
2: नहीं नहीं

उसके कार्टून्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, नकार दिया। कोई भी एडिटर तैयार नहीं था आर्नो को एक चांस देने के लिए। अब गैराज में काम कर करके उसकी हालत और ख़राब हो रही थी, जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं पेंट के, इन सब चीज़ों के, लगातार जब बंदा इसमें काम करता है ना तो नर्वस सिस्टम बहुत ख़राब होता है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, डैमेज हो चुका था, और उम्र भी ज़्यादा हो रही थी। सालों से उसका यही सिस्टम था, दिन में काम करता था गैराज में और वहीं पर उसने बेड लगा लिया था, नींद को भुला के अपने कार्टून्स बनाता था। कभी कभार नींद आ जाती थी डेस्क पे बैठे बैठे, लेकिन फिर वो नींद टूट भी जाती थी क्योंकि हेड डाउन करके आदमी कितना ही सो सकता है। लेटने के बाद उसको बेचैनी होती थी, जैसे तैसे जब नींद आई आखिरी मोमेंट तक वो जगने की कोशिश करता था, और यही उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो चाहता था अपने आर्ट पे फोकस करना, लेकिन कहां से करे, उसकी जिंदगी उसे इजाजत ही नहीं दे रही थी। वो बहुत इज्जत से अपने आर्ट को बेचना चाहता था और उसी से कमाना चाहता था, लेकिन वो थक गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई इज्जत की भाषा समझ ही नहीं रहा है, और वो अपने आप पे डाउट करने लगा था, क्या मैं इतना बुरा कार्टूनिस्ट हूं जो मुझे एक मौका नहीं मिल सकता, एक मौका। उसके मन में एक ही ख्याल था, उसे जल्दी पैसा चाहिए और बहुत सा चाहिए, पर वो कोई चोर नहीं है और किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी उसे बहुत बुरा लगता था कि नहीं यार, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो रास्ता निकालना पड़ेगा बिना वायलेंस के, बिना जानमाल के नुकसान के। मोटी रकम कैसे बनाऊं, फिर एक दिन आर्न जो था अपने किचन में था, इसी गैराज के साइड में छोटा सा किचन था, हार्डवेयर से वो बहुत सारा सामान लाया था, उसको तोड़ मरोड़ के उसने एक चीज बनाई थी, ये था एक पाइप बॉम्ब। इस पाइप बॉम्ब में उसने एक अलार्म क्लॉक का सिस्टम लगाया था और उसमें टाइमिंग लगाई थी, पूरा कंपोनेंट निकाल के, क्योंकि ये इंजीनियरिंग भी बड़े अच्छे से जानता था। उसमें उस पाइप बॉम्ब में इसने टाइमर सेट किया रात के 2 बजे का। रात के 2 बजे का टाइम क्यों, ये आप जानेंगे आगे। पहली वजह तो ये थी कि वो जानता था रात के 2 बजे किसी को नुकसान नहीं होगा, कोई इंसान होगा ही नहीं, और ये जो वो करने जा रहा था एक किस्म का मैसेज था, और यहां से कहानी बहुत पलटियां खाने वाली है। तो 13 जून 1992 डाउनटाउन हैमबर्ग जर्मनी में एक जगह थी क्रास डॉट करके, और इस जगह पे बहुत सारी चीजें थी, वो काउंटर्स देखे ना अपने, आइल्स होती हैं, बर्तन रखे होते हैं, वहां पे पोर्सलिन का पूरा डिपार्टमेंट था, चाइना सेट थे लग्जरी वाले, वहां पे इसने ये पाइप बॉम्ब छुपा दिया था और टाइमर लगा दिया था रात के 2 बजे का। रात के 2 बजे ठीक ये फटा और हजारों चीजों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई इंजरी नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन पूरी तबाही मच गई उस जगह पे। अगले दिन कास्टार्ड वाले लोग जो इसके ओनर थे, जो काम करते थे, सबके सब आए और उनको वहां पे एक रिटन, एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी जो थी जिस बंदे ने लिखी थी उसका नाम था आर्नो डेगोबर्ट। डेगोबर्ट मैं बताता हूं क्या है, आर्नो ने खुद एक चिट्ठी लिखी थी और बहुत प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बोला हाँ ये मैंने किया है, और डिमांड रखी थी कि मुझे 1 मिलियन डॉच मार्क्स चाहिए, मतलब 1 मिलियन करेंसी चाहिए जर्मनी में, जर्मनी की करेंसी। और उसने आगे लिखा कि प्लीज प्लीज, बाय द वे खत में लिखा उसने, प्लीज मुझे 1 मिलियन दे दीजिएगा वरना आगे खतरा होगा। बहुत ही मोहब्बत से खतरे की वार्निंग पहली मरतबा किसी ने पढ़ी थी। साथ में उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसने बोला कि अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो एक काम कीजिएगा, आने वाले दिन के अखबार में एक कोडेड एड छपवाइएगा। तो एक अखबार था हैमबर्गर मॉर्गन पोस्ट न्यूज़पेपर, उसमें कहा कि इसमें लिखवाओ अंकल डेगोबेर ग्रीट्स हिज नेफ्यू। अब डेगोबर्ट क्या है, डेगोबर्ट जर्मन में है स्क्रूज मैकडक। आपने कभी कार्टून देखे हैं, स्क्रूज मैकडक एक बत्तख था, बिलियनियर बत्तख, याद होगा आपको, गोल्ड कॉइंस में कूदा खेला करता था, तैरा करता था, वो एक कार्टून आता था स्क्रूज मैकडक। तो उसको जर्मनी में डेगोबर्ट, तो ये उसने कहा अगर आप ये लिखवाएंगे अखबार में तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे 1 मिलियन देने को तैयार हैं।
स्क्रूज मैकडक अभी भी याद नहीं आ रहा, तो ये डिज्नी के आर्टिस्ट कार्ल बार्क्स ने बनाया था बहुत पहले, आप जाके देख सकते हैं बाद में। तो जब अगला दिन आया और अखबार में ये छपा मिला तो लोग बड़े कंफ्यूज थे। अखबार में तो बाकी खबरें थीं लेकिन कोने में छपा हुआ था। लोग सोच रहे यार अचानक से ये क्या लिखा हुआ है। लोगों के तो पल्ले नहीं पड़ा लेकिन वो पढ़ के आर्नो बहुत खुश था। पुलिस में लेकिन खलबली थी, पुलिस को क्योंकि इन्फॉर्म कर दिया गया था, और पुलिस जो थी वो एक थ्योरी बना रही थी। उसने बोला पक्का ये कोई एक बंदा नहीं है, इनके पीछे पूरी गैंग होगी, ग्रुप होगा, कोई मेजर डिपार्टमेंट होगा, ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है। 1 मिलियन की मांग, अरे ये कोई प्लानिंग कमेटी होगी, लोगों की कुछ ग्रुप होगा, इनका कहीं ना कहीं सेफ हाउस होगा। पुलिस ने ये तमाम थ्योरी तैयार कर ली थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये कोई गैंग नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ये तो एक बेरोजगार कार्टूनिस्ट है जो कार्टून्स बनाता है, जो एक गैराज में काम करता है वहीं सोता है। पर पुलिस के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा गैंग मेंबर है। अब क्योंकि एड जो था वो अखबार में आ चुका था, ये मान के चल रहा था आर्नो कि अब तो हां बोल दी गई है, अब तो मुझे 1 मिलियन पक्का मिल जाएंगे। वो अब बर्लिन में अपने गैराज में एक डिवाइस तैयार कर रहा था, ये सुनिएगा बहुत जरूरी है। उसने एक डिवाइस तैयार करी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली एक डिवाइस थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी। अपना इंजीनियरिंग का सारा दिमाग इसने यहां पे लगा दिया और इससे ही वो 1 मिलियन का जो बैग है वो लेने वाला था। वो नहीं चाहता था कि पुलिस जो है उसका सामना करे, उसके सामने आए या वो उनके सामने आए। और दूसरी तरफ जो था बैग तैयार किया जा रहा था। तो लेट समर, बेसिकली जून खत्म होने जा रहा है, 1992 में आर्नो ने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए कि इस हिसाब से फॉलो करो अगर तुम चाहते हो कि मैं और कहीं ब्लास्ट ना करूं। फिरौती की रकम जो थी वो कास्टार्ड वाले लेकर गए रात के अंधेरे में और उन्हें बताया गया कि एक ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन जो है वो बर्लिन की तरफ जाने वाली है, इस ट्रेन के नीचे आपको बैग जो है रख देना है, इस डब्बे के नीचे, और इसमें जो है आपको मैग्नेट लगा देने हैं। बड़े कंफ्यूज थे वो, हैं ये क्या कह रहा है, मैग्नेट लगा देने बैग के अंदर, क्या कैसी बातें कर रहा है, पर जो जो उसने कहा वो तो करना ही है। तो ये गए रात के अंधेरे में और बैग तैयार किया और बैग में मैग्नेट्स रखे और बताए हुए डब्बे के नीचे लिटरली पटरी पर रख दिया उन्होंने। अब ऐसा क्यों, यह आइडिया आर्नो का था। अच्छा, ये आइडिया उसने कैसे दिया, इसके पीछे भी एक कमाल का किस्सा है। आइडिया देने के लिए आर्नो ने एक चिट्ठी लिखी थी पुलिस वालों को, बोला डायरेक्शन दे रहा हूं ध्यान से सुनना, रेलवे लाइन के पास एक लैंप पोस्ट है, ऊपर लैंप जल रहा होगा और इसी खंबे पे एक बक्सा है, बक्से को खोलना, बक्से के अंदर जो है सारा साजो सामान पड़ा है, बाकायदा डायग्राम बना के दिया, जो स्कूल में पढ़े जाते हैं ना वैसा डायग्राम बना के दिया, बोला इसको फॉलो करना और दब बैग को रखना। और पुलिस वाले कंफ्यूज थे क्या क्या पागल आदमी है, पर उन्होंने वही सब किया जो उसने बताया। प्लान बड़ा सिंपल था, जब ट्रेन चलेगी तो कुछ ही देर में रेडियो सिग्नल्स के जरिए आर्नो रिमोट कंट्रोल यूज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बैग जो अभी पटरी पर रखा है ट्रेन से चिपक जाएगा और फिर आर्नो अपनी मर्जी के हिसाब की लोकेशन पर वापस रिमोट कंट्रोल से इसको ड्रॉप कर देगा। तो मतलब ट्रेन निकल जाएगी और बैग बीच में आर्नो की लोकेशन के हिसाब से नीचे गिर जाएगा, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया हो। अब पुलिस जो थी वो पूरे रेलवे लाइन को कवर कर चुकी थी क्योंकि उसके इंतजार में थी धर दबोचने के। ऊपर हेलीकॉप्टर्स चॉपर्स चल रहे हैं, हर मीटर पे थर्मल इमेजिंग ब्लैंकेट्स लगाए हुए हैं, नाइट विजन लगा के झाड़ियों में छुपे हुए पुलिस वाले सारे के सारे इस पटरी के इर्द गिर्द हैं। ट्रेन निकली, पटरी पे जो बैग रखा हुआ था वो ट्रेन से चिपका और कुछ देर में आर्नो ने अपनी लोकेशन के हिसाब से 50 मीटर की दूरी पर बटन दबाया, बैग नीचे गिरा, ट्रेन ऊपर से निकल गई। अब महज 50 मीटर की दूरी पे ये बैग पड़ा हुआ था पटरी पर। उसने इधर उधर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा,
मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने बैक की तरफ ना हाथ रखा, उतने में फ्लड लाइट्स ऑन हुई, 100 officers इधर उधर हर डायरेक्शन से उसकी तरफ बढ़े, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स की स्पॉटलाइट पूरे एरिया

एक बंदा एक डिवाइस को यूज करके दूर से ट्रिगर कर सकता है। ट्रेन जो 90 किलोमीटर की स्पीड में है उस पे वो चिपका सकता है, बैग गिरवा सकता है और 100 ऑफिसर्स और तमाम चीजों से दूर भाग सकता है। ये वो पॉइंट साबित करके गया था। और ये खबर जब न्यूज में फैली तो ये पूरा का पूरा स्टंट लोगों को पता चला और हर मीडिया आउटलेट पे यही बात चल रही थी। लोग जर्मनी में फैन बन चुके थे आर्नो के, फैन कि एक क्रिमिनल है, गैजेट्स यूज करता है, कार्टून कैरेक्टर्स का रेफरेंस देता है, काफी कूल है बंदा। इनफैक्ट उस टाइम पे जर्मनी के एक अखबार की हेडलाइन थी गैंगस्टर ऑफ द ईयर, क्योंकि वो काफी कूल था लोगों के लिए। इतना ही नहीं, कुछ शॉप्स थी जहां पर टी शर्ट्स मिल रही थी आई एम डैगोबेयर, रेडियो पर बाकायदा पोल चलते थे, 2/3 लोगों ने पूरे जर्मनी से ये कहा कि नहीं यार बंदा है तो कूल। पुलिस को तो किसी ने पूछा ही नहीं कि पुलिस ने एफर्ट्स किए क्या क्या, ना बंदा बड़ा कूल है। हैमबर्ग में एक डिटेक्टिव थे जिनको ये खबर पता लगी कि ऐसा कोई बंदा है, इनका नाम था माइकल डेलेकी। इन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करी क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्लास्ट किए जा रहा था जहां पे लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि मुझे 1 मिलियन दो तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करी माइकल ने, इसका नाम रखा सोको डैगोबेयर, शॉर्ट फॉर्म थी, मतलब फुल फॉर्म थी इसकी सॉन्डर कमीशन डैगोबेयर। इसमें 100 स्पेशल ऑफिसर्स बुलाए गए और साथ में मार्केट में 1 मिलियन का इनाम रखा गया जो भी इंफॉर्मेशन देगा आर्नो के बारे में उस पे। इस बीच पुलिस ने साइकिक्स, फॉर्च्यून टेलर्स और ना जाने किन किन को हायर किया, एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्सपर्ट भी आ गया जो बाद में फ्रॉड निकला, लेकिन सबने कोशिश कर ली, नथिंग। माइकल डेलेकी जो थे वो ये मान के चल रहे थे नहीं यार ये एक बंदा नहीं हो सकता, ये पूरी की पूरी टीम है, या तो कोई एक्स मिलिट्री का आदमी है ये, या ग्रुप है इंजीनियर्स का जो पकड़ा गए। मगर एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी, इनका नाम था क्लॉडिया ब्रॉकमैन, उन्होंने प्रोफाइलिंग की थी और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं आप सब गलत हैं, ये एक सिंगल आदमी है, फ्रस्ट्रेटेड है, एक अच्छी लाइफ चाहता है डेस्परेटली और अपने इंजीनियरिंग टैलेंट को यहां पर लगा रहा है, बस इतना ही है। एंड में उन्होंने लिखा कि कोई तन्हा इंसान है जो बस पुलिस से मजे ले रहा है और उसे खुशी हो रही है बेवकूफ बना के। क्लॉडिया ने यह बात बताई पुलिस को, बहुत बार बताई, लेकिन पुलिसकर्मी जो थे जो ऊपर पोजीशंस पे थे वो काफी ओल्ड स्कूल थे, उन्होंने कहा क्लॉडिया बकवास मत करो यार, कैसे हो सकता है कि अकेला आदमी इतना सब कुछ प्लान कर ले, इट इज इम्पॉसिबल। एंड सबने सिरे से खारिज कर दिया इस थ्योरी को। और इस बीच आर्नो अपना काम करता रहा। फिर ऑटम सीजन आया 1992 का, आर्नो अपने गैराज में एक और गैजेट तैयार कर रहा था पुलिस के गैजेट से लड़ने के लिए। अब पुलिस को दोबारा से कहा गया, आर्नो ने कहा कि मुझे 1 मिलियन दो वरना मैं करता रहूंगा, जगह जगह वो ब्लास्ट कर रहा था। मगर ऐसे टाइम पे छोटे मोटे जहां पे प्लेटें टूट जाएं, खिलौने खराब हो जाएं, जहां पे लोग ना हो, पुलिस वालों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है हम तुम्हें देते हैं 1 मिलियन। और पुलिस वालों ने एक बैग भरा नकली नोटों से, एक बार फिर से इस बार उन्होंने इसके अंदर मोशन एक्टिवेटेड टेयर गैस बॉम्ब भी लगा दिया कि मतलब अगर कोई बैग को खोलेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा और चारों तरफ ये टेयर गैस, आंसू गैस जो है वो फैल जाएगी, इससे इंसान मरेगा तो नहीं लेकिन बेहोश जरूर हो जाएगा। इसको नाम दिया कोड नेम डोनर शैग। तो फिर वो रात आई, पुलिस वालों ने आर्नो को बताया कि हम चलती ट्रेन से फेंक रहे हैं तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पे। आर्नो ने कहा ठीक है, और इन लोगों ने चलती ट्रेन से वो बैग फेंक दिया बताई हुई लोकेशन पे। फिर आर्नो बैग को देखने लगा दूर से फेंकने के बाद, पर उसे कुछ अजीब सा लगा, उसकी इनर इंस्टिंक्ट ने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो बैग को छू के उसकी जिप खोलने के लिए जा ही रहा था, उसने कहा यार वजन कुछ अजीब सा हो रहा है, और उसने बैग को वहीं छोड़ दिया, उसे खोला ही नहीं। उसे अंदाजा लग गया कि कुछ गड़बड़ है और पुलिस अपने बनाए हुए खुद ही के ट्रैप को रात भर डेटोनेट कर रही थी, क्योंकि इसे डेटोनेट करना भी तो जरूरी है। और बहुत बहुत शर्मिंदा थी पुलिस, बहुत

शर्मिंदा। न्यूज़पेपर में यह भी पब्लिश हो गया। इनफैक्ट कार्टून्स बनाए गए जिसमें पुलिस वाला जो है उसके हाथ में दो फटने वाले गिफ्ट बॉक्सेस दिखाए गए और पीछे जो एक बत्तख है जो खुश होकर भाग रही है। टैगिश स्पीगल एक अखबार था, उसकी हेडलाइन भी थी लूनी टून्स एट द ट्रेन स्टेशन। पुलिस बार बार फेल हो रही थी आर्नो के आगे और आर्नो एक लेजेंड बन रहा था। इनफैक्ट क्योंकि उसने बैग नहीं उठाया वहां से चला गया तो उसने पुलिस वालों को लेटर लिखा, खुद चल के खत भेजा और खत में उसने लिखा क्या, आई एम सॉरी प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं आपसे बाइज्जत 1 मिलियन मांग रहा हूं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, आप मेरे साथ खेल ना खेलें और मैं वापस आपको बताऊंगा क्या करना है। और ये खत पुलिस वालों को मिला, देवर लेके क्या आदमी है ये। इनफैक्ट रेडियो पर क्विज भी हुए आर्नो के ऊपर, आर्नो इतना मशहूर हो गया कि उस पर पैरोडी सॉन्ग्स बनने लगे, उसके नाम से मास्क बनने लगे बत्तख के। क्लॉडिया ब्रोकमैन की बात एकदम सच थी। सितंबर 1992 आर्नो, उसे पता चला कि पुलिस जो है उसके बारे में ये कह रही है कि अरे ये ऐसा ही है, इधर उधर छोटे मोटे धमाके करता रहता है, इस पर ध्यान मत दो, खुद ही चुप हो जाएगा। और जब आर्नो ने ये सुना तो आर्नो को लगा अच्छा ऐसा है क्या। उसने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। उसने हैनओवर में एक जगह चुनी और वहां पर उसने दिन दहाड़े टाइमर के साथ फिर से ब्लास्ट किया। इस बार जान तो नहीं गई लेकिन लोग जख्मी हुए, छोटा सा लेकिन जख्मी जरूर हुए। यह करने के बाद आर्नो को खुद बहुत बुरा लगा, उसे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैंने ये क्यों किया, इनकी बातों में आके मैं क्यों अपने ईगो में आ गया। और उसने दोबारा से खत लिखा पुलिस वालों को, उसमें उसने लिखा कि आप लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ा, मैं आपकी तरह नहीं हूं, लोगों की जिंदगी से मत खेलो, मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। बाकायदा उसने पुलिस वालों को अंकल लिख के किया, बल्कि वो खुद 41 साल से ऊपर का था। और ये गेम और तेजी से आगे बढ़ रहा था पुलिस और आर्नो के बीच का। एक रात पुलिस वालों को दोबारा बताया गया कि कहां पे आना है और फिर से एक ट्रेन ट्रैक के पास बुलाया। इस बार पुलिस वाले झाड़ियों में छुप गए ट्रैक के आसपास कि जैसे ही आएगा लपक लेंगे इसे। आर्नो आया इस बार देर रात अंधेरे में निकल के बैग लेने के लिए और उसे देखकर एक पुलिस वाला साइड से भागता हुआ आया लपकने के लिए उसे, लेकिन उसका हाथ जो है वो किसी चीज से टकराया और वो स्लिप हुआ और मुंह के बल गिरा पटरी पर। पुलिस वाले के आगे के दो दांत टूट गए। जवानों ने देखा कि अरे ये क्या है, अचानक से वो वहां से उठा और भाग निकला अपनी साइकिल पर, लेकिन फिर से बैग में नकली नोट डाले थे पुलिस वालों ने। एक और फेल्ड अरेस्ट। अब प्रेस पीछे पड़ गई थी पुलिस की, बिकॉज दे वर कवरिंग एवरीथिंग। और हेडलाइन इस बार जर्मन के अखबारों में थी द इडियट्स ऑफ द नेशन, और ये बाकायदा पुलिस वालों के लिए था। 7 बार अटेम्प्ट कर चुके थे वो अभी तक और 7 बार फेल हो चुके थे। अब तो आलम यह था कि ऑफिसर्स जब अपने पुलिस स्टेशन में होते थे तो ब्रीफिंग के दौरान खुद ही हंसने लगते थे। मगर अजीब बात थी, एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे, एक इंसान बार बार एक ही मांग कर रहा है। आर्नो जो इतना बड़ा लेजेंड बन चुका है जर्मनी में, उसको एक बार भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। वो एक हीरो जरूर है लेकिन एक पाई नहीं लूट पाया अभी तक। वो उसका रेंट ओवर ड्यू जा रहा था, किराया बढ़ा दिया था मकान मालिक ने, मिस्टीरियसली वो रात में जो घर से गायब हो रहा था, उसकी दूसरी बीवी जो थी जिससे उसने शादी करी थी वो शक करने लगी थी, सब कुछ बिखर रहा था। सितंबर 1993 बर्लिन के आउटस्कर्ट्स में आर्नो ने एक छोटा सा वर्कशॉप रेंट किया था, बहुत कम किराए वाला। ये एक कंक्रीट का बना हुआ एक छोटा सा वेयर हाउस था, वर्कशॉप मान लीजिए। इसकी एक छोटी सी खिड़की थी जो बंद रहती थी और पैडलॉक डोर था। इसके अंदर आर्नो जो था वेल्डिंग का सारा सामान लेके आया, कॉपर वायर्स थे, मेटल स्क्रैप्स थे जो उसने जंकयार्ड से उठाए हुए थे और बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे, बहुत सारी चीजें थी अलग अलग जगहों से निकाली हुई। एक अधमरे से जलते हुए बल्ब के नीचे बैठकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था आर्नो, और इस बार आर्नो कुछ अलग बना रहा।

वो एक रिमोट कंट्रोल रेलगाड़ी बना रहा था। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे डिटेल है। 60 सेंटीमीटर लंबी एक पटरी पर दौड़ने वाली एक रेल कार्ट, ये स्टील को वेल्ड करके उसने बनाई थी, रबर के व्हील्स बनाए थे जो पटरी पे चिपक के चल सके, और इसमें वीसीआर की, लिटरली वीसीआर की मोटर सेट की गई थी, और इसमें उसने एक रेडियो रिसीवर लगाया था जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करके लगाया था, इसमें रिचार्जेबल बैटरी थी और एक कस्टम टाइमिंग सर्किट था, क्योंकि टाइम के हिसाब से होना चाहिए। तो वो उसने जो मॉडल एयरप्लेन्स नहीं आते खेलने कूदने वाले जो बच्चे खेलते हैं, उनमें से निकाल के उसमें लगाया था। और इतना नहीं, इस पे इसने क्लैंप मैकेनिज्म लगाया था पकड़ने के लिए किसी सामान को, फिर इसको पूरी तरह से पेंट किया मैट ब्लैक ताकि रात के अंधेरे में बिल्कुल ना दिखे। इतना ही नहीं, एक छोटी समर्सिबल इसने चीज बनाई थी जो इन केस ऑफ इमरजेंसी पानी के अंदर बैग को ले जाएगी और वापस वक्त के हिसाब से बाहर ले आएगी। एंड ये सब कुछ वो 1993 में कर रहा था। कुछ दिनों बाद आर्नो ने पुलिस को बताया कि एक सेक्लूडेड एरिया है, वहां पर आपको पहुंचना है। वहां पर एक पार्किंग लॉट है, ऑफिसर्स जो थे वहां पर पहुंच गए और ऑफिसर्स को बताया गया था कि आपको इस पार्किंग लॉट में एक जगह पर एक बड़ा सा ग्रीन सा बॉक्स नजर आएगा। पुलिस वाले जैसे पार्किंग लॉट में पहुंचे, उनके सामने एक बड़ा सा ग्रीन सा बक्सा था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये होगा, लकड़ी का बना था, उसके अंदर जर्मनी में ना सैंड भरी जाती थी रोड को डीआइस करने के लिए। बहरहाल पुलिस ने जो है इसको देखा बैग, उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, और वो जो बैग लेकर आए थे इसमें इन्होंने बहुत छुपा के इस बार कायदे से मोशन डिटेक्टर लगा दिए थे और जीपीएस ट्रैकर ताकि पता लगता रहे। और फिर उन्होंने इस बैग को जो भर के लाए थे, बाय द वे अगेन ये खेल रहे थे, उसमें नकली नोट लेके आए थे और इन्होंने फिर से ये उसके अंदर डाल दिया, इस बड़े से ग्रीन से बक्से के अंदर, और फिर अलग अलग जगह पे छुप गए। कोई छतों पे चला गया, कोई कहीं झाड़ियों में छुप गया, कोई गाड़ी के पीछे चला गया। फिर एक घंटे तक ही वहीं रहे कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और वो जो जीपीएस ट्रैकर था वो ऑन रखा, पुलिस ऑफिसर्स उसे मॉनिटर कर रहे थे। किसी ने बोला ये माइंड गेम तो नहीं खेल रहा, लगता नहीं क्या आएगा, ये घंटा बीत गया। 11 बज गए रात के, बताए हुए टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका था। फिर पुलिस वालों का मोशन डिटेक्टर बजना चालू हुआ, वो बाहर आए, उन्होंने देखा अरे इस बड़े से डब्बे के पास तो कोई भी नहीं, मोशन डिटेक्टर बज क्यों रहा है। फिर वो फौरन भाग के गए और इस बड़े से हरे से डब्बे को उन्होंने खोला, जब उनके होश उड़ गए, लिड हटाते के साथ ही उन्होंने देखा कि जो बैग उन्होंने डाला था वो तो गायब था ही, लेकिन सब कुछ गायब था, नीचे की तरफ लिटरली गड्ढा था, लिटरली गड्ढा। ये बक्सा उसने रखा ही ऐसी जगह पे जहां पे सीवेज गटर की एंट्री थी, पूरी की पूरी सीवेज एंट्रेंस पर, बड़ा ही मैकेनिकली इसने डिजाइन करके फिर उस पर डब्बा रखवाया था, और नीचे किस्म का ट्रैप डोर था। पूरी शाम आर्नो इसी सीवेज के अंदर बैठा हुआ था अंडरग्राउंड और सुन रहा था पुलिस वालों को। उसने एक माइक्रोफोन, डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो था वो डब्बे के पास रखा हुआ था ताकि सारी की सारी बातें सुन सके, और जैसे ही उसे समझ में आया कि ये बहुत आलसी हो रहे हैं और कॉफी ब्रेक पे जा रहे हैं, उसने नीचे से मैनहोल से एक लीवर सिस्टम लगाया था, उसने नीचे से ढक्कन खींचा और बैग तुरंत नीचे आके गिरा। उसने बैग उठाया और सीधा इस पूरी जो पूरी लाइन थी सीवेज लाइन के अंदर वो भाग के वहां से चला गया। जब तक पुलिस को समझ में आया कि आर्नो ने क्या किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, और उनका ट्रैकर सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसने सुन लिया था, एंड ही ब्रोक इट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल डेलिका जिनसे सवाल पूछे थे प्रेस और हंस हंस के पूछ रही थी, लिटरली वो मजबूर थे, उन्होंने भी तारीफ करी। उन्होंने बोला देखिए मानना पड़ेगा ये जो भी है तारीफ के काबिल तो है, लोग जर्मनी में आर्नो के पीछे पागल हो गए थे, पागल। एक ग्रुप था जर्मन डोनाल्ड करके, ये लोग डोनाल्ड डक के बहुत बड़े फैंस थे, इन्होंने पुलिस का मजाक अलग उड़ाया, उल्टा इनसे कहा कि सर आप लोग कॉमिक्स पढ़िए डोनाल्ड डक की तो आपको समझ में आएगा, या स्क्रूज मैकडक पढ़िए, आपको पता ही नहीं है वो बंदा कार्टून कॉमिक्स पढ़ के वो आइडियाज आप पे लगा देता है,

और आप पकड़ नहीं पाते उसे। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। जनवरी 22, 1994 की तारीख आ गई। आर्नो फेन को, जो परेशान हो चुका था बेचारा, उसको अगर नकली नोट पकड़ाए जाते और वो भी बैटल में लगा हुआ था, वो बहुत परेशान था। अब उसने एक मास्टर प्लान बनाया था और धमकी दी थी कि अब नहीं माना ना तो मैं सच में बड़ा कर दूंगा। उसने इस बार एक बहुत ही डेजर्टेड रेल रोड चुना था, मतलब समझ लो कि बेकार एकदम, उसके आसपास कुछ नहीं था, ये रेल रोड बंद था, यहां से कोई ट्रेन आने जाने वाली नहीं थी। और ये शार्लटनबर्ग डिस्ट्रिक्ट है जर्मनी, वहां पे था। पुलिस वालों को इसने इंस्ट्रक्शन दिया कि सुनो इस बार मजाक नहीं। पुलिस वालों ने कहा नहीं, इस बार असली नोट लेके आएंगे हम, आप फिक्र मत करो। उसने कहा वहां पर एक फोन बूथ है, फोन बूथ में जाओ, वहां रिसीवर के नीचे एक चाबी है, वो चाबी निकालो और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। पुलिस वालों ने वो चाबी निकाली, आगे का इंस्ट्रक्शन उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था एक रिकॉर्डेड टेप भी है, वो भी लेकर आओ और रेलवे ट्रैक पे जाओ, वहां पे एक बक्सा है उसे खोलो। पुलिस वालों ने खोला और उस पे से जो चीज है उसे निकालो, पटरी पे रखो और उस पे सामान रखो, रख दिया। और जो चाबी तुम्हारे पास है वो चाबी लगाओ और घुमाओ, चाबी घुमाई। एक मेटल की जो ट्रॉली उसने तैयार करी थी इस रेलवे ट्रैक पे चलने के लिए, उस पे उसने सामान रखवाया और पुलिस वाले हैरान थे, भाई ये जेम्स बॉन्ड है, क्या है ये बंदा। बैग को उन्होंने रखा, दूर से रिमोट कंट्रोल से आर्नो ने छुपके उसे ऑन किया। स्विच जैसे ही ऑन किया, पुलिस वालों से करवाने के बाद वीसीआर मोटर ऑन हुई और ये मिनी कैरेज छोटा सा पटरी पर दौड़ता हुआ एकदम भागने चलने वाली स्पीड पे, चलने वाली स्पीड पे इनफैक्ट, धीरे धीरे पटरी पे आगे बढ़ने लगा। इसके ऊपर बैग रखा हुआ था और पुलिस इसे फॉलो कर रहे थे, अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करके जहां जहां जा रहा है फॉलो कर रहे थे, पटरी पे आगे जाता जाता जाता। मगर आर्नो इसके लिए तैयार था, उसने आगे बिल्कुल घुटने की लेंथ पे पेड़ वेड़ गिरा रखे थे कि पुलिस वाले इसका पीछा करते करते आर्नो तक ना पहुंच पाए। और उसमें ट्रैप वायर्स थे, एक पॉइंट पे आके जब पुलिस वाले वो ट्रैप वायर से टकराए, जो उन्हें दिख नहीं रहे थे अंधेरे में, पटाखे फूटने लगे, फायर क्रैकर्स, और वो फट फट फट फट चारों तरफ पुलिस वाले परेशान थे ये क्या हुआ। और इतने में वो जो आर्ट उसने तैयार करी थी वो नीचे से निकली और आर्नो के पास जा ही रही थी, लेकिन फिर ये गाड़ी किसी वजह से पटरी से डिरेल हो गई। आर्नो से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर, अब आर्नो सोच रहा था कि मैं जाऊं इसको उठाऊं या क्या करूं, पर उसने देखा कि पुलिस वाले बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं और फ्लैश लाइट्स लेकर उसकी तरफ आ ही रहे हैं, और वो इस ट्रॉली को वहीं छोड़ के, उस पर बैग को छोड़ के वहां से भाग गया। उसने कहा छोड़ो यार, इस बार डर ने लालच को हरा दिया। और इत्तफाकन ये पहली बार था कि पुलिस वालों ने असली कैश रखा था, असली कैश। अगर ये कैश वो उठा लेता, मिल जाता उसे, तो वो माला माल हो जाता और ये पुलिस और उसकी कहानी खत्म हो जाती, लेकिन द गेम कंटिन्यूड। जब ये कार्ट जो बनाई थी पूरी रेलवे ट्रैक पे चलने के लिए रिकवर करी पुलिस वालों ने, तो फॉरेंसिक टेक्नीशियंस समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें बोला ये बंदा कितनी पढ़ाई की हुई, ये क्या बनाया इसने, हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। एक स्पोक्स पर्सन थे जिनका नाम था अलरिच टीला, उन्होंने ये बाकायदा मीडिया में कहा है, उनका बयान है कि पुलिस वालों को उनका लेवल बढ़ाया है इसी बंदे ने, पुलिस वालों को अकल दिए इसी बंदे ने। पर दूसरी तरफ आर्नो अभी भी खाली था, खाली हाथ था, कुछ नहीं मिला उसे, वो फिजिकली और मेंटली टूट चुका था। 2 साल से ये खेल खेल रहा था वो पुलिस वालों के साथ, 2 साल से उसने क्या नहीं करा, पर कुछ नहीं मिला। उसकी बीवी, उसके बच्चे कोई नहीं जानता था, पड़ोसी जो थे उनके हिसाब से तो ये एक साइनेज पेंटर

पता कि ये बंदा कोई नॉर्मल हद भी नहीं है, जर्मनी का मोस्ट वांटेड बंदा है जिसके सर पे 1 मिलियन का इनाम है। इनफैक्ट एक स्केच भी आया मार्केट में जो एक एम्बेरसमेंट के ऊपर ऑफिसर ने बना दिया, पर उसका कुछ नहीं हुआ। मगर फिर 1994 में ही जो वो थक गया था तो कुछ चीजें रूटीन वाली बन चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक पैटर्न देख लिया था कि वो कॉल करता है ईस्ट बर्लिन में एक फोन बूथ से और अक्सर सुबह के 6 से 8 के बीच में करता है। और फिर अप्रैल 22, 1994, अब तक 676 दिनों से ये पुलिस से दूर था, भाग रहा था। 676 डेज। सुबह सुबह पुलिस वालों को एक कार दिखी, टूटी फूटी, उसके पीछे एक साइकिल बाइसिकल लगी हुई थी और उन्होंने घंटों तक इस गाड़ी को फॉलो किया। वो जानते थे शक इस गाड़ी पे। और सुबह के 7 बजे ये गाड़ी पार्क हुई, एक आदमी निकला जो आर्नो था। वो बड़ा एक ब्राइट येलो टेलीफोन बूथ की तरफ, और जैसे ही वो अंदर गया उसे पता नहीं था कि पुलिस पूरी तरह से उसे घेर रही है, एक इनविजिबल ट्रैप तैयार हो रहा है। चारों तरफ पुलिस वाले थे, चारों तरफ। और आर्नो फिर से इंस्ट्रक्शन देने के लिए पुलिस वालों को कॉल कर रहा था। दिस वॉज द 30th टाइम। उसने जैसे फोन करा एक रिंग में कॉल उठ गई, पर उसने देखा कि उसके पास एक वैन खड़ी हुई जो अभी तक नहीं थी और उसका इंजन ऑन है। उसे घबराहट होने लगी, उसे शक हुआ और ऊपर से फिर फोन पे आवाज आने लगी कि पुलिस स्टे ऑन द लाइन। आर्नो ने रिसीवर एकदम से रख दिया और बाहर की तरफ निकला। लेकिन जब वो बाहर निकला तो सारे SEK कमांडर्स उन्होंने आर्नो को घेर लिया। पुलिस ऑफिसर ने कहा हैंड्स अप, स्टे स्टिल। कोई गैजेट नहीं, कोई बटन दबाने के लिए नहीं, कोई बाइसिकल नहीं। आर्नो ने अपने हाथ ऊपर किए, मुस्कुरा दिया और बोला सर आपने पकड़ ही लिया। आखिर हैंडकफ्स लगाए गए। 2 साल बाद वो पकड़ा गया, 676 दिन बाद वो पकड़ा गया। सबको शौक लगा, पूरा जर्मनी हिल गया। और उसकी शक्ल देख के पुलिस वाले हैरान थे कि ये था। हम तो क्या सोच रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आदमी जंगल से भाग के आया है, सालों साल जंगलों में रहता होगा, उसकी हालत समझ में नहीं आ रही है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये खबर फैली और लोगों के मूड खराब हो गए थे। रेडियो पर RJs दुखी थे, सब कह रहे थे इट्स ओवर। लोग पढ़ रहे थे, उनके लिए एक लाइव एंटरटेनिंग क्राइम सीरीज सामने चल रही थी और अब उसका लास्ट एपिसोड था क्योंकि वो पकड़ा गया था। सब कुछ एनी इतना इंप्रेसिव था कि ऑफिसर्स वर इंप्रेस्ड। उसके वर्कशॉप से टाइपराइटर्स, ब्लूप्रिंट्स, गैजेट्स सब कुछ लेके आए। पुलिस वालों ने कुल मिला के आर्नो पर 20 मिलियन खर्च किए। 20 मिलियन 1995 में जाके ट्रायल शुरू हुआ। पूरा जर्मनी कोर्ट के बाहर था। आर्नो अंदर जब जा रहे थे तो तालियां बज रही थी। कोई उसे विलन नहीं मान रहा था। ही वॉज इंप्रेसिव, वो एक एंटी हीरो बन चुका था। 6 मिलियन का उसने डैमेज किया था, इसलिए उसकी सजा को 15 साल से कम करके 9 साल कर दिया गया था। और उसने सिर्फ एक ही बयान दिया। उसने बोला सर अगर मैं ये नहीं करता जो मैंने किया तो मैं शायद अपनी जान ले लेता। सबकी सिंपैथी उसकी तरफ थी। पुलिस वाले खुद कोर्ट रूम में जो बयान देने के लिए आ रहे थे वो तारीफ करके जा रहे थे उसकी। ऐसा लग रहा था कि कोर्ट रूम उसकी तारीफ करने के लिए लोग आ रहे हैं। एक जर्नलिस्ट जिसने लिखा, एक बुक बनाई, जर्मनीज ग्रेटेस्ट पुलिस हाइस्ट। आर्नो को परोल में अगस्त 2000 में छोड़ दिया गया 6 साल की सजा के बाद। मीडिया से बचने के लिए 1 दिन पहले रिहाई दी गई। फिर क्या हुआ, आर्नो बन गया वो जो वो बनना चाहता था, एक आर्टिस्ट। जेल में उसने एक मेमोआर लिखा, एक किताब लिखी, कार्टून्स बनाए अपने हर एक क्राइम पर, और एक मैगजीन ऑयल एंड स्पिगल उन्होंने उसे हायर किया एक स्टाफ कार्टूनिस्ट के तौर पे। आज की तारीख में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन जर्मनी। ईमानदारी की कमाई से वो घर चला रहा है। उसने इंटरव्यूज में बोला कि हाँ मुझे पछतावा है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं। आर्नो इस पूरी क्राइम जर्नी में 1 मिलियन तो नहीं कमा पाया, कभी नहीं ले पाया, लेकिन उसे जिंदगी में वो मिला जो शायद वो 1 मिलियन से भी

नहीं खरीद सकता था. दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट एवर. ये थी आर्नो की कहानी. आई होप आपको अच्छी लगी हो. बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107. प्लीज बताइएगा कैसे लगी कहानी आपको. हाँ, स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: भाई दिस वॉज द लॉन्गेस्ट स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, 6:24 भी हो गए। दिस वॉज प्रॉब्ली नहीं, शायद ये लॉन्गेस्ट ही थी कहानी अभी तक की। मैं एक कॉल ले लेता हूँ, फिर ब्रेक भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: जी मेरा भाई बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम शानदार हाल है। बताओ मेरे भाई, कैसे लगी आपको कहानी तला भाई?
4: तो बेहतरीन यार, अब तो इंजीनियर भाई निकला पला
3: है।
4: ये तो इंजीनियर भाई निकला अपना,
3: इंजीनियर भाई निकला भाई। मैं सोच रहा हूँ कि इसका दिमाग 1992 के हिसाब से, मुझे पता नहीं कितने गैजेट्स बनाना मुमकिन होगा, लेकिन जितना ही दिमाग लगा रहा था यार, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसके इन चीजों से। मुझे लगा भाई ये तो कोई नहीं कर सकता,
4: ये तो सीरियस नोट भाई। मैं तो नॉर्मली जो स्टोरी है रोक के रखा हुआ था।
3: थैंक यू सो मच भाई, मुझे अच्छा लगा था भाई। मुझे पता है आप जेन्युइनली बोल रहे हैं, वरना बोलते नहीं, तो मुझे पता है कि जेन्युइन तारीफ है उसके लिए।
4: नहीं भाई, पार्टी आपको पता है, अपन सच्चा करा बंदा है भाई, तारीफ मुंह पे करेंगे, बुराई तो अपन करते ही
3: है। नहीं मुझे
4: पता, बुराई नहीं होती, वो सच्चाई होती है, बेशक सच्चाई होती है।
3: ज्यादा फॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, ज्यादा फॉर्मल नहीं।
4: दिल घबरा रहा मेरा,
3: छटपटाहट से हो रहा है, क्या हो रहा है?
4: छटपटाहट से अजीब सी।
3: कुल मिला के कहानी आपको अच्छी लगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? बस ये इम्पोर्टेंट।
4: लेकिन बात सुनो मेरी, ये जो है तुम आइडिया दे रहे हो, लोगों को बता रहा हूँ।
3: अरे भाई ये आइडिया देके भी फायदा नहीं है, कौन बना पाएगा ये आज की तारीख में? तो भाई
4: अपने आस पड़ोस में देखो, बड़े जीनियस बैठे हुए, तुम हल्का दे रहे हो।
3: बात तो सही है, बात तो सही है। इशारा अपनी तरफ है क्या? अपनी तरफ इशारा।
4: अबे अरे यो भाई, यो मैं अपनी तरफ भी ठीक है।
3: मैं तो मामूली सा मिस्त्री हूँ।
4: आप है आर्टिस्ट, आप है ना भाई आर्टिस्ट
3: लोग
4: है, आप है ना
3: आर्टिस्ट।
4: तो बस ये मुझे लग रहा है, कभी जाना मैंने देखो यही भी दे दिया लोगों, कोई डिग्री मम्बा भागे ना तो पकड़ लेना।
3: यही सुना रहा है गालियां। अरे नहीं भाई, लेकिन मजा आया मुझे सुना के, मजा आया तला भाई।
4: नहीं नहीं भाई, पढ़ी मजा आ गया।
3: थैंक यू।
4: बाकी यार देखो, बात सुनो मेरी, तुम आज है मंगलवार, ठीक है, तुम्हें प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ मैं, जुम्मे को ना तशरीफ आबदी कर
3: लेना, याद है मुझे, अच्छे से याद।
4: उठा लिए जाओगे,
3: बता रहा हूँ। डन है, मैं मैसेज करूंगा आपको।
4: सीरियस हूँ मैं,
3: एकदम सीरियस, 10,000%
4: बता रहा हूँ मैं, देख लो तू।
3: डन है
4: भाई, लोग हाजरीन जो भी सुन रहे ना भाई, गवाह है ना, देखो
3: गवाह भाई,
4: मैं करूंगा फिर
3: चारों तरफ,
4: इतवार को कॉल करके बताऊंगा।
3: संडे को खुशी से रो दोगे आप, मैं बता रहा हूँ। ठीक है मेरा भाई, ओके मेरा भाई, ख्याल रखो तेरा भाई, अल्लाह हाफिज।
4: चलो भाई मिलते हैं, इंशाल्लाह।
3: डन मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद तुरंत एक कॉल ले लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
3: जी मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एकदम शानदार।
5: आपकी कहानी के चक्कर में सिंथवा निकला।
3: चलो अच्छी बात है। और बताओ कैसी लगी आपको कहानी कुल मिला के?
5: बेहतरीन। वो अभी जो पहले भाई थे ना, वो उनकी वाली बात से याद आया कि कहीं पकड़े भी गए ना, तो हमने भी बड़े तमीज से कहना आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये काम करने के लिए उकसाया गया था। तो वाला कबीर भाई,
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, सांप सांप। नहीं बट ये सबसे लंबी कहानी
5: है, बंदे का दिमाग और बंदे का सोचने का लेवल बहुत ऊपर था भाई।
3: हाँ।
5: बहुत ज्यादा ऊपर, जो उसे कारागिरी करी है ना।
3: हाँ।
5: एक तो वो चुंबक वाली, ठीक है, उसमें उसका जना बहुत दिमाग लगा, और एक ये लास्ट में ट्रेन वाली।
3: हाँ।
5: इसमें इस बंदे ने बहुत दिमाग लगा के काम किया।
3: हाँ।
5: तो बस यार एक किसी तरह पैसे मिल जाए सही।
3: हाँ वही ना। और
5: लेकिन दूसरा हेड्स ऑफ ये भी था कि 2-2.5 साल अगले ने मेहनत की, हिम्मत नहीं आ रही,
3: बहुत
5: कॉन्स्टेंट लगा रहा, वो
3: हद से ज्यादा मेहनत करी भाई, हद से ज्यादा।
5: यार देखो असल में उसका जो कहानी उसने जैसे बताई है, तो उसकी जो कंडीशन थी, ठीक है, अब उसको और कुछ नजर नहीं है, इंसान की आंखों में आगे पर्दा आ जाता है ना, तो फिर वो बोलता है कि यार ठीक है, अब जो लगा वो वही ठीक है, लेकिन फिर भी उसका साथ देता रहा कि यार नहीं गलत कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है,
1: गलत
5: किसी को तरह से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ,
1: चोट नहीं पहुंचाई भाई ने, एक बार पहुंचा के पछताया,
5: चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।
1: हाँ बस वो उसी ने नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अभी अजान का वक्त है इंशाल्लाह, तो फिर मैं वापस संपर्क साधूंगा आपसे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत सारा प्यार भाई को।
5: भाई जुम्मे को बता देना मैंने भी कहा
1: है। डन डन डन डन बताता हूँ। ठीक है मेरा भाई,
5: ठीक हो गया, ओके,
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, मिलते हैं भाई छोटे से ब्रेक के बाद।
0: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
6: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: जल्दी से कुछ मैसेज पढ़ दूं मैं। फरद भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, फरद भाई मैं ठीक हूँ। एक हमें अमेरिका से मैसेज आया, थैंक यू सो मच, उन्होंने बोला है हे आई वाज कीनली लिसनिंग टू योर स्टोरी व्हाइल वर्किंग, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, इज देयर अ मूवी ऑन इट? नो भाई, कोई मूवी नहीं है इस पे। एक मैसेज आया और यूसुफ भाई का, लिखते हैं अच्छी थी स्टोरी हमेशा की तरह, लंबी थी। हाँ भाई, आज की कहानी सबसे लंबी थी। आई लिखते हैं ग्रेट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ही यूजेस हिज ब्रेन एंड स्किल, बहुत ही खूब। हम गाड़ी में थे, पूरी सुनी, बाहर निकले थे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, लेकिन गाड़ी में बैठे रहे स्टोरी सुनने के लिए। फातिमा की बिटिया है माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, और फातिमा ने इन्हें गाड़ी से उतरने नहीं दिया, बोला जब तक कहानी ख़त्म नहीं होती अब्बा बाहर नहीं जाना है। और लिखते हैं अफसोस ये है कि इतना सब होने के बाद भी बेचारे को कुछ हासिल नहीं हुआ, ईमानदारी की ज़िंदगी मिली इससे, और क्या ईशान साहब, थैंक यू सो मच। फिर एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई, बड़ी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मज़ा आ गया वल्ला। अब्दुल नवीद भाई, थैंक यू भाई। इनके बाद मैसेज क्या है, कब्बू भाई अपने स्टोरी मांगता है आपने को, भेजेंगे ना भाई? एक मैसेज, मज़ा आ गया आज तो, ब्रिलियंट स्टोरी। ये मैसेज क्या है, मुझे आपने नाम मेंशन नहीं किया है, अच्छा सफ़ीर अहमद साहब, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ज़बरदस्त कहानी, आई रियली इन्जॉयड। ये फलक भाई का मैसेज है, फलक भाई थैंक यू। और फलक भाई के बाद मैसेज आया है तला भाई को, सलाम तला भाई की आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच भाई कहानी के लिए, कह रहे हैं बहुत तबाही थी तबाही, मोहम्मद भाई जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन एक मैसेज आया, माशाल्लाह नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच, इनका नाम मोहम्मद है। एंड देन है भाई, क्या यार रोज़ सुपर से ऊपर कहानी, थैंक यू मच अप्रिशिएटेड, मोहम्मद हुसैन भाई, बहुत प्यार भाई को। देन भाई लिखते हैं 5 कॉल्स कट किए हैं स्टोरी की वजह से, बट बेस्ट एवर, मनी हाइस से भी अच्छी लगी, कमाल की थी भाई, भाई थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार भाई आपको, इतनी अच्छी लगी आप सबको कहानी, मुबीन भाई थैंक यू। एंड देन एक मैसेज है, गुड इवनिंग कबीर भाई, लिखते हैं द स्टोरी इज़ वेरी नाइस अलॉन्ग विद गुड नरेशन, बट आई मिस द बिगिनिंग ड्यू टू वर्क, नो प्रॉब्लम, मैं भेजूंगा। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। देन एम के भाई लिखते हैं, भाई आर्नो कमाल का बंदा है, पुलिस को इतना उछाल दिया, तो गुलरेज भाई कह रहे हैं यूपी की पुलिस होती तो पकड़ लेती। शेप भाई अमेजिंग स्टोरी लिखते हैं, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रिंस भाई लिख रहे हैं 20 मिनट खर्चा किया, 1 मिलियन दे देते बेचारे को, बच जाते, ग्रेट स्टोरी विद बेस्ट डिटेलिंग, थैंक यू सो मच। और नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कामना लली साहब का मैसेज, माइंड ब्लोइंग स्टोरी। और नदीम भाई लिखते हैं आर्नो के पास टैलेंट होता तो बेचारी की किस्मत साथ नहीं दे रही थी इतना, और कहते हैं ही वॉज अ रियल लाइफ डोरेमोन, जबरदस्त स्टोरी। और आपका क्या कहना कबीर भाई, नो वन नरेट्स लाइक यू, नदीम भाई को बहुत सारा प्यार, एंड देन आपकी मेहनत रंग लाई, थैंक यू सो मच भाई। अरे माशाल्लाह, बहुत पसंद आ गई आप लोगों का, नहीं है कमाल हो गया। एक कॉल उठा लेते हैं लोगों, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, जी मेरा भाई बताइए,
1: क्या हाल है बारूद भाई?
0: एकदम बढ़िया भाई, एकदम बारूद लगी कहानी भाई, कैसी लगी आपको?
1: अरे कहानी तो अच्छी लगी, मैं ये पहले पूछना चाह रहा हूँ जूस उस पिए कि नहीं पिए?
0: नहीं भाई, अभी तो पानी भी नहीं पिया भाई।
1: भाई पी लेना चाहिए था भाई, पानी वानी एकदम एनर्जी बना के रखो यार, कहानी थी वाकई में।
0: थैंक यू सो मच भाई।
1: भाई कबीर भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, आप डायरेक्टर बनो यार।
0: अरे क्या बात कर रहे हो।
1: अरे यार इतनी लंबी कहानी यार, मजा आ गया। वो डांस का एक शो था ना जो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार। मुझे डर लगता है लंबी कहानी से,
1: मुझे डर लगता है, एकदम खतरनाक। मुझे लगता है कि जेम्स बॉन्ड शायद यहीं से
0: उसके पीछे की भी बड़ी कमाल की कहानी है भाई, जेम्स बॉन्ड के पीछे की बड़ी कमाल की कहानी, किस दिन तैयार करके सुनाऊंगा।
1: दोनों देखो, चोर तो कमाल का था, पुलिस भी कमाल का, फाइनली उसने पकड़ ही लिया। हाँ। एक बारीकी ही काफी थी,
0: इज्जत पे आ गई थी ना भाई, इज्जत पे आ गई थी। हाँ, दो साल
1: सही बात है। बात ईगो पे आ गई थी, जय कहन शिखरे वाला हाल हो गया था।
0: हाँ उसने इतना पिटा दिया भाई इसीलिए।
1: लेकिन यार कबीर भाई वाकई में मानना पड़ेगा आपको यार, कहां से ढूंढ के लाते हो इतनी बड़ी बड़ी कहानी, और एक दिन में डेली हमको नई नई कहानी, और इतना बेहतरीन।
0: थैंक यू
1: भाई, बोलो यार, वर्ड्स की नहीं है
0: भाई, आपने भाई इतना कह दिया, बहुत प्यार भाई इस मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार।
1: मजा आता है वाकई में, आज तो सफर भी लंबा था, कहानी हाँ। भी लंबी थी, इतने मजे से सुना हूँ ना। हाँ। मैं ही जानता हूँ और मेरा दिल जानता भाई,
0: बहुत प्यार भाई, मेरे लिए शाम सेट कर दिया आपने बोल के मेरा भाई, अच्छा लगता है, मेहनत कर रहा हूँ।
1: हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सुन रहे हैं तो आप सारे आप ही कर रहे हो भाई।
0: नहीं भाई, आप लोग ना सुने और ना बताएं तो फिर
1: अच्छा कर रहे हो भाई।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस वजह से तो और मेहनत करने के लिए हिम्मत आती है ना, क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बत दे देते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, दिल से कह रहा हूँ, बहुत प्यार, बहुत प्यार
1: भाई। स्टोरी बहुत अच्छी थी, कल वाली भी मैंने सुनी नहीं थी लेकिन आपने भेजी और मैंने रात को सुनी।
0: हाँ
1: वो भी यार
0: कल वाली थोड़ी छोटी कहानी थी लेकिन अच्छी थी। थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जब भी मिलूंगा बस यही बोलूंगा भाई दफना दिए।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, जज़ाकअल्लाह मेरे
1: भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई,
0: अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई की इतनी ज़्यादा मोहब्बत के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पहली बात।

0: मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोग इतनी लंबी कहानी भी सुन लेते हैं और आपको अच्छी लगती है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मैं बता रहा हूँ सुकून से घर जाऊंगा मैं। एक कॉल और आई है, अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई।
1: भाई जिसने भी शिकायत की, सारे सबकी शिकायत आपने दूर कर दी भाई, इतनी लंबी सुना दी।
0: हाँ बहुत दिनों से लोग कह रहे थे ना, इसीलिए
1: मंजिल पे पहुंच के 20 मिनट गाड़ी में बैठा रहना पड़ा मुझे।
0: कैसी लगी लेकिन आपको कहानी, वर्थ इट था कि नहीं
1: कहानी? वाकई में भाई इंजीनियर था वो,
0: है ना, असली इंजीनियर भाई, एकदम बढ़िया इंजीनियर,
1: असली इंजीनियर था भाई। उसको तो उसमें देना चाहिए था, जब जेल चला गया था 6 साल की सजा थी, तो कार्टून लाइन में वापस, मतलब कार्टून बनाना उसका एक शौक था कार्टून का, लेकिन उसके साथ में इंजीनियर भी उसे करवाते ना, तो बहुत कुछ ईजाद करता था भाई वो।
0: हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली में बेचारे को बस वो मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा इंसान था, मैं उसको विलन मैं भी नहीं मानता, मुझे लगता है इंसान बहुत बढ़िया था। और वो बहुत बहुत वक्त तक अच्छे कार्टूनिस्ट रहे हैं, रियली गुड विद दिस वर्क, बहुत अच्छे कार्टून से मैंने उनके कार्टून भी देखे, पढ़े उनकी किताब को, ऑडियो बुक भी पढ़ी मैंने, सुनी मैंने, बट रियली डन अ ग्रेट जॉब मैन, बहुत बहुत बढ़िया आदमी था ये। तो ये
1: ग्रेट जॉब भाई, इतनी मेहनत से आपने डिटेल निकाल के सुनाने के लिए आपकी मेहनत भी भाई होती है आपका।
0: थैंक यू सो मच कमाल भाई, ताकि
1: हम लोग को ऐसी कहानी जो है कहीं दबी हुई है आप निकाल के लेके आते हैं, हमको सुनाते हैं
0: जी भाई। नहीं मैं बहुत दिनों से लोग कह रहे थे लंबी कहानी नहीं, लंबी कहानी नहीं, मैंने कहा लो भाई लंबी कहानी सुनो तुम। तो इसीलिए लंबी कहानी
1: भाई, सबकी कसर अपने पूरी कर ली है
0: जी भाई,
1: लंबी और मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन भी मिल गया।
0: कल की कहानी कुछ ज्यादा डार्क हो गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइट कहानी उठाते कोई, तो इसलिए आज ये वाली
1: डार्क नहीं थी भाई। हाँ। उसमें भी वो थी ना, अभी भाई देवे को याद करना है तो किसी ना किसी को तो भाई वहाँ मरना ही पड़ेगा ना।
0: हाँ।
1: जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ हमारे ऊपर भी अगर वो होगा तो भाई कोई मरेगा तभी तो जो है कुछ दूसरी चीजें याद होगी।
0: काफी डार्क बात कह गए आप भी, बहुत डार्क बात कह गए आप भी।
1: नहीं लोगों को डार्क लग रही है भाई, लेकिन कभी भी जो है ना आप देखिए ऐसी नहीं जात कोई चीज होती है।
0: हाँ बेशक ये तो है।
1: कभी कभी साइंटिस्ट को अपने ऊपर भी, कौन सा और आपने सुनाया था एक वकील की कहानी?
0: हाँ अच्छा वो वाली कहानी। हाँ वो जो
1: बंदूक लेके गया था,
0: केस साबित किया था। हाँ, ना उसने
1: खुद के ऊपर जो फायर किया केस साबित किया था।
0: हाँ वो भी बड़ी बड़ी एंटीक किस्म की कहानी थी। नहीं पर कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे भाई, इतने दिल से सुनने के लिए, और इंशाल्लाह और भी अच्छी कहानी आती रहेंगी आने वाले वक्त में, बहुत दुआ करते रहिए। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक मैसेज आया, भाई कॉल्स का क्या करूँ, अब वो बोल रहे हैं हम बिजी हैं। भाई ने कॉल काट दी पहले, मोमिन भाई ने सब कॉल कर रहे हैं। वैसे भाई मैं आपके लिए नज़र का तावीज़ लेकर दूंगा कि आपको नजर ना लगे, मेरा भाई हाउ स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। एक और मैसेज है, यू प्रॉब्ली थिंकिंग ऑफ आर्नो फुंके एलियस डेगोबट। हाँ उन्हीं की कहानी सुनाई है भाई मैंने, थिंकिंग नहीं सुना दी मैंने। तला भाई कह रहे हैं कि भाई यू मेड एवरीवन स्टे वे दे आर, ब्रावो। अरे तला भाई को बहुत सारा प्यार, क्या जस्ट अराइव ड्राइंग एंजॉयड द स्टोरी, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई। एंड लास्ट कॉल, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मेरी लास्ट कॉल हो ही गई।
0: हाँ जी भाई लग गए भाई की, बताइए मेरा भाई।
2: अरे इतना जब से गाड़ी से बाहर बाहर जाना पड़ा, स्टोरी के लिए बैठा था मैं भी इतनी देर तक गाड़ी में।
0: थैंक यू मेरा भाई, चलिए आप भी अपनी जगह पे रहे। कैसी लगी आपको कहानी भाई?
2: अरे बहुत भारी, मतलब अभी तक किसी का, मतलब किसी का कत्ल या किसी की डेथ हुए बिना कि अभी तक की सबसे बेस्ट स्टोरी।
0: कोई नहीं टपका भाई इसमें, कोई भी नहीं टपका, कोई नुकसान नहीं हुआ।
2: क्या बंदा भाई, मतलब गुर्बत इंसान से क्या क्या करवा देती है। देखो बेचारा कार्टूनिस्ट इंजीनियर बन के क्या क्या करने लग गया।
0: पर पता है जब उनके आप कार्टून देखेंगे ना जो उन्होंने बनाए और इलस्ट्रेशन जो किया, बहुत कमाल का आर्टिस्ट था भाई वो।
2: मैं भाई सर्च करूंगा, क्योंकि अपन तो वैसे भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कार्टून एनिमे और ये सब चीजों में, तो देखूंगा, जरूर देखूंगा। इतना इंटरेस्टिंग बंदा था तो फिर उसकी सोच कहाँ तक गई होगी वो तो देखना बनता है।
0: अरे बहुत बहुत जबरदस्त आदमी था, बहुत जबरदस्त आदमी था, इसलिए मैंने आज मतलब सुना।
2: मेरे को तो ऐसा लगा कि डोरेमोन इसी पे बेस्ड था, यहाँ से निकाल लिया
0: जेम्स बॉन्ड जोड़े डोरेमोन था ऐसा जिंदगी का। Actually, उसी टाइप का आदमी था ये।
2: 2 साल तक पुलिस को घुमाते रहना कोई आसान बात थोड़ी है यार।
0: हाँ, वो भी जर्मन भाई, ऐसा वैसा नहीं भाई, जर्मनी में समझ रहे
2: हो, पटाखे फोड़ के परेशान कर रहा है पुलिस को यार।
0: कि कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर अगर कोई अगर कोई मैंने तो
2: सबसे सही तरीका है बताओ कभी हाँ। भाई किसी से पैसा मांगना ना, तो देखो मैं नहीं चाहता कि कुछ हाथा भाई हो जाए, प्लीज आप मेरे पैसे लौटा दो।
0: अरे उसके अगर कोई लेटर्स में पूरे पढ़े नहीं मैंने क्योंकि टाइम कम था, जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं आर्नो ने ना उस टाइम पे, अगर कोई पढ़ेगा तो हंस देगा बाइज्जत, मतलब इतनी मोहब्बत भरी भाषा में कि अगर मैं होता मैं कहता ले भाई तू 1 मिलियन ले, खुश रहे भाई तू।
2: लेकिन पुलिस को भी कितनी मस्ती है भाई, मतलब डाल ही नहीं रहे उसके लिए,
0: वो भी उसे हल्के में ले रहे थे ना भाई, बहुत टाइम तक हल्के में लिया उन्होंने भी, बाद में लगा चलो ठीक है यार एक बार ट्राई करके देखते हैं बेचारे
2: को, बेचारे को जितनी बार मिले नकली मिले, जब असली आए तो हाथ भी दिया है।
0: हाँ
2: नसीब बेचारे के
0: बहुत बहुत खराब नसीब था बेचारे का, लेकिन आखिरी में चलो बाइज्जत जो है जिंदगी जिए भाई ने और लेजेंड अलग बन गया।
2: लेकिन उसने भाई 2 साल तक पुलिस को बराबर काम करवाया,
0: बराबर मेहनत कराई है, बराबर मेहनत कराई है, बराबर उनका इनफैक्ट उनका इंटेलेक्ट बढ़ाया ही इसी ने,
2: बढ़ा दिया। हाँ, मतलब ये ऐसा भी हो सकता तो सोच में पड़ गए कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। सबसे सही वो डब्बे वाला लगा मेरे को, बहुत जबरदस्त भाई,
0: सोचिए जरा। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, तो मुझे अभी तक मैं हैरान इस बात से हूं इस पे कोई मूवी नहीं बनी है जबकि बननी चाहिए।
2: हाँ, और बहुत अच्छी स्टोरी है, अच्छी खासी मूवी बन सकती है।
0: हाँ यार पता नहीं,
2: बहुत जबरदस्त स्टोरी
0: कोई बनाया तो बनाया। नदीम भाई लेकिन बहुत शुक्रिया आपने दिल से सुनी भाई, अच्छा लगा मुझे, मजाक ला मेरे भाई, थैंक यू।
2: अरे आपका नरेशन पता है, मैं इसीलिए स्टार्टिंग सुनता नहीं हूँ क्योंकि मैं सुन रहा हूँ काम वाम छोड़ के गाड़ी में बैठे रहता हूँ, इसके लिए मैं बोलता भाई रिकॉर्डिंग में सुन लेके मैं काम पटा लूँ अपने।
0: हाँ नहीं सही, अब आज आपको पकड़ के रखा ना, चलो अच्छी बात है कम से कम।
2: आज बैठ के भाई खाना ऑर्डर करना था मेरे घर पे लेके जाने के लिए, मैं आधा घंटा स्टोरी सुनने के बाद उतर के होटल के बाहर पार्किंग में बैठ के सुना।
0: नहीं नहीं भाई खाना ऑर्डर करो भाई, आप खाना वाना खाओ, आपने सुनी उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू मेरा भाई। ओके मेरा भाई अल्लाह हाफिज़। तो आज तो मज़ा आ गया आपको, आप लोगों को जैसे चाहिए थी कहानी इतनी लंबी लंबी कहानी मैंने दे दी है, आई एम रियली हैप्पी कि आप सबको सारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आज की स्पेशली बहुत लंबी कहानी थी, बट आई एम नॉट सॉरी, सॉरी नॉट सॉरी, आपको कहानी अच्छी लगी, दैट्स वॉट मैटर्स। एंड काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं, करामात उन्होंने भी लिखा मेरे के लिए, वो क्या हो गया या सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग द स्टोरी एंड ऑफकोर्स ये मैं कुछ देर में भेज भी दूंगा आपको, तो आप तो आपको मिल जाएगी। बाकी एक दो मैसेजेस मैं देख लूँ, कोई मिस तो नहीं हुआ, मिस हुआ होगा तो भाई माजरा था, क्योंकि माशाल्लाह आपने मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा किए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, थैंक यू सो मच अल्ताफ मोहम्मद भाई, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। और फैज़ान भाई कह रहे हैं पंजाब पुलिस होती तो पकड़ लेती, अरे भाई कहने की बात है भाई, बंदा तेज़ था, और इसी तेज़ी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि टाइम हो चुका है, बट आई होप कि स्टोरी जो है आज वाली कम से कम आपके साथ रहेगी, एक दो दिन आपके जहन में अटकी रहेगी, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए किस्से के साथ और बहुत सारी बातों के साथ, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। लेकिन साइन ऑफ करने से पहले बड़ा ही ख़ास गाना चलने वाला है, सीधा आवारापन का गाना चलाएंगे भाई, आवारापन 2 का गाना आ गया है, आशिकों जागो, सुबोध शर्मा की आवाज़ है, अभी थोड़ा सैड गाना आया है बट आई विल प्ले दिस आवारापन 2 का गाना, एंड अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ के उन छुपे हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगियों पे असर डाल रहे हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जीरो वेस्ट किचन, यानी ऐसा किचन जहां खाना बनाते वक्त वेस्ट को मिनिमम या बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जाए। अब किचन घर का दिल होता है भाई, लेकिन यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा फूड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और वाटर वेस्ट जनरेट होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स फूड वेस्ट होता है, और उसका ऑलमोस्ट 60% घरों से आता है, रेस्टोरेंट से नहीं। साथियों जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और वहाँ हाफ यूज्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह पड़ी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, लेफ्ट ओवर जो चावल होते हैं या एक्सपायर्ड सॉसेस अक्सर औकात में नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पुराना खाना वेस्ट हो जाता है और नया पैकेजिंग वेस्ट भी।

0: ऐड हो जाता है उसके अंदर. तो भाई इको स्विच अप्रोच कहता है कि पहले एग्जिस्टिंग खाने को तो यूज कर लो भाई, जो पड़ा हुआ है बेचारा मिस्कीन फ्रिज में आपकी राह देख रहा है, फिर बेशक नया खाना खरीद लेना अगर भूख लगे तो. सिर्फ ये हैबिट अपनाने से आपके हाउस होल्ड फूड वेस्ट में तकरीबन 20-30% तक कमी हो सकती है. अच्छा अब ना मैं आपको कुछ मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, किचन वेस्ट की हिडन रियलिटी बताती हूँ, ठीक है. देखें अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको किचन हैबिट्स पर रीथिंक करने पर मजबूर कर देंगे. पानी का ऑलमोस्ट 25% घरों में सिर्फ फूड प्रिपरेशन और डिश वॉशिंग में यूज हो जाता है. एक सिंपल बनाना पील को कंपोस्ट होने में 2-5 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर लैंडफिल में हो तो भाई और भी ज्यादा टाइम लग सकता है. और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, अगर दुनिया की फूड वेस्ट एक कंट्री होते ना, सारा फूड वेस्ट एक कंट्री में डाल दिया था और वो उसे एक कंट्री बना दिया था, एक कंट्री होता वो, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूएसए और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन होल्डर होता वो. इतना बड़ा स्पेस बन जाता है उसका. अब भाई आप पूछेंगे कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका हमारा नजरिया है जीरो वेस्ट माइंडसेट. देखिए इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल सा है. किचन को वेस्ट फ्री बनाना मुश्किल नहीं है, बस माइंडफुल बनना होता है. जब हम जीरो वेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि पैसा भी सेव कर रहे होते हैं. एक एस्टिमेट के मुताबिक एवरेज फैमिली अपने ईयरली ग्रोसरी बजट का 10% सिर्फ वेस्ट फूड की वजह से लूज कर देती है. अगर हम प्लानिंग और स्टोरेज बेटर करें ना अपना, तो ये लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है. जरा सोचिए ना, आप सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस माइंडसेट में ज्यादा सब्जियां फ्रूट और स्नैक्स ले आते हैं, जस्ट इन केस में कि आपको माइंड सेट होता है कि क्या पता हम इस्तेमाल करेंगे. घर आकर 3 दिन तक सब यूज नहीं होता. 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आधे आइटम तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सब्जियां और फ्रूट हैं तो वो जल्दी गल सड़ जाते हैं. देखिए भाई इको स्विच कहता है कि शॉपिंग लिस्ट के बगैर ग्रोसरी शॉपिंग एक वेस्ट जनरेटर मिशन बन सकता है. देखिए प्लानिंग सिंपल सॉल्यूशन है, जो फ्रिज में है उसी के अराउंड मील्स अपने डिजाइन करें और जो चाहिए सिर्फ वो ही लेकर आए. अब मैं आपको चलते चलते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जीरो वेस्ट किचन बनाने के लिए. तो भाई पहली टिप ये है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करें. पुराना खाना पहले यूज करें और फिर बाद में दूसरा खाना. दूसरी टिप है कंपोस्टिंग स्टार्ट करें ना किचन वेस्ट के लिए, जैसे फ्रूट पील और वेजिटेबल स्क्रैप्स, इनके ऊपर कंपोस्टिंग स्टार्ट करें. तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक रैप की जगह रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें. चौथा, पोर्शन कंट्रोल करें ताकि ओवर कुक से वेस्ट ना हो कोई भी सामान. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली रीयूज करें, जैसे लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस या वेजिटेबल सूप, ये भी बन सकता है. साथियों देखिए, जीरो वेस्ट किचन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुकिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें. जब हम खाने को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम उसे वेस्ट नहीं करते. एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब फैमिलीज मील प्लान करती है ना, तो उनका फूड वेस्ट नियरली हाफ हो जाता है और कुकिंग स्ट्रेस भी कम होता है. तो भाई हमारा कंक्लूजन ये है आखिर में कि भाई इकोसिस्टम का सिंपल मैसेज ये है कि किचन सिर्फ कुकिंग स्पेस नहीं होता बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट का सेंटर होता है. हर छोटी आदत जैसे लेफ्ट ओवर्स यूज करना, वेस्ट सेग्रीगेट करना और कंपोस्ट बनाना, ये सब कुछ मिलकर एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बनाते हैं. तो भाई अगली बार जब आप किचन में एंटर करें ना, तो एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, आज मैं कितना वेस्ट अवॉइड कर सकता हूँ. तो साथियों इसी के साथ मैं हूँ सफा इको स्विच में. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहाँ हर मील सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल डिसीजन होता है.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
4: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
4: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
4: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107।
2: दिल से देसी।
3: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: और आज मैं बात कर रही हूँ एक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की, और ये है AI companions, your future personal assistant. सुना है आपने इसका नाम? देखिए, आजकल हम AI को तो खूब अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। AI को हम एक डिजिटल टूल समझते हैं, जो कि ठीक भी है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कमांड्स फॉलो करता है। हम सिरी से सवाल पूछ लेते हैं, एलेक्सा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह देते हैं, चैट जीपीटी से हम आंसर्स ले लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 2030 तक AI सिर्फ एक असिस्टेंट ना रहे बल्कि एक रियल कंपेनियन बन जाए, एक दोस्त जो आपको समझे, आपके साथ ग्रो करे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो कैसा लगेगा? सोच के थोड़ी सी उलझन होती है। लेकिन फ्यूचर का AI सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एंटिसिपेट भी करेगा। मतलब आप बोलने से पहले ही वो समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या। AI companion, जी हाँ, AI companion का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, AI companion असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, आपकी आदतों को समझने के लिए, आपके रूटीन को ट्रैक करे, आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे। ये AI सिर्फ डेटा पर काम नहीं करेगा, ये इंसान की तरह इंटरैक्ट करेगा। अगर आप रोज सुबह एक ही वक्त उठते हैं तो AI आपका अलार्म उससे पहले ही एडजस्ट कर देगा ताकि आप नेचुरली उठ सकें। अगर आपका दिन हेक्टिक हो, AI ऑटोमेटिकली आपके स्केड्यूल में ब्रेक्स ऐड कर देगा जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। फ्यूचर का जो AI है वो सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड नहीं होगा बल्कि इमोशंस को भी समझेगा। अगर आप सैड हो, एलेक्सा से बात करो तो वो आपको उसके जवाब देगा। लेकिन कल का AI आपकी टोन, आपकी आवाज और आपके बिहेवियर से समझ जाएगा कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में है। उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि आप स्ट्रेस में हो। अगर आप थके हुए हैं, AI आपको रेस्ट सजेस्ट करेगा। अगर आप अपसेट हैं, तो AI कामिंग म्यूजिक आपके लिए प्ले करेगा। अगर आप एंशियस हैं, AI ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग सजेशंस आपके लिए देगा। ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि AI अब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने के करीब आ चुका है। दोस्तों, AI companion का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद अभी हमारी और आपकी सोच से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे अडॉप्ट करना ही है। कभी ना कभी AI को अपना companion तो बनाना ही है। AI companion सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हेल्थ केयर में ला सकता है। सोचिए, आपके पास एक AI हो जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसे एनालाइज कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। अगर सिस्टम को कोई अनयूजुअल चेंज नजर आता है तो फौरन आपको अलर्ट मैसेज भेज देता है। तो ये सारी चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी। अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो आप अनयूजुअल थकान फील करते हैं, AI डॉक्टर को नोटिफाई करेगा या ऐप को चेकअप के लिए सजेस्ट करेगा बिफोर इट कम्स सीरियस। इसका मतलब है कि फ्यूचर मेडिसिन ज्यादा प्रिवेंटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव नहीं रहेंगी। हर चीज मॉनिटर करना, हर चीज देखना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल एस्पेक्ट है। AI companion सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक डिजिटल दोस्त जैसी फील कराएगा। लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, थॉट्स डिस्कस करेंगे। आज भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन कल हो सकता है कि ये लोग अपने AI companion से डायरेक्टली बात करें। क्या AI इंसान की जगह ले सकता है? ये सवाल हमारे जहन में बहुत बार आता है। जवाब है नहीं। AI सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। हर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी होते हैं और उसके फायदे भी, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी प्राइवेसी के इश्यूज तो क्रिएट करती है. वहीं एआई क्या डिसाइड करेगा और कैसे करेगा, ये सोचना थोड़ा सा अभी के लिए डिफरेंट और डिफिकल्ट है. लेकिन हाँ, एआई फ्यूचर, एआई कंपेनियन जो है वो फ्यूचर तो है. ये मशीन इंसान के बीच में एक नया रिश्ता क्रिएट करने के लिए तैयार है. 2030 तक हो सकता है कि हम सिर्फ डिवाइस के साथ नहीं बल्कि डिजिटल कंपेनियन के साथ जिंदगी गुजार रहे हों. ये कंपेनियंस हमारी हर जरूरत समझे, हमारी हेल्थ का ख्याल रखे, हमारी लाइफ को आसान बनाए. लेकिन साथ ही ये भी सवाल होगा, क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमें? भारत एआई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम किस तरह से इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं इसका पता नहीं. फिलहाल तो मेरा मकसद आपको डराना या घबराना या किसी तरह से टेंशन में लेकर आना नहीं है, बस कहीं ना कहीं आपकी सोच को और आपको जहनी तौर पर तैयार करना है टुवर्ड्स 2030, जो कि फ्यूचर है, जिसे हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो अडॉप्ट करना ही है. फिलहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो चुका है कि मैं आपसे इजाजत ले लूं. इस वादे के साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात लेकर आपके लिए मैं हाजिर होगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कलाम, आज हम एक ऐसी सिफत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी अजीम सुन्नत और सिफत है जो इंसान के किरदार को संवारती है, उसकी जबान को पाकीजा बनाती है, उसकी निगाहों की हिफाजत करती है, उसके रवैये में शाइस्तगी पैदा करती है और उसे हर बुराई से बचाने का जरिया बनती है। आज का मौजू है हया, जो मोमिन का जेवर है। आज के दौर में बाज़ लोग हया को कमजोरी समझते हैं, बाज़ लोग इसे एतमाद की कमी करार देते हैं और बाज़ तो ये कहते हैं कि अगर इंसान बाहया होगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर हया इन सब से मुख्तलिफ है। हया का मतलब है वो एहसास जो इंसान को बुराई, बेहयाई, बदतमीजी और गुनाह से रोक दे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज्यादा बाहया थे।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aaj ka topic hai khana share karne ki ahmiyat par. Islam hame sikhata hai कि जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। खाना शेयर करना सिर्फ एक सोशल हैबिट नहीं बल्कि एक इबादत है जो रहमत और बरकत का सबब बनती है। जब हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं तो ना सिर्फ किसी की जरूरत पूरी होती है बल्कि दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये छोटा सा अमल लोगों को करीब लाता है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोच पैदा करता है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी चीजों तक महदूद रहते हैं लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। आज का अमल यह है कि अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो घर का फर्द हो या फिर कोई जरूरतमंद। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी

भी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीद टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, आज तक आपने सुना डिजिटल फ्रॉड के बारे में, यानी कि कोई शख्स आपको कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, लिंक के जरिए या फिर एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम इस बार बात करने वाले हैं फिजिकल थेफ्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपके सामने आता है, आपसे बातें करता है और आपको ठग के यानी कि स्कैम करके चला जाता है। और नए जमाने के इस नए स्कैम में हम बात करेंगे हाईटेक कीलेस कार थेफ्ट के बारे में। मॉडर्न अर्बन एरियाज में कीलेस कार थेफ्ट, जिसे रिले अटैक भी कहा जाता है, एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस फ्रॉड में चोर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। एक चोर आपके घर के बाहर खड़ा होता है जहां कार की स्मार्ट की रखी होती है और दूसरा कार के पास होता है। पहली डिवाइस घर के अंदर से की का वायरलेस सिग्नल कैच करती है और उसे दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करती है। कार इस सिग्नल को देखकर समझती है कि ओनर पास ही है। इस तरह कार का डोर इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है और चोर इंजन स्टार्ट करके कार लेकर फरार हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस बिना किसी फिजिकल डैमेज के कुछ ही सेकेंड्स में पूरा हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। फरादे पाउच। अपनी स्मार्ट की को हमेशा एक सिग्नल ब्लॉकिंग फरादे बैग में रखें और अगर ऑप्शन हो तो की फॉब की वायरलेस सेटिंग को डिसेबल कर दें। स्टेयरिंग लॉक का भी एक सॉल्यूशन है। एक फिजिकल स्टेयरिंग व्हील लॉक यूज करें जो चोरों को रोक सके और उसके अलावा पार्क सेफली। गाड़ी को हमेशा वेल लिट एरिया या लॉक गैराज में पार्क करें। की को घर के दरवाजे और खिड़कियों से दूर अंदर की तरफ रखें ताकि चोर वायरलेस सिग्नल कैच ना कर सके किसी भी डिवाइसेस से। तो इस तरह के फिजिकल स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क और होशियार रहें। और इस महीने हम फ्रॉड अवेयरनेस में, यानी कि इस स्कैम की दुनिया के फिजिकल फ्रॉड के बारे में हर बार आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से अफराद जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। अब नाश्ता दिन की सबसे अहम ग़िज़ा समझी जाती है। रात भर सोने के बाद हमारा जिस्म कई घंटों तक बगैर खुराक के रहता है। जैसे सुबह का नाश्ता जिस्म और दिमाग को दोबारा तवानाई फराहम करता है ताकि हम अपने दिन का आगाज भरपूर अंदाज में कर सकें। एक मतवाजन और सेहतमंद जो शख्स है उसे सेहत बख्श नाश्ता जो है वो ज़रूरी है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनियात जो हैं वो होते हैं, और ये ग़िज़ाई अज्जा हमारी जो दिमागी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने, याददाश्त को ज़्यादा करने और हमारी जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसे मरकूज कर रखने में मदद देते हैं। यही वजह है कि जो अफराद बाकायदगी से ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज़्यादा चुस्त रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रेकफास्ट छोड़ देने से थकन, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको बाद में शदीद भूख लगने की वजह से फिर हम गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने का जो इरादा वो कर लेते हैं और उसका रुझान भी ज़्यादा होता चला जाता है। जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें एग हैं, उसमें ब्राउन या फिर होल व्हीट ब्रेड है, इसके अलावा पोरिज है, ताज़ा फल हैं, दही के साथ आप नट्स हैं वो ले सकते हैं, इसी तरह लो फैट जो दूध है या सीरियल वो आप ले सकते हैं, ताज़ा जो फ्रूट्स हैं उनकी स्मूदी बनाकर लिए जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देर तक हमें फुलनेस का यानी पेट भरने का एहसास दिलाता है। बच्चों और नौजवानों के लिए नाश्ता ख़ास तौर पर बेहद अहम है क्योंकि इनके जिस्म और दिमाग नशोनुमा के मराहिल में होते हैं, और एक अच्छा नाश्ता उनको जो सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा करता है और इसी तरह कंसंट्रेशन में भी इजाफा करता है। और अगर आप सुबह मसरूफ़ होते हैं तो रात को ही अब नाश्ते की कुछ तैयारी कर लीजिए ताकि सेहतमंद इंतखाब आसान हो जाए। याद रखिए नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं है बल्कि आपके हमारे जिस्म और दिमाग के लिए तवानाई का अहम जरिया है।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे हमाद अली अल हंजब के बारे में। हमाद अली अल हंजब कतर के उभरते हुए स्विमर्स में से एक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी काबिलियत का इजहार किया है। बचपन से ही उन्होंने पानी के खेलों में दिलचस्पी ली और बाद में स्विमिंग को अपना मुस्तकबिल बनाने का फैसला किया। हमाद की पहचान उनकी सख्त ट्रेनिंग, मजबूत इरादे और कॉन्फिडेंस है। वो मुख्तलिफ स्विमिंग इवेंट्स में कतर की नुमाइंदगी करते हुए कीमती तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। फिटनेस, बैलेंस, गिजा और रोजाना प्रैक्टिस उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। हमाद का मानना है कि हर एथलीट को जिस्मानी तैयारी के साथ साथ जहनी मजबूती भी इम्पोर्टेंट है। दोहा की जदीद एक्वेटिक फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में मदद की है। उनकी कामयाबियां और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं कतरी स्विमर्स को काफ़ी मुतासिर किया है और वो मुल्क में स्विमिंग कल्चर को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले अरसे में उनसे मजीद बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
3: द रिक्वेस्ट शो
5: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
6: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है. मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के. इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो. दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो. तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो. प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं. बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है. जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है. ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम से, दिल से जुड़े प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं। भाई कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या कोई और दूसरे सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, भाई एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी, और इस सिलसिले से हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, भाई कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। और इसी सिलसिले से आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप दोहा की एक मोहतरम शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया से है, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हासिल किया, फिर आप 2000 से रियासत कतर में मुकीम हैं और इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में आपका वसी तजुर्बा रहा है। आपने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज कतर आर्म्ड फोर्सेस के साथ किया, जहां 2002 से 2010 तक आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। इसके बाद आपने 2010 से 2020 तक अशगाल पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी के साथ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम किया, और फिलहाल आप पार्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जारी रखे हुए हैं। प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ आप कतर की वॉलंटियर सर्विस में भी बहुत एक्टिव रहे हैं। आपने वेस्ट एशियन गेम्स, एशियन गेम्स और फिर फीफा अरब कप और आखिर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया, जो आपकी कम्युनिटी सर्विसेज के जज्बे को वाज़े करता है। मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूं कि आप उर्दू रेडियो के एक डेडिकेटेड लिसनर भी हैं। आपकी जिंदगी प्रोफेशनल डेडिकेशन, वॉलंटियर सर्विसेज और कम्युनिटी एंगेजमेंट का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। आपका काबिले एहतराम नाम अली इमरान है। आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और कुछ सवाल जवाब के सिलसिले से उनकी शख्सियत को और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: कैसे हैं आप? और बहुत बहुत इस्तकबाल है पहले तो, और

0: थे जी। उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, लैंडलाइन थी।
1: क्या बात।
0: तो मुझे फैक्ट कर दिया, मैं नया आदमी बिल्कुल। वो जो बाद में मालूम चला कि जो हमारे अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने जब वो थर्सडे को ऑफिस बंद हो जाता है शाम को, तो वो चलो ने कहा मैं इधर फैक्स मशीन को देख लो कुछ है, तो मेरा फैक्स मशीन रखा था। तो वो कह रहे थे अगर मैं फैक्स मशीन नहीं देता तो नेक्स्ट डे फ्राइडे था, छुट्टी थी, और मेरी सैटरडे को सुबह मेरी फ्लाइट थी, तो मैं एयरपोर्ट पे ही रहता। तो बहरहाल वो मेरे साहब आए, जो पीआरओ आए वहाँ पे, बहुत अच्छा वेलकम किया। दोहा निकलती जब मैंने देखा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बिल्कुल एक ताजी सुबह थी, जबरदस्त, बहुत अच्छा वेलकम।
1: क्या बात है।
0: सन 2000 से अब 2026 से तकरीबन 26 साल हो गए, देखिए आधी जिंदगी मेरी यहाँ निकल चुकी।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। सर क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपके लिए बिल्कुल नई या अनएक्सपेक्टेड थी दोहा में?
0: क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ, तो मैं तो मतलब सेम कंट्री जीसीसी के सेम ही होते हैं। सऊदी अरब तो बहुत बड़ा कंट्री, वहाँ पे चार साल था, और वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपके पास अकामा नहीं है आप बाहर नहीं जा सकते, चेकिंग होती है बहुत। लेकिन मैंने कतर में आज तक 26 साल हो गए, 27 साल हो गए मुझे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी चेकिंग इस तरह से, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या है, किस तरह से करना है, असामा अपडेट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना है, वहाँ पे बहुत चेकिंग होती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
1: हमारे कतर में आसानियां इतनी हैं हर चीज को लीगलाइज्ड और सही तरीके से रखने की कि किसी को कोई परेशानी होती ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी जी
1: बिल्कुल सही।
0: और दूसरे कंट्री में थोड़ा फैमिली के साथ आदमी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, अकेले कैसे जाएं। यहाँ पे आप हो या आपकी फैमिली, अकेले भी 2-3 बजे ट्रेवल कर सकते हैं, सेफेस्ट कंट्री इस वक्त, मतलब दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कतर का सेफेस्ट कंट्री, पीसफुल कंट्री है।
1: आपका पहला प्रोफेशनल कह लीजिए या वर्क प्लेस एक्सपीरियंस दोहा में कैसा रहा?
0: मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा तो गवर्नमेंट के इदारे से रहा, कतर फोर्सेस में था, बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे जो ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे लिए बहुत अच्छा। किस तरह से मतलब वो लोग कतर आर्म फोर्सेस जो है, एक तो प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक होता है पर्सनल लाइफ, किस तरह से अपने आप को आप उनसे बात करेंगे, उनका कपड़े पहनने का सलीका, बात करने का सलीका, जो कतर की ट्रेडिशन है सब बताते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है वो एक्सपीरियंस, बड़े बड़े जो ऑफिसर से मतलब मिलिट्री
1: उनसे मुलाकात हुई,
0: रूल रेगुलेशन,
1: मजीद कतर के कल्चर को देखने और समझने का आपको मौका भी मिला, माशाल्लाह क्या बात है।
0: वहीं से मुझे मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई।
1: क्या बात है। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा इतना टाइम?
0: देखिए जो मेट्रो, जो मेट्रो तो बहुत साल हो गए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी मौका मिला जब मेरी फैमिली थी, तो हमने पूरा एक दिन पूरा मेट्रो में हमने लगाया, ये हमारा मशरिफ से लेकर बकरा तक, फिर बकरा से लेकर मशरिफ तक, बहुत ही अच्छा लगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसकी जो मुझे मेट्रो की जो जो खसूसियत, जो उसकी क्या किस तरह का मेट्रो है, वो मुझे फीफा 22 में मालूम हुआ मेट्रो क्या है, क्योंकि मेट्रो फीफा में मल्टीनेशनल कंट्री से लोग आए थे, तो मेरी उनसे सबसे बात हुई, तो कहने का कि हमने इस तरह का मेट्रो और फ्री मेट्रो कहीं नहीं देखा, पूरे गेट खोल दिए थे, जितने भी बाहर से लोग आ रहे सबके लिए फ्री।
1: क्या बात है, क्या ये हमारे कतर की खासियत है, हर एक के लिए सबका ख्याल रखा जाता है। सर आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, कुछ इमोशनल और स्ट्रगलिंग क्वेश्चन जो है उन पे नजर डालते हैं। क्या कभी आपको दोहा में तन्हाइया होमसिकनेस महसूस हुई?
0: जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल हुई है। हाँ देखिए, कोई भी आदमी अपने माँ बाप को, बहन भाई को, फैमिली को छोड़ के आता है, तो उसको होमसिकनेस तो होगी, ठीक है। लेकिन शुरू के कुछ दिन हमको महसूस हुआ, बिल्कुल फोन करते थे उस जमाने में, तो आप देखो टेलीफोन बूथ होते थे हर जगह, तो हमको कॉइन्स परचेज करना पड़ता था, कॉइन्स हम डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं,
1: सही।
0: तो वो बातें खत्म नहीं होती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा था। फिर एक दौर था खतों का दौर, जो आजकल की जनरेशन को नहीं मालूम, लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक वो खतों का लेटर लिखने का दौर फिर से आ जाए।
1: तो सर जब घर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे संभालते थे?
0: बस भाई क्या नमाज पढ़ते थे, दुआ करते अल्लाह पाक सबर दे। अच्छा उसके कुछ ही दिन आने के बाद ऐसा मुझे यहाँ पे दोस्तों का वो मिला जो कि अभी भी बरकरार कुछ

0: ऐसे दोस्त मिले। देखिए आपको ये है कि आपको दोस्त अच्छे भी मिलते हैं और खराब भी मिलते हैं, सोबत का असर जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से फैमिली फ्रेंड ऐसे मिले जिनकी दोस्ती अभी भी मौजूद है, और अल्लाह पाक हम दोस्तों की दोस्ती सलामत रखे।
1: आमीन।
0: और हमने एक उसका नाम दिया है, हमने अपने एक फ्रेंड सर्किल का नाम दिया है बज़्मे यारा।
1: क्या बात है,
0: बज़्मे यारा में हाँ 7-8 लोग हैं, फैमिलीज वाले हैं। मेरी फैमिली यहाँ पे थी, लेकिन 2000 में मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, 12th वगैरह कर लिया था, तो हायर स्टडीज के लिए मेरे बच्चे इंडिया चले गए।
1: क्या बात है।
0: लेकिन अभी भी ये नहीं है कि मेरी फैमिली है कि मेरे दोस्त मुझसे नहीं मिलते, लेकिन अभी भी बराबर कभी भी मैं रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी अच्छे में बुरे में मेरे सबसे आगे खड़े हो जाते, सबसे पहले हम हैं।
1: क्या बात।
0: तो वही वजह है यहाँ पे कतर में रुकने की।
1: तो सर ये तो आपने कतर की फैमिली का जिक्र किया, अब ये बताइए कि आपकी फैमिली जो है, क्या आपकी जर्नी में उनका कोई खास रोल रहा या उनका कितना हाथ रहा?
0: बिल्कुल बिल्कुल रहा। मेरी देखिए मेरी 2002 में शादी हुई, अलीगढ़ से ही मेरी शादी हुई।
1: ओके।
0: और उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पे आ गई, तो मेरी मिसेस ने बहुत कोऑपरेट किया यहाँ पे, फिर हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए माशाल्लाह, बहुत अच्छे में बुरे में। ये नहीं है कि मेरी फैमिली अच्छे अच्छे में मुझे साथ दी, नहीं, जब मेरा वक्त खराब था उसमें भी मेरे आगे खड़ी हो गई, जब मेरा वक्त बुरा था मेरी फैमिली मेरे खड़े हो गई।
1: क्या बात है।
0: बहुत कोऑपरेटिव अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक
1: अल्लाह ताला।
0: देखिए जब आदमी शादी देखिए जब शुरू के शादी के कुछ 10 दिन होते हैं तो मोहब्बत कम होती है, जिस तरह से आगे आके बढ़ जाती है मोहब्बत और स्ट्रांग हो जाती है, जो बॉन्डिंग है लव ऑफ बॉन्डिंग वो और बढ़ जाती है।
1: क्या बात है।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: तो सर दोहा में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, अगर जानना चाहूँ तो?
0: दोहा पे टर्निंग पॉइंट तो मैं बहुत सारे उसमें है, अपॉर्चुनिटीज
1: जो
0: आती रही मैं जी वही टर्निंग पॉइंट है मेरा। पहले मैं कतरा फोर्सेस में करता था, फिर मैं पब्लिक फोर्स अथॉरिटी में आ गया, फिर अभी पार्सन्स में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने टर्निंग पॉइंट मिले, तो बस मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए कम है। और उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ के सिस्टम का, पीसफुल सिस्टम, हर चीज आसानी से हो जाती है
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: देखिए यहाँ की मैं टर्निंग पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी दूसरे कंट्री में जाएंगे बच्चा पैदा होते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए जो सिस्टम है हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चार्जेबल है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी यहाँ पैदा हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ तक कि जब हमको वो डिस्चार्ज कर रहे थे हमारे मिसेस को बच्चों को, तो साथ में हमको गिफ्ट दिए बच्चों के लिए, दूध पैंपर्स, ये सब ये मेरे ख्याल से और कंट्री में नहीं है।
1: क्या सच्ची बात है।
0: जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कतर गवर्नमेंट का वो लाजवाब है,
1: वो भी लाजवाब
0: नोट करना चाहिए।
1: और मेडिकल के हवाले से भी आपने बताया, क्या बात है, क्या बात है सर।
0: जी मैं मेडिकल के हवाले से, यहाँ बीमार होता है आदमी, ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो आप दूसरे कंट्री में जाएंगे आपको हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ही रियाल खर्च होंगे आपके, और जो आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी वो हाई 5-star मिलेगी आपको, लगेगा नहीं आप कहाँ पर हैं। और वेल एक्सपीरियंस कंसल्टेंट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है।
1: क्या बात है। बढ़ते हैं आगे और दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सर कोई ऐसा वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आज भी यादगार हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो?
0: वर्क प्लेस का भाई, वर्क प्लेस वही है, सुबह कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कतर गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें घूमने के लिए, शहर के लिए कॉर्निश जबरदस्त, लाजवाब मॉल जबरदस्त है, आप चाय पीने जा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट करने जा सकते हैं, नाश्ता करने जा सकते हैं। कतर ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको मल्टी क्विजिन मिलता है, खाना हर कंट्री का मिलता है, पाकिस्तान का भी मिलेगा, नेपाल का भी मिलेगा, बांग्लादेश का भी मिलेगा, इंडिया का भी मिलेगा, अरब कंट्री का भी मिलेगा, तो आप लाजवाब खाने यहाँ पे, लाजवाब खानों के साथ यहाँ पे लाजवाब लोग हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है अली इमरान साहब। सर क्या आप किसी ऐसी शख्सियत से मिले जिन्होंने आपकी सोच या जर्नी को बदला, या कुछ उनका बड़ा हाथ था इसके अंदर, किसी को मेंशन करना चाहते हैं?
0: जी मैं आपको मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे अराइव हुआ कतर में सन 2000 में, शाम को ही एक जगह मुझे जाना था, मैं कुछ अलीगढ़ से उनके लिए सामान लेके आया था, वहाँ पे एक शख्सियत से मुलाकात हुई, वो हमारे ही शहर से हैं, अलीगढ़ से हैं और यहाँ पे मुखीम थे, वेल शख्सियत, बहुत जबरदस्त शख्सियत, उर्दू से मोहब्बत उनकी और लाइक माय एल्डर ब्रदर, तो उनके साथ मैं रहा हूँ करीब 3-4 साल, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी फैमिली, वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो वो मुझे बातें बताते थे और ही वॉज द फर्स्ट लिसनर जो उस जमाने में, आपको बता दूं अभी तो हम FM है 107, उस जमाने में AM था
1: जी,
0: वो AM सर्विस होती थी और वो AM सर्विस शाम को शुरू होती थी, 6 बजे से शायद 6 से 10 बजे तक होती थी, तो हम लोग इंतजार करते थे कब हमारा वो आएगा, हम रेडियो पहले तो अब तो मोबाइल वगैरह में सुनते, रेडियो पे हमारे मेरे रूम में भी रेडियो था तो हम 6 बजे रेडियो लगा देते उस जमाने में, सैफुर रहमान साहब, मैं खालिद सैफुर रहमान साहब अभी भी होंगे, बानो सुलेमान मैम और बहुत सारे सीनियर जो थे उर्दू के, और वहीं से मुझे उर्दू बोलने का, उर्दू लिखने का शौक पैदा हुआ।
1: क्या बात।
0: और जब आपने कहा कि आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगा दोहा डायरी में, तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ उर्दू, तो मैंने दोहा डायरी के लिए 2-3 अल्फाज लिखे हैं, आप मुलाजा फरमाइए।
1: बिल्कुल शेयर कीजिए।
0: दोहा डायरी की महफिल है निराली,
1: वाह,
0: दोहा डायरी की महफिल है निराली, उर्दू की खुशबू बातें हैं प्यारी,
1: वाह,
0: सरवर मिर्जा की दिलकश मेजबानी,
1: वाह
0: जी आपका दावा आ गया, देखिए सरवर मिर्जा की दिलकश मेजबानी, हर किस बन जाए यादों की कहानी,
1: वाह वाह वाह,
0: ये है दोहा डायरी,
1: वाह वाह वाह।
0: तो ये उर्दू देखिए, उर्दू जो चूंकि मेरी मदर टंग है और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बोली जाती है, और 107 ने मुझे बड़ा मेरी उर्दू इम्प्रूव करने बड़ा साथ दिया, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके चैनल पे, उर्दू सीखने का बहुत मौका मिलता है, और जो आपके आरजेस हैं जिस तरह के प्रेजेंटर हैं वो क्या उर्दू बोलते हैं उसी से शौक होता है।
1: क्या बात है सर। सर डेली रूटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट चीज क्या है दोहा में आपकी, डेली रूटीन के हिसाब से अगर बात करी जाए?
0: भाई डेली रूटीन तो वही है कि सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर ऑफिस गए, फिर वहां से आए, फिर नमाज, फिर अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, या शाम को वॉक, अभी तो गर्मी है, सर्दियों में तो मैं अक्सर मैं कॉर्निश पे या अपने मोहल्ले में भी वॉक करने जाता, तो यही डेली रूटीन है। वीकेंड वगैरह पे हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉयमेंट होता है, जबरदस्त होता है माहौल।
1: सर कभी ऐसा हुआ कि आपने गलत डायरेक्शन या रूट ले लिया हो और बाद में आपको ख्याल आया हो कि मैं तो गलत आ गया हूँ, और एक ये याद बन गई हो, एक फनी मोमेंट बन गया हो, पहले तो ये मैप वगैरह नहीं होते थे तो आप ऐसे ही सफर करते होंगे, तो इसके हवाले से कुछ ऐसी कोई याद
0: मैं आपको बताऊँ। देखिए पहले बोलते थे कि भाई हमारा घर मतार कदीम में है, या हमारा घर ओम सलाल मोहम्मद में, हमारा घर वकरा में, ठीक है, पहले तो मैप वगैरह कुछ नहीं थे, बस उन्होंने कहा भैया देखो पहला राउंड अबाउट जो है उसके बाद दो हम आएंगे, वहां से लेफ्ट लेना, तीसरा मकान हमारा है, ये एड्रेस होता था, तो आदमी उसी से जाता था, तो कई बार हम रास्ता भूले हैं, फिर वहां पे मोबाइल नहीं होता था तो किसी दुकान पे जाके टेलीफोन वहां से करते थे, भाई किधर आ गया, मैं यहाँ पर हूँ, ये दुकान का नाम ये है, ये बताओ, अच्छा तुम बिल्कुल शरीर में आ गए हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, राइट लो और पहला लो, तो ये भी बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
1: क्या बात है सर। एक और बहुत खास बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो हम आज तक देखते आए और ये हमेशा से कतर की रिवायत में रहा है कि कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी मदद की हो, आप रोड पे परेशान हो, कोई आपको जरूरत हो, तो हम देखते हैं हमारे कतरी माशाल्लाह जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, तो ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ?
0: बिल्कुल हुआ साहब, ये तो आपने बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये सन 2004 या 5 की बात है, फ्राइडे का दिन था, नमाज के बाद हमारी फैमिली ने कहा चलिए कॉर्निश पे चलते हैं, वो वकरा फैमिली बीच है, कुछ बारबेक्यू वगैरह का प्रोग्राम, तो और भी फैमिली आई थी, तो मैं अपनी गाड़ी जो है अपनी कार अंदर तक थोड़ा सा ले गया था, और बिल्कुल समंदर के रेत में वहां तो पहुंच गई हमारी गाड़ी, तो खाना वाना खा लिया, जब हम पैक कर रहे हैं, बकरी पर डैम हो गया था, अंधेरा हो रहा था और मेरी गाड़ी रेत में फंस गई और मेरी नहीं निकल रही, पूरी लोग जा रहे हैं और एक आधी फैमिली थी, तो एक खतरी फैमिली में बैठी हुई थी, उसके बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे वो भी थे, और वो मुझे देख रहे हैं, अब वाइफ ने कहा इनसे बोलो, मैं बोला अच्छा नहीं लगेगा ये लोग, भाई यहाँ के हैं, फिर बोलने के बोलो जाके फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो देखिए वो फौरन उठ गया वो आदमी जो कदीर बहुत ही अच्छा था और बोला कि माफी मुश्किल क्योंकि उस जमाने मुझे अरबी नहीं आती थी तो वो अपनी गाड़ी से रस्सी लेके आया बेचारा वो नीचे बैठ गया जमीन उसके पूरे कपड़े खराब हो गए सफेद तो पहने हुआ था बेचारा वो तो बड़ी दिल से दुआ पूरी उसने लगा के मेरी गाड़ी को

0: तक निकाला, उसकी गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल थी वो दिया, बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह चॉकलेट थे उनको वो दिया, हमको दिया। वो जानने पहचान आप देखिए, वो अल्लाह ताला का फरिश्ता।
1: बिल्कुल
0: ये तो आम है, आप रोड पे खड़े हो जाइए, कोई भी कोई ना कोई रोक देगा। पेट्रोल खत्म हो गया खड़े होके, कतनी फौरन रुकेगा अपनी गाड़ी से पेट्रोल या अपनी गाड़ी में लेके जाएगा, सबसे आगे रहते
2: हैं। क्या बात है, क्या बात है सर,
0: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस
2: जी। बिल्कुल ये तो है ही, और हमेशा से हम ये चीज देखते आए हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला।
0: और इससे अच्छी बात यहाँ की पुलिस जो है, आप हाईवे पे खड़े हो जाए, एक कॉल करिए, विद इन सेकंड सामने से पुलिस आ रही है, हेल्प के लिए तैयार है। ये नहीं कि आप घंटों परेशान है खड़े में, कोई नहीं, एक कॉल करें विद इन सेकंड आपके पास सामने आ जाएंगे।
2: सही
0: ये मैंने देखा है सब, और ये कंट्री हकीकत है ये।
2: बहुत सही, बिल्कुल ऐसे ही है, और हर वक्त तैयार भी रहते हैं और हर वक्त मौजूद भी रहते हैं जहां भी जरूरत होती है लोगों की। सर अब अगर दोस्ती के हवाले से बात करूं तो आपने यहां अपने क्लोज दोस्त जो है वो कैसे बनाए?
0: देखिए दोस्त बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आपका अखलाक आपकी मोहब्बत ये है। लेकिन मुझे शुरू से ही इतने अच्छे दोस्त मिले, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह, हर चीज में उनके लिए मैंने कहा है, दोस्तों के लिए किसी का शेर है कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर, मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम है जरूर मगर जाना जो भी रखता हूँ लाजवाब रखता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे इमरान साहब।
0: जी, क्योंकि आप बगैर फैमिली फ्रेंड के यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनसे हर चीज शेयर कर सकते हैं, खुशी की भी बातें शेयर कर सकते हैं, गम की बातें भी शेयर कर सकते हैं, वो रहना जरूरी है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जो भी मिले लाजवाब मिले, सब है दोस्त मेरे। ये नहीं है कि मेरे 50 दोस्त हैं, 100 नहीं, कम है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है जो एक आवाज पे लब बैक बोल रहे हैं, फौरन
2: खुश रखे, खैर आफियत से रखे।
0: जैसे हम लोग शाम को कहते हैं कि भाई शाम को मिलना है, अच्छा भाई अभी तो दो लोग हो गए, दो लोग और कर लो, फिर चार लोग हो जाएंगे, फिर हम बैठेंगे, फिर हम बैठते हैं, खूब अच्छी बातें होती हैं, बहुत मजा आता है।
2: जी, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, वक्त भी हुआ जाता है। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो आप क्या लिखेंगे?
0: क्या लिखूं मैं, क्या बताऊं सर मैं आपको, सब बहुत सारी देखिए मैं जिस मुकाम पे हूँ इसमें आधा करियर जो है दुआ खतर को जाता है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिली है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई।
2: क्या बात,
0: वाह वाह। और मेरी फैमिली जो मेरे भाई हैं इंडिया में, मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया था सन 1995, उसके बाद मेरे बड़े भाई ने लाइक माई फादर, उन्होंने हेल्प करी हर चीज में, कतर आना है पैसे देना है, कुछ बिजनेस करना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये मेरे पास पैसे नहीं है, चलो मैं दे दे रहा हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना, तो इस तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक आवाज से मेरा भाई खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब मुझे फादर की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उसकी फैमिली हमेशा अच्छी रखे,
2: अल्लाह ताला खुश रखे। दोहा को आप एक लफ्ज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
0: देखिए साहब, मैं दोहा को मैं एक लफ्ज में तो नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। आपके फोन से पहले मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने कतर के लिए दो तीन लाइनें लिखी, मैं शायर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, कतर की धरती रोशन है, कतर की धरती रोशन है, तरक्की से ये गुलशन है, अमीर कतर की रहनुमाई मुल्क की बड़ी ताकत है, अमन का परचम ऊंचा रहे, तरक्की का सफर जारी रहे, हम सब की ये दिल से दुआ, कतर हमेशा खुशहाल रहे।
2: क्या बात है सर, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए, कोई एक पैगाम?
0: मैं उससे पहले मैं दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, ये है बेटियों के लिए, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, आपकी भी होंगी, बहुत बेटी हैं, हम लोग जो अपने मुल्क से अपनी फैमिली को अपने बेटियों को छोड़ के आए उनके लिए है। हमारे दोस्त हैं अबू धाबी में, उन्होंने लिखा है कि चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, वरना ऐ लगते जिगर कौन कमाने निकले। और अभी देखिए, अभी बकरीद थी, नमाज पढ़ा था मैंने, तो अकेला ही है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने गए, तो हम इंडिया पाकिस्तान में हम लोग जाएंगे तो सब लोग दोस्त गले मिलते हैं, देखता माहौल लगता है। लेकिन ये भी हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी जो लोग हम लोग अपने वतन से दूर हैं यहाँ पे दूसरे कंट्री में हैं, तो उनको ईद वगैरह पे जो है तो उस पे दो तीन लाइन सुनिए। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। और ईद के हवाले से कि नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा। आप देखते हैं ना, नमाज पढ़ ली अब उसको गले मिलना है
2: जी।
0: नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कहीं कोई मुझे मिले उसे गले लगाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है,
2: क्या बात है। बहुत
0: तो यही है हम लोगों का, जी जी यही हम लोगों का यहाँ पे जो रहते हैं। लेकिन कतर में रह के बहुत ही हमको अच्छा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे कतर को और अच्छी तरक्की दे, इसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करे और हमेशा खुशहाल रहे, यही दुआ है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, बहुत अच्छी बातें। दिल तो करता है कि आपसे बात करते रहें, समझते रहें, मगर वक्त का भी मसला होता है। तो आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें ज्वाइन किया।
0: भाई सरवर मिर्जा साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, और मैं पूरी आपकी 107 टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात करूं।
2: मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच।
0: और मेरी नेक ख्वाहिशात दोहा डायरी के लिए 107 के लिए हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब आज हमें वक्त देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।
2: तो दोस्तों ये थे अली इमरान साहब अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हुए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमारे लिए वक्त निकाला। अपना ख्याल रखिए, बस इतना याद रखिए कि जिंदगी का हर सफर एक कहानी है, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार। कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107 दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी,
7: मुफीद साबित होंगी।
6: तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड,
7: सन एंड साउंड।
6: आरजे सफा के साथ,
7: सफा के साथ
6: संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी,
7: दिल से देसी।
8: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तफहीमुल कुरान। इस प्रोग्राम में सामने कराम हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़हाम व तफहीम का ये मरहला बहुत ही अहम है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इल्म हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। आप सब जानते हैं कि अब तो तमाम तर लेक्चर और ये सब दस्तरस में है। मालूमात के एक वसी समंदर हमारे सामने हर वक्त मौजूद है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या हर मालूमात इल्म होती है और क्या हर इल्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। चलें अब रुख करते हैं कुरान की तरफ और देखते हैं कि कुरान हमें सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है। कुरान करीम बार बार हमें दावत देता है कि ज़मीन में गौर करो, आसमानों पर नज़र डालो, अपनी ज़ात में फ़िक्र करो और फिर इस मारिफत के ज़रिए अपने रब को पहचानो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से हकीकी खशियत रखने वाले वो हैं जो मारिफत और इल्म रखते हैं। गोया इल्म की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसके अंदर अल्लाह की खशियत हो। आज की गुफ्तगू में हम बहुत ही एक अहम हकीकत पर गौर करेंगे। वो ये कि अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी डॉक्टरी या कोई अच्छे सर्टिफिकेट्स हो तो वो बहुत इल्म वाला है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें बताता है कि इंसान की असल कदर उसके दिल, उसके अखलाक और उसकी नीयत से होती है। कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद था, क्योंकि उनके दिल ईमान से भरे हुए थे, उनके अखलाक बेहतरीन थे और उनके अंदर मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत थी। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि किसी के पास बहुत इल्म होता है, लेकिन अगर उस इल्म के साथ इखलास ना हो तो वह इल्म इंसान के लिए वबाल भी बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहायत अहम तंबीह फरमाई कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग इल्म अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि दुनिया हासिल करने के लिए सीखेंगे। तो हमें सामने कराम जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम दीन के मुख्तलिफ उमूर शोबों पर अमल करते हैं, तो हमें ये सवाल अपने आप से करना होगा कि हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, हम दीन क्यों सीखते हैं, हम लिखते क्यों हैं, दावत क्यों देते हैं। तो अगर मकसद सिर्फ शोहरत, तारीफ़ या दुनियावी मकाम हो तो इल्म की रूह ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर मकसद अल्लाह की रज़ा, लोगों की इस्लाह और हक़ की खिदमत हो तो यही इल्म इबादत बन जाता है। सामने कराम इस्लाम की खूबसूरती ये भी है कि उसने इल्म को किरदार से जोड़ा है। एक मेहमान की इज्जत करना भी दीन है, भूखे को खाना खिलाना भी दीन है, मुस्कुराकर मिलना भी दीन है, और ये तमाम चीज़ें कुरान की अमली तफसीर हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान

निकाह हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। तो ये ईमान की निशानी है, ज़रा सोचें इसमें। तो सामिन कराम, आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हो रही है कि कुरान मजीद इंसान को इल्म, अखलाक और अल्लाह की मारिफत की तरफ दावत देता है। प्रोग्राम के इस मरहले में अब एक और नहायत अहम सवाल सामने आता है। आज के दौर में जब नई नई फिक्री तहरीकें, फलसफे और नज़रियात सामने आ रहे हैं, क्या ये सब बिल्कुल नए हैं या इंसान सदियों से इन्हीं सवालात से दो चार रहा है। कुरान हमें एक हकीकत सिखाता है कि इंसान के सवाल बदलते रहते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदलती। ज़माने बदलते हैं, ज़बानें बदलती हैं, लेकिन हक हमेशा हक रहता है। इसी हकीकत को इस्लामी तारीख के अजीम उलमा ने भी वाज़ह किया है। अक्सर लोग समझते हैं कि इल्हाद, मादियत या खुदा के इनकार जैसे नज़रियात सिर्फ जदीद दौर की पैदावार हैं, लेकिन अगर हम इस्लामी इल्मी तारीख का मुताला करें तो मालूम होगा कि 1000 साल पहले भी यही सवालात मौजूद थे। इमाम अबू हामिद गजाली रहमहुल्लाह, जिनका शुमार इस्लाम के अजीम मुफक्किरीन में होता है, अपनी किताबों में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो कायनात को देखकर कहते थे कि शायद उसका कोई खालिक ही नहीं या ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई। इमाम गजाली इस सोच की एक नहायत खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो फरमाते हैं, अगर कोई शख्स एक नहायत खूबसूरत खत देखे जिसमें बेहतरीन अल्फाज, उम्दा तरतीब और हसीन अंदाज हो, फिर वो ये दावा करे कि खत खुद ब खुद लिखा गया है या उसका कोई लिखने वाला ही नहीं, तो क्या कोई अकलमंद उसकी बात कबूल करेगा? बिल्कुल उसी तरह यह अजीम कायनात जिसमें हैरत अंगेज नज़म, हिकमत और तवाज़ुन मौजूद है, क्या यह खुद ब खुद वजूद में आ सकती है? कुरान भी यही सवाल बार बार इंसान के सामने रखता है। अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए या वो खुद अपने खालिक हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है जितना 1400 साल पहले था। समय कराम, इस्लाम हमें दलाइल के साथ साथ अखलाक भी सिखाता है। इस्लाम सिर्फ दलील का दीन नहीं, इस्लाम हमें अखलाक बताता है, रहनुमाई करता है। फारसी के अजीम शायर हाफिज शिराजी ने एक नहायत खूबसूरत मिसाल दी। वो कहते हैं, ये दुनिया अल्लाह ताला की एक अजीम दावत है। इस दस्तरखान पर हर किस्म के लोग मौजूद हैं, कोई नेक है तो कोई कमज़ोर ईमान वाला, कोई सवाल करने वाला तो कोई इनकार करने वाला, लेकिन सब अल्लाह के बंदे हैं। अगर ये समझ आ जाए कि सब अल्लाह की मखलूक हैं तो इंसान का रवैया भी बदल जाता है। इख्तिलाफ बाकी रहता है लेकिन नफ़रत ख़त्म हो जाती है। कुरान भी हमें यही सिखाता है कि दावत हिकमत, नरमी और बेहतरीन अंदाज से दी जाए। इमाम गजाली रहमहुल्लाह दुनिया की एक नहायत दिलनशीन मिसाल देते हैं। वो फरमाते हैं, ये दुनिया एक अजीम दावत की मानिंद है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नेमतें रखी हैं, खुशबू भी है, खाना भी है, खूबसूरती भी, लेकिन एक बात याद रखो, ये हमेशा रहने की जगह नहीं। तुम आए हो, कुछ देर रहोगे, फिर वापस चले जाओगे। तुमसे पहले भी लाखों लोग आए, वो भी चले गए, तुम्हारे बाद भी लोग आएंगे। असल कामयाबी इसमें है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कितने खूबसूरत अंदाज में कुरान फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ। जमीन पर जो कुछ है सब फना होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे रब की ज़ात बाकी रहने वाली है। सामिन इकराम, एक और लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिवायत। कभी कहा जाता है कि रिवायत पुरानी हो गई, कभी कहा जाता है कि रिवायत तरक्की की राह में रुकावट है। लेकिन इस्लाम में रिवायत का मतलब ये नहीं कि इंसान सोचना छोड़ दे, बल्कि रिवायत का मतलब है कि सदियों की इल्मी मेहनत, तजुर्बे और हिकमत को समझकर आगे बढ़ना। हमारे उलमा ने हमेशा इख्तिलाफ किया,

0: इश्तिहाद किया, इसीलिए हर दौर के मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने जमाने के मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझे, न कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करे। समय कराम, कुरान बार बार बताता है कि जिंदगी में मुश्किलात भी आती है, आसानी भी। मुश्किलात भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। हम अक्सर मुसीबत से घबरा जाते हैं, लेकिन कितने मरतबा ऐसा हुआ कि एक मुश्किल ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया, एक बीमारी ने हमें दुआ सिखा दी, एक नुकसान ने हमें सब्र सिखा दिया, एक नाकामी ने हमें आजिज़ी सिखा दी। इसीलिए कुरान फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन इसी के साथ अल्लाह सब्र करने वालों को खुशखबरी भी देता है। इस्लाम की एक अजीम तालीम रहमत और हमदर्दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। समझने के नाम, ये पूरा माशरती निज़ाम है इस जुमले में कि अगर मैं दूसरों के दर्द को महसूस करूं, मैं जुल्म नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि जिस तकलीफ को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो किसी और के लिए भी पसंद नहीं करनी चाहिए। समझने के नाम, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी दिल का सख्त हो जाना है। जब इंसान दूसरों की तकलीफ महसूस करना छोड़ दे, जुल्म उसे मामूली लगने लगे, खून बहाना आसान महसूस होने लगे, तब मुआशरा तबाह होने लगता है। कुरान हमें उसके बरक्स दिल की नरमी सिखाता है, रहमत सिखाता है, अदल सिखाता है, एहसान सिखाता है, और यही अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत थी। तो समझने कराम, प्रोग्राम में अब तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है इससे हमें चंद बुनियादी असबाक मिलते हैं। वो ये कि इस्लाम के हवाले से इस्लाम के मुख्तलिफ अहकाम पर जो शकूक और शुबहात के नारे लगाए जाते हैं, ये सवालात नए नहीं, कुरान ने हर दौर में उनका जवाब दिया है। इल्म के साथ अखलाक भी ज़रूरी है। मज़ीद हमने ये भी बताया कि मुश्किलात इंसान की तरबियत का ज़रिया बनती हैं, दूसरों का दर्द महसूस करना ईमान की निशानी है, और सबसे बढ़कर एक मुसलमान का किरदार रहमत, शुक्र और ज़िम्मेदारी का आहना होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे दिलों को नरम करे, हमारे अखलाक को संवारे, और हमें कुरान की रोशनी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। समय कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में रुख करते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। फासिल व नवासिल, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के सिलसिले में, जहां हमारी गुफ्तगू चल रही थी शुरू से कि इल्म किस तरह इंसान को अल्लाह की मारिफत तक पहुंचाता है, और ये भी बताया हमने कि दीन का असल हुस्न सिर्फ मालूमात में नहीं बल्कि अखलाक, रहम और एहसास ज़िम्मेदारी में है। अब प्रोग्राम के इस मरहले में एक नहायत ही अहम सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वो ये कि आखिर इंसान इस दुनिया में आया क्यों है। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसके जवाब में काफ़ी गहराई है, और काफ़ी मरतबा जब हम इसे सुनेंगे तो शायद इसकी हकीकत तक हम पहुंच सकते हैं। सामिन कराम, इस सवाल को समझने के लिए मज़ीद कुछ और भी सवालात इसके साथ मैं जोड़ देता हूं। वो ये कि क्या सिर्फ खाना पीना, तालीम हासिल करना, मुलाजमत करना, दौलत जमा करना और फिर एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाना ही ज़िंदगी का मकसद है, इस जिंदगी के पीछे कोई उससे कहीं बुलंद मकसद भी है। अब वो कुरान मजीद की तरफ देखेंगे तो वो हमें इस सवाल का क्या जवाब देता है। अल्लाह फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी इंसान की तखलीक का मकसद ऐसी इबादत है जो उसे अपने रब की मारिफत तक पहुंचा दे। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ताकि वो इबादत करे। यानी उलमा ने इसका तफसीर इस तरह की है लियारिफून, कि वो अपने रब की मारिफत तक पहुंचा दे ऐसी इबादत। तो फरिश्तों के लिए अल्लाह की मारिफत बराह रास्त है, वो उनकी इताअत करते हैं, उनके अहकाम की पैरवी करते हैं और हर वक्त उसी की इबादत में मशगूल रहते हैं। लेकिन इंसान का रास्ता मुख्तलिफ है। इंसान खुशी भी देखता है, गम भी देखता है, बीमारी भी आती है, सेहत भी मिलती है, कभी कामयाबी कभी नाकामी, कभी दौलत कभी तंगदस्ती। ये तमाम हालात दरअसल इंसान की रूह की तरबियत करते हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ लौटने का ज़रिया भी हो सकती है। आजमाइश यानी सिर्फ सज़ा नहीं। बहुत मरतबा इंसान आराम में अपने रब को भूल जाता है, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो उसके सामने हाथ उठाता है। कदीम उलमा ने ज़िंदगी को एक खूबसूरत मिसाल से समझाया। उन्होंने कहा दुनिया एक घूमते हुए पहिए की तरह है, कभी इंसान ऊपर होता है कभी नीचे आ जाता है। आज खुशहाली है कल तंगी आ सकती है, आज सेहत है कल बीमारी आ सकती है, आज इज्जत है कल इम्तिहान आ सकता है। कुरान भी यही हकीकत एक नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं कि इंसान किश्ती में सवार होता है, हवा मुआफिक चल रही होती है, सब खुश होते हैं, फिर अचानक समंदर में तूफान आ जाता है, हर तरफ मौज दर मौज। इंसान समझता है कि अब शायद नजात नहीं मिलेगी। उस वक्त वो खालिस दिल से अल्लाह को पुकारता है, कहता है ए अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया तो हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। कितना अजीब मंजर है, मुसीबत ने इंसान को उसके रब से मिला दिया। सामिन किराम, आज दुनिया में शायद पहले से ज़्यादा सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन क्या सुकून भी पहले से ज़्यादा है? जदीद तहकीक भी यही बताती है कि मादी तरक्की के बावजूद जहनी बेचैनी, डिप्रेशन, इस्तेराब और तन्हाई में इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को तो बहुत संवार लिया है, मगर अपने दिल की दुनिया को भूल गया। कुरान उसका इलाज एक ही आयत में बयान करता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो दिलों का हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये इंसानी नफसियात का दायमी उसूल है, सिर्फ एक जुमला नहीं। सामिन इकराम, कदीम अहले हिकमत कहते थे कि अगर इंसान पहिए के किनारे पर खड़ा होगा तो हर गर्दिश के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर वो पहिए के मरकज में आ जाए तो गर्दिश जारी रहती है मगर मरकज पुरसकून रहता है। एक मुसलमान की जिंदगी भी यही होनी चाहिए। दुनिया में हालात बदलते रहें, बाजार बदलें, मईशत बदले, लोग बदल जाएं, लेकिन जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो उसके अंदर एक ऐसा सुकून पैदा हो जाता है जिसे दुनिया की तब्दीलियां हिला नहीं सकती। समय कराम, हमारी दौर की एक बड़ी बीमारी बेचैनी और मुसलसल मुंतशिर रहना भी है। यानी ये नहीं कहेंगे कि आज के दौर की बड़ी बीमारी सिर्फ गुनाह है, नहीं, बेचैनी और मुसलसल मुंतशिर रहना भी एक बड़ा अलमिया है। इंसान चंद मिनट खामोश नहीं बैठ सकता। हर लम्हा मोबाइल, हर लम्हा स्क्रीन, हर लम्हा नई खबर, नई वीडियो, नई तफरी। अगर चंद मिनट इंटरनेट बंद हो जाए तो बाज़ लोग बेचैन हो जाते हैं। एक रूहानी बीमारी बन गई है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाए तो वह हर वक्त किसी न किसी चीज़ से खुद को भरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितना ज़्यादा वो दुनिया से खुद को भरने की कोशिश करता है उतना ही अंदर से खाली महसूस करता है। कुरान हमें इस हवाले से क्या इलाज बताता है? कुरान इंसान को फरार नहीं सिखाता, यानी कि आप भाग जाओ दुनिया से, तवाज़ुन सिखाता है। काम भी करो, इल्म भी हासिल करो, रिस्क भी कमाओ, लेकिन अपने दिल को अल्लाह से गाफिल न होने दो। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

का हाल ये था कि आप तिजारत भी करते थे, जिहाद भी करते थे, खानदान की जिम्मेदारियां भी निभाते थे, लेकिन दिल हर वक्त अल्लाह के साथ वाबस्ता रहता था। इसीलिए कुरान ने फरमाया, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, यानी ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और दुनिया के मामलात भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते। सामने किराम, आज दुनिया इंसान को यही बता रही है कि मजीद दौलत मिल जाए तो सुकून मिलेगा, मजीद शोहरत मिल जाए तो खुशी मिलेगी, मजीद ताकत मिल जाए तो इत्मीनान मिल जाएगा, लेकिन कुरान कहता है कि अगर दिल अल्लाह से खाली हो तो पूरी दुनिया भी उसे मुतमइन नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है वो भी सिवाय अल्लाह के जिक्र, उससे वाबस्ता चीज़ों, आलम और तालिब इल्म के। इसका मतलब दुनिया को छोड़ देना नहीं बल्कि दुनिया को मकसद बनाने के बजाय जरिया बनाना है। समझने के नाम प्रोग्राम के मरहले में अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने, इस्लाम ने हमें कौन सा रास्ता बताया है, किस में नजात है और किस तरह हमारी रहनुमाई की है। अच्छा जी, यानी कुरान में हमें ज़िंदगी गुजारने का पूरा निज़ाम दिया है, ये तो आप सब जानते हैं, तो किस तरह दिया है ये भी हमें समझनी चाहिए। शरीयत में कुछ कामों का हुक्म दिया गया, कुछ से रोका गया और कुछ चीज़ों को इंसान के लिए मुबाह छोड़ दिया गया। उलमा ने अहकाम को 5 बुनियादी दर्जों में बयान किया है। वाजिब, जिसे करना लाजिम है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात। मंदूब या मुस्तहब, जिसे करने पर अजर है, न करने पर गुनाह नहीं। मुबाह, जो जायज़ है, न करने या करने पर बज़ात खुद सवाब या गुनाह नहीं। मकरूह, जिससे बचना बेहतर है। हराम, जिससे बचना लाजिम है और करने पर गुनाह है। तो ये तकसीम हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इस्लाम इंसान को अंधेरे में नहीं छोड़ता, एक वाज़े उसे गाइडलाइन देता है कि कौन सा रास्ता नजात का है, कौन सा रास्ता खतरे का है और कहाँ इंसान को इख्तियार दिया गया है। इस्लाम ने रूह को भी अहमियत दिया, जिस्म को भी। हमारी नमाज जिस्मानी इबादत भी है, क़याम, रुकू, सजदा, रोज़ा भी जिस्म से मुतालिक है, खाने पीने और ख्वाहिशात को रोकना। हज भी एक जिस्मानी सफ़र है, तवाफ़, सई, अरफात में वकूफ़। इसका मतलब ये है कि जिस्म अल्लाह की अमानत है, हम अपनी मर्ज़ी से उसे गुनाह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाथ, पाँव, आँख, कान, ज़बान, सबका हिसाब होगा। कुरान हमें याद दिलाता है कि क़यामत के दिन इंसान का जिस्म भी गवाही देगा, ज़बान ने क्या कहा, आँख ने क्या देखा, कान ने क्या सुना, हाथ ने क्या किया, सब सामने आ जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के बारे में बहुत सख्त तंबीह फरमाई। किसी ने खूब कहा है कि सुबह के वक्त जिस्म के तमाम अज़ा ज़बान से कहते हैं, हमारे बारे में अल्लाह से डर, क्योंकि अगर तू सीधी रहे तो हम भी सलामत रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी तबाह हो जाएंगे। वाकई ज़बान छोटी है मगर उसके असरात बहुत बड़े हैं। एक जुमला दिल जोड़ देता है, एक जुमला घर तोड़ देता है। इसलिए ज़बान की हिफाजत दीन की बड़ी हिफाजत है। सामने किराम, फिर इस्लाम माल के बारे में भी रहनुमाई देता है। ज़कात, सदका, खैरात, ये सब माल को पाक करने के ज़राए हैं। ज़कात हमें ये सिखाती है कि माल सिर्फ मेरा नहीं, इसमें महरूमों का भी हक है। सदका हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है वो ज़ाया नहीं होता बल्कि आखिरत के लिए महफूज हो जाता है। तो सामने किराम, गुफ्तगू के अख्तिताम पर प्रोग्राम के इस मरहले में हम कुरान करीम के चंद नहायत अहम पहलुओं को समेटना चाहते हैं। कुरान, जैसा कि वाज़ह है, ये सिर्फ क़िसस की किताब नहीं, ये सिर्फ वादों और वईदों की किताब नहीं, यह इंसान की मुकम्मल तरबियत की किताब है। कुरान हमें बताता है कि इंसान की ज़िंदगी 3 बड़े दायरों में घूमती है, जिस्म, माल और दिल। जिस्म के अहकाम हैं नमाज, रोज़ा, हज, हलाल व हराम, ज़बान, आँख, हाथ, कदम। माल के अहकाम हैं ज़कात, सदका, अमानत, ख़ियानत से बचना, हकदार का हक देना। और दिल के अहकाम हैं इखलास, सिद्क, तक्वा, खौफ खुदा, तवक्कुल, सब्र और शुक्र। इसीलिए सदका को सदका कहा गया है क्योंकि ये इंसान की सच्चाई का इजहार है। बंदा जब अल्लाह की राह में माल देता है तो गोया वो अपने अमल से कहता है, या अल्लाह

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे हमाद अली अल हंजब के बारे में। हमाद अली अल हंजब कतर के उभरते हुए स्विमर्स में से एक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी काबिलियत का इजहार किया है। बचपन से ही उन्होंने पानी के खेलों में दिलचस्पी ली और बाद में स्विमिंग को अपना मुस्तकबिल बनाने का फैसला किया। हमाद की पहचान उनकी सख्त ट्रेनिंग, मजबूत इरादे और कॉन्फिडेंस है। वो मुख्तलिफ स्विमिंग इवेंट्स में कतर की नुमाइंदगी करते हुए कीमती तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। फिटनेस, बैलेंस, गिजा और रोजाना प्रैक्टिस उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। हमाद का मानना है कि हर एथलीट को जिस्मानी तैयारी के साथ साथ जहनी मजबूती भी इम्पोर्टेंट है। दोहा की जदीद एक्वेटिक फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में मदद की है। उनकी कामयाबियां और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं कतरी स्विमर्स को काफ़ी मुतासिर किया है और वो मुल्क में स्विमिंग कल्चर को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले अरसे में उनसे मजीद बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से अफराद जो है नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। अब नाश्ता दिन की सबसे अहम ग़िज़ा समझी जाती है। रात भर सोने के बाद हमारा जिस्म कई घंटों तक बगैर खुराक के रहता है। जैसे सुबह का नाश्ता जिस्म और दिमाग को दोबारा तवानाई फराहम करता है ताकि हम अपने दिन का आगाज भरपूर अंदाज में कर सकें। एक मतवाजन और सेहतमंद जो शख्स है उसे सेहत बख्श नाश्ता जो है वो ज़रूरी है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनियात जो हैं वो होते हैं, और ये ग़िज़ाई अज्जा हमारी जो दिमागी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने, याददाश्त को ज़्यादा करने और हमारी जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसे मरकूज कर रखने में मदद देते हैं। यही वजह है कि जो अफराद बाकायदगी से ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज़्यादा चुस्त रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रेकफास्ट छोड़ देने से थकन, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको बाद में शदीद भूख लगने की वजह से फिर हम गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने का जो इरादा वो कर लेते हैं और उसका रुझान भी ज़्यादा होता चला जाता है। जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें एग हैं, उसमें ब्राउन या फिर होल व्हीट ब्रेड है, इसके अलावा पोरिज है, ताज़ा फल हैं, दही के साथ आप नट्स हैं वो ले सकते हैं, इसी तरह लो फैट जो दूध है या सीरियल वो आप ले सकते हैं, ताज़ा जो फ्रूट्स हैं उनकी स्मूदी बनाकर लिए जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देर तक हमें फुलनेस का यानी पेट भरने का एहसास दिलाता है। बच्चों और नौजवानों के लिए नाश्ता ख़ास तौर पर बेहद अहम है क्योंकि इनके जिस्म और दिमाग नशोनुमा के मराहल में होते हैं, और एक अच्छा नाश्ता उनको जो सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा करता है और इसी तरह कंसंट्रेशन में भी इजाफा करता है। और अगर आप सुबह मसरूफ होते हैं तो रात को ही अब नाश्ते की कुछ तैयारी कर लीजिए ताकि सेहतमंद इंतखाब आसान हो जाए। याद रखिए, नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं है बल्कि आपके हमारे जिस्म और दिमाग के लिए तवानाई का अहम जरिया है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ के उन छुपे हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगियों पे असर डाल रहे हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जीरो वेस्ट किचन, यानी ऐसा किचन जहां खाना बनाते वक्त वेस्ट को मिनिमम या बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जाए। अब किचन घर का दिल होता है भाई, लेकिन यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा फूड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और वाटर वेस्ट जनरेट होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स फूड वेस्ट होता है, और उसका ऑलमोस्ट 60% घरों से आता है, रेस्टोरेंट से नहीं। साथियों जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और वहाँ हाफ यूज्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह पड़ी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, लेफ्ट ओवर जो चावल होते हैं या एक्सपायर्ड सॉसेस अक्सर औकात में नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पुराना खाना वेस्ट हो जाता है और नया पैकेजिंग वेस्ट भी ऐड हो जाता है उसके अंदर। तो भाई, इको स्विच अप्रोच कहता है कि पहले एग्जिस्टिंग खाने को तो यूज कर लो भाई, जो पड़ा हुआ है बेचारा मिस्कीन फ्रिज में आपकी राह देख रहा है, फिर बेशक नया खाना खरीद लेना अगर भूख लगे तो। सिर्फ ये हैबिट अपनाने से आपके हाउसहोल्ड फूड वेस्ट में तकरीबन 20-30% तक कमी हो सकती है। अच्छा, अब ना मैं आपको कुछ मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, किचन वेस्ट की हिडन रियलिटी बताती हूँ, ठीक है? देखें, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको किचन हैबिट्स पर रीथिंक करने पर मजबूर कर देंगे। पानी का ऑलमोस्ट 25% घरों में सिर्फ फूड प्रिपरेशन और डिश वॉशिंग में यूज हो जाता है। एक सिंपल बनाना पील को कंपोस्ट होने में 2-5 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर लैंडफिल में हो तो भाई और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, अगर दुनिया के फूड वेस्ट एक कंट्री होते ना, सारा फूड वेस्ट एक कंट्री में डाल दिया जाता और वो उसे एक कंट्री बना दिया जाता, एक कंट्री होता वो, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूएसए और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन होल्डर होता वो। इतना बड़ा स्पेस बन जाता है उसका। अब भाई आप पूछेंगे कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका हमारा नजरिया है जीरो वेस्ट माइंडसेट। देखिए, इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल सा है। किचन को वेस्ट फ्री बनाना मुश्किल नहीं है, बस माइंडफुल बनना होता है। जब हम जीरो वेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि पैसा भी सेव कर रहे होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक एवरेज फैमिली अपने ईयरली ग्रोसरी बजट का 10% सिर्फ वेस्ट फूड की वजह से लूज कर देती है। अगर हम प्लानिंग और स्टोरेज बेटर करें ना अपना, तो ये लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। जरा सोचिए ना, आप सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस माइंडसेट में ज्यादा सब्जियां, फ्रूट और स्नैक्स ले आते हैं, जस्ट इन केस में, क्या आपका माइंड होता है भाई क्या पता हम इस्तेमाल करेंगे। घर आकर 3 दिन तक सब यूज नहीं होता। 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आधे आइटम तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियां और फ्रूट हैं तो वो जल्दी गल सड़ जाते हैं। देखिए भाई, इको स्विच कहता है कि शॉपिंग लिस्ट के बगैर ग्रोसरी शॉपिंग एक वेस्ट जनरेटर मिशन बन सकता है। देखिए, प्लानिंग सिंपल सॉल्यूशन है, जो फ्रिज में है उसी के अराउंड

0: अपने डिजाइन करें और जो चाहिए सिर्फ वो ही लेकर आए। अब मैं आपको चलते चलते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जीरो वेस्ट किचन बनाने के लिए। तो भाई पहली टिप ये है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करें। पुराना खाना पहले यूज करें और फिर बाद में दूसरा खाना। दूसरी टिप है कंपोस्टिंग स्टार्ट करें ना किचन वेस्ट के लिए, जैसे फ्रूट पील और वेजिटेबल स्क्रैप्स, इनके ऊपर कंपोस्टिंग स्टार्ट करें। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक रैप की जगह रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें। चौथा, पोर्शन कंट्रोल करें ताकि ओवर कुक से वेस्ट ना हो कोई भी सामान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली रीयूज करें, जैसे लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस या वेजिटेबल सूप, ये भी बन सकता है। साथियों देखिए, जीरो वेस्ट किचन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुकिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें। जब हम खाने को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम उसे वेस्ट नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब फैमिलीज मील प्लान करती है ना, तो उनका फूड वेस्ट नियरली हाफ हो जाता है और कुकिंग स्ट्रेस भी कम होता है। तो भाई हमारा कंक्लूजन ये है आखिर में कि भाई इकोसिस्टम का सिंपल मैसेज ये है कि किचन सिर्फ कुकिंग स्पेस नहीं होता बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट का सेंटर होता है। हर छोटी आदत जैसे लेफ्ट ओवर्स यूज करना, वेस्ट सेग्रीगेट करना और कंपोस्ट बनाना, ये सब कुछ मिलकर एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो भाई अगली बार जब आप किचन में एंटर करें ना, तो एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, आज मैं कितना वेस्ट अवॉइड कर सकता हूँ। तो साथियों इसी के साथ मैं हूँ सफा इको स्विच में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहाँ हर मील सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल डिसीजन होता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है खाना शेयर करने की अहमियत पर। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। खाना शेयर करना सिर्फ एक सोशल हैबिट नहीं बल्कि एक इबादत है जो रहमत और बरकत का सबब बनती है। जब हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं तो ना सिर्फ किसी की ज़रूरत पूरी होती है बल्कि दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये छोटा सा अमल लोगों को करीब लाता है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोच पैदा करता है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी चीज़ों तक महदूद रहते हैं लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। आज का अमल यह है कि अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो घर का फर्द हो या फिर कोई जरूरतमंद। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: और आज मैं बात कर रही हूँ एक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की और ये है AI companions, your future personal assistant. सुना है आपने इसका नाम? देखिए आजकल हम AI को तो खूब अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं. AI को हम एक डिजिटल टूल समझते हैं, जो कि ठीक भी है. एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कमांड्स फॉलो करता है. हम सीरी से सवाल पूछ लेते हैं, एलेक्सा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह देते हैं, चैट जीपीटी से हम आंसर्स ले लेते हैं. लेकिन सोचिए अगर 2030 तक एआई सिर्फ एक असिस्टेंट ना रहे बल्कि एक रियल कंपेनियन बन जाए, एक दोस्त जो आपको समझे, आपके साथ ग्रो करे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो कैसा लगेगा? सोच के थोड़ी सी उलझन होती है. लेकिन फ्यूचर का एआई सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एंटिसिपेट भी करेगा. मतलब आप बोलने से पहले ही वो समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या. एआई कंपेनियन, जी हाँ, एआई कंपेनियन का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए एआई कंपेनियन असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, आपकी आदतों को समझने के लिए, आपके रूटीन को ट्रैक करे, आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे. ये एआई सिर्फ डेटा पर काम नहीं करेगा, ये इंसान की तरह इंटरैक्ट करेगा. अगर आप रोज सुबह एक ही वक्त उठते हैं तो एआई आपका अलार्म उससे पहले ही एडजस्ट कर देगा ताकि आप नेचुरली उठ सकें. अगर आपका दिन हेक्टिक हो, AI ऑटोमेटिकली आपके स्केड्यूल में ब्रेक्स ऐड कर देगा जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सके. फ्यूचर का जो AI है वो सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड नहीं होगा बल्कि इमोशंस को भी समझेगा. अगर आप सैड हो, अलेक्सा से बात करो तो वो आपको उसके जवाब देगा. लेकिन कल का AI आपकी टोन, आपकी आवाज और आपके बिहेवियर से समझ जाएगा कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में है. उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि आप स्ट्रेस में हो. अगर आप थके हुए हैं, AI आपको रेस्ट सजेस्ट करेगा. अगर आप अपसेट हैं, तो AI कामिंग म्यूजिक आपके लिए प्ले करेगा. अगर आप एंशियस हैं, AI ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग सजेशंस आपके लिए देगा. ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि AI अब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने के करीब आ चुका है. दोस्तों AI कंपेनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद अभी हमारी और आपकी सोच से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे अडॉप्ट करना ही है. कभी ना कभी AI को अपना कंपेनियन तो बनाना ही है. AI कंपेनियन सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हेल्थ केयर में ला सकता है. सोचिए आपके पास एक AI हो जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसे एनालाइज कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है. अगर सिस्टम को कोई अनयूजुअल चेंज नजर आता है तो फौरन आपको अलर्ट मैसेज भेज देता है. तो ये सारी चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी. अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो आप अनयूजुअल थकान फील करते हैं, AI डॉक्टर को नोटिफाई करेगा या ऐप को चेकअप के लिए सजेस्ट करेगा बिफोर इट कम्स सीरियस. इसका मतलब है कि फ्यूचर मेडिसिन ज्यादा प्रिवेंटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव नहीं रहेंगी. हर चीज मॉनिटर करना, हर चीज देखना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल एस्पेक्ट है. AI कंपेनियन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक डिजिटल दोस्त जैसी फील कराएगा. लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, थॉट्स डिस्कस करेंगे. आज भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन कल हो सकता है कि ये लोग अपने AI कंपेनियन से डायरेक्टली बात करें. क्या AI इंसान की जगह ले सकता है? ये सवाल हमारे जहन में बहुत बार आता है. जवाब है नहीं. AI सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है. हर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी होते हैं और उसके फायदे भी, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी प्राइवेसी के इश्यूज तो क्रिएट करती है. वहीं AI क्या डिसाइड करेगा और कैसे करेगा, ये सोचना थोड़ा सा अभी के लिए डिफरेंट और डिफिकल्ट है. लेकिन हाँ, AI फ्यूचर, AI कंपेनियन जो है वो फ्यूचर तो है. ये मशीन इंसान के बीच में एक नया रिश्ता क्रिएट करने के लिए तैयार है 2030 तक हो सकता है कि हम सिर्फ डिवाइस के साथ नहीं बल्कि डिजिटल कंपेनियन के साथ जिंदगी गुजार रहे हों ये कंपेनियंस हमारी हर जरूरत समझे हमारी हेल्थ का ख्याल रखे हमारी लाइफ को आसान बनाए लेकिन साथ ही ये भी सवाल होगा क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमें भारत AI हमारी मदद कर रहा है लेकिन हम किस तरह से इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं इसका पता नहीं फिलहाल तो मेरा मकसद आपको डराना या घबराना या किसी तरह से टेंशन में लेकर आना नहीं है बस कहीं ना कहीं आपकी सोच को और आपको जहनी तौर पे तैयार करना है टुवर्ड्स 2030 जो कि फ्यूचर है जिसे हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो अडॉप्ट करना ही है फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो चुका है कि मैं आपसे इजाजत ले लूं इस वादे के साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात लेकर आपके लिए मैं हाजिर होगी आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी One step to 2030
0: Maximum music, maximum fun
2: on FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो आप क्या प्लान कर रहे हैं अपने मुल्क जाने के लिए, रिश्तेदारों के लिए अबाया या फिर कुछ अच्छा खरीद कर ले जाने के लिए या फिर ऐसा कुछ जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं। तो चलें इस पूरे महीने हम बात करेंगे कि इन गर्मियों के छुट्टी में होने वाले स्कैम्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे मैं हूं फजील, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हम बात करते हैं फ्रॉड्स के बारे में और नए नए फ्रॉड्स के बारे में। वेल, ये सीजनल फ्रॉड भी आजकल चालू हो गया और ये गर्मियों के दिन में भी आता है, गर्मियों की छुट्टियों में आता है। क्या है ये स्कैम, तो चले शुरू करते हैं। वेल, ये स्कैम है चीप फ्लाइट स्कैम। आमतौर पे आप फ्लाइट जो है गर्मी की छुट्टी में बुक करते हैं और क्योंकि आपके दोस्त या आपके यार आपकी फैमिली भी साथ जाती है तो ऐसे में आप सस्ती फ्लाइट देखते हैं और सर्च इंजन में सर्च करते हैं चीप फ्लाइट्स। और जब आप सबसे ऊपर कोई लिंक देखते हैं उस पे आप क्लिक करते हैं और ऐसा लगता है कि वाओ, ये मुझे सस्ती टिकट मिल रही है और ये टिकट बहुत ही ज्यादा मामूली अमाउंट में आ रही है। मिसाल के तौर पे 1,000 कतरी रियाल के 2 टिकट मिल जाएंगे या 1,500 के 3 टिकट मिल जाएंगे, 4 टिकट मिल जाएंगे और ऐसे में आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्यों ना इस टिकट को ले लिया जाए। आपको ये लग रहा होता है कि आप सस्ती टिकट ले सकते हैं लेकिन ये स्कैमर्स की, फ्रॉड वालों की चाल है आपको सस्ते टिकट बेचने की। वो आपको टिकट बेचने के लिए उस लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, आप लिंक पर क्लिक करते हैं, सारी डिटेल आपके साथ आती है, आपके सामने आती है, वेबसाइट ओरिजिनल लगती है, फिर आप पेमेंट करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पेमेंट करने के बाद आपके पास टिकट की, फ्लाइट टिकट की डिटेल्स भी आती हैं। और यहां पर आपके साथ हो जाता है सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि जिस वक्त आप ये टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिस दिन एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस नाम की तो कोई टिकट ही नहीं है। यहां पर आपके साथ स्कैम होता है, आपके सारे पैसे दोस्तों डूब जाते हैं। ऐसे में कैसे बचा जा सकता है इस तरह के डार्क स्कैम से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचने के सिर्फ 4 तरीके हैं। उन 4 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं या जो भी फ्लाइट आप बुक करना चाह रहे हैं उस फ्लाइट की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएं। दूसरा तरीका है कि आप किसी अपने ट्रेवल एजेंट से बात करें, उनसे फ्लाइट बुक करें। आमतौर पे कभी कभी टिकट्स जो है वो महंगी होती हैं तो आपको अलग अलग एजेंट्स के पास जाना है और वो एजेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जिनके पास टिकट बेचने का लाइसेंस हो, उनके पास जाइए। और ऐसे 10 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, आप कॉल पर उनसे बात कर सकते हैं, जो भी सस्ते टिकट दे रहा है, जो आपके लिए मुनासिब है, वहां से बात करें और उनसे ये टिकट खरीदें ताकि आपके लिए आसानी भी हो और आप स्कैम से बच पाए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका जो कि डेंजरस भी होता है कई बार आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तीसरे यानी कि थर्ड पार्टी से बुकिंग कराते हैं, तो जब भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप अपनी टिकट्स बुक कराएं तो मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक हो और उसकी वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे www.xyz.com पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरा श्योर होना पड़ेगा कि ये वेबसाइट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बार इस पर बुकिंग करी है। कई बार वेबसाइट अलग होती है, उसमें आपको फेक कैसे वेबसाइट है ये पकड़ना होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट से जब भी आप बुक करेंगे तो ये आपके लिए एक स्कैम का नया दरवाजा खोल देता है जहां पर आप फंस सकते हैं। तो ऐसे में मेक श्योर के वो वेबसाइट जिस पर आप जा रहे हैं थर्ड पार्टी पे वो बिल्कुल करेक्ट हो। और चौथा तरीका है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके पैसे कट गए हैं

0: स्कैम की वेबसाइट पे जाकर टिकट बुक करा कर, तो तरीका ये है कि जल्द से जल्द अपने बैंक को कॉल करें और उनको इस स्कैम के बारे में बताएं। ज्यादातर स्कैम्स जो होते हैं उनमें लेट कॉल पहुंचती है बैंक को और बैंक कुछ नहीं कर पाता। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे बैंक को, बैंक उतनी जल्दी कोशिश कर सकता है कि आपके पैसे वापस आ जाएं। ये सिर्फ एक कोशिश है, इसमें कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में स्कैम से बचने के लिए सुनते रहें फ्रॉड अवेयरनेस, और इस गर्मी की छुट्टी में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन कर

0: your go-to radio show for all things green, eco-friendly or planet-saving. मैं हूं आपकी आरजे महवश और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर.
1: टॉपिक ऑफ द डे.
0: सस्टेनेबल फैशन ड्रेसिंग विदाउट स्ट्रेसिंग द प्लैनेट. ये शो हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी हरियाली ऐड करना चाहता हो. सो ग्रैब अ कप ऑफ चाय, सेटल इन और चलिए शुरू करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी फैशन चॉइसेस का एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है और हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं टू ड्रेस बेटर फॉर आवर प्लैनेट. प्लस वी हैव गॉट सम एक्साइटिंग सेगमेंट्स लाइन अप, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी न्यूज, इको लिविंग टिप्स और एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमें मोटिवेट करेगी. तो सुनना ना भूलें और हमसे कनेक्ट हो जाएं हमारे सोशल मीडिया पे @FM107 Qatar और व्हाट्सएप पर @666221107. शेयर योर थॉट्स, आइडियाज या फिर अपने इको फ्रेंडली फैशन हैक्स. अब चलिए डाइव इनटू द शो. तो लिसनर्स, आज हम बात करेंगे फैशन पे. हम सबको नए कपड़े बहुत पसंद हैं, राइट? शॉपिंग फॉर क्लोथ्स इज फन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फास्ट फैशन का ट्रेंड हमारे प्लैनेट को कितना नुकसान पहुंचाता है? फास्ट फैशन का मतलब है सस्ते ट्रेंडी कपड़े जो जल्दी प्रोड्यूस होते हैं और जल्दी ही वेस्ट बन जाते हैं. लेकिन क्या कभी सोचा कि एट व्हाट कॉस्ट? आज की दुनिया में हर किसी को अच्छे, नए और स्टाइलिश कपड़े पसंद हैं. लेकिन हमें अपने कपड़ों की चॉइसेस पर भी सोचना चाहिए. ये फास्ट फैशन का ट्रेंड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी वार्डरोब को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है. फास्ट फैशन से जो मैसिव एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उससे हमें जल्दी से दूर जाना होगा और सस्टेनेबल फैशन का ट्रेंड अपनाना होगा. फास्ट फैशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. हर साल ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री 10% ऑफ कार्बन इमिशंस प्रोड्यूस करती है. ये है उतना ही जितना इंटरनेशनल फ्लाइट्स और शिपिंग कंबाइंड. प्लस टेक्सटाइल प्रोडक्शन पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है. एक सिंपल कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए लगभग 2700 लीटर्स पानी लगता है. इमेजिन, ये उतना पानी है जितना एक इंसान 3 साल में पी सकता है. इसके अलावा फास्ट फैशन का एक और सिग्निफिकेंट इशू वेस्ट है. हर साल बिलियंस ऑफ टन्स कपड़े लैंडफिल में चले जाते हैं. कपड़े जो किसी ने एक या दो बार पहने और फिर वेस्ट बन गए. ये कपड़े जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं जो सॉइल और वाटर को पोल्यूट करते हैं. सो जब हम फास्ट फैशन को अपनाते हैं हम एनवायरनमेंट को ह्यूज नुकसान पहुंचाते हैं. आजकल बहुत सी कंपनीज और ब्रांड्स सस्टेनेबल फैब्रिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ये फैब्रिक्स उन मटेरियल से बनते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ और रिन्यूएबली सोर्स्ड होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन यानी नमियाती कपास, हेम्प और बैम्बू. ये फैब्रिक्स ट्रेडिशनल फैब्रिक्स के मुकाबले में बहुत कम रिसोर्सेज यूज करते हैं और इनको प्रोड्यूस करने में पोल्यूशन भी कम होती है. बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉटन की. ये कॉटन वो होता है जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के बिना उगाया जाता है. ऑर्गेनिक कॉटन की कल्टीवेशन में ज्यादा पानी और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता और जो फार्मर्स इसे उगाते हैं उनकी हेल्थ भी बेटर होती है. इसके अलावा ये कपास का प्रोडक्शन एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है. हेम्प की बात करें तो ये एक नेचुरल फाइबर है जो बहुत तेजी से ग्रो होता है और इसके लिए कम पानी और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है. हेम्प से बनने वाले कपड़े ड्यूरेबल होते हैं और उनका कॉटन फुटप्रिंट बहुत कम होता है. बैम्बू, ये भी एक रिन्यूएबल मटेरियल है जो फास्ट ग्रोइंग है और इसकी कल्टीवेशन के लिए कम वाटर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है. बैम्बू फैब्रिक बनाने में कम एनर्जी यूज होती है और ये फैब्रिक सॉफ्ट, ब्रीदेबल और एंटी बैक्टीरियल होता है जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है. आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक,

0: लेकिन पुराने कपड़ों का क्या होता है? जब हम नए कपड़े खरीद कर पुराने कपड़ों को वेस्ट कर देते हैं, तो ये वेस्ट जल्द ही लैंडफिल में पहुंच जाता है। इन कपड़ों को सालों लगते हैं ब्रेक डाउन होने में, और ये प्रोसेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसके लिए एक सोल्यूशन है रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इसका मतलब है कि हम पुराने कपड़ों को दोबारा यूज करते हैं, उन्हें न्यू फैब्रिक या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर एक पुरानी कॉटन टी शर्ट है तो उससे एक न्यू फैब्रिक या स्टफिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हम न्यू रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम करते हैं और पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अपसाइक्लिंग इसका मतलब है कि पुराने कपड़ों को ऐसे डिजाइन करना कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरानी शर्ट को एक यूनिक बैग या फिर स्कार्फ में बदल देना। इस तरीके से हम अपने वेस्ट को वैल्यूएबल और स्टाइलिश बनाते हैं, जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि हमारी क्रिएटिविटी को भी इनहेंस करता है।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: सस्टेनेबल फैशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इथिकल प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाए। इसका मतलब है कि क्लोथिंग ब्रांड्स अपने वर्कर्स के राइट्स का ख्याल रखें, उनको फेयर वेजेस दें और सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें। फास्ट फैशन ब्रांड्स का अक्सर क्रिटिसिज्म ये होता है कि उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस में वर्कर्स के राइट्स वायलेट होते हैं, उन्हें कम वेजेस मिलती हैं और उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन सस्टेनेबल फैशन में ये चीजें चेंज हो रही हैं। ब्रांड्स जो इथिकली प्रोड्यूस करते हैं वो अपने वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देते हैं और उनका वर्क एनवायरनमेंट सेफ और सिक्योर होता है। स्लो फैशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। फास्ट फैशन में हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं और हर सीजन नए डिजाइंस खरीदते हैं, लेकिन स्लो फैशन में हम अपने कपड़े केयरफुली चूज करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी गारमेंट्स खरीदते हैं जो ज्यादा टाइम तक चल सके। जब हम स्लो फैशन को अपनाते हैं, हम अपने वार्डरोब को सस्टेनेबल बनाते हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करते हैं। स्लो फैशन में हम ज्यादा नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदते हैं जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और प्लैनेट के लिए भी। सस्टेनेबल फैशन सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, आजकल फैशन एक्सेसरीज भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुडन सनग्लासेस, रिसाइकल्ड लेदर्स और बायोडिग्रेडेबल ज्वेलरी, ये सब मटेरियल्स वो हैं जो एनवायरनमेंट पर कम प्रेशर डालते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे स्टाइल को भी बूस्ट करते हैं और प्लैनेट की भी मदद करते हैं। जब हम इको फ्रेंडली एक्सेसरीज चूज करते हैं तो हम अपनी फैशन चॉइसेस को एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं। शॉपिंग करना तो हम सबको पसंद है, लेकिन अगर हम अपनी शॉपिंग को कॉन्शियस शॉपिंग बनाएं तो हम अपनी चॉइसेस के जरिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ये कैसे? हम उन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो इथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे फेयर ट्रेड, वेगन प्रोडक्ट्स और कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन। हमारी शॉपिंग चॉइसेस हमारे प्लैनेट को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए हमें अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाना होगा। फैशन इंडस्ट्री में एक फैशन रेवोल्यूशन चल रहा है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है। ये रेवोल्यूशन इस बात पर फोकस करता है कि हमारी फैशन चॉइसेस सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम सस्टेनेबल फैशन को अपनाते हैं, हम ना सिर्फ अपने पर्सनल स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं बल्कि हम अपने प्लैनेट की भी मदद करते हैं। जब हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच रहे होते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं।

0: लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महावेश खान. और अब वक्त हुआ है हमारी ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का.
1: ग्रीन फ्लैश,
0: वेलकम टू ग्रीन फ्लैश, जहां हम लाते हैं दुनिया भर से तीन लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज. तो आइए इस हफ्ते की स्टोरी सुनते हैं. सबसे पहली खबर है एक स्वीडिश इनिशिएटिव के बारे में. एक स्वीडिश इनिशिएटिव ने टारगेट रखा है कि 2026 तक उनके 50% कपड़े रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से बनाए, ताकि वर्जिन प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी कम हो. दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल फैशन. दूसरी खबर है टोक्यो से. टोक्यो में एक प्लेटफॉर्म क्लोथिंग रेंटल्स को प्रमोट कर रहा है, जो एक सर्कुलर इकोनॉमी को इनकरेज करता है और टेक्सटाइल वेस्ट को कम करता है. ट्रेंडी कपड़े रेंट करें, बाय ना करें. अब आ जाते हैं अपनी थर्ड न्यूज पे. इंडिया में टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स प्लांट बेस्ड डाइज अपना रहे हैं, जो केमिकल डाइज के मुकाबले में पानी के पोल्यूशन को कम करती हैं. ये यकीनन एक बेहतरीन इको फ्रेंडली स्टेप है. ये थी हमारी ग्रीन फ्लैश स्टोरीज. एक्साइटिंग है ना? अगर आपके पास भी कोई सस्टेनेबिलिटी न्यूज है तो शेयर करें एट FM 107 कतर या व्हाट्सएप करें 666-22-107. अब चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. अब हम बात करेंगे एक गेम चेंजर इनोवेशन के बारे में, जो फैशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है.
1: ग्रीन इनोवेशन.
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं ऑन बायोफैब्रिकेटेड मटेरियल्स. ये क्या होता है? बायोफैब्रिकेटेड मटेरियल्स जैसे लैब ग्राउंड लेदर या मशरूम बेस्ड फैब्रिक, फॉसिल्स फ्यूल्स और पानी के यूज को ड्रामेटिकली रिड्यूस करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स. मसलन एक कंपनी मशरूम रूट से लेदर जैसा मटेरियल बनाती है, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है. ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि ये ट्रेडिशनल लेदर से ज्यादा सस्टेनेबल है. दुनिया भर के डिजाइनर्स भी अब ऐसे मटेरियल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं टू क्रिएट हाई एंड सस्टेनेबल अबायास और ड्रेसेस. इजंट दैट कूल? ये इनोवेशंस हमें दिखा रहे हैं कि फैशन स्टाइलिश भी हो सकता है और प्लैनेट फ्रेंडली भी. आप क्या सोचते हैं बायोफैब्रिकेटेड फैशन के बारे में? क्या आप ऐसे कपड़े ट्राई करेंगे? लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप 666-22

0: 107. अब चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: आज के टॉपिक सस्टेनेबल फैशन के मुताबिक हेयर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो शॉप सेकंड हैंड। यहाँ के सोक्स और शॉपिंग सेंटर्स में कुछ आपको थ्रिफ्ट शॉप्स मिलते हैं जहाँ पे सेकंड हैंड क्लोथ्स ढूंढ सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली भी है और प्लैनेट फ्रेंडली भी। दूसरी टिप ये है कि अपने कपड़ों को कोल्ड वाटर में धोइए और एयर ड्राई करें। ये एनर्जी सेव करता है और कपड़ों की लाइफ भी बढ़ाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोथ स्वैपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करें। नए कपड़े के लिए शॉपिंग करने के बजाय अपने वार्डरोब को रिफ्रेश करें विदाउट स्पेंडिंग और वेस्टिंग। ट्राई दीज टिप्स और हमें बताएं कि कैसे इन्होंने काम किया। अब चलिए अब वक्त है इंस्पायरिंग वॉइसेस का, यानी हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: अब हम सुनेंगे एक पावरफुल वॉइस जो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही है। अभी हम आपको 30 सेकंड क्लिप सुनाएंगे वंदना शिवा का, जो कि एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी। तो चलें सुनते हैं।
2: वेल, फास्ट फैशन इज ग्लोबलाइज्ड, अ हैंडफुल ऑफ ब्रांड्स हु ऑल गेट प्रोडक्शन इन द सेम स्लेव फैक्ट्रीज, देन दे पुट देयर लोगोस and their labels, but it's the same slave factories. They are not sustainable because even when they sell cotton, probably it's 5% cotton.
0: Wow, kitni inspiring baat ki hai Vandana Shiva ne. Hame remind karne ke liye ki choti si choices bhi hamare planet ke liye bada fark la sakti hain. Aap bhi aisi voices se inspired hote hain?
1: Weekly challenge.
0: Listeners, अब टाइम है हमारे टेक अवे चैलेंज का। इस हफ्ते का चैलेंज है गो अ वीक विदाउट बाइंग न्यू क्लोथ्स। इंस्टेड ट्राई रिपेयरिंग, स्वैपिंग या थ्रिफ्ट शॉपिंग। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, उन्हें डोनेट करें या अपसाइकल करें। नेक्स्ट वीक के शो में हमें जरूर बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कम्प्लीट किया। और यहाँ पे हमारा शो होता है एंड। आज का सस्टेन द फ्यूचर ऑन FM 107 कतर। शुक्रिया लिसनर्स कि आपने हमें ज्वाइन किया। अगले हफ्ते हम बात करेंगे द एनर्जी शिफ्ट, रिन्यूएबल वर्सेस फॉसिल फ्यूल्स। हम जानेंगे कि दुनिया क्यों सोलर और विंड पावर की तरफ मूव कर रही है और कतर के सोलर प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल टिप्स जैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स और LED लाइटिंग के बारे में। प्लस एक्साइटिंग ग्रीन फ्लैश स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फार्म्स। सो डोंट मिस इट। टिल देन स्टे ग्रीन, स्टे सस्टेनेबल और अपना ख्याल रखें। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा @FM107 कतर और मैसेज करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है @666-22107। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर। आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी। Qatar's most heard radio station, FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم